शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

0: नमः।
1: आइए दोस्तों, दिव्य दर्शन के इस बहुत ही पवित्र और प्यारे से प्रोग्राम में आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं। जैसा मैंने कई बार कहा, दिव्य दर्शन यानी कि अपने आप को पहचानने का ये प्रोग्राम है, जहां पर हम एक दूसरे से संबंधित बिल्कुल साधारण मनुष्यों से, साधारण इंसानों से बातचीत करते हैं कि ये विषय दरअसल आम जनता के लिए क्या है।

0: आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो हैं प्रवीण कुलकर्णी साहब। हम उन्हीं से बातचीत करेंगे कि वो क्या समझते हैं, क्या हमें बताते हैं, कैसी वो प्रैक्टिसेस करते हैं, कैसा उनका जीवन है। तो मैं प्रवीण जी से आभार प्रकट करते हुए, उनका स्वागत करते हुए उनसे गुजारिश करूंगा कि प्रवीण जी अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, हमारे सुनने वालों को बातचीत कीजिए उनसे कि आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं।
1: सबसे पहले नमस्कार और अभिनंदन और आभार प्रकट करना चाहूंगा समीर जी कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपने सर्वसाधारण विचार आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो पेशे से मैं एक फ्रीलांस ट्रांसलेटर हूं
0: जी,
1: और कंटेंट राइटिंग करता हूं, माने वेब कंटेंट जो होता है वो।
0: जी जी जी।
1: मैं कर्नाटका से हूं और बस अपनी 60 साल की जिंदगी में जो भी सीखा है वो आपके सामने बातचीत के थ्रू शेयर करना चाहूंगा बस।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो दोस्तों जाहिर से बात है, जब व्यक्ति जैसे प्रवीण जी ने बताया कि वो कंटेंट राइटर हैं, तो उनके पास शब्द हैं, उन्होंने वाक्यों को बनाना सीखा है, वो जानते हैं शब्दों का मतलब क्या होता है, उनमें कितनी गरिमा होती है। मैं पूरी पूरी उम्मीद करता हूं कि आज का ये विषय, आज की ये बातचीत बहुत समझदारी से भरपूर होगी, हमें कुछ तयशुदा तौर पर सीखने को मिलने वाला है। तो प्रवीण जी चलिए बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल साधारण इंसान के लिए बात करते हुए करें, ये जो स्पिरिचुअलिटी है, यानी कि हिंदी में कहें तो आध्यात्म, इसको आप कैसे समझाएंगे, क्या मतलब है इसका?
1: अध्यात्म आद्य माने सबसे पहला, आत्मा माने अपनी आत्मा, अध्यात्म माने जो अपने आत्मा से शुरू हो, आत्मा माने खुद, जो मुझे मुझे जो चीज पहले रखती है, समथिंग दैट कीप्स मी इन फ्रंट, समथिंग दैट ओरिएंट्स मी, दैट इज अध्यात्म। वैसे स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करूं तो मेरी इंट्रोडक्शन हुई स्पिरिचुअलिटी में मेरे स्कूल के सालों में।
0: ओह, दैट्स नाइस।
1: अध्यात्म मेरे ख्याल से ये होता है कि खुद की आत्मा को समझें।
0: जी।
1: खुद की आत्मा को समझें और वो जो निर्माता है उसके साथ अपना संबंध जोड़े और वो संबंध समझें। मेरे लिए ये अध्यात्म है।
0: ओके, बिल्कुल ही सरल भाषा में, बिल्कुल ही आसान तरीके से प्रवीण जी ने जैसे हमें बताया है दोस्तों, उसको लिटरली ही लीजिए एक बार को, क्योंकि उससे समझने में, आगे की बातचीत को समझने में जरा आसानी हो जाएगी। सुंदर। अगर आज के जो जनरेशन है, ठीक है, हम तो एक जनरेशन पहले की बात कर रहे हैं जिन्होंने कुछ समझा, जिन्होंने कुछ महसूस किया, अनुभव किया, अपने चारों तरफ देखा, अपने बड़ों लोगों को ऑब्जर्व किया और कुछ मान्यताएं हमको सिखाई गई, हमने बनाई। लेकिन यही चीज अगर हम आज की जनरेशन को समझाना चाहें तो आज की जनरेशन कुछ भी आध्यात्मिक आपको दिखाई देती है या सिर्फ बस मजे कर रही है, या फिर यूं कह लीजिए फैशन है तो उसको फॉलो करते चलो, कुछ ऐसा हो रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप?
1: अध्यात्म तो पहले से ही है, माने अनादि और अनंत है
0: जी।
1: अध्यात्म का तो ना ही, अध्यात्म की तो ना ही शुरुआत हुई ना ही उसका अंत होगा। जैसे मैंने कहा, आई वॉज इंट्रोड्यूस टू स्पिरिचुअलिटी ड्यूरिंग माई स्कूल डेज
0: जी।
1: आई स्टडीड इन इंग्लिश मीडियम, एक जेसुइट स्कूल में पढ़ा मैं, और उन दिनों हमारे लिए एक, माने पूरे दिन में एक क्लास वो होता था जिसे कहा जाता था मॉरल साइंस। बीइंग अ जेसुइट स्कूल, जो कैथोलिक बच्चे थे वो बच्चे अपना रिलीजन पढ़ते थे, और हम लोग जो नॉन कैथोलिक थे हमें मॉरल साइंस का क्लास लिया जाता था। तो उस मॉरल साइंस के क्लास में आई वॉज इंट्रोड्यूस टू द टीचिंग्स एंड प्रीचिंग्स ऑफ ना, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। और ऐसे चलते चलते जब मैं कॉलेज के मेरे दिनों में मेरी इंट्रोडक्शन हुई स्वामी चिन्मयानंद के राइटिंग्स पे, तो
0: जी
1: ये तो मैंने बहुत सालों से है ही।
0: जी
1: और अध्यात्म ना, जैसे मैंने कहा, अध्यात्म अनादि है, अनंत है। आज की पहले की पीढ़ी में था और हमारे पहले की जो पीढ़ी थी उनको भी यही लगता था कि हमारे जैसे हमारे बच्चे नहीं हैं।
0: जी
1: लेकिन लेकिन आज हमें, हम में से भी कई लोगों को ऐसा लगता हो कि हमारे बच्चे हमारे जैसे हैं नहीं। लेकिन मैं यहां ये कहूंगा कि उतना वक्त भी तो मिलना चाहिए अगली पीढ़ी को कि पिछली पीढ़ी को पढ़ें, उनका काम समझें, जानें। उतना अगर हम उन्हें वक्त दें तो शायद वो पढ़ भी लें। सो लाइक आई सेड, स्पिरिचुअलिटी इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ, द इनर सेल्फ एंड द हायर सेल्फ, विच कुड बी इंटरप्रेटेड एज द माइंड, द सोल एंड द यूनिवर्स।
0: राइट
1: लेकिन इन चीजों को समझने के लिए हमारी जो पीढ़ी है, अगली पीढ़ी, उन्हें उतना वक्त भी देना चाहिए, उन्हें उतना अवेयरनेस और उतना एक्सपोजर भी देना चाहिए, जहां से ये बच्चे कुछ समझ सकें।
0: जी
1: वो समझते नहीं है, इसका इसका थोड़ा दोष तो हम पर भी आता है कि हमने उन्हें समझाया नहीं। ये होता है कि समझाने वाला और समझने वाला जब दोनों मोर और लेस एक ही प्लेन पे आ जाएं, तब चीजें आसान हो जाती हैं। स्पिरिचुअलिटी इज द जर्नी इनवर्ड, टू इंट्रोस्पेक्ट, टू अंडरस्टैंड, टू रियलाइज, टू मैनिफेस्ट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द रिलेशन बिटवीन द ह्यूमन एंड द अल्ट्रा ह्यूमन, द
0: ट्राइंग
1: सुपर ह्यूमन, द कॉस्मिक एनर्जी। स्पिरिचुअलिटी टू मी इज द कंपास ऑफ द माइंड एंड द सोल। लेकिन ये बात समझने के लिए बच्चों में कुछ कुछ समझ तो आनी चाहिए। दे नीड टू हैव और दे नीड टू डेवलप अ सर्टन लेवल ऑफ मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग।
0: करेक्ट। सो द पॉइंट इज जी
1: वो अचार अचार इमीडिएटली मैच्योर नहीं होता है। अचार में इतने सारे मसाले डाले जाते हैं, जब मसाले उस चीज में, नींबू हो या आम हो, अचार में मिलजुल घुल जाने के बाद तब जाके अचार तैयार होता है। लाइकवाइज वी ऑल्सो नीड टू इन्वेस्ट इन अवर नेक्स्ट जनरेशन। वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट फॉर आवर सेल्स एंड वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट, वी नीड टू गिव देम ऑल्सो टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्शन पे एक एक छोटी सी कविता मुझे याद आती है
0: ओ प्लीज
1: डॉक्टर हरवंश राय बच्चन की,
0: जी
1: और ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का इसके साथ संबंध है या नहीं है मुझे पता नहीं है, बट माई माई स्पिरिचुअलिटी ऑफ लाइफ हैज बीन दिस, माई माई अप्रोच टू लाइफ हैज बीन दिस, कि हरवंश राय जी की वो कविता, कि कविता का शीर्षक है जीवन की आपाधापी में।
0: जी
1: कहते हैं कि जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कहीं कुछ देर बैठ ये सोच सकूं, जो भी किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। तो ये समझ पहले, ये सोच हमने करनी है पहले, बाद में बच्चों को सिखानी है। बच्चों को आज के पीढ़ी जो है काफी सृजनशील हैं, काफी हमसे ज्यादा होशियार हैं वो। दे एब्सॉर्ब थिंग्स मच फास्टर देन वी डिड। बहुत बहुत प्रगत पीढ़ी है आजकल की।
0: जी
1: Why I say this is because, you know, in spite of the distractions, changes in lifestyle, westernized thinking, or the so-called modern thinking, spirituality obviously is followed by today's youth. अब बात यह हो सकती है कि हमारे पीढ़ी में बहुत ज्यादा लोग धार्मिक थे या आध्यात्मिक थे, अध्यात्म ज्यादा प्रचलित था हमारे दिनों, लेकिन आज कम है. लेकिन आज कम है माने आज की पीढ़ी अभी 20-25 की है. उन्हें 30-35 तक आने दीजिए, वो ज्यादा प्रगल्भ हो जाएंगे, ज्यादा मैच्योर हो जाएंगे
0: जी.
1: तो उसके लिए उन्हें वक्त भी देना चाहिए.
0: बिल्कुल ठीक बात है.
1: See, there are instances of people from foreign countries adopting our culture and our lifestyle. Whereas our own youth are seen to be taken over by vices, by vulgarity, violence, and an overdose of so-called modernization.
0: Correct.
1: This said, the earlier we come back to our roots, the better it will be for our youth and our future generations. ये बात तो तय है. मैंने हम अपने पुराने आध्यात्मिक पद्धति के तरफ हमने आना जरूरी तो है, लेकिन इसमें हम जल्दबाजी भी नहीं कर सकते.
0: जी हाँ.
1: उसके लिए वक्त भी देना चाहिए. एंड यहाँ एक लोहार की नहीं चलेगी सर, 100 सोनार के ही लगेंगे. क्योंकि क्योंकि हाँ नहीं, क्योंकि हम हमारे हाथ में लोहा नहीं है सर. हमारे हाथ में सोना है. सो सोने के लिए सोनार के 100 ही लगेंगे. ये है.
0: यू आर वेरी ट्रू. बड़ी खूबसूरत तरीके से बात बताई आपने. कई बार मैं मानता हूं प्रवीण जी, और आपने इस बात को कहा तो उसी बात को मैं मान रहा हूं कि हम ये जनरेशन गैप की कहानी हमेशा रही है, हमेशा रहेगी. हमारे से जो ऊपर थे वो हमारे बारे में ऐसा सोचते थे, हम अपने नीचे वालों के बारे में ऐसा सोचते हैं फिर. लेकिन आपने कहा भी कि उनको थोड़ा वक्त दीजिए, जैसे हमको दिया गया वैसे उनको भी दीजिए, तो दे'ल कम अप विद समथिंग मोर ब्यूटिफुल देन वी डिड.
1: हमें वक्त दिया गया या नहीं ये अलग बात है सर. अगर हमें वक्त ना भी दिया गया हो तो भी हमने कहीं वो चेन ब्रेक करना है कि जो शक्ति हमारे साथ बरती गई वही शक्ति हमने आगे बरतनी नहीं है.
0: करेक्ट.
1: वी हैव टू मेक अ चेंज समवेयर. वी हैव टू प्ले द गेम चेंजर्स. इफ आवर पेरेंट्स वर लेस अंडरस्टैंडिंग, वी हैव टू बी मोर अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट जनरेशन.
0: करेक्ट.
1: कहीं ना कहीं हमने ये जनरेशन गैप कम करना है.
0: ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, नो डाउट.
1: बिल्कुल.
0: बहुत सुंदर. तो दोस्तों बस 2 मिनट का एक पॉज लेते हैं, विचार करते हैं प्रवीण जी ने क्या कहा, और इस बीच में इस प्यारे से भजन को सुन लेते हैं और फिर वापस आते हैं प्रवीण जी के पास.

0: बहुत सुंदर भजन। प्रवीण जी, आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगा, बात अभी यंग जनरेशन की ही हो रही थी, आध्यात्म की, उनकी समझ की, तो जाहिर से बात है आज की यंग जनरेशन और यूं देखा जाए तो आज का पूरा जमाना सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डूबा हुआ है। अब
1: बिल्कुल
0: एक बहुत ही साधारण सा सवाल उठ के बाहर आता है कि साहब, सोशल मीडिया का आध्यात्म पर क्या असर पड़ता है, या उल्टा कह लें, आध्यात्म को सोशल मीडिया यूज कैसे करता है, इसके बारे में क्या विचार है आपका?
1: सोशल मीडिया अध्यात्म को यूज कैसे करता है? तो आई मे बी कॉल्ड नेगेटिव और आई मे बी कॉल्ड अ लिटिल ब्लंट, बट सोशल मीडिया आजकल लेट को यूज कर रहा है
0: जी।
1: वो एक तरह से मार्केटिंग के तौर पे यूज कर रहा है। ये मेरा हम्बल ओपिनियन है, ये मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ
0: जी।
1: बिकॉज वाई आई सी दिस इज बिकॉज अध्यात्म में कोई खर्चा नहीं होता। अध्यात्म हैज नो प्री क्वालिफिकेशंस, लेकिन आजकल अगर हम सोशल मीडिया पे देखें तो इस कोर्स के उतने फीस भरिए, उस कोर्स के इतने फीस भरिए, ऑनलाइन कोर्स है, आपके वक्त पे हो जाएगा, ये सारी चीजें देख ऑल्दो आई मिट साउंड सिनिकल एंड नेगेटिव, सोशल मीडिया यू नो लाइक अ पर्टिकुलर जॉनर ऑफ फिल्म्स, जहां वायलेंस दिखाया जाता है, जहां गलत चीजें दिखाई जाती हैं, जहां वल्गैरिटी दिखाई जाती है, दीज थिंग्स हैव बीन डिस्ट्रैक्टिंग एंड डिस्टर्बिंग द यंग माइंड्स एंड इन टर्न अफेक्टिंग एंड करप्टिंग अवर सोशल फाइबर। बट इन स्पाइट ऑफ सच डिस्ट्रैक्शन एंड डिस्टर्बेंसेस, to stay true to one's conscience is the test of one's spirituality. On a very hopeful note, I could say, like all other aspects of our life, is like a matchbox. Sir, देखिए एक माचिस की जो तीली होती है, उस माचिस की तीली से आप दिया जला सकते हैं भगवान के सामने
0: जी।
1: जब अंधेरा हो तो आप मोमबत्ती जला सकते हैं। बुरा काम करना हो तो आप किसी का घर भी जला सकते हैं। उससे बुरा काम करना हो
0: जी
1: तो किसी पे पेट्रोल डाल के उसे जला
0: भी जला सकते हैं।
1: सर, ये रिसोर्स हमारे पास है। इस रिसोर्स का हम कैसे उपयोग करते हैं, ये हमारी सोच, हमारे माइंडसेट पर निर्भर है।
0: बहुत सुंदर। तो किस तरीके से सोशल मीडिया आध्यात्म को यूज कर रही है, या आध्यात्म में सोशल मीडिया का हम पदार्पण या कंट्रीब्यूशन या कोलैबोरेशन देखते हैं, वो चीज प्रवीण जी ने अभी हमें बताई। अमेजिंगली ब्यूटीफुल। इस बात को भी विचार करने की बहुत जबरदस्त आवश्यकता है। देखिए, सोशल मीडिया मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, एक दुधारी तलवार है। अगर हमें चलाना ना आया तो वो हमें काट देगी, और अगर उसको सही इस्तेमाल करना आया तो वो हमारा फायदा भी कर सकती है। जैसे बताया प्रवीण जी ने बड़ी खूबसूरती से कि किस किस तरीके से यूज करते हैं, किसी का नुकसान पहुंचाना चाहें तो हम अंधेरे में उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसको जला भी सकते हैं। तो देर आर थिंग्स विच वी नीड टू डिसाइड व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू। बहुत सुंदर। चलिए विचार करिए, विचार करिए, दो मिनट का पॉज लीजिए, विचार कीजिए, हम वापस आते हैं इस भजन के बाद।

0: बहुत सुंदर। अब आगे बढ़ते हुए चलिए, सोशल मीडिया की बात हो गई, यूथ की बात हो गई, अब सोशल स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्म की हमारे पर असर क्या होता है, इफेक्ट क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं, प्रवीण जी थोड़ी सी उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या आध्यात्म हमारा जो तनाव है, एंग्जाइटी है, परेशानियां हैं और हम हमेशा बहुत ज्यादा सोचने में डूबे रहते हैं, अगर इसको साधारण भाषा में और कहें, स्ट्रेस, एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग, डूबे ही हैं हम उसमें, इसमें आध्यात्म हमारी मदद कैसे करता है, इसे आजाद होने में, मेरा कहने का मतलब है।
1: ये बात तो मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, लेकिन क्योंकि जिन जिन तीन चीजों का आपने जिक्र किया है, ओवरथिंकिंग, एंग्जाइटी एंड वन मोर थिंग, तो आई कैन रिलेट टू ऑल दोस थ्री सिचुएशंस इन विच यू सेड यस, स्पिरिचुअलिटी डज हेल्प इन मैनेजिंग एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग एंड यू नो आवर डिफिकल्ट माइंडसेट।
0: जी,
1: इंसान जब समुद्र में गिर जाता है तो हाथ पैर तो चलाने ही पड़ते हैं, हाथ पैर चलाते वक्त जो धीरज होता है, वो धीरज होता है, होती है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी इज द फोर्स दैट पुशेस अस टू कीप गोइंग,
0: राइट।
1: स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग दैट हेल्प्स अस टू स्टे ग्राउंडेड एंड अवे फ्रॉम दी, हम क्या कहते हैं उन छह चीजों को, षड्रिपु ना, कभी कभी एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, ऐसी चीजें ना हो और इंसान अगर कम कष्टों से सक्सेस मिल जाए तो एक तरह का अहम आ जाता है। तो वैसे हालात में Spirituality helps us to stay grounded and away from the six personal enemies. Personal enemies, I say because shad ripu, shad mane che, ripu mane enemies. Shad ripu hote hain kaam, krodh, lobh, moh, mad, matsar.
0: Ji.
1: Agar spirituality se hum level-headed rahe, agar hum apne man pe kaabu kar paaye, तो हम इन षड्रिपों से दूर रह सकते हैं। मेरे पिताजी ने कुछ किया हो, उसके बाद मैंने कुछ किया हो, तो हम ये भूल जाते हैं कि मेरे पिताजी ने भी कुछ किया था, मुझे सिर्फ ये याद रहता है कि मैंने क्या किया है।
0: जी,
1: आज मेरे पास अगर 11 12 हैं तो मैं ये भूल जाता हूं कि मेरे पिताजी ने 10 किए हैं और मैंने सिर्फ एक या दो उसमें
0: ऐड किए,
1: बढ़ाए।
0: जी,
1: वो जो 10 का बेस है, आई बिल्ट अप ओनली 1 or 2 ऑन दैट बेस। सो दिस लेवल हेडेड थिंकिंग, दिस ह्यूमिलिटी कम्स फ्रॉम स्पिरिचुअल थिंकिंग, स्पिरिचुअल वे ऑफ लाइफ।
0: जी,
1: स्पिरिचुअल माने ये नहीं कि आप सिर्फ नाक पकड़ के मेडिटेशन करें, ध्यान धारणा करें, प्राणायाम करें। स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो, लाइक आई सेड, जीवन की आपाथापी में कब वक्त मिला कहीं कुछ देर बैठ ये सोच सकूं, जो भी किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। अगर ये बात हम अपने ध्यान में रखें तो हम लेवल हेडेड आसानी से रह सकते हैं।
0: जी,
1: इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टीज, डिस्ट्रेस एंड एडवर्सिटी, इट इज दिस स्पिरिचुअल थिंकिंग दैट कीप्स अस गोइंग विद रेजिलियंस, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन towards fulfilling our duties, responsibilities and commitments towards everyone. Those who are weak at heart and mind.
0: जी,
1: मैंने ऐसा नहीं कि हर कोई ऐसा करता है, लेकिन जिनका spiritual way of life, spiritual way of thinking जिनकी नहीं होती या कम होती है, they tend to harm themselves either through vices, बुरी आदतें हों, सब्सटेंस अब्यूज हो, या फिर एक्सट्रीम स्टेप्स जैसे सुसाइड हो।
0: जी,
1: स्पिरिचुअलिटी सर्व्स एज अ लाइट हाउस ड्यूरिंग द स्टॉर्म इन आवर लाइव्स, as we undertake the journey through the ocean of life.
0: Wow, beautiful.
1: That is where spirituality helps us in overcoming stress, anxiety, overthinking, and from my own example, depression also.
0: Okay.
1: Yes.
0: Right. Amazing. बड़ी गहरी बात बताई है साहब प्रवीण जी ने. इस बारे में बिल्कुल बहुत प्यार से विचार करने की आवश्यकता है. प्रवीण जी के इस बातचीत को मुझे लगता है बार बार सुनने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है. देन ओनली हम किसी एक नतीजे पर पहुंचेंगे कि किस तरीके से हम अपने स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को, ओवरथिंकिंग को भी ओवरकम कर सकते हैं. बहुत सुंदर. लीजिए ना एक प्यारा सा भजन पेश करता हूं, फिर हाजिर होता हूं प्रवीण जी के पास.

0: प्रवीण जी, सिंपल बात अभी तक हुई जो थोड़ी सी गंभीरता से भरी हुई थी, हम लोगों को बहुत विचार करने की आवश्यकता है। वैसे भी दिव्य दर्शन का ये प्रोग्राम गंभीर ही है, हमारी जिंदगी के बारे में है। इट्स नॉट फन, इट्स सीरियस। तो अगर हम आगे बढ़े तो दो शब्द हैं जिनको बहुत आसानी से आपस में मिक्स कर दिया जाता है, हम कंफ्यूज भी रहते हैं। एक है अध्यात्म और दूसरा है धर्म, स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन। तो प्रवीण जी, आपको क्या लगता है, ये एक ही चीजें हैं या अलग अलग हैं?
1: अब देखिए, सिक्का तो एक ही है
0: जी,
1: लेकिन सिक्के के दो बाजू हो सकते हैं। आई थिंक स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन आर टू सेपरेट कंसेप्ट।
0: ओके,
1: although there may be a few similarities such as showing the path of righteousness, धर्म हो या स्पिरिचुअलिटी हो, आपको सही रास्ते पे ही चलाएंगे। ना धर्म कहेगा ना स्पिरिचुअलिटी कहेगी कि आप कोई बुरा काम करो। देन दे बोथ स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन टीच यू बिलीव एंड फेथ इन द हायर सेल्फ और द सुप्रीम सुपर ह्यूमन एंटिटी। बट देन इन स्पाइट ऑफ दीज सिमिलैरिटीज बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड राइटियसनेस एंड रिलीजन
0: जी,
1: द डिफरेंस विल डेफिनेटली आउटनंबर द सिमिलैरिटीज।
0: अच्छा सर,
1: बिकॉज मैंने कहीं पढ़ा था कि स्पिरिचुअलिटी बिगिंस वेयर रिलीजन एंड्स।
0: जी आह, क्या बात है
1: जी। जहां जहां रिलीजन खत्म हो,
0: जहां
1: धर्म
0: रुकता हो,
1: जहां धर्म थम जाता है, वहां से अध्यात्म शुरू हो जाता है। आई से दिस बिकॉज रिलीजन बाइंड्स अ पर्सन टू अ पर्टिकुलर गॉड, टू अ पर्टिकुलर सेट ऑफ डूज एंड डोंट्स, टू अ पर्टिकुलर सेट ऑफ रिलीजियस परफॉर्मेंसेस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशंस, कस्टम्स एटसेट्रा टू बी परफॉर्म थ्रू अ पर्सन, थ्रू अ पर्सन्स लाइफ जर्नी। धर्म कोई भी हो, हर धर्म के अपने अपने मायने होते हैं, अपने अपने फ्रेमवर्क होते हैं, अपने अपने ढांचे होते हैं
0: जी।
1: और उस धर्म के मार्ग पर, उस ढांचे के अंदर ही आपको चलना पड़ता है।
0: ओके,
1: यू आर नॉट यूजुअली अलाउड टू ब्रेक द फ्रेमवर्क, यू कैन नॉट बी अ गेम चेंजर। वेयर एज स्पिरिचुअलिटी लिबरेट्स यू फ्रॉम ऑल बॉन्डेजेस एंड बाइंडिंग्स। देर आर नो डूज एंड डोंट्स इन स्पिरिचुअलिटी। ओनली थिंग इज योर एक्शंस have to conform to your conscience. धर्म में क्या करना है यह आपको वेदों में, आपने बाकी के धर्म ग्रंथों में बताया गया है। अध्यात्म में क्या करना है यह कहीं लिखा हुआ नहीं है। आप जिनके बारे में पढ़े हो, आप जिनको पढ़े हो, उनके विचार अगर आपको सही लगते हैं तो आप उनके दिखाए मार्ग पर चलिए, बस इतना सा है। सी, रिलीजन इंट्रोड्यूसेस यू टू द कंसेप्ट ऑफ गॉड। इन कॉन्ट्रास्ट, स्पिरिचुअलिटी टेक्स यू ऑन एन इनवर्ड जर्नी एंड इंट्रोड्यूसेस यू टू द सबकॉन्शियस यू, टू द कॉन्शियस यू विच इज योर सोल, योर आत्मा and your inner self.
0: Ji.
1: Religion is an outside affair.
0: Mm-hmm.
1: Whereas spirituality is a total inside affair.
0: Oh, all right.
1: आप एक 100 लोगों का एक odd group ले लें, तो people can be from different religions. Yet, they may share the same concept of spirituality.
0: Oh yes,
1: that is why I feel religion and spirituality are two very separate things.
0: सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एट ऑल, ये बात को समझना बहुत मुश्किल नहीं है दोस्तों कि अध्यात्म और धर्म दोनों एक चीज, अलग अलग चीजें हैं। और जैसा बहुत ही सिंपल भाषा में प्रवीण जी ने समझाया कि जहां पर धर्म एक तरीके से पूरा होता है वहां से अध्यात्म शुरू होता है। बहुत खूबसूरत। ओके, विचार कीजिए इसी विचार पर एक बार और गहराई से, और तब तक लीजिए इस भजन को आनंद लीजिए। हम वापस आते हैं।

0: बहुत सुंदर प्रवीण जी, आपने अभी तक हमें बताया अध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में, आज की जेनरेशन के बारे में जो कि तयशुदा तौर पर स्मार्ट है, ज्यादा रिसेप्टिव है, सिर्फ उसको सिखाने की आवश्यकता है जो कि हमारा धर्म है, हमको करना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोशल मीडिया का यूसेज के बारे में आपने बताया, फिर हमें बताया अध्यात्म के फायदे के बारे में, किस तरह से हम स्ट्रेस, एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग से आजादी पा सकते हैं, और डिफरेंस रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के बीच। अब आपकी ये सारी की सारी बातें सुनकर कोई व्यक्ति अगर प्रभावित हो जाए और उसे लगे कि चलिए छोड़िए धर्म, तो चलिए जो हो गया, मतलब मैं कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन में नहीं जाऊं लेकिन आध्यात्मिक हो जाऊं, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए उस व्यक्ति को, स्टेप बाय स्टेप, 1 2 3, बिल्कुल सिंपल बेबी स्टेप्स, क्या करे कि वो आध्यात्म की तरफ चल पड़े?
1: वेल, आपने, मेरे ख्याल से आप ही ने जवाब दे दिया।
0: मैंने समराइज किया सर जो आपने कहा।
1: जी जी, बिल्कुल नहीं, आपने दो लब्जों में उत्तर दे दिया अपने ही प्रश्न का।
0: जी,
1: आपने कहा बेबी स्टेप्स, तो दैट इज एवरीथिंग। देखिए, जब हम चलना शुरू करते हैं, जब हम बच्चे होते हैं
0: जी,
1: एकदम से थोड़े ही ना चलते हैं,
0: लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं।
1: पता नहीं कितने सौ बार हम लड़खड़ाए, कितने बार हम गिरे, कितने बार हमने चोटें खाई, सर पे चोट खाई, पांव पे चोट खाई, कहीं और चोट खाया, और किसी ना किसी का हाथ पकड़ के हमने चलना सीखा।
0: जी,
1: लाइकवाइज फिजिकली चलने की बात हुई, फिर हम स्कूल गए, पहले दिन हमें थोड़े ना कुछ आता था
0: जी,
1: वहां भी हमने वही बेबी स्टेप्स लिए। कॉलेज में हो तो स्कूल के जो बंदिशें थी, स्कूल के जो बंधन थे, वो कॉलेज में एकदम हम लोग फ्री हो गए। तो 11th में पढ़ाई पे ध्यान नहीं रहता था, लेकिन जब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हुए, डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, कोई और हुए, IAS IPS हो गए
0: जी,
1: तो पढ़ाई पूरी कंसंट्रेशन के साथ की हमने। दैट कंसंट्रेशन आल्सो वी लर्न्ड थ्रू बेबी स्टेप्स ओनली।
0: करेक्ट,
1: दैट इज व्हाई आई सेड कि आपने अपने प्रश्न का उत्तर खुद ही दे दिया है। लाइकवाइज इवन इन स्पिरिचुअलिटी, कोई 10 ग्रंथ एक दिन में पढ़े ना तो ये मुमकिन है, ना ही ऐसा करना चाहिए, ना ही उसे कुछ हासिल होगा। तो स्पिरिचुअलिटी में भी बेबी स्टेप्स ही लेने हैं। स्पिरिचुअलिटी मेक्स द जर्नी इजियर।
0: प्रवीण जी, बहुत ही प्यारा संदेश, बहुत ही प्यारा व्याख्यान हमें ठीक से समझने के लिए आपने समझाया, बहुत बहुत आभार है आपका। थैंक यू सो वेरी मच यो इस प्रोग्राम में आकर आपने हमारे साथ।
1: प्लेजर ऑलवेज।
0: थैंक यू सर, प्लीज टेक केयर।
1: थैंक यू।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
1: हेलो हेलो हेलो, माइक चेक 1 2 3, एनर्जी चेक, चाय रेडी, दिल रेडी। मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM।
0: ये है कैसा जादू मेरे लिए, तो सच भी भरम है। सुनिए
1: कहिए कहिए,
0: सुनिए सुनिए
1: कहिए कहिए।

एक आदमी जिसने अपनी जिंदगी किताबों को समर्पित कर दी। पद्मश्री आंके गौड़ा की प्रेरणादायक कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर किसी दिन आपको अचानक बहुत सारा पैसा मिल जाए तो आप क्या करेंगे? कोई बड़ा घर खरीदेंगे, नई गाड़ी लेंगे, दुनिया घूमने निकलेंगे या फिर शॉपिंग करेंगे? अब जरा सोचिए, अगर कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी की कमाई कपड़ों पर नहीं, गाड़ियों पर भी नहीं, सोने चांदी पर भी नहीं, बल्कि किताबों पर खर्च कर दे, तो आपको अजीब लगेगा ना? लेकिन आज की कहानी ऐसे ही एक इंसान की है दोस्तों, जिन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना बनाया, ज्ञान का खजाना। और इतना बड़ा खजाना कि उसमें 1-2 हजार नहीं, 10-20 हजार भी नहीं, बल्कि 20 लाख से भी ज्यादा किताबें हैं। जी हाँ दोस्तों, 20 लाख। और इस अद्भुत सपने के मालिक हैं पद्मश्री आंके गौड़ा जी। दोस्तों, हर बड़े काम की शुरुआत एक छोटे से सपने से होती है, और आंके गौड़ा जी का सपना बचपन में ही जन्म ले चुका था। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उस समय गांव में बड़ी लाइब्रेरीज नहीं थी, ना इंटरनेट था, ना मोबाइल था। आज की तरह गूगल पर भी कुछ सर्च नहीं कर सकते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था उस जमाने में। जानकारी पाने का सबसे बड़ा जरिया था किताब, और जब किसी की कमी होती है तब उस चीज की कीमत और बड़ी हो जाती है। शायद इसीलिए किताबों के प्रति उनका प्यार दिन पर दिन बढ़ता ही गया। अब जरा उनकी जिंदगी की कल्पना कीजिए, वो कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे, कोई फिल्म स्टार भी नहीं थे, कोई करोड़पति बिजनेसमैन भी नहीं थे, वो एक सामान्य परिवार के एक सामान्य सदस्य थे। बस कंडक्टर के रूप में उन्होंने काम किया, बाद में फैक्ट्री

भी काम किया, एक बिल्कुल आम इंसान। लेकिन दोस्तों, कई बार आम लोग भी सबसे खास काम कर जाते हैं। जब लोग अपनी सैलरी से घर के लिए चीजें खरीदते थे, तब अंकित गोडा जी किताबें खरीदते थे। जब लोग बोनस मिलने पर टीवी या फर्नीचर लेने का सोचते थे, तब वो किसी पुरानी किताब की दुकान ढूंढते थे। और जब लोग वीकेंड पर फिल्म देखने जाते थे, तब वो किताबों की तलाश में निकल पड़ते थे। धीरे धीरे एक किताब, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और फिर हजारों और लाखों। ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं, कुछ लोग कॉइन्स, कुछ लोग पेंटिंग्स, लेकिन आंके गोडा जी ने कहानियां कलेक्ट की, विचार कलेक्ट किए, ज्ञान कलेक्ट किया और सपने कलेक्ट किए। बट सबसे खास बात क्या है जानते हैं? ये सब सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए कलेक्ट किया। समय के साथ उनका कलेक्शन इतना बड़ा हो गया कि घर की दीवारें छोटी पड़ने लग गईं, कमरे भर गए, अलमारियां भर गईं, शेल्फ्स भर गए, हर तरफ किताबें ही किताबें। ऐसा लगता था जैसे कोई घर नहीं, एक जिंदा लाइब्रेरी हो। और फिर उन्होंने बनाई एक पुस्तक माने, यानी बुक हाउस। कितना खूबसूरत नाम है ना, बुक हाउस। एक ऐसा घर जहां रहने वाले लोग कम और किताबें ज्यादा हैं। दोस्तों सोचिए एक पल के लिए, 20 लाख किताबें। अगर आप रोज भी एक किताब पढ़ें, तो पूरी लाइब्रेरी पढ़ने में आपको कई जन्म लग जाएंगे। लेकिन यहाँ बात संख्या की नहीं है, बात है उस सोच की जिसने इतना बड़ा सपना देखा। आज जब हम मोबाइल पर 2 मिनट का वीडियो देखकर बोर हो जाते हैं, तब एक व्यक्ति ने 50 साल तक लगातार किताबें जोड़ी। आज हम नोटिफिकेशन की आवाज सुनते ही ध्यान भटक लेते हैं, और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक ही मिशन पर लगा दी। ये सच में अद्भुत है दोस्तों। और सबसे खास बात क्या है जानते हैं? ये लाइब्रेरी किन्हीं खास लोगों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, रिसर्च करने वालों के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए, और उन लोगों के लिए भी जो बस पढ़ने से प्यार करते हैं। दोस्तों एक किताब की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है आप जानते हैं? वो कभी जल्दी में नहीं होती, वो आपको रुकना सिखाती है, सोचना सिखाती है, समझना सिखाती है, और सबसे जरूरी बात, वो आपको दूसरों की जिंदगी जीना सिखाती है। एक किताब पढ़कर हम किसी साइंटिस्ट के साथ चल सकते हैं, किसी राजा के दरबार में जा सकते हैं, किसी सैनिक की जंग देख सकते हैं, किसी कवि के दिल में झांक सकते हैं, और ये सब बिना घर छोड़े। आंके गौड़ा जी शायद इसी जादुई ताकत को समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने किताबों को सिर्फ जमा नहीं करा, उन्हें संभाला, बचाया और लोगों तक पहुंचाया। अगर उन्होंने भी ये सोचा होता, मैं अकेला क्या कर सकता हूं, तो शायद आज ये लाइब्रेरी होती ही नहीं। लेकिन उन्होंने एक किताब से शुरुआत की, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और धीरे धीरे इंसान का शौक एक पूरे समाज की संपत्ति बन गया। यही तो जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है दोस्तों। बड़े काम कभी एक दिन में नहीं होते, बड़ा पेड़ भी एक छोटे से बीज से ही उगता है, बड़ी नदी भी एक छोटी सी धार से शुरू होती है, और एक बड़ी सी लाइब्रेरी भी एक छोटी सी किताब से शुरू होती है। जब भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया, तो वो सिर्फ आंके गोडा जी का सम्मान नहीं था, वो हर उस व्यक्ति का सम्मान था जो चुपचाप किसी अच्छे काम में लगा हुआ है, जिसे दुनिया शायद अभी नहीं दिख रही, लेकिन जिसका काम कल हजारों लोगों की जिंदगियां बदल सकता है।
दोस्तों, आज के एपिसोड के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। आप अपनी जिंदगी में क्या कलेक्ट कर रहे हैं? पैसे, चीजें, यादें, या फिर एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसी नेकी, एक ऐसा काम जो आपके बाद भी दुनिया के काम आए? सोच के देखिए, क्योंकि असली अमीरी बैंक बैलेंस से नापी नहीं जाएगी, असली अमीरी उस विरासत से नापी जाएगी जो हम दुनिया के लिए छोड़ जाएंगे। और आंके गोडा जी ने हमें यही सिखाया है, कभी कभी एक आदमी, एक सपना और बहुत सारी किताबें पूरी दुनिया को रोशन कर देती हैं। आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की, जहां कभी एक कहानी, कभी एक व्यक्ति और कभी बस एक किताब जिंदगी को देखने का नजरिया बदल देती है। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प बात के साथ। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: टीचर, लाइब्रेरी का क्या फायदा होता है? संता, वहाँ एसी होता है। टीचर और संता, फ्री वाईफाई भी होता है। टीचर और किताबें? संता, अच्छा वो डेकोरेशन के लिए नहीं होती क्या?

महान स्टोरी टेलर बनने के लिए क्या जरूरी है? कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती दोस्तों, महसूस कराई जाती हैं। नमस्कार, आज मैं आपसे एक बहुत ही अमेजिंग सी बात करना चाहती हूँ। हम सबको कहानियां पसंद है ना? बचपन में नानी की कहानियां, दादी की कहानियां, चंदा मामा की कहानियां, राजा रानी की कहानियां, और जैसे जैसे हम बड़े होते गए कहानियों के रूप बदलते गए, कभी वो फिल्मों में मिलने लगी, कभी किताबों में, कभी गीतों में, और कभी किसी दोस्त के साथ चाय पीते हुए। लेकिन आज का सवाल ये है कि आखिर एक अच्छा स्टोरी टेलर कौन होता है? क्या वो जो बहुत सुंदर बोलता है? क्या वो जो बहुत मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल करता है? क्या वो जो बहुत सारी किताबें पढ़ता है? या फिर कुछ और? दोस्तों, एक पुरानी पर्शियन कहावत है, अगर तुम एक सच्चे कहानी सुनने वाले बनना चाहते हो तो तुम्हें पहले जिंदगी को पढ़ना होगा। कितनी खूबसूरत बात है ना ये? सिर्फ किताबों को नहीं, जिंदगी को पढ़ना होगा दोस्तों। और मुझे लगता है ये बात जितनी कहानियों पर लागू होती है, उतनी हम सब पर भी। जरा सोचिए, अगर किसी इंसान ने कभी बारिश में भीगना ही ना हो तो वो बारिश पर कविता कैसे लिखेगा? अगर किसी ने कभी इंतजार ही ना किया हो तो वो जुदाई की कहानी कैसे सुनाएगा? अगर किसी का दिल कभी टूटा ही ना हो तो वो दर्द कैसे समझेगा? और अगर किसी ने कभी मोहब्बत ही ना की हो तो वो प्यार की कहानी कैसे लिखेगा? यही तो फर्क है जानकारी और अनुभव में। जानकारी दिमाग से आती है, अनुभव दिल से आता है, और कहानियां हमेशा दिल से पैदा होती हैं। मुझे याद है बचपन में जब दादी की कहानियां सुनती थी तो अपने पास ना कोई माइक्रोफोन होता था, ना कोई रेडियो और ना कोई स्टेज, फिर भी उनकी कहानी में इतना जादू होता था कि हम आंखें फाड़ फाड़ कर सुनते थे। कभी राजा के महल में पहुंच जाते थे, कभी जंगल में शेर के साथ घूम आते थे, कभी किसी परी के साथ आसमान में उड़ने लगते थे। और आज सोचती हूँ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दादी कहानी नहीं सुना रही होती थी, वो अपनी पूरी जिंदगी में उसे मिला देती थी। उनके चेहरे की झुर्रियों में कहानियां थी, उनकी आंखों में यादें थी, उनकी आवाज में अनुभव था, और वही अनुभव कहानी को जिंदा बना देता था। तो दोस्तों, एक स्टोरी टेलर का सबसे बड़ा गुण क्या होता है आप जानते हैं? देखना, लेकिन सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से देखना। हम सब रोज एक ही सड़क से गुजरते हैं, एक ही बाजार देखते हैं, एक ही शहर में रहते हैं, लेकिन एक स्टोरी टेलर उन चीजों को ऐसे देख लेता है जो आम लोग अपनी नजर से कभी नहीं देख पाते। एक छोटा बच्चा जो अपनी माँ का हाथ पकड़कर चल रहा है, एक बुढ़े अंकल जो पार्क में अकेले बैठे हैं, एक चाय वाला जो सुबह 5 बजे लोगों की नींद खोल रहा है, एक पक्षी जो तार पर बैठकर सूरज उगता हुआ देख रहा है। हर जगह कहानियां हैं दोस्तों, बस देखने वाली नजर चाहिए। कहते हैं दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो फूल देखकर कहते हैं कितना सुंदर फूल है, और दूसरे वो जो फूल देखकर सोचने लगते हैं ये किस मिट्टी में उगा होगा, कितनी बार आंधी से लड़ा होगा, कितनी बार मुरझाया होगा। और फिर वही लोग कहानियां लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं। एक और बात जो हर स्टोरी टेलर में होती है, सुनने की कला।
आजकल सभी लोग बोलना चाहते हैं, लेकिन सुनना सुनना बहुत कम लोग चाहते हैं। दोस्तों, हर किसी के पास अपनी ही कहानी है।

अपनी परेशानी है, अपनी सफलता है, अपनी राय है। लेकिन जो इंसान दूसरों को ध्यान से सुनता है वो दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में बैठ जाता है, क्योंकि हर इंसान एक चलती फिरती किताब ही तो है और हर किताब के अंदर एक नई दुनिया है। कभी रेलवे स्टेशन पर बैठकर लोगों को देखिए, एक लड़का भाग रहा है शायद इंटरव्यू के लिए, एक माँ अपने बच्चे को समझा रही है, एक जवान फौजी घर लौट रहा है, एक बुजुर्ग खिड़की के पास चुपचाप बैठे हैं, और एक स्टोरी टेलर वो उन सबकी कहानियों को सोचने लगता है। एक महान स्टोरी टेलर के पास एक और चीज होती है, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। उसके अंदर का बच्चा कभी बड़ा ही नहीं होता, वो हर वक्त सवाल पूछ रहा होता है, आसमान नीला क्यों है, लोग झूठ क्यों बोलते हैं, मोहब्बत क्यों होती है, यादें क्यों रहती हैं, लोग अलविदा कहकर भी दिल में क्यों रह जाते हैं। और दोस्तों, जितने ज्यादा सवाल उतनी गहरी कहानियां। आज के जमाने में एआई कहानी लिख सकता है, कंप्यूटर कविता बना सकती है, मशीन आवाज निकाल सकती है, लेकिन एक चीज है जो सिर्फ इंसान कर सकता है और वो है महसूस करना। मशीन को दर्द समझाया जा सकता है लेकिन महसूस नहीं कराया जा सकता। मशीन को मोहब्बत का मतलब बताया जा सकता है लेकिन उसकी धड़कन तेज नहीं हो सकती। इसीलिए कहानियां हमेशा इंसानों की ही रहेंगी। दोस्तों, मुझे लगता है कि हर इंसान कहानी सुनना चाहता है, सुनाना चाहता है। कोई अपनी सफलता की, कोई अपनी हार की, कोई अपनी पहली मोहब्बत की, कोई अपने सपनों की। और शायद इसीलिए हम कहानियों से इतना प्यार करते हैं, क्योंकि हर कहानी में हम खुद को ही ढूंढ रहे होते हैं, कभी हीरो में, कभी विलन में, कभी माँ में, कभी दोस्त में, कभी उस मुसाफिर में जो बस 2 मिनट के लिए कहानी में आया था। और फिर मुझे लगता है एक महान स्टोरी टेलर बनने के लिए बहुत बड़ा लेखक बनना जरूरी नहीं, बहुत बड़े बड़े शब्द आना भी जरूरी नहीं, बहुत पढ़ा लिखा होना भी जरूरी नहीं। जरूरी है तो जिंदगी को पूरे दिल से जीना, कभी किसी की मदद करना, कभी किसी के आंसू समझना, कभी किसी की खुशी में खुश हो जाना, कभी किसी के दर्द में रुक जाना, कभी सूरज उगता देखना, कभी शाम ढलती देखना, कभी बारिश की खुशबू महसूस करना, कभी बिना वजह ही मुस्कुरा देना। क्योंकि दोस्तों, कहानियां हवा में पैदा नहीं होती, वो जिंदगी की मिट्टी से उगती हैं, अनुभव के पानी से सींची जाती हैं और संवेदना की धूप में खिलती हैं। आज के एपिसोड के अंत में मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ, आप अपनी जिंदगी को कितने ध्यान से देख रहे हैं? क्या आप सिर्फ दिन काट रहे हैं या उन्हें जी भी रहे हैं? क्या आप सिर्फ लोगों से मिल रहे हैं या उन्हें समझ भी रहे हैं? क्या आप सिर्फ कहानियां सुन रहे हैं या अपनी कहानी भी कहीं ना कहीं लिख रहे हैं? क्योंकि हो सकता है आपको लगता हो कि आप एक साधारण जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन किसी दिन यही जिंदगी किसी की पसंदीदा कहानी बन जाएगी। मैं हूं तनुषा और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की, जहां हर कहानी के पीछे एक दिल धड़कता है और हर दिल के अंदर हजारों कहानियां बसती हैं। फिर मिलेंगे एक और कहानी, एक और मुस्कान और एक और सोच के साथ। तब तक के लिए जिंदगी को सिर्फ जिए मत, उसे महसूस कीजिए। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: संता, बंता मैं स्टोरी टेलर बनना चाहता हूँ यार। बंता, अच्छा कितनी किताबें पढ़ी हैं तूने? संता, किताबें तो नहीं पढ़ी, लेकिन कॉलोनी की सारी गॉसिप याद है मुझे।

सिर्फ 5 मिनट, एक छोटा सा पल जो कभी पूरी जिंदगी बदल देता है। नमस्कार दोस्तों, आज की बात शुरू करते हैं एक बहुत ही छोटे से सवाल के साथ। आपके पास इस वक्त कितना वक्त है? 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट या फिर सिर्फ 5 मिनट? पता है, जब भी कोई हमसे पूछता है कि जिंदगी कैसी चल रही है तो अक्सर एक ही जवाब मिलता है, बस यार टाइम ही नहीं मिलता। टाइम नहीं मिलता एक्सरसाइज के लिए, टाइम नहीं मिलता किताब पढ़ने के लिए, टाइम नहीं मिलता मम्मी पापा के साथ बैठने के लिए, टाइम नहीं मिलता दोस्तों को फोन करने के लिए, और सबसे बड़ी बात, टाइम नहीं मिलता खुद के साथ बैठने के लिए। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि प्रॉब्लम टाइम की कमी है ही नहीं, प्रॉब्लम ये है कि हम वक्त को सिर्फ बड़े टुकड़ों में देखते हैं। हमें लगता है कि अगर 1 घंटा नहीं मिला तो कुछ हो ही नहीं सकता, अगर पूरा दिन खाली नहीं मिला तो सपने पूरे ही नहीं हो सकते, अगर एक लंबी छुट्टी नहीं मिली तो सुकून मिल ही नहीं सकता। लेकिन जिंदगी का एक बहुत बड़ा राज है दोस्तों, जिंदगी बड़े घंटों में नहीं, छोटे छोटे 5 मिनट में बटी हुई है। सोचिए, एक दिन में कितनी बार 5 मिनट हमारे पास आते हैं, लिफ्ट का वेट करते हुए, ट्रैफिक सिग्नल पर, डॉक्टर की क्लिनिक में, बस स्टैंड पर, ट्रेन का इंतजार करते हुए, मीटिंग शुरू होने से पहले, खाना पकने तक, मोबाइल चार्ज होने तक और सोने से पहले। लेकिन हम उन 5 मिनट में क्या करते हैं? बस मोबाइल निकालते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, रील्स, शॉर्ट्स, वीडियोस, और फिर जब होश आता है तो 5 मिनट 50 मिनट बन चुके होते हैं। दोस्तों, कभी कभी लगता है कि मोबाइल ने हमारा वक्त नहीं चुराया, उसने हमारे 5-5 मिनट चुराए हैं, और जब वो सारे 5 मिनट जोड़े गए तो पूरा दिन गायब हो गया। एक बार एक बुजुर्ग आदमी से किसी ने पूछा, आप इतनी सारी किताबें कैसे पढ़ लेते हो? उन्होंने कहा, मैंने कभी एक साथ 100 किताबें नहीं पढ़ी, मैंने बस रोज थोड़ा सा पढ़ा, बस इतनी सी बात, रोज थोड़ा सा, रोज 5 मिनट, रोज 10 मिनट, और धीरे धीरे एक लाइब्रेरी उनके दिमाग के अंदर बस गई। मुझे लगता है कि जिंदगी में जो भी बड़ी चीजें होती हैं वो अचानक नहीं होती। एक पेड़ एक दिन में बड़ा नहीं होता, एक नदी एक दिन में गहरी नहीं होती, एक रिश्ता भी एक दिन में मजबूत नहीं होता, और एक इंसान एक दिन में सफल बिल्कुल नहीं होता। सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके होता है। आपने भी देखा होगा कि हम सब बड़े सपने तो देखते हैं लेकिन उनके छोटे छोटे कदम नहीं देखते। एक सिंगर को स्टेज पे देखते हैं, उसकी तालियां देखते हैं, उसकी पॉपुलैरिटी भी देखते हैं, लेकिन उसके रोज के रियाज के 5 मिनट नहीं देखते। एक राइटर की बेस्ट सेलर देखते हैं लेकिन उसके रोज लिखे गए छोटे छोटे पन्ने नहीं देखते। एक एथलीट का मेडल देखते हैं लेकिन उसकी रोज की प्रैक्टिस नहीं देखते। सफलता कभी एक बड़ा एक्सप्लोजन नहीं होती दोस्तों, सफलता तो रोज के छोटे छोटे 5 मिनट का जन्मा हुआ एक बीज है। कभी सोचा है, एक 5 मिनट की कॉल कितनी कीमती हो सकती है? एक 5 मिनट की बात सालों की दूरी मिटा सकती है। एक 5 मिनट की माफी टूटे हुए रिश्तों को जोड़ सकती है। एक 5 मिनट का शुक्रिया किसी के दिल को खुशी से भर सकता है।
मुझे लगता है हमारी जिंदगी में सबसे खूबसूरत चीजें फ्री नहीं होती। हवा, बारिश, सूरज की रोशनी, चांद की चांदनी और वक्त। लेकिन अजीब बात देखिए, जो चीज सबसे ज्यादा कीमती है उसी को हम सबसे आसानी से बर्बाद कर देते हैं। एक बार एक टीचर क्लास में बड़ा सा एक शीशा लेकर आया। उन्होंने सबसे पूछा, इसमें क्या दिख रहा है? सबने कहा, हम दिख रहे हैं। टीचर मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, जब तक तुम सिर्फ खुद को देखोगे तब तक दुनिया छोटी लगेगी, लेकिन जब तुम खिड़की के बाहर देखना शुरू करोगे तब तुम्हें कहानियां नजर आएंगी। और दोस्तों, शायद इसीलिए हमें कभी कभी 5 मिनट सिर्फ खुद के लिए निकालने चाहिए। बस बैठ जाइए, कुछ मत कीजिए, कोई म्यूजिक नहीं, कोई फोन नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई रील नहीं, सिर्फ आप और आपके विचार। पहले 2 मिनट अजीब लगेगा, माइंड भी भटकेगा, 3rd मिनट बेचैनी सी होगी, 4th मिनट कुछ पुरानी यादें भी आएंगी और 5वें मिनट शायद आप खुद से मिल लेंगे। हम पूरी दुनिया से कनेक्टेड हैं लेकिन खुद से डिसकनेक्टेड हैं। हम हजारों लोगों के स्टेटस देख लेते हैं लेकिन अपने दिल का स्टेटस नहीं देखते। हम सबकी लाइफ अपडेट तो जानते हैं लेकिन अपने सपनों की अपडेट नहीं जानते, और फिर कहते हैं पता नहीं जिंदगी में क्या कमी है। कमी वक्त की नहीं, कमी उस वक्त के इस्तेमाल की होती है। अगर आप रोज सिर्फ पांच मिनट पढ़ने लगे तो 1 साल में कितनी किताबें पढ़ लेंगे? रोज 5 मिनट वॉक करने लगे तो कितने कदम चल लेंगे? रोज 5 मिनट ग्रैटिट्यूड लिखने लगे तो कितनी पॉजिटिविटी जमा हो जाएगी? और सिर्फ 5 मिनट किसी अपने के साथ बैठने लगे तो कितने रिश्ते मजबूत हो जाएंगे? और पता है जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? हम हमेशा फ्यूचर का इंतजार करते हैं। कल खुश होंगे, अगली सैलरी के बाद खुश होंगे, प्रमोशन के बाद खुश होंगे, रिटायरमेंट के बाद सुकून मिलेगा। लेकिन जिंदगी धीरे से कहती है, मैं तो अभी हूँ, अभी गुजर रही हूँ, मैं इस चाय की प्याली में हूँ, इस गीत में हूँ, इस मुस्कान में हूँ, इस शाम की हवा में हूँ और इस 5 मिनट में हूँ। दोस्तों, आज जब ये प्रोग्राम खत्म हो तो एक एक्सपेरिमेंट जरूर कीजिए। सिर्फ 5 मिनट खुद के मोबाइल को साइड पर रखिए, खिड़की के पास बैठिए, आसमान देखिए, पेड़ों को देखिए, लोगों को देखिए, या फिर बस अपनी सांसों को महसूस कीजिए और फिर देखिए कितनी सारी कहानियां आपके आसपास मौजूद दिखेंगी। आज की बात का सार बस इतना सा है दोस्तों, जिंदगी हमें रोज 5 मिनट के रूप में मौके देती है, नए नए मौके सीखने के, मुस्कुराने के, प्यार करने के, माफ करने के और जीने के। जो इंसान इन 5 मिनट की कीमत समझ लेता है वो धीरे धीरे पूरी जिंदगी की कीमत समझ लेता है। मैं हूं तनुषा और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की, जहां कभी एक कहानी और कभी सिर्फ 5 मिनट आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा जाते हैं। जिंदगी को बदलने के लिए कभी कभी 1 साल नहीं, सिर्फ 5 मिनट काफी होते हैं। याद रखिए, नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: पापा, बेटा, एग्जाम में कितने नंबर आए? बेटा, बस 5 मिनट और मिल जाते ना। पापा, तो? बेटा, रिजल्ट देखने से पहले भाग जाता।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए।

0: की दया है मतलब सोलर पैनल की, मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आप हैं आपके दोस्त आरजे समीर के साथ, और चलिए शुरू करते हैं कुछ प्रेरणादायक गीतों के साथ कुछ प्रेरणादायक बातें।
4: दोस्तों, मैं लाया हूं कुछ बेहद सुंदर कहानियां जो हमें प्रेरित करेंगी, बहुत कुछ सिखाएंगी। तो लीजिए सुनिए।

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूँ, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूँ। तब तक ये गीत सुनिए।

दोस्तों, सबसे पहले तो शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

इस्तीफा। जुर्म की सबसे बड़ी सजा माफी। समझदार को इशारा काफी। तो भगवान सबको इशारे में समझने लायक अक्ल दे कि एक था कुम्हार। माटी, लीद, गार, चाक और नियाम से तंग आकर उसने छेनी हथौड़ा थाम लिया और देवी देवताओं की मूर्तियां गढ़ने लगा। उसका हाथ बेहद साफ था। हथौड़े की ठक ठक से वो कुछ ही दिनों में सारे इलाके में मशहूर हो गया। किसी और की गढ़ी मूर्तियां लोगों को पसंद ही नहीं आती। छोटे बड़े तमाम मंदिरों, थानों, देवरों और ठाकुर द्वारों में उसी की मूर्तियों की थापना होने लगी। उसके पास एक गधा था, गधे जैसा गधा, लंबोतरा चेहरा और वो ही ढैंचू ढैंचू का रेखना, वे ही लातें और वे ही सारी बातें। उसके मालिक कुम्हार ने मौज में आकर देवी देवताओं के शान के मुताबिक गधे पर सुरंगी झूल डाली, बबूल का ढोर, चंदन का ढांचा बनवाया। मूर्तियां तो वे ही थीं, पर कुम्हार का रुतबा काफी बढ़ गया। गधे पर मूर्तियां लादे जब वह तयशुदा मुहूर्त पर पहुंचता तो लोग उसे बधाते, आरती उतारते, मालाएं पहनाते, गुलाल उछालते। औरतें गधे पर भी हथेलियों से गुलाबी छापे लगाती, मांडड़े चितेरती। मूर्तियां गढ़ने वाला कुम्हार तो घी के पकवान खाता ही था, पर साथ ही साथ गधे के ठाठ भी कम नहीं थे। लपसी, खीर, गुलगुले, घेवर और मालपुए खा खा कर वो कौड़ी की तरह चमकने लगा। उससे पहले शायद ही किसी गधे की ऐसी मौज बनी हो। लोग बाग दूर से ही कुम्हार और गधे को पहचान जाते, हाथ का काम छोड़कर उसकी ओर दौड़ते, मूर्तियों को भी हाथ जोड़कर प्रणाम करते, औरतें गीत गाती। पर गधे की अक्ल

को क्या कहें कि उस खातिर और आव भगत से उसे यह भ्रम होने लगा कि वह उसके चरणों में शीश नवाते हैं, दंडवत करते हैं, बनाव सिंगार से लदी सुंदर सलोनी रमणियां उसी के लिए गीत गाती हैं, नरम नरम अंगुलियों से उसी के लिए मांडड़े चितेरती हैं। गधे का मालिक कुम्हार तो अपनी हैसियत अच्छी तरह जानता था, पर सुंड मुसुंड गधे का दिमाग फिर गया। ऐसा काहिल हुआ कि जब भी मौज में आता रुक जाता, पेट भरने पर भी गुलगुलों में मुंह डाले रहता, औरतों के गीत गाती टोली से टलना ही नहीं चाहता। मजबूरन कुम्हार को उसकी धुनाई करनी पड़ी, तो उसे न चाहते हुए भी वहां से चलना पड़ा। दुखी मन से कुम्हार को बद्दुआएं दे देता। एक मर्तबा गौने पर आई नई बहू का कुंवारा रूप देखकर उसका एक अंगुल भी आगे बढ़ने का मन नहीं हुआ। कोंचते कोंचते कुम्हार की नाक में दम आ गया, पर पट्ठा टस से मस नहीं हुआ। बजरंग बली की मूरत की थापना का मुहूर्त निकला जा रहा था। आखिर कुम्हार का दिमाग गर्म हो गया, जम कर उसकी मरम्मत की। लहू लुहान होने पर उसे बेबस चलना पड़ा, पर मन में पक्की गांठ ली कि मुफ्तखोर हत्यारे कुम्हार के पास अब नहीं रहेगा। इतने लोग लुगाइयों के सामने इतनी बेहरमी से मारा, कुछ तो लिहाज मुरव्वत करनी थी। सयानों ने कितना लताड़ा, पर उसके कान पर जू न रेंगी। जाने कहां की मैं है, दिमाग आसमान में चढ़ा है। वो कोई मामूली गधा होता तो लोग उसके चरणों में शीश क्यों नवाते? मेहंदी रचे हाथों से बहू बेटियां छापे क्यों लगाती? उसे पकवान क्यों परोसती? सभी देवता और आदमी जब एक सरीखे नहीं होते तो सभी गधे भी एक सरीखे नहीं होते। वो अवतारी गधा ना होता तो कौन उसे सर आंखों पर बिठाता? यह बात उसके रोम रोम में घर कर गई। क्यों किसी की गुलामी करें? साला सर पर मूर्तियां ढोकर ले जाएगा तब पता चलेगा, सारी मटर गश्ती ठिकाने आ जाएगी। इस भ्रम के दूसरे ही दिन वो रस्सी तोड़ाकर भाग छूटा। एक एक घर उसका जाना पहचाना था। सीधे एक महाजन के यहां जा पहुंचा। कुम्हार के साथ वहां काफी खातिर हो चुकी थी। 5 मंदिर तो उसने खुद बनवाए थे, छक्कर घेवर और मालपुए खाए थे। चितेरते ही नथुओं में घी की महक घुल गई। सेठ के छोटे लड़के की बारात चढ़ रही थी। गुड़ की मांगलिक लपसी से एक बड़ी कड़ाही भरी थी। खाने की तैयारी हो रही थी कि हमेशा वाली खातिरदारी और मान सम्मान के भरोसे वो मस्तानी चाल से कड़ाही के पास गया। इधर उधर देखभाल करने की क्या जरूरत? भ्रम के गुमान में कड़ाही में मुंह डालकर लपसी खाने लगा। सहसा नाई की नजर उस पर पड़ गई। उसने न तो छापे देखे ना मानड़े, जलती हुई लकड़ी खींच कर नाक पर दे मारी। उसकी आंखों के सामने बिजली चमकी। हक्का बक्का खड़ा रहा जैसे काठ मार गया हो, भागने का भी होश न रहा। फिर नाई के कैसी कोताही, पीठ पर 4-5 और जमा दी। वो रेंकता हुआ सर पर पांव रखकर भागा। शायद जल्दी जल्दी में उसे पहचाना नहीं। जलन की चरमराहट जरा कम होने पर वो एक जाट के यहां जा पहुंचा। वहां भी काफी मजे लूट चुका था, दूध दही और हलवा। चौधरी ने तीनों देवरों की थापना करवाई थी। कुम्हार को सोने की चौकी मिली थी। गधे के बदन पर भी गुलाबी छापे मांडे थे। मेहंदी का टीका निकाला था। उसका सभाग कि चबूतरे पर ही रोटियों की टोकरी रखी थी। आड़े दिन तो दही सोगरे भी काफी। टोकरी में मुंह डालकर भचड़ भचड़ सोगरे खाने लगा।
चौधरी हाथ में जई लेकर बाहर आया तो उसकी आंखें दहक उठी। पंजे के बल होकर पीठ पर ऐसा करारा वार किया कि वो धूल चाटने लगा। उसका गुस्सा तब भी कम नहीं हुआ, पेट पर दना दन चार पांच और जमा दी। हर चोट के साथ उसकी आंखों के आगे बिजली चमकती। गधा मार खाने में मजबूत होता है, दूसरा जानवर होता तो उठ भी नहीं पाता, पर वो तो ठोकरों के साथ ही आपा संभालकर घोड़े की रफ्तार से भागा। राह में उसके देखे भाले लुहार का घर आया। धौंकनी चल रही थी, पास ही बीज के लिए बाजरी की गठरी खुली पड़ी थी। ना कुछ बाजरी के लिए कौन मना करेगा, मुंह डालकर बकल बकल खाने लगा। फर फर की भनक सुनकर लुहार ने मुड़कर देखा, मार से लहू लुहान गधा, यहां भी बाज नहीं आया। लुहार के कलेजे में भट्टी दहक उठी। लाल सुर्ख हंसिए के मूठ पकड़कर उसके पुट्ठों पर डाम जड़ दिया। चमड़ी जलने की चरड़ सी आवाज हुई, थोड़ा सा धुआं उठा, रेंकने की ताकत भी ना बची। मुंह उठाकर सरपट भागा, बिना देखे सीधे कुमार के बाड़े की ओर। भरम का जाला कट गया कि कुमार के बाड़े के अलावा कोई आसरा नहीं, मूर्तियां ढोने से बेहतर कोई काम नहीं। भरम की जितनी मार खाई और जो डाम उगड़ा वो ही बहुत, बैठे बिठाए कैसी तो मत ओढ़ ली। जाने बूझे हाथ का परस पाकर उसने आंखें खोली। कुमार प्यार से सहलाते हुए बोला, मैं जानता था कि तू वापस आएगा। वो चुपचाप पूंछ हिलाते आंसू बहाने लगा, सोचने लगा, किसी दिन हसीये की यह जलन भी खत्म होगी, जरूर खत्म होगी, पर भरम के मानड़े का दाग कभी नहीं मिटेगा।

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

गुलामी कब तक? एक सूफी फकीर थे, वो एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे थे। एक आदमी स्वस्थ गुलाम खोज रहा था। उसने फकीर को देखा, फकीर स्वस्थ था, कपड़े जरूर फटे हुए थे। आदमी ने सोचा कि यह जरूर कोई भागा हुआ गुलाम है। उस आदमी ने फकीर से पूछा, क्यों जी, क्या तुम भागे हुए गुलाम हो? फकीर ने कहा, अरे वाह, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, भागा हुआ हूं और गुलाम भी हूं। फकीर का मतलब था, परमात्मा से दूर हूं तो गुलाम ही हूं। पर उस आदमी को फकीरी की इस भाषा से कोई मतलब नहीं था। उस आदमी ने कहा, चलो ठीक है, मैं भी एक गुलाम की तलाश में हूं, मैं तुम्हारा मालिक बनने को तैयार हूं, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। फकीर ने कहा, गजब है, ये तो यही मेरी खोज है, मैं भी तो मालिक को ही खोज रहा हूं। वह आदमी उसे घर ले गया और कहा, अब जो काम मैं बताऊं वो करना। फकीर ने कहा, यही तो मैं चाहता था कि कोई बताने वाला मिल जाए कि मैं करूं क्या, अपने लिए तो सब अनकिया हुआ जा रहा है, तुम भले मिले। आदमी ने सोचा, यह आदमी तो पागल है या कुछ समझने में गलती हुई है। पर फिर सोचा कि गुलाम ने खुद ही हामी भरी है, मुफ्त में मिला है, उसने उससे काम लेना शुरू कर दिया। वह आदमी इतना भला पाया कि उस आदमी ने उसका नाम खैर रख दिया। खैर मतलब भला। फिर उससे कपड़ा बुनना सिखाया तो उसका दूसरा नाम हो गया नसाज, यानी कपड़ा बुनने वाला। खैर नसाज उस सूफी फकीर का नाम हो गया। 10 साल बीत गए, उसने बड़ी सेवा की मालिक की। अब मालिक को कचोटने लगा कि वह बहुत शोषण कर रहा है, कभी उसे कुछ दिया नहीं। आदमी ने नसाज को बुलाया और कहा, मुझे लगता है मैं शोषण कर रहा हूं, अब और नहीं, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, अब तुम अपने मालिक हुए। नसाज ने कहा, बड़ी मेहरबानी, बड़ी कृपा की तुमने, मुझे मेरा मालिक बना दिया। तुम्हारे पास मुझे दास बनने की कला सीखने को मिली, मेरा अहंकार टूट गया, अहंकार टूटा तो गुलामी मिटनी शुरू हो गई, और देखो तुम तक मुझे मुक्त कर रहे हो। पर सवाल है कि तुम कब तक खुद गुलाम बने रहोगे?

0: तो दोस्तों, प्रेरणादायक गीत और प्रेरणादायक बातों में आज इतना ही। कल और नए गीत और नई बातें लेकर हम हाजिर होंगे।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM, जाबुआ की आवाज।

0: बताएंगे, ठीक है ना?
1: नमन,
0: नमन,
1: लवीश,
0: लवीश,
2: अर्णव,
0: अर्णव,
2: अभय,
0: अभय,
2: दक्षा,
0: कुशाग्र,
2: निशांत,
0: निशांत। भाई जोर से बजाओ ताली पहले सबके लिए। शाबाश, शाबाश। ये बताओ कहानी सुनना किस किस बच्चों को अच्छा लगता है?
3: हाथ खड़ा।
0: अरे वाह। तो बच्चों आज से मैं आपको रोज एक नई कहानी सुनाया करूंगा।
3: कहानी?
0: हाँ कहानी।
4: अपने बहन को
2: दोस्त महमूद भी आए।
0: हाँ हाँ, महमूद को लेके आना, अपनी बहन को लेके आना, अपने भाई को लेके आना, ठीक है ना? और जानती हो कहानी किस पर हुआ करेगी?
3: हाथी,
0: हाथी, गिलहरी,
3: बिल्ली।
0: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक भाई। मैं इन सबकी कहानियां तो सुनाऊंगा ही, और साथ में सुनाऊंगा तुम्हें अक्षर की कहानी।
2: क्या बात हुई?
0: ये कौन आ रहा है?
2: नमस्ते भैया।
0: नमस्ते बेटा, नमस्ते। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ अंदर, आ जाओ, आ जाओ। शाबाश, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ
2: जाओ। तो आज नई कमीज पहनी है।
0: क्या क्या क्या?
2: तुमने आज नई कमीज पहनी है।
0: अरे निशांत, इसका नाम आतुल नहीं, अतुल है।
2: अतुल?
0: अरे वाह अतुल, तुम्हारी कमीज तो बहुत ही सुंदर है।
2: ये मामा जी ने दी
0: अच्छा,
2: है।
0: अच्छा क्या बात है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, जैसे निशांत ने अतुल को आतुल बोला, ऐसे ही अगर हम अमर में अ की जगह आ लगाएं तो क्या बनेगा?
2: अमर,
0: अमर,
2: अमर, अमर।
4: और भैया अकल का हो जाएगा आकल,
0: आकल। वैसे बच्चों होता है अकल, जैसे अकलमंद, तुम तो सच में बहुत अकलमंद।
4: भैया अजब का बन जाएगा आजब।
0: हाँ आजब, शाबाश, बजाओ सी बात तो जोरदार तालियां, बजाओ तालियां, शाबाश। अच्छा बच्चों अगर मैं आरती में आ की जगह अ लगाऊं तो क्या बनेगा? सोचो सोचो।
2: आरती,
3: आरती,
0: आरती। वाह शाबाश। और अगर मैं अकेला में अ की जगह आ लगाऊं तो क्या बनेगा?
3: अकेला,
0: अकेला। हाँ अकेला। तो इसी बात पे बच्चों हो जाए अक्षर की कहानी। तो अ से अक्षर, अ से
3: अक्षर।
2: भैया मेरी बहन ने छोटे अ से अनार सिखाया है।
0: अच्छा, और बड़े अ से?
2: बड़े अ से आम।
0: वो आपको समझाने के लिए कहती हैं छोटा आ बड़ा आ, और वो बच्चों इसलिए क्योंकि हम अगर थोड़ी देर के लिए बोलेंगे तो हम ऐसे बोलेंगे अ, और अगर ज्यादा देर के लिए बोलेंगे तो हम इसको खींचेंगे जैसे आ, तो अ और आ, अ से अनार और आ से आम। इसीलिए तुम्हारी मैडम या तुम्हारे सर तुम्हें समझाने के लिए कहते हैं छोटे अ से अनार, बड़े आ से आम। होता है लघु स्वर जैसे अ थोड़ी देर के लिए बोला हमने, और दीर्घ स्वर ज्यादा देर के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे आ। बोलो मेरे पीछे एक साथ, ठीक है? अ आ,
3: आ,
0: आ,
3: आ,
0: आ, आ,
3: आ, आ, आ,
0: शाबाश। तो बच्चों हमारी आज की कहानी है अ से अर्जुन और आ से आशा। अ आ,
3: आ, आ, आ,
0: हाँ, आगे समझ में? अ से
3: अर्जुन
0: और आ से
3: आशा।
0: शाबाश। बच्चों दोनों भाई बहन थे, अर्जुन छोटा था, आशा बड़ी थी। दोनों भाई बहन बड़े शरारती थे, दिन भर खेलते रहते। इतना खेलते बच्चों, इतना खेलते कि उन्हें खाने पीने की भी चिंता नहीं रहती थी। हाँ अच्छा एक बार पता है क्या हुआ?
3: क्या हुआ भैया?
0: एक बार अर्जुन और आशा के घर के बाहर तमाशे वाला आया। अच्छा तमाशे वाला कौन होता है, कौन बताए?
4: वो रस्सी पे चलता है भैया।
0: हाँ सही कहा तुमने,
2: जादू भी करता है।
0: जादू भी करता है हाँ
4: भैया, और वो नए नए खेल दिखाता है।
0: नए नए खेल दिखाता है, क्या बात है। तो एक बार अर्जुन और आशा के घर के बाहर तमाशे वाला आया, आ से आया, आ से आशा और आ से आया, ठीक है? तो बच्चों दोनों तमाशा देखने में इतना खो गए, इतना खो गए कि अचानक जब वर्षा आई तब भी वो बाहर ही खड़े रहे।
2: भैया आ से अचानक,
0: हाँ, आ से

0: अचानक
1: भैया आ से आया,
0: आ से आया और आ से आई,
2: भैया आ से आता,
0: आ से आता, शाबाश, आ से आज। तो सुनो आगे क्या हुआ। तो बच्चों जब बारिश हो रही थी तो उनकी अम्मा ने उन दोनों को आवाज लगाई, अरे बच्चों, अरे आशा और अर्जुन जल्दी आओ जल्दी, अरे बारिश होने लगी है बेटा, अरे बीमार पड़ जाओगे, भीग जाओगे, जल्दी आओ जल्दी आ जाओ अंदर। हाँ तो बच्चों

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, जाबुआ की आवाज।
1: अधिक बलवान कौन?

0: एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा,
1: मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ।
0: सूरज ने हवा से कहा,
2: मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है।
0: इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा,
1: इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज्यादा बलवान है।

0: सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा,
1: ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत।
0: हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की।

0: आदमी की टोपी उड़ गई।
1: अरे अरे अरे,
0: पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। हवा और जोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा।
1: अरे अरे अरे,
0: पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी।

0: सूरज तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा,
1: देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट।
0: हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा,
2: मान गई तुम्हारी ताकत को।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, जाबुआ की आवाज।
1: जलियांवाला बाग,

0: ये बात उस वक्त की है जब पहले महायुद्ध में हिंदुस्तानियों ने विदेशी सरकार की तन मन धन से सहायता की और इसके बदले में भारतीयों को मिला रॉलेट बिल।
1: रॉलेट बिल ने पुलिस को बिना वारंट के लोगों को गिरफ्तार करने, नजरबंद करने और तलाशी लेने के पूरे अधिकार दे दिए। अदालतों में पैरवी करने की मनाही कर दी गई।
0: इस कानून का सीधा सा मतलब था व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत। 6 फरवरी 1919 को रॉलेट बिल नाम के दो बिलों को बड़ी काउंसिल में पास करने के लिए पेश किया गया। 24 फरवरी के दिन गांधी जी ने ऐलान किया कि अगर बिलों को पास कर दिया गया तो सारे देश में सत्याग्रह होगा और 30 मार्च 1919 को रॉलेट बिल के विरोध में देशव्यापी हड़ताल की योजना बनाई गई। लेकिन इस हड़ताल की तिथि बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दी गई, पर दिल्ली खबर न पहुंचने की वजह से 30 मार्च को ही हड़ताल हुई।
1: लेकिन इसी बीच पहला बिल मार्च के तीसरे सप्ताह में पास कर दिया गया, जो रॉलेट एक्ट कहलाया।
2: मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो।
3: हमारा पहला प्रस्ताव है कि काला कानून रॉलेट एक्ट वापस लिया जाए।
2: रॉलेट एक्ट
4: वापस लो,
2: रॉलेट एक्ट
4: वापस लो,
2: रॉलेट एक्ट
4: वापस लो,
2: रॉलेट एक्ट
4: वापस लो,

पूरे देश में हड़ताल हुई। पंजाब के सभी नगरों में यह हड़ताल शांतिपूर्वक रही। 9 अप्रैल के दिन रामनवमी थी।

0: जिसमें बच्चे भी शामिल थे। वातावरण में विरोध था, तनाव अपनी चरम सीमा पर था।
1: भाइयों और बहनों सुनिए, सुनिए भाइयों और बहनों, माताओं और बच्चों, आज की सभा में हम कुछ जरूरी प्रस्ताव रखना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सब हमारा साथ देंगे।
2: भारत माता की
3: जय,
2: भारत माता की
3: जय,
2: भारत माता की
3: जय।
1: इन प्रस्तावों को पास करके हम इन्हें सरकार के पास भेजेंगे ताकि हमारी मांगे फौरन पूरी की जा सके।
2: हमारी मांगे
3: पूरी करो,
2: हमारी मांगे
3: पूरी करो,
2: हमारी मांगे
3: पूरी करो।
1: हमारा पहला प्रस्ताव है कि काला कानून रोलेट एक्ट वापस लिया जाए।
3: रोलेट एक्ट
4: वापस लो,
3: रोलेट एक्ट
4: वापस लो,
3: रोलेट एक्ट
4: वापस लो।
1: ये सभा 10 अप्रैल के दिन हुए गोलीकांड की निंदा करती है और शहीदों के परिवार के साथ सहानुभूति प्रकट करती है।
2: मारो,
1: सरकार से अनुरोध करती है कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को फौरन रिहा किया जाए।
2: सत्यपाल को
3: रिहा करो,
2: डॉक्टर किचलू को
3: रिहा करो,
2: सत्यपाल को
3: रिहा करो,
2: डॉक्टर किचलू को
3: रिहा करो।
0: सभा चल रही थी और उधर जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ जलियांवाला बाग के एकमात्र दरवाजे पर आ डटा। जलियांवाला बाग के चारों ओर दीवारें थीं और केवल एक ही दरवाजा था जिससे अंदर आया जाया जा सकता था। इसी दरवाजे पर डायर के सैनिकों ने अपनी खूनी बंदूकें तान ली।

0: लोग एकमात्र दरवाजे की ओर भागे और गोलियां उन्हें बीनती रही। कुछ लोग दीवारों पर चढ़े जिससे कि दूसरी ओर कूदा जा सके, लेकिन कोशिश बेकार रही। गोलियों की बौछारों से बचने के लिए कुछ कुएं में भी कूदे, लेकिन मौत उनका वहां भी इंतजार कर रही थी। पूरे 10 मिनट तक मौत का नंगा नाच होता रहा।
1: गोली चलाना बंद क्यों कर दिया? ऐसे फायर, फायर अगेन।
2: सर, सर कारतूस खत्म हो गए हैं।
1: और शट अप। देख, ये सबक काफी है। अबाउट टर्न, फायर।

0: मौत का दरिंदा जब दरवाजे से हटा, तब रतन देवी उस मौत के मैदान में अपनों को खोजती हुई पहुंची।
1: मासी, मासी मेरी लत सीधी कर दे, मासी, मासी, मासी मेरी लत सीधी
2: कर दे, कर दिया, अल्लाह, आय अल्लाह, आय मेरी पुत्र है तो अल्लाह ही लाऊँ है।
1: पानी
2: कितने लाते, पानी कितने
1: हटा दे।

0: ¡Cállate! ¡Hélano, para acá! ¡Hélano!
1: ¡Por favor, no me cargue la cara! ¡Me trae también! ¿Qué? ¡Ande! ¡Estás todo! ¡Estás todo! ¡Estás
2: Masi, masi na jaye tere, masi
1: puro na jaye tere, masi
2: jaye tere.
3: जब कोई हिंदुस्तानी किसी अंग्रेज अफसर को मिले तो उसे सलाम करे, अगर घोड़े पर सवार हो तो हिंदुस्तानी अंग्रेज की शान में घोड़े से उतर जाए, अगर हिंदुस्तानी छाता लगाए हो तो नीचे झुका ले। पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। पंजाब की खबरों के बाहर जाने पर रोक लगा दी गई
4: और यही वजह थी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर कांग्रेस के नेताओं को कई हफ्ते बाद मिली।
3: इस खबर के मिलते ही भारतीयों के मन दुख, ग्लानि और आक्रोश से भर गए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि का त्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि अब वो समय आ गया है कि जब सम्मान पदक शर्म पदक लग रहे हैं। डायर की मनमानी करतूतों के कारण पूरे पंजाब में विद्रोह भड़क उठा और इसी के साथ ही अंग्रेजी हुकूमत के बढ़ते दमन चक्र की वजह से कसूर, गुजरावाला और लाहौर में भी विद्रोह की आग भड़क उठी। ये सब देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के 6 महीने बाद अक्टूबर 1919 में हंटर जांच समिति नियुक्त की, जिसको जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड की जांच करनी थी।
5: जनरल डार।
6: यस सर।
5: आप जब जलियांवाला बाग में पहुंचे तो आपने क्या किया?
6: मैंने गोली चलाने का हुक्म दिया।
5: क्या ये हुक्म आपने फौरन दिया?
6: यस, मैंने पहुंचते ही गोली चलाने का हुक्म दिया।
5: क्या वार्निंग नहीं दी?
6: नो, क्योंकि हमारे सुबह के ऐलान के बावजूद भी लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। उन्हें कोई भी मीटिंग करने से मना कर दिया गया था। वैसे उन्हें मेरे आने की चेतावनी तो मिल ही गई होगी।
5: फिर गोली चलाने का क्या मकसद था?
6: मेरा मकसद गोली चलाकर फीट को टिटर बिटर करना नहीं था। मैं चाहता था कि इस तरह की फायरिंग के बाद पूरे पंजाब के लोगों में कुछ ऐसा डर बैठ जाए कि दोबारा ऐसा करने की हिम्मत ही ना हो।
3: जनता को डराने धमकाने के इस शर्मनाक तरीके को हंटर जांच समिति ने ताक पर रख दिया। हंटर जांच समिति की कार्यवाही केवल इस हत्याकांड पर लीपापोती करती रही और डायर को बरी कर दिया गया।
4: लेकिन कांग्रेस ने पंजाब की घटनाओं की सही जानकारी लेने के लिए अपनी एक समिति नियुक्त की, जिसके प्रमुख सदस्य थे सर्वश्री मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, देशबंधु चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, बदरुद्दीन तैयब जी और जयकर। इस समिति ने 3 महीने तक पंजाब की घटनाओं का अध्ययन किया। समिति ने पंजाब के प्रशासकों की घोर निंदा की, प्रमुख रूप से पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर और सेना के जनरल डायर की भर्त्सना की गई।
7: कांग्रेस का दिसंबर अधिवेशन सन 1919 में पहले से ही अमृतसर में होना निश्चित हुआ था और वही हुआ। इस अधिवेशन में कुछ सदस्यों ने जलियांवाला बाग के अमानवीय एवं निर्मम हत्याकांड के खिलाफ जबरदस्त आवाज उठाई।
8: हम मांग करते हैं कि जनरल डायर को अपने पद से हटा दिया जाए।
9: डायर, डायर, डायर, डायर, डायर, डायर, डायर, डायर, डायर, डायर, डायर, डायर, डायर, डायर, डायर, डायर, डायर, डायर, डायर, डायर, डायर, पंजाब के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
10: अब भारतीयों का विश्वास वायसराय कोर्ट से उठ गया है, उन्हें अब ब्रिटिश सरकार द्वारा वापस बुला लेना चाहिए।
8: आज के इस अधिवेशन में हम संकल्प लेते हैं कि जलियांवाला बाग के शहीदों की याद हम अमर करेंगे और जलियांवाला बाग को राष्ट्रीय शहीद स्मारक बनाएंगे।
7: जलियांवाला बाग हत्याकांड में लगभग 1000 शांति प्रिय निहत्थे एवं असहाय लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस हत्याकांड ने भारतीय जनमानस को स्तब्ध कर दिया और इस तरह जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ बन गया।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
1: पहली उड़ान में
2: आपने आकाश में उड़ते पक्षियों को तो देखा ही होगा, देखा है ना? पक्षियों को उड़ते हुए देखकर आकाश में उड़ने की लालसा मनुष्य के मन में शुरू से ही रही है, और आज मनुष्य रॉकेट, अंतरिक्ष यानों और हवाई जहाज की सहायता से आकाश में उड़ सकता है। मगर ये कैसे संभव हुआ, आइए आज हम आपको बताते हैं। आज से लगभग 200 वर्ष पहले की बात है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में दो भाई रहते थे, जोसेफ और स्टीफन, जिनकी आयु होगी लगभग 15-16 वर्ष। दोनों भाई अक्सर आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखते और हवा में उड़ने की लालसा किया करते। एक दिन की बात है, दोनों भाई घर में खाना खा रहे थे।
3: भाई वाह, आज तो मजा आ गया। कितना बढ़िया खाना बनाया है माँ ने, क्यों जोसेफ?
4: हाँ स्टीफन भाई, हमारी माँ से बढ़िया खाना भला और कोई बना भी सकता है?
5: तुम लोग खाना खाओगे या बातें ही करते रहोगे? जल्दी से खा लो बेटा, मुझे अभी कबूतरों को भी दाना पानी देना है।
4: अच्छा माँ, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ?
5: हाँ पूछो बेटा।
4: क्या हम भी कबूतर की तरह नहीं उड़ सकते?
5: बेटा भला हम कैसे उड़ सकते हैं, हमारे पास पंख थोड़े ही हैं।
3: लेकिन माँ।
5: ओफो, तुमसे बातें करते करते मैं तो भूल ही गई कि चूल्हा भी बुझ रहा है। ठहरो जरा जोसेफ
4: जी,
5: जरा वो फूंकनी तो देना बेटा।
4: अच्छा माँ, ये लो माँ।
5: ला।
3: ओहो, कितना धुआं भर गया है कमरे में, जल्दी करो माँ।
4: मिल गया, हाँ मिल गया मुझे। अरे मिल गया मुझे।
5: क्या मिल गया
4: मुझे? माँ माँ माँ,
5: क्या मिल गया? क्या मिल गया?
4: मुझे मिल गया।
3: क्या मिल गया भाई, क्या मिल गया?
5: सब क्या हो गया तुम्हें बेटा, बताओ तो सही, क्या हो गया है?
4: माँ मुझे उड़ने का तरीका मिल गया। हाँ उड़ने का तरीका मिल गया।
3: जोसेफ होश में आओ भाई, क्या हुआ?
4: स्टीफन स्टीफन, माँ माँ माँ, सर इस कमरे के धुएं को देखो।
5: धुआं?
4: हाँ इस कमरे के धुएं को देखो।
5: हाँ?
4: इसमें इसमें क्या उड़ रहा है बताओ? बताओ उसमें क्या उड़ रहा है?
5: कुछ हाँ? भी तो नहीं।
3: कुछ भी तो नहीं है।
4: ओ नहीं स्टीफन नहीं, ध्यान से देखो।
5: हुँ?
4: हाँ ध्यान से देखो, क्या धुएं के साथ राख नहीं उड़ रही है? उड़ रही है ना?
3: वो तो है मगर
4: इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्टीफन कि धुआं राख को उड़ा सकता है।
3: हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ, कहते तो तुम ठीक हो।
4: तो फिर क्यों ना हम कुछ प्रयोग करें हैं?
3: हाँ
4: मुझे तो लगता है कि अगर हम किसी हल्के लिफाफे में धुआं भर दें तो वो जरूर ऊपर की ओर उड़ेगा।
3: हाँ हाँ हाँ हाँ, ये बात तो है।
4: चलो चलो जोसेफ, चलो देखते हैं।
3: ठीक है, आओ मेरे साथ।
5: अरे सुनो, अरे खाना तो खाते जाओ। स्टीफन जोसेफ सुनो तो।
2: और फिर क्या था, दोनों भाइयों ने झटपट कई प्रयोग कर डाले। इसमें कई बार उन्हें असफलता हाथ लगी, लेकिन वो पूरी लगन से अपने काम में जुटे रहे। और एक दिन सचमुच धुएं से भरा लिफाफा छत से जा टकराया। इस प्रयोग की सफलता से उत्साहित होकर दोनों भाई और अधिक परिश्रम से अपने प्रयोग करते रहे। उनकी योजना थी एक बड़ा गुब्बारा बनाकर उसे उड़ाने की, और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई, उन्होंने एक ऐसा गुब्बारा बना ही लिया। सन 1783 सितंबर का महीना था। दोनों भाई एक बड़े मैदान में अपने बनाए हुए गुब्बारे के पास खड़े थे। इस करतब को देखने के लिए मैदान में भारी भीड़ जमा थी।
6: हे अरे गुब्बारा गुब्बारा कहाँ उड़ेगा?
7: क्या बात है दोस्त, यहाँ तो बड़ी भीड़ है।
8: हाँ भाई भीड़ तो है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लड़के मजाक ही कर रहे हैं। अरे यार भला हवा में कोई चीज उड़ सकती है क्या?
7: अभी पता चल जाएगा, पर यहाँ तो इतनी भीड़ है कि इस तरफ से कुछ भी साफ साफ नहीं दिख पाएगा।
8: तो चलो उस तरफ चलते हैं, उधर भीड़ जरा कम है।
7: हाँ, आओ, आओ, यही ठीक रहेगा। आओ चलो।
9: ना जाते क्या करेंगे,
8: भला कोई चीज उड़ नहीं सकती।
9: लगता है कुछ हो गया है।
8: अरे भाई साहब जरा रास्ता दीजिए, आगे जाने दीजिए।
7: भाई साहब आ जाइए। आ गए आ गए, यहाँ से हम सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं।
8: अरे अरे वो देखो वो सामने एक बड़ा सा गुब्बारा रस्सी से बंधा हुआ है।
7: अरे ये क्या, जोसेफ और स्टीफन गुब्बारे से एक टोकरे को बांध रहे हैं। वो देखो टोकरे में। हाँ
8: अरे अरे टोकरे में तो एक भेड़ है। अरे वो देखो एक मुर्गा और साथ में एक बत्तख भी है।
7: हाँ, क्या ये भी गुब्बारे के साथ उड़ेंगे?
8: दोस्त लगता तो कुछ ऐसा ही है। अरे अरे अरे अरे वो देखो स्टीफन हाथ से कुछ इशारा कर रहा है।
7: और एक आदमी गुब्बारे की रस्सी खोल रहा है।
8: अरे अरे अरे वो गुब्बारा तो ऊपर की ओर जा रहा है। ये क्या हो रहा है, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है? अरे देखो वो गुब्बारा तो वाकई ऊपर जा रहा है।
7: अरे सचमुच उड़ रहा है, सचमुच।
8: अरे वाह, अरे यार ये तो कमाल हो गया,
7: बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। देखो देखो गुब्बारा बहुत ऊंचा चला गया।
8: अरे अरे दोनों लड़कों ने कमाल दिखा दिया, आज तक ऐसा नहीं हुआ।
7: वो देखो वो देखो गुब्बारा नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा, उधर उधर जा रहा है। देखो पेड़ों की तरफ।
8: अरे देखो, अरे हाँ हाँ, अरे वो पेड़ों की तरफ। अरे बाप रे, अरे वो पेड़ से जाकर टकरा गया। अरे गिर गया, अरे गिर गया।
2: साथियों ये थी जोसेफ और स्टीफन की पहली उड़ान। क्या आप जानते हैं ये गुब्बारा लगभग 8 मिनट तक हवा में उड़ा और बाद में एक पेड़ से जा टकराया। और हाँ, जिस रस्सी से टोकरा बंधा हुआ था वो रस्सी भी टूट गई और सभी यात्री धड़ाम से नीचे आ गिरे। सिर्फ मुर्गे का एक पंख टूटा, शेष यात्री यानी भेड़ और बतख बिल्कुल ठीक थे। ठीक इसके 2 महीने बाद यानी नवंबर सन 1783 में जोसेफ और स्टीफन ने एक गुब्बारा और उड़ाया जिस पर खुद उन्होंने उड़ान भरी। ये गुब्बारा लगभग 900 मीटर ऊंचा उड़ा और इसने 2 किलोमीटर की यात्रा की। इस तरह शुरू हुआ उड्डयन का युग। लेकिन गुब्बारे में उड़ना बहुत जोखिम का काम था। तेज हवा गुब्बारे को किसी भी दिशा में उड़ा ले जाती थी। कई बार मनुष्य को इस उड़ान में अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था। लेकिन मनुष्य ने हार नहीं मानी और वो इस दिशा में खोज करता रहा। आखिर में अमेरिका के 2 भाइयों विल्बर और ओलिवर राइट, जिन्हें हम राइट ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने हवाई जहाज का एक ऐसा नमूना विकसित किया जो पेट्रोल से उड़ सकता था। और इस तरह साकार हुआ मनुष्य का हवा में उड़ने का स्वप्न।
10: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
11: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
10: और लाइट बिल के
11: अब 0 रुपए कैसे दूं?
10: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
11: पक्का।
12: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
13: हर घर सूर्य घर।
14: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए कार्यक्रम बाल गीत। सबसे पहले सुनिए ये गीत
15: शीर्षक है पशु पक्षियों पर आधारित प्यारे प्यारे बाल गीत।

0: बाल गीत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। लेखक प्रोफेसर के.जी. रस्तोगी। ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे। निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी। कार्यक्रम निर्माण रमेश रानी शर्मा। ये बाल गीत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रस्तुत किए गए।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: रेडियो स्टेशन 90.8 FM, टांटिया भील, रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન। આપુ રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં, એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન, રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM।
3: किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में।
2: रेडियो स्टेशन 90.8 FM, टांटिया भील, रोज हांजे 6 થી 8 વાગે आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करूं वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
3: किसान साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM छावा की आवाज आपके लिए खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से आप तक खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। किसान साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM का यही प्रयास रहा है कि हमारा जो किसान है वह उन्नत से उन्नत खेती करे, अपनी खेती के माध्यम से अपनी आजीविका को सशक्त बनाए, साथ ही अपनी खेती में आ रहे नए बदलावों को समझे और अपनी खेती में नए से नए उपकरणों का इस्तेमाल करे, नई से नई किस्मों का इस्तेमाल करे और हमारे अलग अलग प्रदेशों में भी जो कृषि चल रही है और हमारे जो अलग दूसरे किसान है उनके साथ कैसे एक नवीनतम तकनीक द्वारा कैसे हम उन्नत और उपयोगी कृषि कर सकते हैं, इन्हीं सभी बिंदुओं को मध्य नजर रखते हुए हमारा रेडियो टांटिया भील 90.8 FM आपके लिए खेती संबंधी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाने के प्रयासों में लगा हुआ है।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
3: किसान साथियों, अभी बरसात का समय चल रहा है और अभी तक अगर हम देखें तो अच्छी खासी बरसात हो चुकी है। तो किसान

0: साथियों, अभी समय आ गया है। अभी हमारी फसलों में आपको कीटें दिख जाएगी, खरपतवार हमारे खेतों में बहुत से दिखने लगेंगे। तो आज का जो हमारा खेती बाड़ी का जो टॉपिक है, उसमें हम जानेंगे कैसे हम टमाटर, बैंगन और मिर्ची की खरपतवारों को उसमें कैसे उसकी फसल का हम प्रबंधन कर सकते हैं। साथ ही हम जानेंगे अंगूर की खेती में जो बेल होती है उसमें भी अभी कुछ कीटनाशक आ जाते हैं, तो उसका हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो आइए, आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
2: बैंगन मिर्च और टमाटर की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त समय आ रहा है, ऐसे में किसानों को क्या खास बातें आप इस वक्त बताना चाहेंगे?
3: जी हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये जो मौसम है, जो ही बारिश प्रारंभ होती है
2: जी,
3: पहली बरसात के बाद ये तीनों फसलें जो हैं, आप बैंगन की भी खेती प्रारंभ कर सकते हैं, टमाटर भी लगा सकते हैं और मिर्च की भी खेती इस मौसम में किसान भाई करते हैं। जैसा कि किसान भाइयों को पता है कि उन्हीं किसान भाइयों को अधिक फायदा होता है जिनकी फसल जो है जितनी अगेती मार्केट में आती है। तो जो किसान भाई अगर नर्सरी ज्यादा जल्दी अगर उगा लेते हैं तो उनकी फसल स्वाभाविक है कि मार्केट में जल्दी से जल्दी आएगी। और जैसा बैंगन जो है पूरे भारतवर्ष के विभिन्न हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में, उनको ये देखना है कि आपके एरिया का जो मार्केट है वहां किस प्रकार की बैंगन की प्रजाति की प्रेफरेंस मार्केट में है। जैसे कई जगह गोल मार्केट में प्रेफर किया जाता है, कई जगह लंबी प्रजाति होती है, कई जगह कम बीज वाला लोग पसंद करते हैं, कई जगह जैसे महाराष्ट्र का रीजन है वहां जो चूचू बैंगन होता है, वेरीगेटेड होता है, उसमें अधिक बीज वाला वहां वो पसंद करते हैं। इन चीजों को हमें ध्यान रखना है। जो टमाटर की फसल है, खास करके जो हम खरीफ मौसम में और बारिश के मौसम में, एक विषाणु जो होता है लीफ कर्ल, जिसको किसान भाई मरोड़िया बीमारी बोलते हैं, उससे हमको कैसे बचाना है। मिर्च में भी इस मौसम में अगर हम करेंगे तो बारिश के मौसम के लिए कुछ खास प्रकार की ही किस्मों का चयन करना होता है, और कुछ खास प्रकार से इसकी अगर हम नर्सरी भी तैयारी करते हैं तो जो विषाणु जनित यानी वायरस जनित जो बीमारियां हैं उनको हम किस प्रकार से हम प्रबंधन कर सकते हैं, आज हम इस पे हम अधिक से अधिक अगर हम फोकस करें
2: तो से चर्चा इस बात पर हम करेंगे कि बैंगन मिर्च टमाटर की अच्छी उपज आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं। आइए उससे पहले नजर डाल देते हैं एक रिपोर्ट पर।

0: खरीफ में टमाटर, मिर्च और बैंगन की खेती की जा सकती है। पहले बात करते हैं टमाटर की। जाड़े के टमाटर की फसल के लिए बीज की बुआई पौधशाला में करते हैं। इसके लिए मुक्त पराकित किस्मों के लिए 350 से 400 ग्राम और संकर किस्मों के लिए 200 से 250 ग्राम बीज को 1 ग्राम कैप्टॉन या थीरम से उपचारित करके 17x3 फीट के आकार की 8 ऊंची क्यारियों में लगाएं। हल्का पानी का फवारा देते रहें। आप टमाटर की पूसा रूपी, पूसा 120, पूसा शीतल, पूसा उपहार, पूसा गौरव, पूसा सदाबहार और पूसा हाइब्रिड 2 किस्में लगा सकते हैं। जुलाई की फसल नवंबर में तैयार हो जाती है। टमाटर को झुलसा रोग से बचाने के लिए उपाय जरूर करें। वहीं बैंगन की बुआई की बात करें तो इसकी बुआई के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी सही रहती है। मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। अच्छी जमाव क्षमता वाले 400 ग्राम और 250 से 300 ग्राम संकर किस्मों के बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। आप अगेती बैंगन की पूसा पर्पल क्लस्टर, पूसा उत्तम, पूसा बिंदु, पूसा अंकुर, पूसा हाइब्रिड 5, पूसा हाइब्रिड 9, पूसा शामला, पंजाब सदाबहार और काशी प्रकाश किस्में लगा सकते हैं। मिर्च की बात करें तो किसान हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म ले सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म की बुआई पूरे भारत में की जा सकती है। बुआई के बाद आप 1 हेक्टेयर से 95 क्विंटल हरी मिर्च की पैदावार ले सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म के पौधे सीधे होते हैं और उनकी ऊंचाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। हरी मिर्च की लंबाई 6 से 8 सेंटीमीटर होती है और एक गुच्छे में 6 से लेकर 14 हरी मिर्च तक होती हैं। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म रोपाई के 75 से 80 दिन बाद तैयार हो जाती है। हरी मिर्च की बुआई के लिए 1 से 1.5 किलो बीज लें। बीजों की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर रकबे के लिए काफी रहेगी। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें।
1: किसान साथियों, जैसा कि अभी आपने इस रिपोर्ट में सुना, कैसे आपने जो मिर्ची की खेती है, मिर्च का पौधा है वो कितना सेंटीमीटर पर होता है, और अगर आप पूसा किस्म का जो आप लगाते हैं उसमें ये किस्म काफ़ी अच्छी होती है और आपको अधिक से अधिक लाभ इस किस्म के द्वारा मिल सकता है। किसान साथियों, आइए जानते हैं कुछ अंगूर से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को।
2: अंगूर के बगीचे जो मुख्य क्षेत्र हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वहां पर ही अभी ऑफ सीजन चल रहा है, तो वनस्पतिक जो वृद्धि है वो हो रही है पौधों की। इसमें बारिश के मौसम में कीटों की समस्याएं काफी बढ़ जाती हैं, और जैसे कि मिलीबग, कैटरपिलर्स जो स्पोडोप्टेरा है, और लाल रंग का एक स्टेम बोरर तना छेदक, उसका भी इस समय काफी अटैक हो जाता है
1: जी।
2: और साथ ही साथ में थ्रिप्स है, उसकी भी काफी संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि बारिश आने के बाद में नई ग्रोथ आती है, नई वृद्धि होती है, तो उसके ऊपर में थ्रिप्स का प्रादुर्भाव हमको देखने को मिलता है। तो ये मुख्य कीटक है जो कि अंगूर के अंदर बारिश के मौसम में आ सकते हैं।
3: बिल्कुल। तो डॉक्टर यादव, विस्तार से आज हम जानेंगे कि ये जो कीट है जो फसल को प्रभावित कर सकते हैं, इससे बचाव के लिए किसानों को किस तरह के उपाय अपनाने चाहिए। लेकिन यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, नजर डाल देते हैं एक रिपोर्ट पर।

0: फलों के बाग किसानों के लिए अच्छी आमदनी का जरिया है। अगर अंगूर की बात करें तो सही तरीके और बड़े पैमाने पर अंगूर की खेती करने से ये लंबे समय तक आय का अच्छा साधन साबित होती है। अंगूर की बागवानी लगभग पूरे भारत में सभी क्षेत्रों में की जा सकती है। पैदावार के आधार पर दक्षिण में कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु मुख्य राज्य हैं, जबकि उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में अंगूर की बागवानी की जाती है। लेकिन इस समय पूरे देश में मॉनसून के बादल बरस रहे हैं, ऐसे में अंगूर में कई तरह के कीटों के लगने की आशंका हो जाती है। ऐसा ही एक कीट है लीफ हूपर। ये ज्यादातर उत्तर भारत में अंगूर की बेलों में मिलता है। ये कीट जून से अगस्त के दौरान सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है। ये निम्फ और परिपक्व पत्तियों के नीचे से रस चूसते हैं। इसके प्रकोप से पत्ती के सूखने और टूटने से पहले इसका रंग पीले से भूरा हो जाता है। इस पर नियंत्रण के लिए आप कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। पत्ते खाने वाली चैफर बीटल भी अंगूर की बेलों को नुकसान पहुंचाती है। चैफर बीटल दिन के समय छिपी रहती है और रात में पत्तियां खाकर छलनी कर देती है। बालों वाली सुंडियां नई बेलों की पत्तियों को खाती हैं। इनके साथ साथ स्केल कीट, जो सफेद रंग का बहुत छोटा और पतला कीड़ा होता है, टहनियों, शाखाओं और तने पर चिपका रहता है और रस चूसकर बेलों को बिल्कुल सुखा देता है। इन कीटों से बेलों को बचाने के लिए पॉलीथियोन या मेलाथियोन या डायाजिनोन का 0.05% से 0.1% का छिड़काव 15 दिनों के अंतराल पर जुलाई से सितंबर तक करते रहें। लेकिन किसी भी दवा के छिड़काव से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें।
1: किसान साथियों, जैसा कि अभी आपने इस रिपोर्ट में सुना कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, समय समय पर कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो कीटे हैं अंगूर की कोमल पत्तियों को खा जाती है और उनके अपनी जो बेलें हैं उनको भी नुकसान पहुंचाती है, साथ ही उन्हें सुखा भी देती है। तो इस ऐसे समय में हमें कैसे और कितने समय में हमें दवाई का छिड़काव करते रहना चाहिए आदि महत्वपूर्ण जानकारियों को आपने जाना। यहाँ पर हम रुक करेंगे मिर्ची, बैंगन और टमाटर की खेती के ऊपर। अभी बारिश का समय चल रहा है तो इसमें कौन सी किस्में हमें लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी किस्में आजकल बाजार में मिल जाती है, लेकिन जो अच्छी किस्म का पौधा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें खराब किस्म का पौधा मिल गया था तो मिल जाए तो उसमें हमारी जो पैदावार है यह काफ़ी प्रभावित हो सकती है। तो किसान साथियों, यहाँ पर हमें ज़रूरत है अच्छी किस्म के पौधों का चुनाव करना, अच्छी किस्म के बीजों का चुनाव करना और अपनी बागवानी में लगाना। तो चलिए किसान साथियों, जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
2: बिल्कुल ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आम तौर पे क्या होता है, जब किसान भाई सोचते हैं कि कोई भी टमाटर हम खरीफ में लगा सकते हैं, क्योंकि आम तौर पे जो किसान भाई टमाटर लगाते हैं वो जाड़े के मौसम में लगाते हैं, उसमें जो ये विषाणु रहित जो जनित बीमारियां होती हैं जिसको हम लीफ कर्ल कहते हैं या किसान भाई उसको मरोड़िया बीमारी कहते हैं, ये नहीं होता है। लेकिन अभी जो किसान भाई लगाएं उसमें हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो ऐसी प्रजाति लगाएं जो अधिक तापमान पर टमाटर में फलन की क्षमता रखती हो, क्योंकि अभी अगर आप लगाते हैं जुलाई अगस्त में तो अक्टूबर तक जो उत्तर भारतीय मैदानी इलाका है यहाँ खास करके रात का तापमान 20-22 डिग्री, 24 डिग्री, 25 डिग्री तक रहता है। तो एक हमें ये ध्यान रखना है। दूसरा ये ध्यान रखना है कि चूंकि बारिश के मौसम में नमी भी रहती है, तापमान भी अधिक रहता है, तो जो सफेद मक्खी होती है इसका प्रकोप काफी होता है, और ये सफेद मक्खी जो होती है वो वेक्टर होता है जो हमारी मरोड़िया बीमारी के लिए। तो इस मौसम में हमें उन्हीं प्रजातियों का चयन करना है जिसमें लीफ कर्ल वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता हो, और इसके लिए जैसे वाराणसी में जो हमारा भारतीय सब्जी विज्ञान अनुसंधान संस्थान है उनकी कुछ प्रजातियां जो उत्तरी भारत के लिए हैं, जैसे काशी अमन एक प्रजाति है, इसका आप एक चयन कर सकते हैं। अगर जो लोग कर्नाटक में या उस इलाके में अगर देख रहे हैं तो वहां की काफी पॉपुलर प्रजाति है अर्का रक्षक, जो हमारे भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बैंगलोर की प्रजाति है, उसका आप चयन कर सकते हैं। और काशी के जो हमारा वाराणसी का है इनके द्वारा कुछ और प्रजातियां विकसित की गई हैं, जैसे काशी अमूल है, इनका भी आप चयन कर सकते हैं। इसी प्रकार से अभी हाल में ही जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है इनके द्वारा भी कुछ प्रजातियां विकसित की गई हैं, तो आप वहां से ले सकते हैं। जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली है वहां से भी इस वर्ष एक प्रजाति विकसित की गई है जिसमें वायरस जनित यानी वायरस के लिए प्रतिरोधक क्षमता है, जो लीफ कलर असिस्टेंट, टोमेटो लीफ कलर असिस्टेंट, 6 नाम के वैरायटी इसी साल अभी आइडेंटिफाई की गई है, तो इनका आप चयन कर सकते हैं। आपको ये 100% ध्यान रखना है कि कोई भी प्रजाति लगाने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि उसमें लीफ कर्ल वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता हो, तभी इस मौसम में आप टमाटर की सफल खेती कर सकते हैं।
3: बिल्कुल, तो इन जो किस्म है इनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है जो भी आप टमाटर की खेती करने जा रहे हैं, खासतौर पर खरीफ के इस मौसम में। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर यादव, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, बताएं हमें कि इस मौसम में किस तरह की कीटों का प्रकोप हो सकता है, खासतौर पर कैटरपिलर के बारे में आपने भी बताया था कि इसका प्रकोप हो सकता है, तो किस तरह से ये फसल को प्रभावित करता है और कैसे इससे बचा जाए।
4: जैसे ही वातावरण में आर्द्रता बढ़ती है बारिश के बाद में और बादल हो जाते हैं, तो जो कैटरपिलर है, जो स्पोडोप्टेरा है, उसको जैसे लोकल लैंग्वेज में सुंडी भी कहते हैं
3: जी,
4: तो वो क्या करता है कि पौधों के पत्तों को खाना शुरू कर देता है, और कच्चे अगर थोड़े स्टेम है तो तना है उसको भी खा सकता है, और पत्तों को पूरा अगर ज्यादा अटैक हो जाए, ज्यादा आक्रमण हो जाए इसका, तो पत्तों को पूरा खा सकता है वो, तो जिससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया है वो बाधित होती है पौधे की। इसको नियंत्रण करने के लिए हम क्या सलाह देते हैं कि बारिश का मौसम एक ऐसा मौसम है कि जो हमारे बगीचों में मित्र कीटों को बढ़ने के लिए मौका देता है। आर्द्रता ज्यादा होगी, मित्र कीट काफी अच्छे तरीके से बढ़ेंगे, तो हम कम से कम कीटनाशक का प्रयोग बताते हैं कि आप करें अपने किसान भाई अपने बगीचों के अंदर में। जो अन्य विधियां हैं जैसे कि लाइट ट्रैप्स हैं, लाइट ट्रैप बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, जो कि कैटरपिलर के जो पतंग होते हैं उनको कंट्रोल करने में बहुत मददगार होता है। एक चीज अंगूर के बगीचों में खासतौर पर ध्यान रखनी है कि बाकी फसलों में क्या होता है कि जो लाइट ट्रैप होता है वो बगीचे के फसलों के अंदर खेत के अंदर लगाया जाता है, पर अंगूर के बगीचे के अंदर लाइट ट्रैप नहीं लगाया जाता, अंगूर के बगीचे से 15 से 20 फीट दूर उसको लगाया जाता है, ताकि जो कीट है अंगूर के बगीचे के, वो बगीचे से बाहर चले जाए और लाइट ट्रैप में जाके मर जाए। अगर लाइट ट्रैप को हम बगीचे के अंदर लगाएंगे तो क्या समस्या हो सकती है कि जो लाइट ट्रैप है उसके आसपास के जो पौधे हैं उनके ऊपर में कैटरपिलर का ज्यादा अटैक हो सकता है, क्योंकि वहां पतंग ज्यादा आएंगे, उस पर अंडे ज्यादा देंगे
3: जी,
4: और उसके ऊपर में आसपास में पौधे हैं वो ज्यादा ग्रसित हो सकते हैं पौधे, तो इसलिए हम कहते हैं कि आप बगीचे के बाहर ले जाके लाइट ट्रैप को लगाएं, उससे दूर रखें। और बाकी फसलों में एक और चीज होती है कि जो लाइट ट्रैप है वो फसल से ऊपर लगाया जाता है, पर अंगूर के अंदर में क्या होता है कि जमीन से 1 या 2 फीट ऊपर लाइट को लगाया जाता है, तो ये जो मुख्य बातें ध्यान देनी है हमको। और साथ ही साथ जो बायोजेंट्स हैं जो उनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं, एक न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस आता है जो स्पोडोप्टेरा के लिए, जो बारिश के मौसम में बहुत अच्छे तरीके से इसमें काम करता है, तो उसका प्रयोग हम कर सकते हैं।
5: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का, कहीं मत जाएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया भील 90.8 FM के साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: ब्रेक के बाद पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान भाइयों खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आइए चर्चा करते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर।
2: जी हाँ, जो नर्सरी, देखिए नर्सरी का जो प्रबंधन होता है, जो भी हमारी पूरी फसल प्रबंधन है, उसका आधार जो होता है बीज, और बीज से जो हमारी उगाई हुई नर्सरी होती है। और जैसा मैं बार बार किसान भाइयों को बता रहा हूँ कि जब नर्सरी में अगर हम पौधों को अगर हम स्वस्थ रखेंगे, नर्सरी में दो प्रकार की समस्याएं आती हैं। एक होती है जो मृदा जनित जो रोग होते हैं, यानी जहाँ पे हम नर्सरी उगाते हैं कुछ उनके जो रोगों के जो स्पोर्स होते हैं वो पहले से मृदा में या मिट्टी में रहते हैं। अभी हाल ही में जैसे गर्मी का मौसम खत्म हुआ है और जो किसान भाई जागरूक हैं वो सॉइल सोलराइजेशन इसको जानते हैं, यानी जिस एरिया में हम नर्सरी लगाते हैं वहाँ की मिट्टी को हम सौर ऊर्जा की मदद से हम उसको स्टरलाइज कर सकते हैं, यानी रोग और कीटाणु के जो स्पोर्स हैं उनसे हम उनको मुक्त कर सकते हैं। पहली चीज मैं इस पर थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जब भी गर्मी का मौसम था उसमें अगर हम सफेद रंग की पॉलीथीन से जिस एरिया में हम नर्सरी बनाते हैं उसको सीधा हमको पहले उसकी जुताई कर लेनी है और उसके बाद उसमें पानी डाल देना है, और उसके बाद कम से कम 400 गेज की जो सफेद रंग की पॉलीथीन है उससे उसको हम अगर ढक देते हैं और चारों किनारे से फिर मिट्टी डाल देते हैं तो अंदर का जो तापमान होगा वो काफी बढ़ जाएगा। और ऐसा अगर हम 30-35 दिन तक रखते हैं, ये बिना किसी खर्चे के है, मैं इसलिए आपको ये भी बता रहा हूं, ये जैविक तरीका भी है, आप कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और अगर आप ऐसा करके, अगर जो किसान भाई ऐसा रखते हैं, अगर 15-20 दिन तक अगर हम ऐसा रखें तो उसके अंदर के जो भी स्पोर्स हैं जो पिछले सालों के या और भी किसी जो जैसे सॉइल में हमारा डाइथेन, ये हमारी जो बीमारियां होती हैं जिसके लिए हम कीटनाशक का प्रयोग करते हैं या हम फंजीसाइड का प्रयोग करते हैं, वो हमें नहीं करना पड़ेगा। और जो भी इस प्रकार की बीमारी आती है जो हमारी नर्सरी में, खास करके जो विल्टिंग की प्रॉब्लम आती है, डैम्पिंग ऑफ एक मेजर समस्या है, ये सब सारी समस्याएं उसमें खत्म हो सकती हैं। इसी प्रकार जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें वायरस जनित बीमारियां हैं, इनके जो बाहक कीट होते हैं उनके भी कुछ अंडे उसमें अगर हैं तो वो खत्म हो सकते हैं। और इसमें हमारा कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा है, मिट्टी की जो मृदा की जो सेहत है वो भी इससे अच्छी होगी। पहली चीज हमें ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज, चूंकि ये बारिश का मौसम है तो हमेशा नर्सरी जिस एरिया में हम बनाते हैं वो मिट्टी बिल्कुल ऊंची होनी चाहिए, यानी वहां के पानी की निकासी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, वहां फुल धूप लगनी चाहिए। कई बार किसान भाइयों को ये लगता है कि अगर हम थोड़ी छांव में, चूंकि गर्मी बहुत है, अगर हम थोड़ी छांव में अगर हम नर्सरी उगाएंगे तो अच्छी बनेगी, लेकिन यहां आपको ध्यान देना है कि नर्सरी के एरिया में कभी भी पेड़ पौधों के नीचे नहीं उगाना चाहिए, क्योंकि अगर प्रकाश कम आएगी तो जो उसके जो जड़ कम बनेंगे और पौधा ऊपर की तरफ अधिक बनेगा। जबकि हमें नर्सरी में ये ध्यान रखना है कि नर्सरी में हमें ऐसी वातावरण बनाना है जिससे पौधा का जितना विकास ऊपर की तरह हो उतना ही विकास उसका जड़ों का नीचे की तरह हो। अगर आपके नर्सरी के पौधे ऐसे बनते हैं जिनकी जड़ जितनी लंबी होती है, तना भी अगर उतना ही लंबा होता है, ये नर्सरी आपकी सबसे अच्छी मानी जाती है। तो आपको ऊंचे जमीन पे बनाना है, फिर हमको करना है कि करीब 1 से 1.5 फुट की चौड़ाई की हम, और कम से कम 15 सेंटीमीटर ऊंची और हल्का, जिसमें दोनों किनारों पे भी ढाल दे के हम 1.5 मीटर या 2 मीटर लंबी हम क्यारी बना सकते हैं। और क्यारी के ऊपर जब भी हम, अगर चूंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जैसे ट्राइकोडर्मा है, तो ट्राइकोडर्मा अगर गोबर की खाद में अगर हम ट्राइकोडर्मा मिला के जिसका अगर हम नर्सरी में अगर हम उपयोग करेंगे तो बाकी भी अगर कोई जो मृदा जनित बीमारी है उसको भी हम नियंत्रण कर सकते हैं। इसके बाद एक चीज का और मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूंगा, चूंकि इस मौसम में हम बार बार वायरस की समस्या को हम बात कर रहे हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं, और हमें यह भी पता है कि उसके लिए कोई कंट्रोल नहीं होता। जब वायरस एक बार लग जाता है पौधे पे, हमको उखाड़ के ही उसको खत्म करना पड़ता है या पौधे को मिट्टी में गाड़ना पड़ता है, यही एक नियंत्रण है। लेकिन उससे पहले अगर हम नियंत्रित करें, नर्सरी में आमतौर पर हमारे 35 से 40 दिन तक हमारी फसल जो होती है वो नर्सरी में होती है। इस दौरान अगर हम इसको कीट से अगर हम बचाने के लिए, जैसे हम अपने आप को कीट से बचाने के लिए हम मच्छरदानी या हम लगाते हैं रातों को सोने के लिए, इसी प्रकार अगर हम नेट हाउस का अगर हम प्रयोग करें, यानी जिस एरिया में अगर हम नर्सरी बना रहे हैं वहां हम कम कम पैसे में है, अगर उसको हम कीट अवरोधी जाल होता है 40 मेस की या 50 मेस की, अगर उसके अंदर अगर हम नर्सरी तैयार खास करके करते हैं तो 35 से 40 दिन तक जो आपके पौधे होंगे वो बिल्कुल स्वस्थ होंगे, उसमें किसी प्रकार की वायरस से उसको हम मुक्त रख सकते हैं। उसके बाद जब हम खुले खेत में लाएंगे तो उसमें हम कुछ उपचार करके फिर हम चाहेंगे कि खेत में भी वो पौधा हमारा स्वस्थ रहे। इन चीजों का अगर हम ध्यान रखें तो हम अच्छी नर्सरी से हम स्वस्थ पौधे हम बना सकते हैं और कम खर्चे में और बिना किसी रसायन के उपयोग के भी हम अच्छी नर्सरी तैयार कर सकते हैं।
3: तो स्वस्थ नर्सरी तैयार हो ये प्राथमिकता होनी चाहिए, तभी जो अच्छी उपज है उसकी उम्मीद की जा सकती है। उसके लिए कई बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, जैसे कि ऊंची उठी जमीन पर बनाए और इसके साथ ही वहां पर जो धूप है वो पूरी तरह से पहुंच सके इसका इंतजाम करना बेहद जरूरी है, ताकि जो जड़ है उसका विकास अच्छी तरह से हो सके और जल जमाव न हो इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। बहरहाल यहां पर आगे बढ़ते हैं और अगले मेहमान का रुख कर लेते हैं और अंगूर के बागों में कीट प्रबंधन के बारे में आइए जानते हैं। डॉक्टर यादव बताएं हमें कि और किस तरह के कीटों का प्रकोप इस मौसम में हो सकता है अंगूर के बागों में, जैसे मिलीबग का भी प्रकोप कई बार होता है, किस तरह से इससे बचाव किया जा सकता है।
4: मिलीबग जो है कीट, ये क्या करता है कि जड़ों के अलावा जो भी अंगूर के अंदर में ऊपरी भाग है उसमें कहीं भी रस चूस सकता है, जहां भी फ्लोएम है वहां पर रस चूसेगा और जो ऊर्जा पौधे को मिलनी चाहिए थी वो खाना जो पौधे को भी यूज होना था वो मिलीबग देता है और पौधा काफी कमजोर हो जाता है।
3: जी जी,
4: जब फल का मौसम होता है जब अंगूर लग रहे होते हैं तो फलों पर काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है मिलीबग का, पर ये अभी फल का मौसम नहीं है, अभी ऑफ सीजन है। तो इस समय मिलीबग क्या नुकसान कर सकता है कि गर्मी के मौसम में जैसे अप्रैल या मई में काफी ज्यादा गर्मी पड़ी तो मिलीबग एक बार ज्यादा तापमान की वजह से कम हो जाता है, पर जैसे ही जून जुलाई का मौसम होता है बारिश शुरू हो जाती है तो एकदम से बिल्कुल सही मौसम मिलता है मिलीबग को वृद्धि करने के लिए, तेजी से बढ़ने के लिए, और मिलीबग काफी ज्यादा संख्या के अंदर में बढ़ जाता है। तो किसान कई बार काफी चिंतित हो जाते हैं कि इतना ज्यादा मिलीबग आ गया मैं क्या करूं, और कई सारे जो रसायन है उनका प्रयोग करते हैं बगीचों के अंदर में, पर मिलीबग एक ऐसा कीट है जितना हम ज्यादा रसायन यूज करेंगे, जितने कीटनाशक ज्यादा यूज करेंगे उतनी आने वाले टाइम में आने वाले समय में इसकी समस्या बढ़ती जाएगी। और बारिश के मौसम में मिलीबग का हमारा अनुभव ये है कि अगर हम बारिश के मौसम में जैसे मिलीबग काफी तेजी से बढ़ता है और ऑफ सीजन के अंदर में ज्यादा नुकसान अंगूर के अंदर में ये नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि ज्यादातर वृद्धि हमको अंगूर के पौधे की चाहिए होती थी उतनी हो जाती है तब तक, तो जो मुख्य तना है उसके ऊपर में हमको ज्यादातर जो मिलीबग है उसका प्रादुर्भाव दिखाई देता है। वहां पर अगर हम एक से डेढ़ महीने तक कुछ भी ना करें, कोई भी रसायन का प्रयोग ना करें और उसको मिलीबग को वैसा का वैसा छोड़ दें तो मिलीबग अपने आप से कंट्रोल हो जाएगा, अपने आप से उसका नियंत्रण हो जाएगा। जो सही मौसम मिला है मिलीबग को वृद्धि करने के लिए वो सही मौसम उसके जो मित्र कीट है उनको भी मिला है, तो वो मित्र कीट है उनको बढ़ने के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम चाहिए, एक डेढ़ महीने में अगर छोड़ देते हैं वैसे तो मिलीबग काफी अच्छे तरीके से अपने आप से नियंत्रित हो जाएगा। पर जो किसान नियंत्रित जल्दी करना चाहते हैं और ज्यादा चिंतित है वो क्या कर सकते हैं, बहुत सारे जो मित्र हमारे जो बायो एजेंट्स हैं उनका जैव नियंत्रण के लिए जो एजेंट्स होते हैं जैसे मेटारिजियम एक है फंगस है फफूंद है जो कि कीटों को काफी अच्छे तरीके से नियंत्रित करती है, तो उसका प्रयोग आप मुख्य तने को धोने के लिए कर सकते हैं इस तरीके से, तो आप मिलीबग कंट्रोल कर सकते हैं।
3: बिल्कुल, तो मिलीबग को भी कंट्रोल नियंत्रित में किया जा सकता है और उपाय आपके सामने है। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर चौधरी आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने बताया कि कई तरह के रोगों का प्रकोप हो सकता है फसल में और ऐसे में जो बीज है अगर उसके स्तर पर ही कुछ उपाय कर लिए जाए तो कई रोगों से बचाव पहले ही हो सकता है, तो ऐसे में बीजोपचार की कितनी महत्ता बढ़ जाती है और बैंगन मिर्च टमाटर के मामले में किस तरह से बीजोपचार करना चाहिए।
2: जी हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि कुछ बातों का ध्यान अगर हम जिस समय हम बीज हम लेते हैं पहली चीज जैसे है जब हम बीज का चुनाव करते हैं जैसे मैं बताया भी तो प्रजातियों के चुनाव में हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई बीमारी है तो उसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम जो बीज हम लाते हैं खरीद के उसको हम अगर हम ट्राइकोडर्मा से हम अगर अगर हम जैविक तरीके से अपनाना चाहते हैं तो हम ट्राइकोडर्मा 4-5 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से हम बीजोपचार हम कर सकते हैं। इससे हमें खास करके जो फफूंद जनित जो बीमारियां होती हैं उनको नियंत्रण करने में मदद मिलती है। अगर हमारे पास अगर वो नहीं उपलब्ध है तो अगर हम रासायनिक विधि से करना चाहते हैं तो जैसे कार्बेंडाजिम है या कैप्टान है या थीरम है, इनसे हम 2-3 ग्राम प्रति केजी बीज में इनसे भी हम उपचारित करके इनको हम नर्सरी में लगा सकते हैं। तो इससे बहुत हद तक जो हमारी फफूंद जनित बीमारियां हैं, जैसे अगर हम बैगन की बात करें, बैगन में कुछ बीमारी आती है जैसे फोमोप्सिस है, फोमोप्सिस ब्लाइट काफी भयंकर बीमारी होती है, ये खास करके ये बीज से ही जाता है। अच्छा। जैसे अगर बैगन का अगर जब हम बीज लेते हैं तो अगर कोई पौधा जिसमें फोमोप्सिस है यानी गला हुआ फल होता है उससे अगर हम बीज लेते हैं तो बीज वहां इन्फेक्टेड होता है और ये बीज फिर अगले पौधे में जा सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ अगर हम बीजोपचार अगर हम कर लेते हैं तो इसकी संभावना कम होती है। इसके साथ साथ एक दो चीजों मैं और बताना चाहूंगा कि बीजोपचार के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो अगर किसान भाई बिल्कुल जहां फसल लगा रहे हैं उसी समय से अगर उसका ध्यान रखें तो हमें दवा का प्रयोग कम करना पड़ेगा। जैसे अगर हम बैगन लगाएं या मिर्च लगाएं या टमाटर लगाएं, मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें इस मौसम में वायरस जनित बीमारियां आती हैं और इसके बाहर खास करके सफेद मक्खी होती हैं और कुछ जो थ्रिप्स वाली जो बीमारियां हैं वो भी जैसे मिर्च में भी आती हैं। इनके लिए जैसे जिस खेत में आपको लगाना है उससे अगर 15-20 दिन पहले अगर उसके बॉर्डर पे अगर हम मक्का की अगर हम 3-4 लाइन लगा लें या जो सोरघम होता है वो ज्वार होता है अगर उसकी अगर हम 3-4 लाइन अगर हम पहले से लगा के रखते हैं तो जब हम खेत में हम पौध अपना हम लगाएंगे ट्रांसप्लांट करेंगे उससे पहले वो पौधे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो अगर कोई सफेद मक्खी या बाकी कीड़े आते हैं तो उनके पत्तों में आप देखते हैं कि रेशे होते हैं उस पे वो चिपक जाते हैं। जिस प्रकार से हम लोग अपने लिए मास्क का प्रयोग करते हैं कोरोना से बचाने के लिए उसी प्रकार हमको पौधों को भी जो बॉर्डर क्रॉप्स इनको हम कहते हैं या कैच क्रॉप्स कहते हैं या ट्रैप क्रॉप्स कहते हैं कि जो इसके जो नुकसानदायक जो कीटाणु हैं उनको वो ट्रैप कर लेते हैं। जैसे अगर टमाटर में जो किसान भाई लगाते हैं टमाटर में या बैगन में भी निमेटोड की एक समस्या होती है, इसलिए जब हम अगर हम बैगन या टमाटर की जब हम नर्सरी तैयार करते हैं उसी समय में अगर हम थोड़ी गेंदा जो होता है जो गेंदा का फूल होता है उसकी भी हमें थोड़ी नर्सरी तैयार कर लेनी चाहिए और टमाटर के 10-15 लाइन के पंक्तियों के बीच में एक पंक्ति अगर हम गेंदा फूल की भी अगर हम लगा देते हैं तो उसमें टमाटर ये इसमें निमेटोड की भी समस्या कम होगी और खास करके जो कुछ फल छेदक जो कीड़े होते हैं उसकी भी समस्या कम होती है। तो इस प्रकार हमको जब नर्सरी प्रबंधन करें वहीं से हमको ये सोच रखना है कि हमें कम रसायन का उपयोग करना है जिससे कि जो हमारा उत्पाद होगा वो भी स्वस्थ और सुरक्षित होगा।
3: बिल्कुल, इसलिए उचित है कि इन बातों का ध्यान शुरुआत में ही रख लिया जाए कि किस तरह से रोगों की आशंका हो सकती है और कम से कम रसायन में अच्छी गुणवत्ता युक्त जो फसल है वो आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर यादव, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अंगूर के बागों में हम देखते हैं कि कई बार लीफ हॉपर या बीटल जैसे कीटों का भी आक्रमण हो जाता है, इससे फसल को कितना नुकसान होता है और इससे बचाव के लिए अगर कुछ उपाय आप बता सकें हमें।
4: कीटक हैं जो कीट हैं जिनकी आपने बात की कि लीफ हॉपर और जो चाफर बीटल है वो
3: जी।
4: लीफ हॉपर पत्तों के नीचे से रस चूसता है पत्तों का और पत्ते मुड़े तुड़े हो जाते हैं और ज्यादा उसका प्रादुर्भाव हो जाए तो लीफ बर्न भी कई बार हो जाता है। पत्ते मुड़े तुड़े हो जाएंगे तो जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया वो पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी। लीफ हॉपर से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जैसे लाइट ट्रैप हमने बताया था कि जो कैटरपिलर के लिए हम बताते हैं कि बगीचों के बाहर लगाइए तो वो भी काफी अच्छे तरीके से काम करता है। लीफ हॉपर लाइट ट्रैप में काफी अच्छे मात्रा में मिलते हैं हमें और उसका नियंत्रण कर सकते हैं। फिर लीफ हॉपर के लिए जो मुख्य है उसको नियंत्रण करने के लिए वो है कीटनाशकों का प्रयोग। लीफ हॉपर कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टेमिक कीटनाशक हैं, जो अंतरप्रवाही कीटनाशक हैं, जो कि अंगूर में प्रयोग करने के लिए रजिस्टर्ड हैं भारत देश के अंदर में, उनका प्रयोग किसान कर सकते हैं। एक खास चीज लीफ हॉपर के बारे में ध्यान रखने की ये है कि अंगूर के अंदर में हमने जो अनुसंधान किया उसमें हमने ये पाया कि शाम के समय अंगूर के जो पत्ते होते हैं उनपे जो लीफ हॉपर है वो ज्यादा मात्रा में हमें मिलता है दिन की बजाय। तो अगर हम जो पेस्ट जो कीटनाशक का प्रयोग है अगर हम शाम रात के टाइम में करेंगे उस समय करेंगे तो हमको ज्यादा अच्छा उसका नियंत्रण मिलेगा। एक और चीज है कि जैसे कि मैंने बताया कि लीफ हॉपर पे लाइट ट्रैप के द्वारा उसको हम नियंत्रण कर सकते हैं। लीफ हॉपर प्रकाश की तरफ आकर्षित होते हैं, जो सफेद रंग का प्रकाश है उसकी तरफ में वो ज्यादा अच्छे तरीके से आकर्षित होते हैं। अगर जो किसान भाई हैं रात के समय फवारणी करने जा रहे हैं कीटनाशक की, अगर वो ट्रैक्टर के पीछे की तरफ में जहाँ पे हमारा स्प्रेयर होता है वहां पे अगर सफेद रंग का ज्यादा वाट का बल्ब लगा ले तो क्या होगा कि वो बल्ब की वजह से जितने भी लीफ ऊपर है वो उसके पास में आकर्षित होंगे और जहां पे हमारा फवारणी जा रहा है जहां पे हमारा स्प्रे जा रहा है उसके पास में जाके इकट्ठे हो जाएंगे और जो हमारा लाइट के पास में लीफ ऊपर है और साथ में हमारा जो स्प्रे है वो जा रहा है तो इमीडिएटली उसके कॉन्टेक्ट में आएंगे और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा जो है इसको कंट्रोल करने में। जो कीटनाशक है जो आप प्रयोग कर रहे हैं रात के समय कीजिए और ट्रैक्टर के पीछे की तरफ एक सफेद रंग का बल्ब लगा के रखिए तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा नियंत्रण लीफ ऊपर का दिखाई देगा।
3: बिल्कुल।
4: दूसरा जो कीटक है जिसकी बात की आपने चाफर बीटल, चाफर बीटल बारिश जब शुरू होती है तब बाहर निकलता है और काफी कम समय तक ये बगीचों के अंदर में रहता है। चाफर बीटल का जो ग्रब होता है वो जमीन के अंदर रहता है जिसको हम पाइक ग्रब कहते हैं जो कि गन्ना या दूसरे अन्य फसलों के अंदर में सब्जियों में मूंगफली में भी नुकसान पहुंचाता है तो इसका जो व्यस्त अवस्था होती है वो चाफर बीटल का है। ये क्या करेगा कि जमीन से बाहर निकलेगा, अंगूर के अंदर में व्हाइट ग्रब की समस्या नहीं पाई जाती पर आसपास के खेतों से वो आ सकता है और वो क्या करेगा बाहर निकलने के बाद बारिश के बाद में किसी बड़े पेड़ के ऊपर में जाके बैठने की कोशिश करेगा। तो आपके अंगूर के बगीचे के पास में अगर बड़ा पेड़ है तो उसके नीचे के अंगूर के पौधे आप देखेंगे तो उनमें आपको ज्यादा नुकसान दिखाई देगा। फिर दूसरा कि जो सीमा के ऊपर में बॉर्डर लाइन के ऊपर में जो पौधे हैं अंगूर का उसके ऊपर में आपको ज्यादा नुकसान दिखाई देगा। तो ऐसे पौधों को रात के समय, चाकर बीटल रात के समय निकलेगा दिन के समय छुपा हुआ रहेगा तो रात के समय जाके देखिए आपको सैकड़ों की संख्या में पौधों के ऊपर में बैठे हुए दिखाई जाएंगे। और क्या होता है कि किसान आजकल जो सोशल मीडिया उनके माध्यम से वीडियो और उनके फोटो डालते हैं तो बाकी किसान भी चिंतित हो जाते हैं कि इतनी ज्यादा मात्रा के अंदर उनके बगीचों के अंदर में चाकर बीटल है। चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये एक ऐसा कीटक है जिसको बहुत ही आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। रात के समय जब चाकर बीटल के पौधों के ऊपर बैठा हुआ है तो उसी समय हमको उसी टाइम में फवारणी करनी है हमको लैम्डासाइलोथ्रिन जो 4.9 सीएस का जो फॉर्मुलेशन है आधा मिली एक लीटर पानी के हिसाब से अगर पत्तों के ऊपर फवारणी करेंगे तो सुबह के समय आप देखेंगे, रात के समय फवारणी करेंगे सुबह के समय आप देखेंगे जितने भी चाफर बीटल आपके पौधों में बैठे हुए थे आपको नीचे मरे हुए दिखाई देंगे। तो बहुत अच्छा।
1: किसान साथियों अभी आपने कृषि एक्सपर्ट से जैसे कि सुना हमें मेहनत करनी है लेकिन उसे सही दिशा में करने की आवश्यकता है। हम दवाइयाँ हमारे खेतों में बहुत डालते हैं लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते हैं कि कौन से समय में डालना उचित होता है और कौन से समय में नहीं। यहाँ पर जैसे कि हमने कृषि एक्सपर्ट से सुना रात के समय में हमें इस दवाई का प्रयोग करने से और उसी के साथ हमें जो सफ़ेद कलर का जो प्रकाश है उससे जो कीट है वो आकर्षित होते हैं और वहीं पर हमें हमारी दवाई का छिड़काव करना चाहिए जिससे क्या होगा हमें कम मेहनत पे अधिक रिजल्ट मिल पाएगा। जो सफ़ेद प्रकाश है वह उससे कीट है वो आकर्षित होता है और वही उसी जगह पे जब हम दवाई का छिड़काव करेंगे तो हमें पूरा ज़्यादा एरिया वहाँ कवर करने की ज़रूरत नहीं है, हम उस सफ़ेद प्रकाश के मदद से अधिक कीटों को सफ़ेद प्रकाश अपनी तरफ आकर्षित करेगा और वहीं पर हमें हमारी दवाई का छिड़काव करना चाहिए जिससे हमें अधिक फायदा होगा और वहाँ हमारी लागत भी बचेगी साथ ही हम हमारा समय बचा सकेंगे और एक बेहतर रिजल्ट हमें मिल सकेगा। किसान साथियों इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटा भील 90.8 FM के साथ खेती बाड़ी कार्यक्रम में।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटा भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है किसान साथियों आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, आपने अंगूर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना, साथ ही आपने मिर्ची, टमाटर और बैंगन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। इसे यहाँ पर किसान साथियों वक्त है कि हम एक किसान भाई का एक सवाल लेते हैं, जिन्होंने हमें आग्रह किया था कि उनके जो मिर्ची के पौधे हैं उसमें फूल तो आते हैं लेकिन वो फूल जल्दी ही झड़ जाते हैं, तो इसका क्या कारण है, यह क्यों होता है और इसका क्या समाधान हो सकता है, तो आइए जानते हैं और लेते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट की राय।
2: देखिए, सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि जब भी इस प्रकार की समस्या होती है तो हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसा क्यों होता है।
3: जी,
2: जैसे मैं अभी बार बार बात भी कर रहा था, कोई भी जो फसल होती है, चाहे टमाटर है, मिर्च में है, इसका एक नियमित तापमान होता है, उसी तापमान पे इसमें फल लगेगा। जैसे आप हर बार देखते हैं कि जो ही उत्तर भारतीय मैदानी इलाके में जून के अंतिम सप्ताह और जुलाई में टमाटर की कीमत आसमान छूने लगती है। क्यों होता है ऐसा? कि जो ही तापमान अगर 24-25 डिग्री से, खास करके रात का तापमान अगर 24 डिग्री से ऊपर होता है तो टमाटर में फल लगना बंद हो जाता है। इसी प्रकार मिर्च में भी है कि मिर्च में भी अगर रात का तापमान अगर 25-26 डिग्री से अगर ज्यादा होने लगता है तो उस समय में मिर्च में भी फल लगना बंद हो जाता है। कई किसान भाई ये सोचते हैं, अच्छी बात है कि हम अगर बेमौसम का उगाएंगे तो हम अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि इस कारण से ये समस्याएं होती हैं। जब तापमान बहुत कम होता है तब भी उसमें फलन बंद हो जाता है, और जब तापमान बहुत अधिक होता है और खास करके ये जो रात का तापमान होता है यानी मिनिमम टेम्परेचर, तो उसमें फल लगने में समस्या होती है। लेकिन आप कर क्या सकते हैं, कुछ ऐसे उपाय हैं, जैसे एक प्लानो फिक्स करके आता है, कुछ जो ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं इनका अगर आप छिड़काव करते हैं तो कुछ हद तक आप इसमें फलन जो है वो प्रारंभ इसमें हो सकता है। लेकिन जैसे बारिश हो गई है और मौसम का तापमान धीरे धीरे कम हो रहा है तो मिर्च में ये समस्या जो है धीरे धीरे फिर खुद ही खत्म हो जाएगी।
3: बिल्कुल डॉक्टर चौधरी, यहाँ पर मिर्च की हम बात कर रहे हैं तो जानना चाहेंगे कि इस समय मिर्च की खेती जो किसान करना चाहते हैं उन्हें किस तरह की किस्मों का चुनाव करना चाहिए।
2: जी हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके आजकल बहुत सारे किसान हैं जो हरी मिर्च के लिए खेती करते हैं।
3: जी,
2: और जो भी उनको प्रजातियां हरी मिर्च के लिए, बहुत सारी ज्यादा प्रजातियां उपलब्ध नहीं हो पाती हैं अगर हम खास करके जो हमारे सरकारी संस्थानों से, और इसमें लेकिन हमको अगर ऐसी प्रजाति अगर हमें मिलती है जिसमें जो लीफ कर्ल वायरस है इसके प्रति अगर प्रतिरोधक क्षमता है, जैसा अगर आपने भी दिखाया, और हमारे पूसा संस्थान की एक प्रजाति है पूसा सदाबहार, तो इसका आप चयन कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रजाति होती है ऊपर की तरह गुच्छे में फलती है तो इसकी लंबाई थोड़ी कम होती है। आमतौर पे किसानों की ये भी डिमांड होती है कि अगर लंबाई थोड़ी अधिक हो तो कुछ जगह उसकी कीमत अधिक मिलती है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि जो उसमें तीखापन होता है, आजकल मार्केट में जिस मिर्च में तीखापन अधिक होता है उसकी डिमांड अधिक होती है, तो ये जो पूसा सदाबहार है इसमें तीखापन काफी अधिक है जिस कारण से मार्केट में इसकी कीमत आपको अधिक मिल सकती है। इसी प्रकार हमारा जो भारतीय सब्जी विज्ञान अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है उनकी भी कई प्रजातियां, जैसे काशी अनमोल एक अच्छी प्रजाति है जो हरी मिर्च की हम बात करें, जो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान है उनकी भी, जो खास करके जो दक्षिण भारतीय जो राज्य है वहां से उनकी प्रजातियां ले सकते हैं, या जो हमारा पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनकी कुछ हाइब्रिड प्रजातियां भी हैं, जैसे CH1 CH3, ये काफी पॉपुलर प्रजातियां हैं, इनका आप चयन कर सकते हैं।
3: बिल्कुल, तो मौसम के अनुसार, इसके अलावा क्षेत्र के अनुसार और किस तरह की आपके नजदीक में बाजार की स्थिति है, वहां पर मांग किस तरह की निकल रही है, उन तमाम बातों का ध्यान रखना होता है जब आप किस्मों का चुनाव करते हैं। बहरहाल यहां पर आगे बढ़ते हैं और अगले मेहमान का रुख करते हैं। डॉक्टर यादव, आपसे जानना चाहेंगे कि अंगूर में कीटों के बारे में हमने यहां पर बात की और कई तरह के कीटों से बचाव के उपाय भी आपने बताए, कुछ और बताएं कि इस मौसम में और किस तरह के कीट है जिनका प्रकोप हो सकता है।
4: पिछले कुछ सालों से अंगूर में एक लाल रंग का तना छेदक है, उसका काफी ज्यादा आक्रमण होता जा रहा है और ज्यादातर भागों में, पहले मैं महाराष्ट्र में मिला था, अभी कर्नाटक में भी उसको हम काफी मात्रा में मिल रहे थे। लाल रंग का जो तना छेदक है ये अंगूर का कीट नहीं था, ये मुख्यतः जंगल का कीट था जो कि अभी अंगूर के अंदर में नुकसान पहुंचाना उसने शुरू कर दिया। नुकसान पहुंचाने का इसका तरीका क्या है कि जुलाई और अगस्त के महीने में लाल रंग का एक जो कैटरपिलर टाइप का जो होगा वो छाल के नीचे खोले के हमको खाता हुआ दिखाई देगा
3: जी।
4: एक जाल बनाएगा और विष्ठा होगी उसकी, वो ही छाल के नीचे ही उसका चिपका हुआ हमको दिखाई देगा। चूंकि ये छाल के नीचे खा रहा है, हमको पता नहीं चलेगा कि ये हमारे बगीचे में इसका आक्रमण हो चुका है। दो महीने तक ये छाल के नीचे खाएगा और उसके बाद में ये तने के अंदर जाके वहां पर खाना शुरू कर देगा। एक बार अगर वो तने के अंदर चला गया तो इसको किसी भी प्रकार से नियंत्रित नहीं किया जा सकता
3: जी।
4: कोई भी कीटकनाशक है जो इसके ऊपर में काम नहीं करेगा, एक बार अंदर चला गया तो कोई भी तरीका नहीं है इसे हम कंट्रोल कर पाए। तो हमारे लिए जो जुलाई और अगस्त का महीना है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि लाल रंग का जो तनाछेदक है उसको हम कंट्रोल करें, उसको नियंत्रित करें
3: जी।
4: करने का तरीका क्या है इसका कंट्रोल करने का, कि अगर हम बगीचे के अंदर में छाल है जो ढीला छाल है पौधे में, पुराने पौधे होते हैं ढीला छाल हो जाता है, उसको निकाल दे तो ज्यादातर कीट ये जो है उसी से ही नियंत्रित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस जो कीट की एक आदत होती है कि अगर हम उसको छेड़ेंगे तो वो नीचे गिर जाएगा। नीचे गिरने के बाद में खेत में अन्य तरीके के बहुत से मित्र पशु होते हैं जैसे लिजार्ड्स होते हैं और भी बाकी तरह के होते हैं, वो उसको खा जाते हैं। तो ज्यादातर उसी में ही हमको नियंत्रण मिल जाएगा कि जुलाई और अगस्त के महीने में अगर इस कीट का प्रादुर्भाव है बगीचे में तो हम क्या करेंगे कि ढीला छाल है उसको निकाल देंगे। फिर उसके बाद में हम एक जो हमारा बायोलॉजिकल फंगस है बायोलॉजिकल कंट्रोल वाला जिसका नाम है मेटारिजियम, उसका क्या करेंगे कि 2.5 मिली 1 लीटर पानी के हिसाब से सिर्फ मुख्य तना और जो कॉर्डोन से अंगूर के उसको हमको धोना है छाल निकालने के बाद में 10 से 15 दिन बाद में उसको फिर से हम एक बार और एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा नियंत्रण हमको इसका मिल जाता है। काफी ही खतरनाक कीटक है, सिर्फ जुलाई और अगस्त का महीना है जिसमें हमको इसके लिए काम करना है, इसको नियंत्रण करना है। और इस समय जो किसान भाई और बहन है वो सचेत रहें कि आपके बगीचों में जाके देखें छाल के नीचे लाल रंग का कोई कीटक तो नहीं है, कोई कीट तो नहीं है जो कि आपको खा रहा है अंगूर के अंदर में, अगर है तो उसको उसी टाइम में उसका नियंत्रण कर लीजिए। क्योंकि एक बार ये 2 महीने चले गए फिर हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और इससे होने वाला जो नुकसान है वो काफी ही ज्यादा घातक होता है अंगूर के बगीचों के लिए और अंगूर की उत्पादकता काफी कम हो जाती है।
3: जी, ऐसे में बागों की लगातार निगरानी करना बेहद जरूरी है ताकि समय रहते अगर कीट आपको नजर आ रहे हैं तो उनसे बचाव के जो उपाय है वो जल्द से जल्द अपनाए जा सके। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर चौधरी अब आपसे जानना चाहेंगे बैंगन की कुछ अच्छी किस्मों के बारे में, क्योंकि हम देखते हैं कि बैंगन के आकार को लेकर, रंग को लेकर, बीजों के बारे में भी आपने बताया कितने तरह के विकल्प जो है वो किसानों के पास होते हैं, ऐसे में किन किस्मों को उन्हें चुनना चाहिए?
2: जी, आपने बिल्कुल सही कहा है, किसान भाई भी इन बातों का ध्यान रख के ही प्रजातियों का चयन करें। जैसे बैंगन में आम तौर पे जो सबसे जो पॉपुलर प्रजातियां होती हैं वो जो बैगनी रंग का बैंगन होता है और उसमें जो लंबी प्रजाति अगर कोई किसान भाई लेना चाहते हैं तो हमारे संस्थान की जैसे पूसा श्यामला है, पूसा कौशल है, कुछ हाइब्रिड प्रजातियां अभी आई हैं, पूसा हाइब्रिड 20 है, इनका आप चयन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे गोल प्रजाति जो है, खास करके जो लोग भरता बनाते हैं तो लंबा बैंगन में बीज अधिक होता है, गोल बैंगन में आमतौर पर बीज कम होता है, तो जो भरता के लिए लोग गोल बैगन पसंद करते हैं तो उसमें आप पूसा उत्तम ले सकते हैं। हमारे यहाँ के पूसा हाइब्रिड 9 है, जो हमारा वाराणसी का सेंटर है उसकी काशी संदेश है, इनका आप चयन कर सकते हैं। जब आपने रंगों की बात की, जैसे आजकल हरे रंग का बैगन है
3: जी,
2: वो भी काफी पॉपुलर हो रहा है। हमारे संस्थान के यहाँ से भी पूसा हरा बैगन 1 विकसित किया गया है तो इसका चयन किया जा सकता है। इसके साथ साथ आजकल सफेद रंग का बैगन जो है, और कुछ बैगन ऐसे भी हैं जो बिल्कुल देखने में, बैगन को अंग्रेजी में हम एग प्लांट कहते हैं, जो देखने में बैगन बिल्कुल अंडे की तरह होता है, तो ऐसा भी अगर बैगन आप लेना चाहते हैं तो हमारे संस्थान की एक प्रजाति है पूसा सफेद बैगन 2 और 1 है पूसा सफेद बैगन 1, तो इनका भी आप चयन कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे बहुत सारी और भी प्रजातियां हैं, हमारे संस्थान की भी पूसा अंकुर है, जो महाराष्ट्र के लिए जो मैं बात कर रहा था, जो वेरीगेटेड बैगन होता है उसमें आप पूसा बिंदु है, इनका आप चयन, जो छोटा बैगन होता है लेकिन इसमें बीज थोड़ा अधिक होता है, इसलिए जब सब्जी बनाते हैं तो इसके जो फलियां होती हैं वो बिल्कुल इंटैक्ट रहती हैं, यानी वो गलती नहीं है। तो जिस इलाके में जैसी डिमांड हो ऐसी बैगन की प्रजाति का आपको चयन करना चाहिए।
3: बिल्कुल, तो बहुत सारे विकल्प आपके पास है और इन प्रजातियों का चयन करके आप अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर यादव अब आपसे जानना चाहेंगे हम कि अंगूर के बागों को थ्रिप्स और माहू से कितना खतरा है और किस तरह से इससे बचाव के उपाय अपनाए जा सकते हैं।
4: थ्रिप्स सबसे महत्वपूर्ण कीट है अंगूर के अंदर में, जो अंगूर में नुकसान पहुंचाते हैं उनमें से। अभी जो वेजिटेटिव सीजन है, जो ऑफ सीजन हमारा का चल रहा है, इसमें जब नई ग्रोथ आती है, नई वृद्धि होती है शाखाओं की, तो उसमें थ्रिप्स ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। जमीन से ऊपर कोई भी अंगूर का भाग जो कि कोमल है उस पे थ्रिप्स नुकसान पहुंचा सकता है। इससे बचाव करने के लिए हमें क्या करना है कि अगर आपके अंगूर पे अभी भी आपको वृद्धि चाहिए तो नई ग्रोथ पे आपका थ्रिप्स दिखाई देगा। बारिश के मौसम में कई बार क्या होता है कि अगर बहुत तेज बारिश आ गई तो थ्रिप्स 2 या 3 दिन के लिए अपने आप से कंट्रोल हो जाएगा, अपने आप से नियंत्रित हो जाएगा। तो उस समय आपको कोई भी कीटनाशक की छिड़काव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप मौसम की भविष्यवाणी देखें कि अच्छी बारिश होने की भविष्यवाणी है क्या। अगर आपको थ्रिप्स दिखाई दे रहा है, अच्छी बारिश की भविष्यवाणी है, तो थ्रिप्स उसमें बिल्कुल कम हो जाएगा। पर यह नियंत्रण आपको सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए मिलेगा, ज्यादा लंबे समय तक ये नियंत्रण नहीं मिलेगा आपको। तो हमें कीटनाशक है उनका प्रयोग करने की जरूरत पड़ सकती है। तो जो पंजीकृत कीटनाशक है उनका प्रयोग हम अंगूर के अंदर में कर सकते हैं। फिर उसके बाद में कि जिन बगीचों में वृद्धि पूरी हो चुकी है, हमको ऑफ सीजन में क्या चाहिए कि कैन डेवलपमेंट करना है, कैन का विकास हो गया है, तो उसके बाद में जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है, जो कि अतिरिक्त वृद्धि है जो हमें नहीं चाहिए, तो उस पे थ्रिप्स का नुकसान आ सकता है, उसका प्रादुर्भाव हो सकता है अंगूर के अंदर में। पर वो ग्रोथ अननेसेसरी है, हमको वो नहीं चाहिए। अगर उस पे थ्रिप्स का प्रादुर्भाव होता है तो भी हमें उस पे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अतिरिक्त वृद्धि है, उसको हम हाथ से अगर टाइम टू टाइम निकालते रहेंगे, समय समय पे हफ्ता 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर में एक बार उसको निकाल देंगे, तो थ्रिप्स अपने आप से उसके अंदर में नियंत्रित हो जाएगा। तो हमें कुछ कीटनाशक का प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और काफी कम खर्चे के साथ हम इसको नियंत्रण कर सकते हैं।
0: तो आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: जी, सबसे पहले तो जो ये मौसम है इसमें हमें पोषक प्रबंधन का भी हमें ध्यान रखना है। जैसा कि हम आमतौर पर चाहते हैं कि किसान भाई की उपज ज्यादा से ज्यादा हो, जो किसान भाइयों ने सॉइल हेल्थ कार्ड बना रखा है, लेकिन उन्हें गोबर की खाद अधिक मात्रा में डालनी है। कम से कम हमें 25 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें गोबर की खाद डालनी है। इसके बाद अगर हम ट्राइकोडर्मा का अगर हम उपयोग करते हैं तो हमारे खेतों के लिए अच्छा है। उसके अलावा हम कुछ बेबेडिया बसियाना या जो और भी हैं, जैसे एजोस्पाइरलम है, एजोटोबैक्टर है, अन्य प्रकार के जो हमारे ऑर्गेनिक मीन्स जो हैं न्यूट्रिएंट्स के, इनको भी अगर हम उपयोग करते हैं तो खेतों की जो हेल्थ है, मृदा की जो सेहत है, वो अच्छी बनती है। इसके अलावा हमें खरपतवार का नियंत्रण भी करना बहुत जरूरी है। अगर हम खरपतवार का नियंत्रण करते हैं तो उससे हमारे जो खेत हैं वो भी साफ रहते हैं, पौधों की वृद्धि अच्छी होती है और रोग और कीटाणु भी कम मात्रा में आते हैं। तो किसान भाई इसमें अगर चाहें तो हर्बिसाइड है एक, जैसे पेंडीमिथिलीन है जो स्टॉम्प के नाम से मिलती है, 3 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से जब हम रोपाई करते हैं उससे जस्ट पहले हम चाहें तो इसका एक छिड़काव कर सकते हैं। तो 30 से 35 दिन

0: किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को जाना, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। कैसे हमें मिर्ची, बैंगन और टमाटर की जो फसलें हैं उसमें कैसे उसमें कीटों का प्रबंधन कैसे करना चाहिए, कीटों से बचाने के लिए हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही हमने ये जाना कि हमें उसमें जो खरपतवार निकलते हैं उन्हें कैसे, उनका मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। साथ ही जो मिट्टी अभी बारिश की वजह से धूल के नीचे उतर जाती है उसे कितने दिनों में हमें फिर से चढ़ाना चाहिए, आदि महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टैंटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टैंटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबवा की आवाज आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाने के प्रयास हमेशा से करता आया है और करता रहेगा। तो किसान साथियों, यहां पर अभी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटिया भील 90.8 FM के साथ।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: रोशनी। कुछ कहानियाँ किताबों में लिखी जाती हैं और कुछ लोगों के चेहरों, उनकी मुस्कुराहटों और उनके संघर्षों में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं जिंदगी अनप्लग्ड ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। दोस्तों, ये वो महफिल है जहाँ गीत सिर्फ बजते नहीं, जिंदगी के पन्ने खुलते हैं। यहाँ हम उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने सपने सिर्फ देखे नहीं, ठोकरें खाई, हौसले संभाले और अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो आइए आज फिर एक जिंदगी से मिलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, एक कहानी सुनते हैं और गीतों के साथ महसूस करते हैं जिंदगी अनप्लग्ड। तो चाय की चुस्कियों के साथ, दिल से निकली हुई बातों के साथ शुरू करते हैं जिंदगी अनप्लग्ड, और दिल से स्वागत करते हैं आचार्य राजकुमार बिरला जी का। तो आचार्य राजकुमार बिरला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जिंदगी अनप्लग्ड प्रोग्राम में। कैसा महसूस कर रहे हैं सर आप?
1: थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज ज्योतिष के ऊपर में कुछ ऑथेंटिक डिस्कशन होगा और इससे हमारे श्रोता और हमारी पब्लिक जो भी सुन रहे हैं उनको लाभ होगा।
0: बिल्कुल सर, हम भी इसीलिए एक्साइटेड हैं क्योंकि आपका एक्सपीरियंस, जैसे अभी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, आप 20 इयर्स से प्रैक्टिस कर रहे हैं और 1,00,000 से ज्यादा कुंडलियां देख चुके हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और मैं आपको जानती हूं तो मैं ये वाउच कर सकती हूं कि जो भी नॉलेज आज हमारे साथ साझा होने वाली है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, 100% है, और हम बहुत एक्साइटेड हैं। चलिए शुरू करते हैं सर आपके सफर से। मैं आपको थोड़ा सा बचपन में ले जाना चाहूंगी। मैं जानना चाहूंगी और हमारे श्रोतागण भी जानना चाहेंगे कि आपका ये सफर शुरू कैसे हुआ, किस तरह से आप ज्योतिष में आए, इस प्रैक्टिस में आए, क्या कोई एक मोमेंट था, एक लम्हा था जिसने आपको पुश किया, या ये आपकी चॉइस थी जैसे जैसे आप बढ़ते गए, जैसे जैसे उम्र होती गई, क्या जर्नी रही सर आपकी?
1: वैसे तो मैं कहूंगा

0: कि ज्योतिष हमेशा उस इंसान को ढूंढती रहती है जो इसकी कदर करता है, और अपने आप ज्योतिषी उस इंसान के अंदर में ये नेचर में या उसकी माइंड में ये थॉट लाती है कि इसकी तरफ उसकी जिज्ञासा, उसका इंटरेस्ट ग्रो होता है। पर मेरे साथ ये उल्टा था
1: जी।
0: 90 से लेके 95 तक का जो मेरा एक 5 साल का एक पीरियड था, ये हमारी लाइफ का एक बहुत टफ पीरियड था। और उस पीरियड के अंदर में इंडिया के टॉप मोस्ट उस समय के जो एस्ट्रोलॉजर थे, मैं नाम नहीं लूंगा, पर आप मान लीजिए कि 95 में एक एक एस्ट्रोलॉजर जिसकी फीस 15,000 से 20,000, 25,000 रुपए थी, उस सबको हमने कॉन्टेक्ट किया था। कि ये हमारी सोच थी उस समय कि एस्ट्रोलॉजर्स के पास में कोई मैजिक स्टिक होती है और वो उसको घुमाते हैं और घुमाने से सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वो बता देते हैं।
1: राइट।
0: इस सोच के साथ में 5 साल हम भटके।
1: 95
0: के अंदर में एक परिवर्तन हुआ लाइफ में कि मुझे थोड़ी सी नफरत होने लग गई थी इन लोगों से। और मैं इनको एक्सपोजर करने के लिए कि यार ये लोग करते क्या है, मैं इस थॉट के साथ में मैंने ज्योतिष को सीखना स्टार्ट किया।
1: वाओ।
0: मेरे पापा का एक इसमें बहुत स्ट्रांग कंट्रोल रहा है और वो हमेशा पंचांग देखते रहते थे, तो मुझे लगता था कि बेसिक तो मेरे को यही सिखाएंगे, तो मैंने वहां से शुरुआत करी। और 98 तक मैं बुक वॉर्म था, किताबी कीड़ा की तरीके से आप कह सकते हो कि मैं इस किताब से पढ़ा, उस किताब से पढ़ के मैं सीखता रहा, ये करता रहा। 98-99 में मुझे ऐसा लगा कि यार इस तरीके से तो ज्योतिष हो नहीं सकती है। कि अगर मैं कुंडली आएगी और मैं किताब खोलूंगा और उसको पढ़ूंगा फिर मैं प्रिडिक्शन लिखूंगा, तो इससे तो क्लाइंट के ऊपर में या किसी भी तरीके से अगर किसी की मैं कुंडली प्रिडिक्ट कर रहा हूँ तो मेरा खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो है
1: जी।
0: 2000 के अंदर में एक गुरुजन से मिलना हुआ और उन्होंने जब मेरी कुंडली, मेरा हाथ देखा तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं एक फैमिली, एक बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो उन्होंने कहा ये बिजनेस नहीं करेगा, इसको मेरे पास भेज दो, ये ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छा नाम करेगा। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। उन्होंने मुझे आईकास्ट में एडमिशन करवाया और वहां से मैंने पढ़ना शुरू किया। तो आईकास्ट में जब पढ़ने जाते हैं तो पहले 6 महीने जो होते हैं वो बहुत बोरिंग होते हैं। बोरिंग का मतलब क्या होता है, वहां पे गणित होती है, ज्योग्राफी होती है, साइकोलॉजी होती है, मनोविज्ञान होता है, कर्म सिद्धांत होता है। अब एक यंग एज के जिसको हम जेन जी कहते हैं, उनको हम ये सब सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए बोलेंगे, यार इस उम्र में आके वापस ये सब्जेक्ट पढ़ो तो उसको बोरिंग लगेगा, बोले यार मैं सीखने तो ज्योतिष आया था और पढ़ ये सब रहा हूं।
1: सही है।
0: तो उस पार्ट को जब मैंने पास आउट किया तब मेरे को लगा कि यार मैं जिस ज्योतिष को मैं सीख रहा था या मैं जो ज्योतिष को समझता था
1: जी,
0: एक्चुअल में वो ज्योतिष है ही नहीं, वो तो एक रोड साइड की जो ज्योतिषी होती है वो है, एक्चुअल ज्योतिष कुछ और है। एक्चुअल ज्योतिष का मकसद है कि आप मानव के शरीर पे पड़ने वाले पंचभूता जो अग्नि वायु पृथ्वी जल आकाश तत्व है उसको उसके कर्म सिद्धांत से कनेक्ट करते हुए उसका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को आप रीड कर सकते हो और उसके आने वाले फ्यूचर के बारे में उसको गाइड कर सकते हो कि भैया तेरी बॉडी में, तेरे नेचर में पर्टिकुलर एलिमेंट कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, इसको तेरे को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है।
1: तो बहुत ही खूबसूरत जी।
0: जी, आयुर्वेद भी यही बोलता है, आयुर्वेद भी ये बोलता है कि इंसान पंचभूता से कनेक्टेड है और एस्ट्रोलॉजी भी एक ही बात कहती है कि यू हैव टू वर्क ऑन योर 5 एलिमेंट्स।
1: बिल्कुल सर। इसको अगर आपने जब शुरुआत की अपने शुरुआती दौर में, तो जब आपने आईकास में पढ़ाई की तो किस तरह से कर्म सिद्धांत को समझाया गया, क्या हमारी भगवद गीता से उसे जोड़ के समझ सकते हैं आप किस तरह से, बिकॉज आप कर्मा यू नो प्योरिफिकेशन पे भी काम करते हैं, आपकी स्पेशलाइजेशन है फाइनेंस, बिजनेस, लव रिलेशनशिप्स एंड कर्मा पे बहुत फोकस है आपके काम में, तो ये जो आपकी जो फील्ड्स हैं, जो आपकी स्पेशलाइजेशन फील्ड्स हैं, वो आपने कैसे चूज की और कर्म सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा और इलैबोरेट करेंगे, क्योंकि आई थिंक वो रूट कॉज है, उसी से सब कुछ शुरू होता है और उसी तक जाके सब कुछ खत्म होता है। तो कैसे जो हमारे श्रोता हैं जो अभी हमें सुन रहे हैं, वो अगर कुछ भी नहीं करें तो ये अगर कर लें तो शायद जीवन थोड़ा सा और सुधर सकता है, तो अगर कर्म सिद्धांत को थोड़ा इलैबोरेट करें सर और आपकी स्पेशलाइजेशन के बारे में बात करें।
0: देखिये, भगवद गीता ही एक बेस है जो हर इंसान को पढ़नी चाहिए, अगर उसको अपने कर्मों को एलोबरेट करना है, उसको अपने कर्मों को समझते हुए इस जीवन का मोटिव पाना है तो भगवत गीता जिसने नहीं पढ़ी, मैं कहूंगा कि उस इंसान ने सिर्फ जो एक थोपी हुई जिंदगी है, मतलब जैसे जन्म मिला, माँ बाप ने बड़ा किया, पढ़ाई करवा दी, शादी करवा दी, बच्चे हुए, वापस उनके बच्चे हुए, बस ये एक जो साइकिल है, ये एक थोपा हुआ साइकिल है, उसको बस एक मनुष्य की योनि के निर्णय जी करके वो चलता बनेगा। और जिसने भी भगवत गीता को पढ़ करके उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, उसने कर्म समझा कि हर कर्म का एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है, ऐसी हर कर्म का एक एक्शन होता है उसका एक रिएक्शन भी होता है, और हम कहते भी हैं कि कर्मा रिटर्न्स बैक, जिसने जो बोया है वो उसी का पेड़ काटेगा। ठीक है, तो लोग बाग आज छल कपट करके अपने आप को कुछ समय अवधि के लिए अपने आप को खुश कर लेते हैं कि बहुत मैंने पैसा कमा लिया, उसका पैसा मेरे पास आ गया, या मैंने किसी को ऊपर चढ़ते हुए नीचे गिरा दिया और मैं ऊपर चढ़ गया, तो ये एक समबिंग पीरियड तक होता है। जैसे ही आपके संचित कर्म मतलब क्या, जो कर्म आपने पास्ट लाइफ में किए थे, जो कर्म आप इस लाइफ में कर रहे हो, वह सब आपके संचित कर्मों के अंदर में एड ऑन होते जाते हैं। वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी की जो किताब है उसके अंदर में सारे कर्म लिखे जाते हैं और उनके जो रिजल्ट होते हैं वो हमारी ज्योतिषी भाषा के अंदर में जो जज का ओहदा मिला है शनि को
1: जी,
0: वो उसके रिजल्ट देते हैं कि तुमने अच्छा किया है तो तुम अच्छा भुगतोगे और तुमने बुरा किया है तो तुम जन्म में बुरा भी भुगतोगे। तो हम हर इंसान को, मैं एक बात बोलता हूँ, तुम दुनिया के हर कैमरे से बच सकते हो, एक कैमरा ऐसा है जो शनि भगवान का है, वो हमेशा तुम्हें देख रहे हैं और वही कर्मों के राजा हैं, वही कर्मों को कंट्रोल करते हैं, वही आपके कर्मों को हमेशा देखते हैं, जस्टिफाई करते हैं कि इसने इच्छित रूप से या अनिच्छित रूप से जो कर्म किया है उसमें इसको क्या रिजल्ट मिलना चाहिए।
1: राइट,
0: अब बात करिए अपने कर्मों की, तो मैं इस कर्म की डेफिनेशन को एक शॉर्ट में, क्योंकि कर्म तो बहुत लंबे जाएंगे क्योंकि ये बहुत डीपली बैठ रहे हैं
1: जी,
0: मतलब आप अगर कुछ चीज सोच भी रहे हैं तो ये भी आपका एक कर्म है, पर ये डीप मैटर हो जाता है। अभी सिर्फ बात करते हैं, तीन
1: थॉट भी कर्म है। ओ वाओ,
0: करेक्ट करेक्ट
1: जी जी।
0: अगर आप किसी का बुरा सोच रहे हैं तो आप अपनी एनर्जी को उस इंसान से कनेक्ट कर रहे हैं उसका बुरा करने के लिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अगर आप किसी का पॉजिटिव सोचते हैं, भला सोचते हैं, आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को किसी का भला करने के लिए सोच रहे हैं तो उसका भला भी होगा, आपका भी भला होगा। है ना, तो मेनली जो तीन तरह के जो कर्मों के सिद्धांत बताए हैं, जो वो है संचित कर्म जो हमने पास्ट लाइफ में किए, जिसका घड़ा, जिसका एक मटका लेकर के हम इस जीवन में आए हैं, वो हमको भुगतने ही भुगतने, उसको दुनिया का कोई भी एस्ट्रोलॉजर कोई भी उपाय नहीं ठीक कर सकता, वो आपको भुगतने ही भुगतने। इसके बाद में सेकंड स्टेप में आते हैं क्रियामान कर्म। क्रियामान कर्म क्या, वह कर्म जो आप इस जीवन में करोगे
1: जी,
0: और यही वो कर्म होते हैं जिससे आप जो आपको संचित कर्म मिले हैं उसके रिजल्ट्स को बैलेंस कर सकते हैं, उसके रिजल्ट को कम ज्यादा कर सकते हैं, पर हटा नहीं सकते। अच्छा। अगर आपका एक्सीडेंट लिखा है, एक टाइम पीरियड आ रहा है कि आपको मार्केश की महादशा है, बादकेश की महादशा है और मार्केश का प्रत्यंतर है, तो यह सब चीजें इंडिकेट करती है कि कोई ना कोई घात होने वाली है।
1: अच्छा।
0: अब अगर आप क्रियामान कर्म अच्छे कर रहे हैं, आप जैसे सपोज करें महामृत्युंजय के जाप कर रहे हैं, हम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, तो उससे होगा क्या कि एक्सीडेंट तो होगा पर छोटी मोटी खरोच, छोटी मोटी चोट लग करके आप बच जाओगे पर जीवित रहोगे। पर अगर आपको सब चीजें नेगेटिव चल रही है और आप तो कहते हो कुछ नहीं होता ये चीज, और जैसे सामने आपको बोल दिया है रोड पे गड्ढा है, आप कहते हो मेरी तो मेरे पास तो फॉर्च्यूनर गाड़ी है, गड्ढा वड्ढा क्या होगा। अरे भाई, जैसे ही तुम फुल स्पीड में होंगे उस गड्ढे से तुम्हारी स्टेयरिंग बिगड़ेगी और तुम ऑफ द ट्रैक चले जाओगे।
1: एब्सोल्युटली।
0: तो यहाँ पे जो सेकंड जो मेन क्रियामान कर्म है, यही आपके वो कर्म है जो हम आपको गाइड करते हैं, जो एक एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड करता है कि आप ऐसे अपनी दिनचर्या को परिवर्तन करो। आपके जीवन में अगर अग्नि तत्व बहुत ज्यादा है तो इस अग्नि तत्व को कम करने के लिए जल तत्व को कैसे आप बढ़ाओगे, इस तरीके से ही हम एनर्जी को बैलेंस करने की बात करते हैं। और इसी के आगे जब हम जाते हैं वो है हमारा प्रारब्ध। वो प्रारब्ध ये है कि हम अपना फ्यूचर बना रहे हैं। अगर मैंने अच्छे कर्म किए हैं और अगर मैं अच्छी सोच लेकर चलता हूँ, मैं दिन दुखियों का भला कर रहा हूँ, उनका आशीर्वाद ले रहा हूँ, तो नेचुरल वो सब दुआएं मेरे जो आगामी कर्म जो मेरे संचित कर्म जो बनने वाले हैं पास्ट जो फ्यूचर में आने वाले हैं वो मेरे को एक अच्छी गोल्डन लाइफ को इंडिकेट करते हैं।
1: राइट।
0: तो हम बहुत बार आपको सुनने में मिलता होगा कि देखो मैं तो इतना भगवान को मानता हूँ, मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, पर मैं इतना दुखी हूँ, और वो सामने वाला इंसान कुछ भी नहीं करता है, वो तो भगवान को अगरबत्ती भी नहीं लगाता है और वो ऐश कर रहा है।
1: बिल्कुल, बहुत बार हम ये महसूस करते हैं जी,
0: है ना। तो इसको आप समझें, ये आपके कर्मों का या किसी ग्रह का आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, कोई आपसी पर्सनल ग्लिच नहीं है जो आपको वो नुकसान दे रहा है। यहाँ आपके सब कर्मों का ही एक लेखा जोखा है कि पास जिंदगी में आपने बुरे कर्म किए थे तो भी आप बुरे कर्म भुगत रहे हो, अगर आप अपने कर्मों को चेंज करते हो क्रियामान कर्मों से तो उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हो, उनको बैलेंस कर सकते हो और अपना फ्यूचर अपना प्रारंभ बढ़िया बना सकते हो जो आपको लेटर ऑन मिलता है।
1: जी जी बिल्कुल, इन्हीं बातों से हम आगे और आपसे जानेंगे कि एनर्जीज किस तरह से काम करती हैं। जैसे आपने फाइव एलिमेंट्स की बात करी तो इस गीत के बाद हम उस पे आएंगे और जानेंगे राजकुमार बिरला जी से। चलिए सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत, जो तुम तोड़ो पिया, फिल्म मीरा।

0: आप बहुत आई थिंक एलिमेंट्स के ऊपर काम करते हैं, जैसे आपने शुरुआती हमारे इंटरव्यू से हमें बताया है. तो मैं एग्जाम्पल से जानना चाहूंगी, जैसे किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का कोई एलिमेंट कम है या ज्यादा है, तो आप उसे किस तरह की कुछ रेमेडीज देते हैं, और जो बाय एंड लार्ज लोग हैं, जैसे जो हमें सुन रहे हैं, कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं डेली लाइफ में जो लोग कर सकते हैं और अपने एलिमेंट्स को बैलेंस में रख सकते हैं, अगर इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहें.
1: जी, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट एस्ट्रोलॉजी का है, तो मैं आपको एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करके समझाता हूँ कि कैसे. पहले तो हम वेरीफाई करते हैं कि एक्चुअल कॉज क्या है.
0: जी,
1: तो जब हमारे पास में किसी पर्सन की कुंडली आती है, तो हम उसके पास्ट और प्रेजेंट को उससे मैच करने की कोशिश करते हैं. कि हम समझने की कोशिश करते हैं वाकई में जो इसकी कुंडली दिखा रही है वही सच है, या इस इंसान ने अपने आप को बदल लिया, या ये इंसान किसी इन्फ्लुएंस के अंदर में आकर के, जैसे अपन कहते हैं ना कि अगर आपकी जो मित्रता है वो सात्विक लोगों से है तो आप सात्विक नेचर की तरफ बढ़ोगे, अगर आपकी मित्रता तामसिक लोगों से है तो वो आपको तामसिकता की तरफ बढ़ा देंगे. तो हम उसको रूट कॉज निकालने की कोशिश करते हैं कि जो प्रॉब्लम्स वो बता रहा है बाकी में ये उसका चार्ट पे इंडिकेट करता है, या जस्ट ये एक टाइम समिंग पीरियड के लिए है, या इसको कोई पास्ट लाइफ के कोई ऐसे श्राप या ऐसे कोई पाप मिले हैं जो इसको भुगतने. क्योंकि मैं एज एस्ट्रोलॉजर उसके कर्मों से अपने आप को कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं उसको समझ रहा हूँ और मैं ही उसको समाधान बता रहा हूँ, तो मैं भी वहां पे कहीं ना कहीं एक कर्ता के रूप में उसकी लाइफ में आ रहा हूँ.
0: बिल्कुल.
1: तो यहाँ मुझे अपनी, जहाँ मुझे अपनी टेंशन होती है उतनी मुझे क्लाइंट की भी होती है कि अगर इसकी लाइफ सुधर गई तो इसका पुण्य मुझे मिलेगा, और अगर इसकी लाइफ में और प्रॉब्लम बढ़ी और इसने ही मुझे दुखी होकर के कुछ गलत बात बोली या कोई, जैसे अपन कहते हैं ना, बद्दुआएं
0: निकली. जी जी,
1: है ना. जैसे आप देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजर आपसे इतना चार्ज कर रहे हैं, कोई जना 5 लाख कर रहा है, कोई 10 लाख कर रहा है, मेरे पास में मैजिक स्टिक है, मैं आपकी मैजिक स्टिक से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, और जब वो चीज नहीं होती है तो आपकी निश्चित बात है आपकी बद्दुआ मिलेगी. क्योंकि उस इंसान ने वो 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए कैसे कमाए हैं या कैसे इंतजाम किया, ये उसको पता है.
0: बिल्कुल
1: ना? तो जब हम एक्चुअली में, जब हम होरोस्कोप में चेक करते हैं कि यार वाकई में ही इसके खुद के कर्म खराब थे और ये सजा भुगत रहा है, तो सबसे पहले तो हम जो कर्म खराब थे उन फिल्टर्स को लगा करके उस एरिया को उस इंसान के कर्मों से पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं कि तू जो अपने आप क्रियामान कर्म करेगा इस पर्टिकुलर प्लेनेटरी एलिमेंट्स के साथ में करेगा. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, किसी के कुंडली के अंदर में सूर्य बहुत ज्यादा खराब है, खराब बोले तो इन द सेंस वो पीड़ित है, वो राहु के साथ में है, वो शनि केतु के साथ में है ना, या बहुत ज्यादा उसका जो षटबल है वो वीक हो रहा है, उसकी एनर्जी बहुत डाउन हो रही है. तो ऐसी स्थिति के अंदर में साफ पता चलता है कि इसको कहीं ना कहीं पिता से सपोर्ट मिलना चाहिए. अगर इसके पिता इसके लिए सपोर्टिव हो जाए, या ये अपने पिता को डेली ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दे, ये अपने पिता को डेली रेस्पेक्ट देना शुरू कर दे और उनके हाथ इसके सर पे आ जाएगा, तो ये इंसान अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट कर ले, ये अपनी लाइफ में सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रो करना शुरू कर देगा. इसका जो स्वाभिमान है वो स्वाभिमान ही रहेगा, वो ईगो में कन्वर्ट नहीं होगा.
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि खराब सूर्य का मतलब है ईगो होना. जी,
1: ईगो होना, और ईगो होना मतलब वो इंसान सिर्फ अपनी ईगो मैं शब्द के आगे आके मर जाता है कि मैं ही क्यों करूं. यही मैं हर रिलेशनशिप में, चाहे वो मैरिटल लाइफ हो, चाहे वो बच्चों के साथ में हो, चाहे वो फ्रेंड सर्किल का हो, चाहे ऑफिसर्स के साथ में हो, वहां पे वो मैं की वजह से हर रिलेशनशिप खराब हो रहा है.
0: बिल्कुल.
1: तो हम ऐसी स्थिति में इसको कहते हैं कि भैया अपनी जो सूर्य की एनर्जी है, सूर्य की एनर्जी क्या होगी, अग्नि तत्व.
0: जी,
1: इस अग्नि तत्व को न्यूट्रलाइज करो, सूर्य को डेली ऑथेंटिक वे में जो एनर्जी से, अपनी एनर्जी को उस पानी में डाल करके आप सूर्य को चढ़ाएं और उसको नमन करें, उनको ग्रेटिट्यूड करें, उसके साथ में आप आदित्य हृदय स्तोत्र या सूर्य कवच का पाठ करें, जिससे आप सूर्य भगवान को सिर्फ ना सिर्फ जल चढ़ा के ठंडा कर रहे हैं, उनको एपीज भी कर रहे हैं, उनको खुश भी कर रहे हैं कि भाई मैं आपको नमन करता हूं, मुझे अपनी गलती का एहसास है, आप मेरे जीवन में शीतलता लाना, आप मुझे समझ और सद्बुद्धि देना.
0: बिल्कुल.
1: ऐसे एलिमेंट्री को पकड़ते हुए हम करते हैं. कोई जना कहता है कि भाई मेरे लाइफ के अंदर में कोई भी चीज स्मूथ नहीं होती है, तो जब जैसे ये वर्ड आता है स्मूथ नहीं होती है, इट मींस कहीं ना कहीं उसके एक लॉन्ग टर्म कार्मिक पैटर्न बिगड़ा हुआ है. उसको जिंदगी में परिश्रम के अलावा उसको सफलता नहीं मिलेगी.
0: जी.
1: और मोस्टली अगर आप देखेंगे तो जैसे भी जितने भी ये लोग हैं जो ये कहते हैं मुझे जिंदगी में स्टेबल सफलता नहीं मिलती है, तो आप देखेंगे इनकी कुंडली के अंदर में सबसे ज्यादा शनि प्लेनेट का एक इन्फ्लुएंस होता है जो उनको बोलता है कि शैने शैने चलो मैं सफलता दूंगा, पर वो उतावलेपन के अंदर में कभी भी शैने शैने नहीं चलते हैं, धीरे धीरे नहीं चलते हैं, वो रातों रात अमीर बनने के लिए चाहते हैं। और जहां पे भी पेशेंस वर्ड का नाम आता है, जहां पे भी पेशेंस की बात होती है कि आप में कितना धैर्य है, वहां पे कनेक्शन हो जाता है शनि से।
0: बिल्कुल,
1: तो हम एक ही बात चेक करते हैं कि भैया तेरे अंदर में पेशेंस कितना है, क्या तू टिक करके बैठने वाला इंसान है या तू चलता फिरता इंसान है।
0: बिल्कुल,
1: यही एक सब तरीके हैं जिसमें हर प्लेनेट की एक एनर्जी है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं कि इसकी लाइफ के अंदर में अर्थ एलिमेंट ग्रो करना है कि वाटर एलिमेंट ग्रो करना है कि फायर एलिमेंट ग्रो करना है, एयर एलिमेंट ग्रो करना है कि इसको वाटरी एलिमेंट से कनेक्ट करना है।
0: बिल्कुल,
1: तो पंचभूता को बैलेंस करने की बात।
0: बिल्कुल सर, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने सारी जानकारी हमारे साथ साझा की। सर आगे चलते हैं, क्योंकि हम कुंडली की बात कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष की बात कर रहे हैं, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि आप जो 12 हाउसेज हैं उनके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, मतलब एक बहुत ब्रीफली हमें बता सकें कि फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, ये क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, ताकि हमारे श्रोता जो हमें सुन रहे हैं उन्हें कुछ बेसिक एक नॉलेज पहुंचे कि हाँ कुंडली ये होती है। इलैबोरेटली ऑफकोर्स हम नहीं डिस्कस कर सकते बिकॉज वो बहुत बड़ा एक सागर है जिसमें घुसना बहुत मुश्किल है, बट जस्ट एक बेसिक जो हमें, जो बिल्कुल आज पहली बार ज्योतिष के बारे में सुन रहे हैं उनके लिए अगर हम बताना चाहें कि कुंडली होती क्या है और वो क्या क्या कैरी करती है, तो अगर वो साझा कर सकें। और इसी से मेरा अगला सवाल है कि अगर कुंडली ही सब कुछ है तो फिर हम क्यों बोलते हैं कि आप कर्म करो, कर्म सिद्धांत कहाँ पे बैठता है, इन दोनों में जो कॉन्फ्लिक्ट आया है और जन जन्मांतर से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्री विल बड़ी है या डेस्टिनी बड़ी है, तो आपका इस पे क्या ओपिनियन है, वो अगर हमारे साथ साझा करें।
1: जी आपने जो 12 हाउसेस की बात करी है, अगर मैं ये 12 हाउसेस पे आप और मैं अगर एक महीने तक भी अगर डिस्कशन करेंगे तो यह खत्म नहीं होता, क्योंकि ये इतना डीप सब्जेक्ट है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट के अंदर मैं कहूंगा कि इन 12 हाउसेस को अगर आपको समझना है तो आपको सबसे पहले 4 त्रिकोण को समझना होगा। 4 त्रिकोण क्या, जैसे भाव नंबर 1, भाव नंबर 5 और भाव नंबर 9, ये हो गया आपका धर्म त्रिकोण। ठीक है, जब किसी इंसान की कुंडली में धर्म त्रिकोण के जो ये 3 हाउसेस बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, तो ऐसे इंसान अगर अपनी लाइफ को धर्म से संबंधित कामों में, अब धर्म क्या, मैं धर्म ये नहीं है सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म, ठीक है, अगर आप एक बिजनेसमैन फैमिली में पैदा हुए हो तो आपका धर्म क्या हुआ, बिजनेस करना, धंधा करना।
0: बिल्कुल,
1: ठीक है, तो यहाँ पे उस धर्म की बात हो रही है, यहाँ सिर्फ एक स्पिरिचुअलिज्म, सिर्फ एक भगवान, ये नहीं है मैं कह रहा हूँ कि आपका धर्म हाउस एक्टिव है तो आप सुबह से शाम तक सिर्फ अगरबत्ती लेके भगवान के सामने बैठे रहोगे आपका काम हो जाएगा।
0: बिल्कुल,
1: यहाँ कर्म की बात हो रही है, आपका जो धर्म है वो क्या है, बिजनेस करना। ठीक है, अब जब मैं बात करता हूँ सेकंड त्रिकोण की, उसको कहते हैं हम अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण मतलब हर चीज का अर्थ, सिर्फ पैसा नहीं, कि मुझे अगर कोई भी मेरे को बात कही गई है मुझे उसका अर्थ निकालना है, मुझे उसका मतलब निकालना है, मुझे उस अर्थ को अपनी लाइफ में यूटिलाइज करना है। तो ये जो अर्थ त्रिकोण वाला जो होता है, जिसको हम लोग फाइनेंस से कनेक्ट करके, आजकल जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर में इसको फाइनेंस से कनेक्ट कर दिया गया है, वो होता है हमारा 2, 6 और 10 का त्रिकोण।
0: ठीक
1: है, सेकंड हाउस, सिक्स हाउस और 10th हाउस।
0: राइट,
1: तो यहाँ पे हम कहते हैं कि इंसान पैसे के पीछे भागेगा, काम के पीछे भागेगा, धन कमाएगा। पर यहाँ ये सिर्फ ये नहीं है, अर्थ का मतलब है हर जिंदगी के उसका एक मूल तत्व, उसका एक अर्थ समझना जो आपको एस जिम्मेदारी, एक जवाबदारी के रूप में मिला है, उसको आपको एक्टिव करके अपने लाइफ में स्टेबिलिटी लानी।
0: राइट,
1: इसके बाद में थर्ड जो त्रिकोण आता है वो है 3, 7 और 11, थर्ड हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस। तो ये जो त्रिकोण है इसको कहते हैं काम त्रिकोण।
0: जी,
1: अब जब नाम आता है काम का तो लोगों के दिमाग में एक ही तरफ जाता है काम, काम वासना वाला।
0: जी,
1: ये काम वासना वाला काम नहीं है, ये काम है क्रिया का,
0: जी,
1: आपकी स्किल्स का, आपकी डेडिकेशन का, कि कैसे आप अपनी स्किल्स, अपनी इच्छा पूर्ति मैं कन्वर्ट करती हूँ, कैसे आप साझेदारी या जीवन साथी के साथ काम करते हुए अपनी लाइफ के मोटिव, अपनी इच्छा पूर्ति, अपनी जो आप फुलफिलनेस की बात कर रहे हो उसको, डिजायर को पूरा करते हैं। इसके बाद में हम आते हैं लास्ट फोर्थ जो हमारा त्रिकोण था वो है मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष त्रिकोण है 4, 8 और 12 का। अब मोक्ष का मतलब क्या, एक तरीके से आप ये समझते हो कि इस जिंदगी का त्याग, जिंदगी से मोक्ष मिल जाना या मेरी, पर मोक्ष कब मिलता है जब आपकी इच्छाएं फुलफिल हो जाती है और आपका जीवन से मोह भंग हो जाता है। तो पहला मोह कहाँ से आता है, परिवार से। पहला मोह होता है आपके घर परिवार के हर सदस्य से जिससे आप कनेक्टेड हो, तो वो हो गया आपका फोर्थ हाउस। ठीक है, दूसरा है इस जीवन में जो खोजने आए हो, इस जीवन के अंदर में जो आपकी रिसर्च है और इस जीवन का जो एक आपका एक हिडन मकसद था वो है आपका 8th हाउस।
0: बिल्कुल।
1: और सबसे लास्ट का जो है 12th हाउस, वो है 12th हाउस मीन्स स्काई, द अनसीन पावर, अनसीन पावर विच यू आर गेटिंग फ्रॉम गॉड और यूनिवर्स। तो जब आप इस 4th हाउस में सबसे ज्यादा एक्टिव हो, 4, 8 और 12 जब आपका सबसे ज्यादा एक्टिव हाउस है इस कुंडली का, तो जिंदगी का मोटिव है कुछ ऐसी रिसर्च, कुछ ऐसा आध्यात्मिक खोज, कुछ ऐसी चीज की खोज करना जो आपसे पहले किसी ने नहीं करी है, आपको करके इस जीवन का मोटिव पूरा करना है। तो पब्लिक क्या है, पब्लिक भटक रही है उस भेड़ चाल में। जैसे मैं कहूं कि एक डॉक्टर का बेटा है, डॉक्टर है, तो वो कहेगा मेरा बेटा भी डॉक्टर बने ताकि वो मेरे हॉस्पिटल को संभाले।
0: बिल्कुल।
1: तो यहाँ वो अपने बेटे को उसके कर्मों से नहीं पकड़ रहा है, वो अपनी एक जिद को थोप रहा है।
0: बिल्कुल।
1: ऐसी स्थिति में वो बच्चा डॉक्टर तो बन जाएगा पर वो अपने आप को अनसेटिस्फाइड फील करेगा, एक समय आने के बाद में उसको वो पाथ बोरिंग लगेगा कि यार मेरी जिंदगी का तो मोटिव ही नहीं है। फिर क्या होता है, जब जब सब कुछ काम हो जाता है तब जाके वो बोलता है यार अब मेरे को धर्म में जाना है, मुझे अपने आप को स्पिरिचुअलिज्म से कनेक्ट करना है। फिर वो आध्यात्मिक योगा मेडिटेशन की तरफ भटकता है, अपनी मस्तिष्क की शांति के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, कॉन्शियसनेस के लिए, तो वहां जाकर के उसको फिर अपना मोटिव मिलता है। तो हम बाय बर्थ से अगर सपोज करो कि मैं अगर बच्चे को सीधा ये ना कहूं कि तुम्हें हमेशा 4th क्लास का ही लेसन देना है, तुम्हें हमेशा 4th क्लास का ही चैप्टर देना है, मैं इसको ये कहूं कि हर साल तुम्हें एक नया नया क्लास ज्वाइन करना है और नए नए चैप्टर को सीखते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना है, और जब तुम ग्रेजुएशन में आ जाओगे तब तुम्हें किस फील्ड में जाना है तुम डिसाइड करो।
0: बिल्कुल।
1: यहाँ हम बाय बर्थ से ही बच्चों को एक ही बात बताते हैं, मैं डॉक्टर तुम भी डॉक्टर बनोगे, मैं इंजीनियर तुम भी इंजीनियर बनोगे, मैं लॉयर तुम भी लॉयर बनोगे।
0: बिल्कुल।
1: वापस ये पॉइंट आकर के कर्मों पर आके बैठ जाता है
0: जी,
1: कि आपकी डेस्टिनी ने, मतलब डेस्टिनी एज ए मदर आपको मिली और मदर डेली आपके सामने थाली लाके रख देती है खाने की कि बेटा खा ले। एक बार मदर हाथ से खिला देगी, दो बार खिला देगी, एक एज तक खिला देगी, पर एक एज के बाद में क्या करना पड़ेगा, आपको खुद खाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मदर ने तो डेस्टिनी परोस के दे दी कि भैया खाने की थाली बना दी है खा ले, पर उसके बाद तो आपको खानी है ना। तो वो हाथ जब तक उस खाने को लेके आपके मुंह तक नहीं जाएगा, जब तक आप ये कर्म नहीं करोगे तब तक वो खाना आपके स्टमक में नहीं जाएगा और उसके न्यूट्रिशन आपको नहीं मिलेगी।
0: बिल्कुल।
1: सेम बात होरोस्कोप कहती है कि अगर एक समय विशेष आपकी लाइफ में हम इंडिकेट कर रहे हैं, एक समय विशेष हम आपकी कुंडली में दिखा रहे हैं कि इस समय विशेष को आप अपनी लाइफ में प्रॉपर चैनल करते हुए, प्रॉपर यूटिलाइज करते हुए अगर यूज करते हैं तो आप उस लाइफ को बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट सक्सेस दिला सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मेरे को एक शनि की महादशा है
0: जी,
1: आज स्थिति क्या हो रखी है मार्केट के अंदर में कि शनि राहु केतु मंगल के नाम से लोगों को हवा बना के डराया जाता है।
0: बिल्कुल, बहुत डराया जाता है जी,
1: जी जी, और जितना डराया जाता है उतना ज्यादा क्लाइंट पैसा निकालता है।
0: करेक्ट।
1: तो एक नॉर्मल सिनेरियो हो गया कि डराओ और पैसा निकलो। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपका किसी पर्टिकुलर ग्रह से कोई पर्सनल ग्लिच या दुश्मनी है जो वो आपको ही परेशान करेगा। ऐसा नहीं होता है,
0: बिल्कुल
1: ग्रह का आपसे कोई पर्टिकुलर ग्लिच या दुश्मनी नहीं है, वो तो आपके कर्मों के अनुसार आपको किस हाउस में, किस राशि में, किस डिग्री में, किस नक्षत्र में मिला है, ये आपके जो पास्ट लाइफ के जो कर्मास थे उन्होंने डिसाइड किया। आपका जब बर्थ हुआ था उस समय जो स्काई का मैप था, जो आकाशीय मानचित्र था, वही तो आपकी कुंडली है
0: जी।
1: और वही कुंडली आपको मिली है कि आपको भुगतना है। अब आपको ये पता है कि यार शनि मेरे को नीच का मिला है, तो नीच का शनि है, तो क्या आप अपनी कुंडली से किसी ज्योतिषी तांत्रिक कोई उपाय किसे क्या उस शनि को निकाल के बाहर फेंक सकते हो? नहीं फेंक सकते, वो वहीं रहेगा जब तक आप जिंदा हो। आपको आपको उसके साथ में जीना आना चाहिए, आपको उसके साथ में जीना सीखना पड़ेगा।
0: बिल्कुल,
1: कि मुझे अगर शनि नीच का मिला है तो अब इस नीच के शनि के रिजल्ट्स मैं पॉजिटिव कैसे लाऊं, तो मुझे क्या करना है? सिंपल सी बात है, मुझे अपने कर्मों को उस ऊंचाइयों तक ले जाना है जहां मेरे पास में अकाउंट में बददुआओं से ज्यादा दुआएं इकट्ठी हो जाए।
0: करेक्ट,
1: जितनी बुजुर्ग लोगों की सेवा करेंगे, जितनी बुजुर्ग लोगों की दुआएं इकट्ठी करेंगे, आपकी जो पास्ट लाइफ की जो एक कनेक्टिविटी थी फ्रॉम सिंस एंड प्रॉब्लम्स, वो कम होते होते अब वो न्यूट्रल होकर के एक टाइम पे वो पॉजिटिव पाथ में चली जाएगी। तो जब हम बात करते हैं डेस्टिनी और फ्रीविल की, तो फ्रीविल तो को हर इंसान को मिलती है, पर वो फ्रीविल को भी एक यूज करने का तरीका होता है। मैं एग्जांपल देता हूं, आप इस इंडिया के एक टाइकून, मैं नाम नहीं लूंगा, एक टाइकून बिजनेस फैमिली को देख लीजिए। ठीक है, फादर ने एक बहुत डाउन टू स्टेप एक ग्रोथ करके एक टॉप इंडिया के टॉप मतलब इंडस्ट्री और बिजनेसमैन के रूप में अपने आप को पहचान बना करके अपना सारा बिजनेस दो बच्चों को दिया।
0: करेक्ट,
1: ठीक है, सेम दिया, सेम चीज थी, सेम ब्रांड दिया, सबको इक्वली दिया।
0: करेक्ट,
1: एक इंसान ने उसको जवाबदारी और जिम्मेदारी से नियम अनुसार धीरे धीरे करके संभाला।
0: बिल्कुल,
1: और एक इंसान रातों रात अमीर होने के लिए अपनी जो अपन कहते हैं ना चद्दर से पांव ज्यादा फैलाने वाली बात, वो फैला करके अपने भाई से ज्यादा जल्दी अमीर बनने के लिए प्रोग्रेस करी।
0: करेक्ट,
1: तो जब हम देखते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर में क्या होता है कि जब आप कोई द्वेष भावना या किसी चीज से लेके चल रहे हो तो आपको रिटर्न बैक मिलता है। और एक ही फैमिली से जब हम कहते हैं कि आपका फ्रीविल, तो आपको यही मिला था कि दोनों सिल्वर स्पून लेके पैदा हुए थे।
0: बिल्कुल,
1: एक ही परिवार में पैदा हुए थे, दोनों सिल्वर स्पून लेके पैदा हुए थे, पर एक का सिल्वर स्पून तो आज भी कायम है, दूसरे का सिल्वर स्पून जा चुका है। क्यों? क्योंकि उसने अपने कर्मों को, अपने लाइफ पाथ को, अपने प्लेनेटरी वॉइस को, लैंग्वेज को नहीं समझा, और वो चाह रहा था कि मैं प्लेनेट को चलाऊंगा, जबकि प्लेनेट कह रहे थे हम तेरे को चलाएंगे।
0: बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपने हमें समझाया कि कैसे सच में अगर भगवान सब कुछ आपको दे देगा तो आप ना उनका स्मरण करेंगे और फिर तो जीवन है ही क्या, फिर ये जीवन जीवन रहेगा ही नहीं, और आप क्यों ही कुछ करेंगे जीवन में। तो वो कर्म आपको कर्मठ बनाने के लिए, आपको उस पाथ पर लाने के लिए भगवान ने वो 1% अपने पास रखा है और 99% आपको दिया है, जिसमें आपकी बुद्धि है, आपके कर्म करने की शक्ति है और आत्मा है, मोटिव्स हैं। तो अगर उन सबको हम सही तरीके से एक साथ इस्तेमाल करें और सही डायरेक्शन में बढ़ें तो वो 1% भी आपका हो सकता है आपके कर्मों से। और बाकी डेस्टिनी तो है ही, वो अपना रोल प्ले करती
1: इसमें
0: है
1: जी। इसमें आपको एक छोटा सा एक शास्त्रों का एक श्लोक आता है
0: जी,
1: अहम ब्रह्मास्मि।
0: बिल्कुल,
1: ठीक है, अब आप इसको समझ लीजिए कि भगवान ने तो बोला है मैंने हर इंसान को ब्रह्मा बनने की शक्ति प्रदान कर रखी है, उसको अपने सातों चक्रा और अपनी कुंडलिनी पे वर्क करना है।
0: ठीक
1: है, सब कुछ एनर्जी आपको दे रखी है, आपके पास में वो अवचेतना है जिससे आप उसको चेतना बना करके आपसे एक लाख किलोमीटर दूर भी कोई इंसान बैठा हुआ है उसको आप अपनी टेलीपैथी से अपनी एनर्जी आप एक्सचेंज करके उसको अपनी याद दिलवा सकते हो। ठीक है, ये सब ऊर्जा भगवान ने आपको भी दी है। पर मैं अगर ये कह दूं कि भगवान ने तो मुझे ब्रह्मा बना रखा है, मैं तो ब्रह्मा हूं और मैं तो इसको फ्री विल लेके चलता हूं, तो ऐसा नहीं होगा ना, वो ऊर्जा एक दिन खत्म हो जाएगी। अगर दी भी है और अगर मैं उसको कंटिन्यू एक्टिव नहीं रखूंगा, जैसे सेल को मैं अगर चार्ज नहीं करूंगा तो वो सेल भी डिस्चार्ज होकर के खत्म हो जाएगा, ऐसे ही मेरी अगर चेतना को मैं डेली एक्टिव नहीं करता हूं तो ये एनर्जी मेरी एक दिन आके खत्म हो जाएगी। तो भगवान ने आपको ताकत तो दी है, अब जब तक आप कर्म करके उस ताकत को एक्टिव नहीं करोगे, उसको इनलाइटन नहीं करोगे, तब तक ब्रह्मा तो बहुत दूर की बात है, आप इंसान भी नहीं बन पाओगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सटीक जानकारी आपके साथ हमें साझा हो रही है। हमारे श्रोतागण आज बहुत कुछ इस एपिसोड से लेके जाएंगे, मैं ये यकीन रखती हूँ, और मैं बहुत यू नो इंटरेस्टेड हूँ आगे चलने के लिए। पहले हम एक सॉन्ग सुन लेते हैं, गीत सुन लेते हैं खूबसूरत सा, और फिर हमारे आखिरी सेगमेंट पर चलेंगे, जहां पे मैं आपसे कुछ बेसिक रेमेडीज की बात करना चाहूंगी और एनर्जी एक्सचेंज की बात करना चाहूंगी कि आप कैसे अपने आप को बैलेंस रखते हैं सर इस सब के बीच। पहले सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत, जिंदगी प्यार का गीत है, फिल्म सौतन।

0: क्या खूबसूरत गीत है ये, जैसे जिंदगी का कोई फलसफा हो। आगे चलते हैं राज सर, आप जब इतने सारे लोगों से कनेक्ट करते हैं, अगेन मैं वापस कहना चाहूंगी कि आपने 1 लाख से भी ऊपर कुंडलियां आज तक देख ली हैं इन 2 दशकों में, तो इतने लोगों से जब आप कनेक्ट होते हैं, हर लेवल पे कनेक्ट होते हैं, तो आपकी एनर्जी कैसे डिप्लीट होती है और उसको आप कैसे बैलेंस्ड रखते हैं, और ये जो एनर्जी एक्सचेंज होता है जिसके बारे में आपने हमें बताया, वो किस तरह से वर्क करता है, और जो क्लाइंट्स आपके पास आते हैं उन्हें क्या सोचना चाहिए इसके बारे में, किस तरह से इस चीज को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए कि जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर से जुड़ रहे हैं तो वो एक एक कॉर्ड कनेक्ट हो रही है, एनर्जी कनेक्ट हो रही है, और उसको वैल्यू देना, उसको रिस्पेक्ट देना इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर अगर थोड़ा सा बात करें।
1: जी मैम, इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक चीज समझाऊंगा कि आपने जो शब्द कहा इसमें मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट ये था कि पहले आपको ध्यान होगा ऑर्कुट चलता था।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ऑर्कुट चलता था, ये फेसबुक तो बाद में आया, ऑर्कुट चलता था ये, तो ऑर्कुट और उसी समय याहू के एक ग्रुप चलते थे, याहू पे ग्रुप हुआ करते थे चैट के,
0: राइट,
1: ये करीबन 2004-2006-2007 की बात है जब करेक्ट, समय ये होते थे,
0: करेक्ट,
1: तो उस समय मैं प्रैक्टिस करने के लिए इन ग्रुप्स के अंदर मैं एस्ट्रोलॉजी के ग्रुप मेरे होते थे जिसके अंदर में मतलब थाउजेंड्स के अंदर में लोग बाग होते थे
0: जी,
1: तो हम मैं उसको फ्री ऑफ चार्ज उनको मैं कंसल्टेंसी और रीडिंग दिया करता था। और मेरे को जब मैं एक इंसान को मैं जैसे दे रहा हूं, आज मैंने आपको एक रीडिंग दे दी, कल आप दूसरा नाम बदल करके फिर आ जाते हो,
0: बताइए,
1: और फिर वही होती है, और जैसे ही मैं अपने सॉफ्टवेयर में डिटेल डालता हूं तो मुझे पकड़ में आ जाता है कि यार ये इंसान तो कल भी मेरे पास में आया था या कुछ दिन पहले भी आया था और ये अलग नाम से आया था,
0: बताइए।
1: आप अब मैं जो प्रिडिक्शन कर रहा हूँ आप सोचो क्या वाकई में मैं सेम होनेस्टी से प्रिडिक्शन कर पाऊंगा इस चेतना के साथ में कि तुम मेरे साथ में छल कर रहे हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: सेम सिचुएशन
0: जी,
1: सेम सिचुएशन हुई 2006-07 से लेकर के 2010 तक, जब मेरा फेसबुक पे एक ग्रुप हुआ करता था जिसमें करीबन 60,000 आदमी उस समय कनेक्टेड थे और डेली मैं प्रिडिक्शन करता था
0: जी,
1: फ्री ऑफ चार्ज, मतलब मेरे को एक था कि रोज कम से कम 100 हॉरोस्कोप को मेरे को देखना है और मेरे को रोज मेरे को यहाँ करना है, और यही मेरे पास में डेटाबेस इकट्ठा करने का एक जरिया था
0: जी,
1: जिस आप हॉरोस्कोप की बात करते हैं, मेरा हॉरोस्कोप का डेटाबेस कलेक्शन जो है वो 1 लाख से ज्यादा हॉरोस्कोप की जो डिटेल्स है ये सब मेरे को सोशल मीडिया के थ्रू मैंने जब हॉरोस्कोप रीड करे थे कस्टमर से मिलकर के, अब प्रोफेशनली जो मेरे पास में आई, मेरे पास में इसलिए मैं रिसर्च बेस पे जा सकता,
0: राइट,
1: तो जब मैं देखता हूँ, अच्छा वहां पे क्या, वहां पे भी फ्री ऑफ चार्ज देता था, ऐसा नहीं था वहां पे कोई चार्ज करते
0: जी,
1: तो आपको मैंने हॉरोस्कोप रीड कर दिया है, अब आपको एक नया प्रॉब्लम आ गया, कल फिर आप आए, अब आपके ही मैं कंटिन्यू रीडिंग दूंगा, तो जो पीछे जने बैठे हुए हैं और भी जो बाकी के 55,000-60,000 जो जने बैठे हुए हैं उनका क्या, तो इस कंप्लेंट को निकालने के लिए पता है

0: किसी भी गौशाला अनाथ आश्रम वगैरह की एक रिसिप्ट ला करके यहाँ पे मुझे या वो पेश कर दे ग्रुप में या मुझे पर्सनली शेयर कर दे, मैं उसको पहला नंबर दूंगा।
1: वाओ वाओ,
0: ठीक है। आप विश्वास करेंगे उस 60,000 में से एक सिंगल आदमी
1: बताइए
0: ने नहीं किया।
1: 60,000 जी,
0: उसमें लिखा क्या? अगर हम नकली इंटरनेट से अगर रिसिप्ट बना के दे देंगे तो क्या कर लोगे? ये रिप्लाई आए उस मैसेज के ऊपर में, आज भी ये मैसेज वहां पे पेस्ट है उस ग्रुप पे। उस पर रिप्लाई क्या आया? हम तो अगर फर्जी टिकट बना के दे देंगे। मैंने कहा तुम कर्म तो करो, तुम इतना भी कर दो,
1: इतना ही कर
0: दो, तो भी मैं तुम्हें फ्री रीडिंग दे दूंगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो उस समय मेरे को एक एहसास हुआ कि मैं जो नॉलेज का एनर्जी एक्सचेंज कर रहा हूँ किन लोगों के साथ कर रहा हूँ, क्या ये लोग इसकी वर्थ भी रखते हैं क्या?
1: ये पात्र हैं, कुपात्र हैं कि सुपात्र हैं जी,
0: है ना। तो उस समय मेरे को ध्यान आया कि भली तू अपनी इच्छा से दे, पर एक बार देने की क्षमता तो रख, श्रद्धा तो रख, पर तभी मैं कुछ दूँ। आजकल हो क्या रहा है, आप देखेंगे कि मोस्टली जितने भी सोशल मीडिया पे ग्रुप्स में एप्लीकेशंस पे एक चल रहा है कि फ्री रीडिंग ले लीजिए, फ्री रीडिंग ले लीजिए, सब फ्री रीडिंग। जब आप एक एक्सपर्ट के पास में कंसल्टेंसी लेने जाते हो और इस नॉलेज से जाते हो कि सिर्फ 5 मिनट में जब तक फ्री मिल रहा है तब तक ही इससे बात करनी है, जैसे एक समय खत्म हुआ और मुझे निकल लेना है,
1: बिल्कुल
0: आप यहाँ पे अपने कर्मों को खराब कर रहे हो।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि सामने वाले ने अपने ज्ञान का एनर्जी एक्सचेंज किया था आपके साथ, आपने उसकी काबिलियत, आपने उसके ज्ञान, आपने उसके नॉलेज की वर्थ नहीं समझी, और आप अपने मकसद से इससे 5 मिनट फ्री लेने के बाद में दूसरे के पास सबक पड़े।
1: बिल्कुल।
0: अब एक ने आपको कहा आपका काम हो जाएगा, दूसरे ने कहा नहीं होगा, अब आप भी कंफ्यूज हो कि वो सही है या ये सही है।
1: करेक्ट।
0: आपको अगर अपने फ्यूचर पे अगर रियली वर्कआउट करना है तो आप क्षमता रखें कि अगर कोई इंसान अपने ज्ञान को, अगर आज मैं 25 साल से नॉलेज में रखता हूँ और एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो उसके पीछे मेरे पीछे भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरे पीछे भी कोई है, तो मैं उनको भी ध्यान में रखूंगा। मैं सिर्फ ये नहीं देखूंगा कि यार सब फ्री में है, मिला हुआ है ज्ञान, उसको बांटते जाऊं।
1: बिल्कुल।
0: हमारी जो मेन क्लासिक है वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, जो मेन किताब है क्लासिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी को हम कहते हैं, वो है वृत पाराशर होरा शास्त्र
1: जी।
0: उसके जो फर्स्ट अध्याय है उसके अंदर में पेज पे एक लिखा होता है कि एक तो नक्षत्र मणि मत बनना, ठीक है, दूसरा ये ज्ञान उस इंसान को मत देना जिसको इसकी वर्थ नहीं पता हो, जिसको इस पे विश्वास ना हो, जो सिर्फ इसका उल्लास या मजाक करने आया है।
1: बिल्कुल, उल्लास ही है 5 मिनट में जानने की कोशिश करना। बिल्कुल।
0: मैम मुझे 15 मिनट मतलब एक होरोस्कोप से उसके पास्ट और प्रेजेंट को मैच करने, क्योंकि इंसान को भी समय चाहिए होता। मैंने बोल दिया 2011 में आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ था क्या, अब आप खुद 5 मिनट मेरे खा जाओगे उस 2011 को याद करने के लिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: कि लोग क्या कहते हैं, अरे पास्ट छोड़ो फ्यूचर की बात करो। अरे भाई जब मैं तेरा पास्ट नहीं रीड कर पा रहा हूँ, तेरा फ्यूचर क्या रीड करूंगा?
1: कैसे रीड करूंगा? यस यस यस।
0: ये फर्क होता है
1: जी,
0: कि हम जब क्वालिटी ऑफ रीडिंग देना चाहते हैं, जब हम किसी इंसान को रियली एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस देना चाहते हैं, वहां पे इंसान उस चीज की वर्थ नहीं करता है, वो भटक रहा होता है उस पास्ट रीडिंग के लिए जहां पे सिर्फ कुंडली खोली, लगन देखा और प्रेडिक्शन मार दिया।
1: करेक्ट।
0: ना दशा देखी, ना डिग्री देखी, ना कुछ देखा, पड़ा पट क्या काम है, ये वचन ठीक हो जाए।
1: जी जी जी।
0: तो ये है। अब आपने पूछा उपाय के बारे में
1: जी।
0: देखो मैम, दुनिया क्या सोचती है और दुनिया क्या करती है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं
1: जी,
0: ठीक है। मैं अपना आपको से अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ।
1: हाँ जी।
0: कि इन 20-25 सालों में मैंने एक चीज को समझा है कि किसी भी पर्टिकुलर ग्रह का

0: क्या हुआ जो आपको भुगतना है भुगतते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो मेरा एक ही बात कहना है, कोई ग्रह अच्छा नहीं, कोई ग्रह खराब नहीं, कोई भाव अच्छा नहीं, कोई भाव खराब नहीं, ये आपके ऊपर में है कि आप उस भाव को, उस ग्रह को कैसे यूज करते हो, कैसे उसको अपनी लाइफ पाथ में यूटिलाइज करते हो।
1: बिल्कुल,
0: ठीक है। अब सेम बात अगर मैं बोल रहा हूं और मैं कहता हूं कि आप डेली शिवजी पर जाओ, चल चढ़ाना, आपका काम हो जाएगा, तो ये भी एक वह झूठ हो गया। जो मैं एक तरफ तो मैं कह रहा हूँ कोई अच्छा बुरा नहीं, दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ कि शिवजी आपका सब कुछ कर देंगे।
1: करेक्ट, करेक्ट
0: जी। तो मेरा एक ही मानना है, एक होती है हमारी निष्ठा, एक होती है हमारी किसी भगवान के प्रति आस्था, और उस निष्ठा और आस्था के अनुसार अगर मैं कोई डेली की जो हमारी दिनचर्या थी, सूर्य को जल चढ़ाना, शिव जी को जल चढ़ाना, जीवन में जल तत्वों को न्यूट्रलाइज करना, तो ये तो हो गए मेरे दैनिक दिनचर्या के भगवान और आस्था के कनेक्शन जो नेचुरल वे में मेरे कर्मों से जुड़ रहे हैं।
1: करेक्ट, बिल्कुल। यहाँ पे ज्योतिष उपाय जी,
0: ये हाँ, ये कोई ज्योतिषी उपाय नहीं हो,
1: नहीं है, ये दिनचर्या को बदलना है।
0: ये आपका एक भौतिक, आपके जिस परमात्मा को आपने पूजा है, जिस परमात्मा ने आपको जन्म दिया है, जिस परमात्मा को आप आपका परिवार मानते हो, उसको ग्रेटिट्यूड करने का तरीका है।
1: करेक्ट,
0: कि आपने जन्म दिया, मैं धन्यवाद हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं आपको जल चढ़ा रहा हूँ, स्वीकार करें और मुझे आशीर्वाद दें।
1: बिल्कुल,
0: ठीक है। पर अब मैं कहता हूँ कि ज्योतिषी जाके बोलते हैं कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, तुम जाकर शिव जी पर जल चढ़ाना, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तो ऐसे अगर शादी होगी होती तो दुनिया में कोई कुंवारा ही नहीं रहता।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: अब यहाँ आती है बात कि संकल्प, आप कैसे उस चीज को आप शादी में कन्वर्ट करेंगे। उपाय कर रहे हैं, उपाय करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ जल्दी चढ़ाना, शादी नहीं होगी। मैं किसी भी इंसान को ये नहीं कह रहा हूँ कि शिव जी पर जल चढ़ाओगे तो शादी नहीं होगी। मैं ये कह रहा हूँ जल चढ़ाने का मकसद तो बताओ, क्यों चढ़ा रहे हो, क्या चाहते हो, तो उसके पीछे हमारे शास्त्रों में संकल्प लेना बताया गया कि आप अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने पति का नाम, अपना गोत्र, आप जा रहते हो वहां का स्थान बताते हुए भगवान को धन्यवाद करो, उनको को अपनी कृतज्ञता दिखाओ कि मैं आज आपके श्री चरणों में आया हूँ, आई हूँ, और मेरी एक मनवांछित अभिलाषा है कि मुझे एक सुयोग्य पत्नी या सुयोग्य वर प्राप्त हो
1: जी।
0: और आप मेरे इस जल को स्वीकार करके मुझे आशीष प्रदान करना
1: जी।
0: ये बताओ तो सही, सिर्फ जल चढ़ा दिया, हाँ मैं तो 16 सोमवार का व्रत किया और जल चढ़ा दिया, तो इससे पति या पत्नी नहीं मिलने वाले।
1: बिल्कुल,
0: आपको भगवान को अपनी निष्ठा बतानी है, मैं किस कार्य विशेष को लेकर हूँ, तो वहां पे कोई भी उपाय, रेमेडी यूनिवर्सल नहीं हो सकती है, हर इंसान को अपना अपना काम करना होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत बार लोग आपने देखा होगा मंदिरों में दीपक लगे हुए होते हैं।
1: हाँ जी, बिल्कुल,
0: ठीक है। अब उस दीपक के अंदर में कितने तरीके तेल मिले हुए हैं उसको आप समझो। आपने छायादान का नाम सुना, छायादान?
1: जी जी, बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना। तो छायादान क्या होता है, कांसे की कटोरी में तेल लेकर के अपना चेहरा देख करके उस तेल का दान करना, इसको हम शनि का दान के रूप में कहते हैं कि जिसको शनि लगा हुआ है, शनि की छाया
1: जी।
0: अब एक इंसान ने ये छायादान करके उस दीपक में, जो अखंड दीपक जल रहा है उसमें ये तेल डाला, ये बोल करके कि मैं शनि की शांति हेतु ये तेल डाल रहा हूँ।
1: करेक्ट,
0: एक इंसान ने उतारा करके उस दीपक में तेल डाला कि मेरे तमाम शारीरिक और शत्रुओं का संहार हो, और मैं ये उतारा करते हुए किसी के परिवार वाले ने करके दिया और जाके उसने वो तेल उसमें डाल दिया
1: जी।
0: दूसरा इंसान गया कि मैं अपने धर्म अनुसार आज शनिवार है तो मैं अपने घर से तेल लाया हूँ, भगवान आपके चरणों में चढ़ा रहा
1: हूँ।
0: अब यार तीनों जनों की निष्ठा अलग अलग थी पर मिक्सअप होके कहाँ गया, उस एक तेल के अंदर में।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: भाई, अगर तुम पर्टिकुलर कोई निष्ठा से, कोई अपनी कोई इच्छा पूर्ति से या किसी कार्य विशेष के लिए कर रहे हो तो अपना इंडिविजुअल दीपक लगाओ।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: मीठे तेल के साथ में सरसों का तेल या कड़वा तेल मिक्स मत करो। एक जना मीठे तेल का,
1: जी जी जी,
0: एक जना मीठे तेल का दीपक लगा रहा है, तुम उसमें सरसों का या कड़वा तेल लाके नीम का तेल मिक्स करके चढ़ा रहे हो शत्रु के साथ नाश हेतु, तो ना उसका भला होगा ना तुम्हारा भला,
1: ना तुम्हारा भला होगा। बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो यहाँ पे जो उपाय वाली बात करता हूँ, मैं उपाय के लिए एक ही बात कहता हूँ, यूनिवर्सल थंब रूल कुछ नहीं है, ज्योतिष में थंब रूल नाम की कोई चीज नहीं है
1: जी।
0: एक इंसान के लिए 6, 8, 12 हाउस में बैठे हुए प्लेनेट खराब हो गए, वही

0: दूसरे इंसान के लिए जब ये राशि परिवर्तन हो जाएंगे, मतलब एक राशि में दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, ये जब हो जाएगा तो वहां हो जाता है विपरीत राज्यों। तो वह विपरीत राज्य क्या होता है कि फकीर के घर में पैदा हुआ इंसान भी सक्सेस पाएगा। तो हम मोस्टली हम ये देखते हैं कि जितने भी ये राजनेता लोग हैं या ऐसे लोग जो विदेश में जाकर के अच्छी सक्सेस प्राप्त करें, उनकी कुंडली के अंदर में विपरीत राज्यों का अच्छा बना हुआ
1: जी।
0: तो एक के लिए तो खराब हो रहा, दूसरे के लिए अच्छा हो रहा। तो यहाँ देर इज नो थंब रूल। आप मुझे कोई भी एक रूल बता दो ज्योतिष का, मैं आपको उसका अदर साइड बता दूंगा कि मैम ये तो हेड है, ये इसका टेल है। एग्जाम्पल आपने कहा सूर्य, सूर्य उच्चिका, सूर्य उच्चिका मीन्स ए पर्सन हु हैव ए ह्यूज कॉन्फिडेंस लेवल, ए पर्सन हु हैव ए वेरी सेल्फ रेस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल शिप।
1: करेक्ट।
0: अब इसका बैक साइड क्या हो गया, एक पर्सन जो बहुत इगोइस्ट है, घमंडी है और वह अपनी ईगो और घमंड के आगे सब कुछ अपना नाश कर देता अगर उसने अपनी ईगो घमंड को कंट्रोल नहीं किया तो।
1: बिल्कुल।
0: सूर्य वही है, सूर्य उच्चिका उसके भी है, सूर्य उच्चिका उसके भी है। एक ने उस सूर्य को यूज किया इंटेलेक्चुअल शिप में अपनी चेतना को जगाने के लिए, अपने आप को समझने के लिए। दूसरा आदमी मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं, मैं ही क्यों करूं, वहां पे उसके सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो आपको समझना है कि सबसे मेरा जो एक यूनिवर्सल उपाय जो मैं करता हूँ या जो मैं अपने आप को करता हूँ, मैं 5 मिनट आत्ममंथन करता हूँ, अपनी हर उस परमात्मा, उस परम ब्रह्म, परम शक्ति को मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं ग्रेटिट्यूड करता हूँ, जिन जिन से मैं कनेक्टेड हूँ, जिन जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, जिन जिन्होंने मुझे इस राह पे अपने आप को अग्रसर होने के लिए मुझे एनहांसमेंट किया, मुझे बताया कि भाई तू बिजनेसमैन नहीं करेगा, तू इस बात पे आ, यहाँ सक्सेस मिलेगी। तो जिसने भी मुझे किया मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने माता पिता का। सबसे बड़ा आपको जो हम जो भटक रहे हैं, हमारी आदि प्रॉब्लम्स की वजह है, हम हमारे पितृ पूर्वज कुलदेवी और सती को भूल जाते हैं। उन लोगों को हम कभी भी याद नहीं करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और भटकते रहते हैं, हर एक ज्योतिषी बोल रहा है तुम्हारे पितृ दोष है, तुम्हारे कुल देवता का दोष है, दोष। अरे कोई किसी पितृ देवता, किसी कुल देवता की तुमसे कोई पर्सनल ग्लिच नहीं थी, प्रॉब्लम एक ही है, तुमने उनको परेशान किया या तुम उनको भूल चुके हो, तुम उनको याद नहीं करते हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तुम उनको नमन करो, तुम उनके नाम का दीपक लगा दो, उनको सिर्फ ये एहसास कर दिलवा दो कि भाई मैं कल भी आपको याद करता था, आज भी करता हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: इससे ज्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए, आपके 5 पकवान नहीं चाहिए उनको।
1: बिल्कुल।
0: आप भगवान को रोज भोग लगाते हो, आपके भगवान के बुक, वो आपके भोग के बुके नहीं है, वो आपके सिर्फ
1: भाव के जो बुके
0: हैं। आप भाव के बुके हैं कि यार ये खाता बाद में, पहले मुझे भोग लगाता है।
1: जी जी।
0: ये निष्ठा चाहिए होती। तो सिंपल सा है, आत्ममंथन करें। मैं पब्लिक को देखता हूँ, एक ज्योतिषी ने बोला तुम 108 बार हनुमान चालीसा करना, दूसरे ने बोला तुम गीता पढ़ना, तीसरे ने बोला तुम दुर्गा के 108 नाम का जाप करना, चौथे ने बोला शिव जी का जाप करना। वो आदमी बेचारा घंटे दो घंटे तो पूजा पाठ में लगा
1: रहता करता है। जी जी।
0: अब उसमें क्या रहता है, वो कहता है मैं शिव जी को भी मनाऊंगा, मैं दुर्गा माता को भी मनाऊंगा, मैं हनुमान जी को भी मनाऊंगा, मैं सबको मनाऊंगा। तो यहाँ कोई मनता मनता नहीं है, एक मन जाता है दूसरा नाराज होता है।
1: जी।
0: क्योंकि उसका दिमाग क्या आ रहा है, यार शिव जी की तो पूजा हो गई, अब इसके बाद हनुमान जी की करूंगा, हनुमान जी के बाद में दुर्गा की करूंगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। वो कैलकुलेशन है सारा। जी।
0: वो घड़ी देख करके ये करूंगा, अरे ऐसा नहीं होता है।
1: जी।
0: तुम 5 मिनट सिर्फ किसी भी एक भगवान को पकड़ लो, बोल दो कि मैं तो सिर्फ आप ही की शरण में आ गया हूँ, मेरे को और कुछ नहीं पता है, जो कुछ करना है अब आपको ही करना। एटलीस्ट आपके बॉस को ये तो पता है कि भैया ये मेरे पे डिपेंडेंट है, मुझे ही इसको प्रमोशन दिलाना है।
1: बिल्कुल।
0: मैं एक ऑफिस में हर इंसान को चापलूसी करता हूँ, चपरासी यार तू सर को बोलना ना यार मेरा प्रमोशन करा दे।
1: जी।
0: उसके ऑफिस ऊपर वाला यार तू सर को बोलना ना मेरा प्रमोशन करा दे। तो सर एक दिन आके बोलेंगे यार ये इतनी चपरूसी की चेक लगवा रहा है, डायरेक्ट मेरे पास तो नहीं आया, क्यों करूं मैं इसका प्रमोशन।
1: बिल्कुल।
0: तो डायरेक्ट आप अपने परमात्मा से अंतर ध्यान करें, उनसे आत्ममंथन करें, उनको धन्यवाद दें, उनको ग्रेटिट्यूड करें, ये सबसे बड़ा है। 5 मिनट ही निकालें, पर निकालें उस 5 मिनट में सिर्फ आप हो और आपका भगवान।
1: करेक्ट। बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा ये एपिसोड सर, और मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज आप अपना इतना समय निकाल के, क्योंकि मैं जानती हूँ आपके हर मिनट की वैल्यू है और किस तरह आपने 1 घंटा निकाला होगा हमारे लिए। तो मैं आपको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड देना चाहती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ इतनी सही, सटीक, सरल तरीके से सारी बातचीत साझा करी कि हर एक जो श्रोता आज हमें सुन रहा है, जिसको आज से पहले ज्योतिष के बारे में नहीं भी पता हो, वो आज कुछ हमें सुन के कुछ लेके जाएगा और अपने जीवन में कुछ चेंज कर पाएगा. तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद राज सर आपका.
0: मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा लास्ट में, आपने इतना कुछ बोल दिया
1: जी.
0: मेरे गुरु ने मुझसे एक बात कही थी कि ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा. मैंने अगर अपना कुछ ज्ञान अगर आपके यहाँ शेयर किया है तो यही ज्ञान मुझे

राजकुमार बिरला जी का दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ इतनी इंसाइटफुल, इतनी प्रेरणादायक बातें साझा करी। मैं हूं आपकी आरजे तनुषा, आपके तरानों की हम सफर, और आपसे अब लेती हूं इजाजत। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और जिंदगी को पूरी तरह से जीते रहिए। मिलेंगे फिर एक नए एपिसोड के साथ सिर्फ SN रेडियो पर। नमस्कार।

0: हर मुलाकात एक गीत की तरह होती है। कुछ गीत खत्म हो जाते हैं पर उनकी गूंज देर तक दिल में रहती है। आज की इस महफिल से हम भी कुछ यादें, कुछ सीख और कुछ मुस्कुराहटें अपने साथ लेकर जा रहे हैं। मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का। याद रखिए दोस्तों, जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होती, पर हर जिंदगी में एक कहानी जरूर होती है जो सुनी जाने लायक होती है। फिर मिलेंगे एक नए चेहरे, एक नए सफर और एक नई दास्तान के साथ। तब तक अपने दिल की धुन को सुनते रहिए। नमस्कार।
1: आप हैं आपके दोस्त आरजे समीर के साथ, और चलिए शुरू करते हैं कुछ प्रेरणादायक गीतों के साथ कुछ प्रेरणादायक बातें। दोस्तों, मैं लाया हूं कुछ बेहद सुंदर कहानियां जो हमें प्रेरित करेंगी, बहुत कुछ सिखाएंगी। तो लीजिए सुनिए।

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूँ, जाइएगा नहीं कहीं। एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूँ। तब तक ये गीत सुनिए।

दोस्तों सबसे पहले तो शुक्रिया सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी विल मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

इस्तीफा, जुर्म की सबसे बड़ी सजा माफी, समझदार को इशारा काफी। तो भगवान सबको इशारे में समझने लायक अक्ल दे कि एक था कुम्हार, माटी लीद गार चाक और नियाव से तंग आकर उसने छेनी हथौड़ा थाम लिया और देवी देवताओं की मूर्तियां गढ़ने लगा। उसका हाथ बेहद साफ था, हथौड़े की ठक ठक से वो कुछ ही दिनों में सारे इलाके में मशहूर हो गया। किसी और की गढ़ी मूर्तियां लोगों को पसंद ही नहीं आती। छोटे बड़े तमाम मंदिरों थानों देवरों और ठाकुर द्वारों में उसी की मूर्तियों की थापना होने लगी। उसके पास एक गधा था, गधे जैसा गधा, लंबोतरा चेहरा और वो ही ढैंचू ढैंचू का रेखना, वे ही लातें और वे ही सारी बातें। उसके मालिक कुम्हार ने मौज में आकर देवी देवताओं के शान के मुताबिक गधे पर सुरंगी झूल डाली, बबूल का ढोर चंदन का ढांचा बनवाया। मूर्तियां तो वे ही थीं, पर कुम्हार का रुतबा काफी बढ़ गया। गधे पर मूर्तियां लादे जब वह तयशुदा मुहूर्त पर पहुंचता तो लोग उसे बधाते, आरती उतारते, मालाएं पहनाते, गुलाल उछालते। औरतें गधे पर भी हथेलियों से गुलाबी छापे लगाती, मांडड़े चितेरती। मूर्तियां गढ़ने वाला कुम्हार तो घी के पकवान खाता ही था, पर साथ ही साथ गधे के ठाठ भी कम नहीं थे। लपसी खीर गुलगुले घेवर और मालपुए खा खा कर वो कौड़ी की तरह चमकने लगा। उससे पहले शायद ही किसी गधे की ऐसी मौज बनी हो। लोग बाग दूर से ही कुम्हार और गधे को पहचान जाते, हाथ का काम छोड़कर उसकी ओर दौड़ते, मूर्तियों को भी हाथ जोड़कर प्रणाम करते, औरतें गीत गाती। पर गधे की अक्ल को क्या कहें कि उस खातिर और आव भगत से उसे यह भरम होने लगा कि वह उसके चरणों में शीश नवाते हैं, दंडवत करते हैं, बनाव सिंगार से लदी सुंदर सलोनी रमणियां उसी के लिए गीत गाती हैं, नरम नरम अंगुलियों से उसी के लिए मांडड़े चितेरती हैं। गधे का मालिक कुम्हार तो अपनी हैसियत अच्छी तरह जानता था, पर सुंड मुसुंड गधे का दिमाग फिर गया। ऐसा काहिल हुआ कि जब भी मौज में आता रुक जाता, पेट भरने पर भी गुलगुलों में मुंह डाले रहता, औरतों के गीत गाती टोली से टलना ही नहीं चाहता। मजबूरन कुम्हार को उसकी धुनाई करनी पड़ी, तो उसे न चाहते हुए भी वहां से चलना पड़ा। दुखी मन से कुम्हार को बद्दुआएं दे देता। एक मर्तबा गौने पर आई नई बहू का कुंवारा रूप देखकर उसका एक अंगुल भी आगे बढ़ने का मन नहीं हुआ। कोंचते कोंचते कुम्हार की नाक में दम आ गया, पर पट्ठा टस से मस नहीं हुआ। बजरंग बली की मूरत की थापना का मुहूर्त निकला जा रहा था। आखिर कुम्हार का दिमाग गर्म हो गया, जम कर उसकी मरम्मत की। लहू लुहान होने पर उसे बेबस चलना पड़ा, पर मन में पक्की गांठ ली कि मुफ्तखोर हत्यारे कुम्हार के पास अब नहीं रहेगा। इतने लोग लुगाइयों के सामने इतनी बेहरमी से मारा, कुछ तो लिहाज मुरव्वत करनी थी। सयानों ने कितना लताड़ा, पर उसके कान पर जू न रेंगी। जाने कहां की मैं है, दिमाग आसमान में चढ़ा है। वो कोई मामूली गधा होता तो लोग उसके चरणों में शीश क्यों नवाते, मेहंदी रचे हाथों से बहू बेटियां छापे क्यों लगाती, उसे पकवान क्यों परोसती। सभी देवता और आदमी जब एक सरीखे नहीं होते तो सभी गधे भी एक सरीखे नहीं होते। वो अवतारी गधा ना होता तो कौन उसे सर आंखों पर बिठाता। यह बात उसके रोम रोम में घर कर गई। क्यों किसी की गुलामी करें, साला सर पर मूर्तियां ढोकर ले जाएगा
तब पता चलेगा, सारी मटर गश्ती ठिकाने आ जाएगी। इस भरम के दूसरे ही दिन वो रस्सी तोड़ाकर भाग छूटा। एक एक घर उसका जाना पहचाना था। सीधे एक महाजन के यहां जा पहुंचा। कुम्हार के साथ वहां काफी खातिर हो चुकी थी। 5 मंदिर तो उसने खुद बनवाए थे, छक्कर घेवर और मालपुए खाए थे। चितेरते ही नथुओं में घी की महक घुल गई। सेठ के छोटे लड़के की बारात चढ़ रही थी। गुड़ की मांगलिक लपसी से एक बड़ी कड़ाही भरी थी। खाने की तैयारी हो रही थी कि हमेशा वाली खातिरदारी और मान सम्मान के भरोसे वो मस्तानी चाल से कड़ाही के पास गया। इधर उधर देखभाल करने की क्या जरूरत, भरम के गुमान में कड़ाही में मुंह डालकर लपसी खाने लगा। सहसा नाई की नजर उस पर पड़ गई। उसने न तो छापे देखे ना मानड़े, जलती हुई लकड़ी खींच कर नाक पर दे मारी। उसकी आंखों के सामने बिजली चमकी। हक्का बक्का खड़ा रहा जैसे काठ मार गया हो। भागने का भी होश न रहा। फिर नाई के कैसी कोताही, पीठ पर 4-5 और जमा दी। वो रेंकता हुआ सर पर पांव रखकर भागा। शायद जल्दी जल्दी में उसे पहचाना नहीं। जलन की चरमराहट जरा कम होने पर वो एक जाट के यहां जा पहुंचा। वहां भी काफी मजे लूट चुका था, दूध दही और हलवा। चौधरी ने तीनों देवरों की थापना करवाई थी। कुमार को सोने की चौकी मिली थी। गधे के बदन पर भी गुलाबी छापे मांडे थे। मेहंदी का टीका निकाला था। उसका सभाग की चबूतरे पर ही रोटियों की टोकरी रखी थी। आड़े दिन तो दही सोगरे भी काफी। टोकरी में मुंह डालकर भचड़ भचड़ सोगरे खाने लगा। चौधरी हाथ में जई लेकर बाहर आया तो उसकी आंखें दहक उठी। पंजे के बल होकर पीठ पर ऐसा करारा वार किया कि वो धूल चाटने लगा। उसका गुस्सा तब भी कम नहीं हुआ। पेट पर दना दन 4-5 और जमा दी। हर चोट के साथ उसकी आंखों के आगे बिजली चमकती। गधा मार खाने में मजबूत होता है, दूसरा जानवर होता तो उठ भी नहीं पाता। पर वो तो ठोकरों के साथ ही आपा संभालकर घोड़े की रफ्तार से भागा। राह में उसके देखे भाले लुहार का घर आया। धौंकनी चल रही थी। पास ही बीज के लिए बाजरी की गठरी खुली पड़ी थी। ना कुछ बाजरी के लिए कौन मना करेगा, मुंह डालकर बकल बकल खाने लगा। फर फर की भनक सुनकर लुहार ने मुड़कर देखा। मार से लहू लुहान गधा, यहां भी बाज नहीं आया। लुहार के कलेजे में भट्टी दहक उठी। लाल सुर्ख हसिए के मूठ पकड़कर उसके पुट्ठों पर डाम जड़ दिया। चमड़ी जलने की चरड़ सी आवाज हुई। थोड़ा सा धुआं उठा। रेंकने की ताकत भी ना बची। मुंह उठाकर सर पट भागा, बिना देखे सीधे कुमार के बाड़े की ओर। भरम का जाला कट गया कि कुम्हार के बाड़े के अलावा कोई आसरा नहीं। मूर्तियां ढोने से बेहतर कोई काम नहीं। भरम की जितनी मार खाई और जो डाम उगड़ा वो ही बहुत। बैठे बिठाए कैसी तो मत ओढ़ ली। जाने बूझे हाथ का परस पाकर उसने आंखें खोली। कुम्हार प्यार से सहलाते हुए बोला, मैं जानता था कि तू वापस आएगा। वो चुपचाप पूंछ हिलाते आंसू बहाने लगा। सोचने लगा, किसी दिन हसीए की यह जलन भी खत्म होगी, जरूर खत्म होगी, पर भरम के मानड़े का दाग कभी नहीं मिटेगा।

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूँ, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूँ। तब तक ये गीत सुनिए।

गुलामी कब तक? एक सूफी फकीर थे, वो एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे थे। एक आदमी स्वस्थ गुलाम खोज रहा था। उसने फकीर को देखा, फकीर स्वस्थ था, कपड़े जरूर फटे हुए थे। आदमी ने सोचा कि यह जरूर कोई भागा हुआ गुलाम है। उस आदमी ने फकीर से पूछा, क्यों जी, क्या तुम भागे हुए गुलाम हो? फकीर ने कहा, अरे वाह, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, भागा हुआ हूं और गुलाम भी हूं। फकीर का मतलब था, परमात्मा से दूर हूं तो गुलाम ही हूं। पर उस आदमी को फकीरी की इस भाषा से कोई मतलब नहीं था। उस आदमी ने कहा, चलो ठीक है, मैं भी एक गुलाम की तलाश में हूं, मैं तुम्हारा मालिक बनने को तैयार हूं, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। फकीर ने कहा, गजब है, ये तो यही मेरी खोज है, मैं भी तो मालिक को ही खोज रहा हूं। वह आदमी उसे घर ले गया और कहा, अब जो काम मैं बताऊं वो करना। फकीर ने कहा, यही तो मैं चाहता था कि कोई बताने वाला मिल जाए कि मैं करूं क्या, अपने लिए तो सब अनकिया हुआ जा रहा है, तुम भले मिले। आदमी ने सोचा, यह आदमी तो पागल है या कुछ समझने में गलती हुई है। पर फिर सोचा कि गुलाम ने खुद ही हामी भरी है, मुफ्त में मिला है, उसने उससे काम लेना शुरू कर दिया। वह आदमी इतना भला पाया कि उस आदमी ने उसका नाम खैर रख दिया। खैर मतलब भला। फिर उसे कपड़ा बुनना सिखाया तो उसका दूसरा नाम हो गया नसाज, यानी कपड़ा बुनने वाला। खैर नसाज उस सूफी फकीर का नाम हो गया। 10 साल बीत गए, उसने बड़ी सेवा की मालिक की। अब मालिक को कचोटने लगा कि वह बहुत शोषण कर रहा है, कभी उसे कुछ दिया नहीं। आदमी ने नसाज को बुलाया और कहा, मुझे लगता है मैं शोषण कर रहा हूं, अब और नहीं, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, अब तुम अपने मालिक हुए। नसाज ने कहा, बड़ी मेहरबानी, बड़ी कृपा की तुमने, मुझे मेरा मालिक बना दिया। तुम्हारे पास मुझे दास बनने की कला सीखने को मिली, मेरा अहंकार टूट गया, अहंकार टूटा तो गुलामी मिटनी शुरू हो गई, और देखो तुम तक मुझे मुक्त कर रहे हो। पर सवाल है कि तुम कब तक खुद गुलाम बने रहोगे?

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं सायरा बानो। दोस्तों, सायरा बानो जी का जन्म 23 अगस्त 1944 को मसूरी में हुआ था। आइए, पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। आगे जाने से पहले सुनते चलते हैं दोस्तों ये गीत।

दोस्तों, सायरा बानो जब 16 साल की थीं तभी से उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू किया। वो कथक और भरतनाट्यम की बहुत प्रवीण नर्तकी थीं। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। सायरा बानो जी की बहुत सी फिल्मों में विश्वजीत और जॉय मुखर्जी के साथ उन्होंने अभिनय किया और इनकी जोड़ी हमेशा बहुत हिट रही। लीजिए, पेश खिदमत है उनकी फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा। जंगल में एक भैंस भागी हुई जा रही थी। चूहे ने रोका, क्या हो गया बहन, इतनी तेजी से भागी जा रही हो? भैंस ने कहा, पुलिस आई है हाथी को पकड़ने। चूहे ने कहा, तो वो हाथी को पकड़ने आई है, तुम तो हाथी नहीं हो। उसने कहा, भैया ये हिंदुस्तान की पुलिस है, अगर पकड़ लिया ना तो 20 साल तो साबित करने में निकल जाएंगे कि मैं भैंस हूँ, हाथी नहीं हूँ।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। आप मेरे साथ है ना? लीजिए दोस्तों, सुनिए सायरा बानो जी की फिल्म का ये गीत।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर, आप मेरे साथ है ना। तो दोस्तों, सुनते हैं विनोद खन्ना साहब के फैन से कुछ उनके बारे में।
1: दोस्तों, हमारे साथ बने हुए हैं गौरव दीक्षित जी अयोध्या से। मैं इनसे पूछना चाहूंगा विनोद खन्ना जी के बारे में, आप क्या कहेंगे?
2: क्या पर्सनैलिटी है भाई। हम लोग जब पढ़ते थे उस समय विनोद खन्ना जी अपने चरम में हुआ करते थे, लगता था पर्सनैलिटी में तो ऐसी हो।
1: बहुत बढ़िया। विनोद खन्ना जी की किसी फिल्म का कोई गीत आप सुनवाना चाहेंगे श्रोताओं को?
2: एक बड़ी फेमस फिल्म आई थी मुकद्दर का सिकंदर
1: जी,
2: अमिताभ जी और विनोद खन्ना जी की, उसमें वो प्यार जिंदगी है, बड़ा अच्छा गाना है।
1: कौन सा गीत?
2: प्यार जिंदगी है।
1: ओके ओके, वो उन्हीं के ऊपर सुनाया गया था।
2: जी जी जी जी जी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही गीत हम अपने श्रोताओं को सुनाते हैं गौरव दीक्षित जी का पसंद का। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव भाई।
2: बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद समीर भाई।
1: थैंक यू।
0: लीजिए, पेश खिदमत है उनके ही फैन की पसंद का ये गीत।

0: देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।
1: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
2: जज ने पूछा, तुम्हें तलाक क्यों चाहिए भैया? आदमी ने कहा, सर मेरी बीवी मुझसे लहसुन छिलवाती है, प्याज छिलवाती है, बर्तन मंजवाती है। जज ने कहा, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? लहसुन को थोड़ा सा गर्म कर लिया करो, आसानी से छिल जाएंगे। प्याज को फ्रिज में रख दिया करो तो आंसू नहीं आएंगे, और बर्तनों में ना 10 मिनट पहले पानी डाल दिया करो, आराम से धुल जाएगा, समझे? तो आदमी ने कहा, समझ गया सर। जज ने कहा, क्या समझे? आदमी ने कहा, सर आपकी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब है।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आप मेरे साथ है ना दोस्तों? विनोद खन्ना साहब का जन्म एक पंजाबी हिंदू फैमिली में पेशावर में 6 अक्टूबर 1946 को हुआ था। लीजिए पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

दोस्तों, विनोद खन्ना साहब को दो फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले। वो अपने जमाने में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले स्टार्स में से एक थे। लीजिए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

0: देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।
1: दोस्तों, विनोद खन्ना साहब फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर कुछ समय के लिए, 4 साल के लिए चले गए थे, थोड़ा आध्यात्म की तरफ घूम गए थे। 1982 से 1986 तक वो फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहे। लीजिए, पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

1987 में उनकी वापसी हुई फिल्म इंडस्ट्री में और कई कामयाब फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। चलिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर, आप मेरे साथ है ना? नहीं दोस्तों, सुनते हैं विनोद खन्ना साहब की ही फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: सुना है लोग उसे आंख भर कर देखते हैं, सुना है

अपने हुनर को देखते हैं। सुना है वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है रात भर उसे चांद तकता रहता है। सितारे बामाए फलक से उतर कर देखते हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं। सुना है रात को जुगनू ठहर कर देखते हैं। नमस्कार, आदाब दोस्तों। 90.8 FM की तरंगों पर SN रेडियोज और रेडियो टांटिया भील पर मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त हाथी रॉय, लेकर हाजिर हो चुकी हूं आपका अपना महफिलों की रौनक बढ़ाने वाला प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक। दोस्तों, जब दुनिया की बंदिशें और रोज़मर्रा की मसरूफियात हमारे जहन को थका देती हैं, तब दिल किसी ऐसे साए की जस्तजू करता है जहां वो अपने बिखरे ख्यालात समेट सके। ऐसे ही लम्हों में शायरी और मौसीकी की हमारी तन्हाई के साथ जैसे चोली दामन का साथ बन जाता है। कमाल की बात तो ये है दोस्तों, जो बातें हम अपनों से भी कहने से कतराते हैं, कोई ज़हीन शायर उन्हें सिर्फ एक मिसरे में पिरोकर हमारी रूह को एक मखमली तसल्ली अता कर देता है। आज की ये नफीस शाम भी कुछ इसी दिलकश मिजाज को अपने आगोश में समेटे हुए आगे बढ़ेगी। तो अपनी मसरूफियात को कुछ देर के लिए एक तरफ रख दीजिए, जहन को बिल्कुल सुकून दे दीजिए और कुछ देर इन सुरों को अपने नाम कर लीजिए। आइए बिना और देर के आगाज करते हैं सुरों के इस नए सिलसिले का और रुख करते हैं हमारी आज की पहली पेशकश की ओर। दोस्तों, आज जब मैं YouTube पर गज़लों को ढूंढ रही थी तो अचानक ये वीडियो सामने आ गया, कोई जागृति फिल्म्स भुज कच्छ का कोई लाइव प्रोग्राम था। फिर मैं रुकी, बैठी और सुना तो बहुत पसंद आई ये गज़ल, नगमा या जो भी था। जो भी शख्स इसको गा रहा था वो खूब गा रहा था। गज़ल का मिसरा है, तू निगाहों से ना पिलाए तो अश्क भी पीने वाले पीते हैं। वैसे जीने को तो तेरे बिन भी इस जमाने में लोग जीते हैं। जिंदगी तो उसी को कहते हैं जो बसर तेरे साथ होती है। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या और किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, माई लव फिल्म की गज़ल या नगमा जो हमारे मुकेश साहब ने गाया था 1970 में, जिसके मौसिकार थे दान सिंह और इसे लिखा था आनंद बख्शी जी ने। इतनी पुरासर कैफियत, कितनी बेलौस मोहब्बत, कितनी तिश्नगी, क्या क्या नहीं इस इजहारे मोहब्बत बयां में। सच कोई कमी नहीं। और जिस अंदाज से मुकेश साहब ने इसे गाया है उसकी तो कोई मिसाल हो ही नहीं सकती। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ये किसी महफिल में कोई शख्स गा रहा था और मुझे उसकी

गायकी पसंद आई। ये गज़ल हम सब के माजी की कोई याद की तर्जुमानी ज़रूर करती होगी। मुझे अच्छे से याद है, मैं इसे अक्सर गाया करती थी। सो आइए आपके साथ मिलकर उस नामालूम शख्स की गायकी का लुत्फ उठाते हैं। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। आपकी नजर।

मेरे प्यारे दोस्तों, इस बज़्म की अगली पायदान पर मैं आपके लिए एक बेशकीमती जवाहर चुनकर लाई हूँ। आपके मूड को 360 डिग्री मोड़ कर एक ऐसी रूहानियत की ओर ले जा रही हूँ जहाँ तबले की थाप का अंदाज बदल जाता है, दिल बस झूमने लगता है, परेशान दिल भी उठकर अपना गम भूलकर इसकी थाप पर नाचने लगता है। जी हाँ, मैंने हमारी बज़्म में दावत एक बार फिर से दी है पद्मश्री से सम्मानित हंसराज हंस जी को। इस मस्त बेबाक नगमे को उन्होंने जिस अंदाज से पेश किया वो काबिले तारीफ है। इसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी जी ने और संगीत से सजाया था उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब ने और गाया बकौल गायक हंसराज हंस जी ने। कहते हैं इश्क है पानी का एक कतरा, कतरे में डूबा। इश्क है पानी का एक कतरा, कतरे में डूबा। एक हाथ में अपना दिल रख ले, एक हाथ में रख ले जान अपनी। फिर फरमाते हैं खाली दिल नहीं जान भी ये मंगदा, यानी जान भी मांगता है इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा। इश्क की गली से कोई कोई ही निकलता है। फिर कहते हैं जोगियों के पीछे जैसे जोग लग जाता है, जोगियों के पीछे जैसे जोग लग जाता है, प्रेमियों को प्रेम वाला रोग लग जाता है। लाख बचाए दामन लोभ लग जाता है। इश्क इश्क है मैदाने ओ जंग दा, इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा। आप जब सुनेंगे तो यकीनन मजा आएगा क्योंकि पंजाबी एक्सेंट होने के बावजूद साफ साफ समझ में आ जाता है कि नाम है दीवाना, दूजा नाम कोई नहीं, प्यार के जैसा बदनाम नहीं कोई, इश्क से बड़ा इल्जाम नहीं कोई। इश्क आशकानू सूली उत्ते टंगदा, इश्क आशकानू सूली उत्ते टंगदा, इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा। तो सब कुछ भूल भाल कर बस हंसराज हंस की मस्त गायकी का लुत्फ उठाएं। खाली दिल नहीं जानवी ए मंगदा।

दोस्तों, कई बार ज़िंदगी में ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि दिल बुझ सा जाता है, या फिर किसी की चाहत में बिल्कुल ही दीवानावर हो जाता है। तब किसी भी चीज़ में मन ही नहीं लगता। मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने इस कलाम में दिल के उसी मुकम्मल बेपनाह दीवानगी को साफ साफ लफ्जों में बयां किया है। वो कहते हैं कि भले ही मुझे लफ्जों में मोहब्बत की गहराई नापना ना आता हो, मगर सच यही है कि तुम्हारे साथ के बिना मेरा कोई वजूद ही नहीं। बुनियादी तौर पर राग भैरवी की शास्त्रीय बंदिशों में लिपटे इस तारीखी दर्द को आज हम गुजरे दौर की एक ऐसी शख्सियत के अंदाज में पेश करने जा रहे हैं कि जिनकी आवाज़ को छूना हर किसी के बस की बात नहीं। ये मुकम्मल पेशकश है सुरों की मलिका बेगम परवीन सुल्ताना जी की। पटियाला घराने की इस अजीम फनकार ने जब आर डी बर्मन साहब की इस नाजुक धुन को अपने बुलंद और मखमली लहजे से नवाजा, तो ये कलाम सिर्फ नगमा नहीं रहा बल्कि रूह की पुकार बन गया। मजरू साहब की कलम से निकले इस गज़ल का ये हसीन मिसरा ज़रा मुलाहिजा फरमाएं। जहाँ सदियों पुरानी दीवानगी छलकती है, वो कहते हैं, मैं तो सदा की तुमरी दीवानी, भूल गए सैया प्रीत पुरानी, कदर न जानी हाय कदर न जानी। और बिरहा का दर्द तान और आलापों के जरिए अपनी आखिरी हदों को छूता है, तो बेगम साहिबा की बुलंद आवाज में ये सीधे कलेजे के पार होता है। फिर कहती हैं, कोई जो डाले तुम पे नए अनवा, कोई जो डाले तुम पे नए अनवा, देखा न जाए मुँह से सजनवा, जले मोरा मनवा। तो आइए अल्फाज से एहसास तक के इस बेहद नफीस और आलिशान मकाम पर पूरी तवज्जो के साथ सुनते हैं बेगम परवीन सुल्ताना की आवाज़ में इस नगमे को। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना आपकी नज़र।

दोस्तों, ज़िंदगी के इम्तहानों की जिस आजमाइश की का ज़िक्र आज हमारे सफ़र का मरकज़ है, उसकी एक बहुत ही हसीन शक्ल हमें इस सूफियाना कलाम में देखने को मिलती है। ये शाहकार मुकम्मल तौर पर उस रूहानी कश्मकश को बयां करता है जहां आशिक अपने महबूब के सामने अपनी बेपनाह चाहत का इकरार करता है, मगर हायरी किस्मत, सामने वाले को उसकी इस पाक मोहब्बत पर यकीन ही नहीं, वो सिर्फ उसे एक बहाना समझता है। ये गज़ल बुनियादी तौर पर गुलाम अली जी की आवाज़ में बहुत मकबूल हुई थी, लेकिन इस पंजाबी सूफियाना दर्द को हम एकदम नए लहजे में पेश करने जा रहे हैं। आज इस नफीस कलाम की अपनी बहुत उम्दा आवाज़ में रूहानी तासीर दी है पंजाब की मिट्टी से जुड़े एक बेहद ज़हीन गुलकार दविंदर पाल सिंह ने। दविंदर साहब की बुलंद आवाज़ में एक रूहानी टीस है जो गज़ल के बोलों के साथ मिलकर एक अलग सा सुकून पैदा करती है। दविंदर पाल की ठहरी हुई तान में ये मिसरा सीधे ठक करके दिल को धड़काता है। वो फरमाते हैं, ये मैं झूठ बोला ते रब जाने, ये मैं सच बोला ते इतबार तेनू। यानी अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरा परवरदिगार मेरा हिसाब करे, और अगर मैं सच कह रहा हूं तो फिर तुम्हें मेरी इस सच्ची इबादत पर यकीन क्यों नहीं आता। तो आइए सुनते हैं इस खास पेशकश को अल्फाज से एहसास तक के अछूते मरहले को छू कर निकलते हुए। मुलायजा फरमाइए दविंदर पाल सिंह की खूबसूरत आवाज़ में ये सदाबहार कलाम, मेरे शौक दा नहीं एतबार तेना आपकी नज़र।

क्या ना जफाएं दिल पे सही, क्या क्या ना जफाएं दिल पे सही, पर तुमसे कोई शिकवा ना किया। इस जुर्म को भी शामिल कर लो मेरे मासूम गुनाहों में। जब चांदनी रातों में खुद हमसे किया इकरारे वफा, जब चांदनी रातों में खुद हमसे किया इकरारे वफा, फिर आज है क्यों हम बेगाने, फिर आज है क्यों हम बेगाने तेरी बेरहम बेरहम निगाहों में। दोस्तों, कतील शफाई के बोल हैं और इसको सुरों से सजाने का काम सौंपा गया सरहद पार के मशहूर गुलूकार मास्टर इनायत हुसैन जी को, और इसकी गुलूकार थी इकबाल बानो जी। ये गज़ल जब रिलीज़ हुई 60 की दहाई में तो एक रेज बन गई दोनों ही मुल्कों में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। इकबाल बानो जी का एक बेहद ऑर्थोडॉक्स परिवार में जन्म हुआ था और दिल्ली में उनका जन्म हुआ था। वो दिल्ली से बिलोंग करती हैं। ये गज़ल गाने के बाद गायकी की मिसाल कायम कर दी उन्होंने। उस वक्त में जब पाकिस्तान में गज़ल को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ख़ास लोग नहीं थे, इसके तो बहुत बाद फरीदा खानम, मेहती हसन और ग़ुलाम अली जी ने गज़ल गायकी में अपने पाँव रखे थे। तब तक इकबाल बानो पाकिस्तान फिल्म्स में इनायत हुसैन, जो कि एक बहुत मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर थे, की मौसीकी में बहुत मशहूर गाने गा चुकी थी और गज़लें भी गा चुकी थी। तो जैसा मैंने आपको बताया, इनका जन्म 1935 में दिल्ली में हुआ था। वो शुरुआती दिनों में क्लासिकल म्यूज़िक सीखने लग गई थी। जब वो गाती थी तो उनके जानने वालों ने उनके परिवार वालों को समझाया कि आपकी बेटी के गले में बहुत तरन्नम है, बहुत सुर है, तो इनको आप गाने का मौका दीजिए। तो उनके परिवार वाले मान गए, फिर उन्होंने क्लासिकल म्यूज़िक सीखने का फ़ैसला किया और सीखने भी लग गई। तो अपने लंबे म्यूज़िक के करियर में उन्होंने बहुत ही खूबसूरत गज़लें और फिल्मों में नगमे गाए। साल 1954 में जब वो महज 19 साल की थी, उन्होंने अपनी पहली गज़ल रिकॉर्ड की एक मशहूर फिल्म गुमनाम के लिए। इस मशहूर गज़ल में उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद करके गाया है और लफ्ज़ों की बानगी से इसको बहुत खूबसूरत बना दिया है। आइए सुनते हैं ये बहुत ही मशहूर गज़ल। उल्फत की नई मंजिल को चला, उल्फत की नई मंजिल को चला, तू बाहें डाल के बाहों में, दिल तोड़ने वाले देख के चल, हम भी तो पड़े हैं राहों में।

दम सा घुटता है अगर गम की स्याह रातों में, दम सा घुटता है अगर गम की स्याह रातों में, क्षमा की लौ कोई चुपके से बढ़ा देता है। या फिर मैं तो अब अहदे वफा और से कर लूं, मैं तो अब अहदे वफा और से कर लूं, लेकिन कोई धीरे से मेरा हाथ दबा देता है। आज भी कोई मुझे दादे वफा देता है। दोस्तों, जान निसार अख्तर जी ने इस कलाम में मोहब्बत की उस अमर तासीर को लिखा है। वो कहते हैं कि भले ही वो हम सफ़र आज मेरे पास नहीं है, मगर उसके पाक जज्बातों का तसव्वुर आज भी मेरे जहन में वैसे ही ताज़ा है जैसे कल की बात हो। आज भी जब मैं गुज़रे कल को याद करता हूँ तो ऐसे लगता है जैसे कोई मेरी वफा की गवाही दे रहा हो। और इस रूहानी एहसास को सुरों का पैरहन दिया हमारे अपने हरदिल अज़ीज़ मुकेश साहब ने। मुकेश साहब की गायकी की ये खासियत रही है कि उनकी आवाज़ में छुपे सोज और सच्चाई का कोई मुकाबला ही नहीं। विपिन मेहरा साहब की इस नाजुक धुन पर जब मुकेश साहब की आवाज़ गूंजती है तो जहन की तनी हुई नसें शांत हो जाती हैं। तो अल्फाज से एहसास के इस बेहद नसीब नफीस मकाम पर पूरी तवज्जो के साथ समायत फरमाते हैं मुकेश साहब की इस नायाब और सुरीली नॉन फिल्मी गज़ल को। आज भी उनकी मोहब्बत का तसव्वुर है कोई, आज भी कोई मुझे दादे वफा देता है। आपकी नज़र।

दोस्तों, इतने लाजवाब सुरीले नगमों और गज़लों में डूबते उतरते पता ही नहीं चला कब घड़ी की सुइयां चुपके से इशारा करने लगी कि अब प्रोग्राम के अहतमाम का वक्त हो चुका है। उम्मीद है आज की नगमें गज़लें आपको पसंद आई होंगी। हालांकि मेरी यही कोशिश रहती है कि आप तक चुनिंदा ख़ास गज़लें लेकर आऊं। दोस्तों, गज़लों को चुनते वक्त मैं शबरी का रोल निभाती हूँ। खाकर नहीं, एक एक गज़ल को सुन सुन कर चुन चुन कर आपके लिए लाती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि ये आपके दिल को भी भाएंगी। तो इन लफ्ज़ों से आप तक मेरे एहसास भी पहुँच गए होंगे। अब मुझे यानी आपकी दोस्त आरती रॉय को दीजिए इजाज़त, और आप सुनते रहें अपना प्यारा एसएन रेडियो जो रेडियो तांतिया भील 90.8 FM पर, इस उम्मीद के साथ कि एक और शाम कुछ अलग लफ्ज़ों के एहसास पिरो कर लाऊंगी मैं आपके लिए। तब तक खुश रहिएगा, गाते मुस्कुराते रहिएगा, दुआओं में याद जरूर रखिएगा। शब खैर, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे।

0: दोस्तों, आपके मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ। नमस्कार।
1: आप जिनके करीब होते हैं।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
3: रेडियो स्टेशन 90.8 FM, टैंटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमरता रेजो टांटिया भिलनो रेडियो स्टेशन। रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। रेडियो स्टेशन 90.8 FM, टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमलता रेजो टांटिया भीलनो रेडियो स्टेशन। रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM छपवा के आवाज आपके लिए खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से आप तक खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। किसान साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM का यही प्रयास रहा है कि हमारा जो किसान है वह उन्नत से उन्नत खेती करे, अपनी खेती के माध्यम से अपनी आजीविका को सशक्त बनाए, साथ ही अपनी खेती में आ रहे नए बदलावों को समझे और अपनी खेती में नए से नए उपकरणों का इस्तेमाल करे, नई से नई किस्मों का इस्तेमाल करे और हमारे अलग अलग प्रदेशों में भी जो कृषि चल रही है और हमारे जो अलग दूसरे किसान है उनके साथ कैसे एक नवीनतम तकनीक द्वारा कैसे हम उन्नत और उपयोगी कृषि कर सकते हैं, इन्हीं सभी बिंदुओं को मध्य नजर रखते हुए हमारा रेडियो टांटिया भील 90.8 FM आपके लिए खेती संबंधी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाने के प्रयासों में लगा हुआ है।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
3: किसान साथियों, अभी बरसात का समय चल रहा है और अभी तक अगर हम देखें तो अच्छी खासी बरसात हो चुकी है। तो किसान साथियों, अभी समय आ गया है, अभी हमारी फसलों में आपको कीटें दिख जाएगी, खरपतवार हमारे खेतों में बहुत से दिखने लगेंगे। तो आज का जो हमारा खेती बाड़ी का जो टॉपिक है उसमें हम जानेंगे कैसे हम टमाटर, बैंगन और मिर्ची की खरपतवारों को उसमें कैसे उसकी फसल का हम प्रबंधन कर सकते हैं। साथ ही हम जानेंगे अंगूर की खेती में जो बेल होती है उसमें भी अभी कुछ कीटनाशक आ जाते हैं, तो उसका हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो आइए, आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए शुरू कर

0: मिर्चा टमाटर की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त समय आ रहा है, ऐसे में किसानों को क्या खास बातें आप इस वक्त बताना चाहेंगे?
1: जी हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये जो मौसम है, जो ही बारिश प्रारंभ होती है
0: जी,
1: पहली बरसात के बाद ये तीनों फसलें जो हैं, आप बैगन की भी खेती प्रारंभ कर सकते हैं, टमाटर भी लगा सकते हैं और मिर्च की भी खेती इस मौसम में किसान भाई करते हैं। जैसा कि किसान भाइयों को पता है कि उन्हीं किसान भाइयों को अधिक फायदा होता है जिनकी फसल जो है जितनी अगेती मार्केट में आती है। तो जो किसान भाई अगर नर्सरी ज्यादा जल्दी अगर उगा लेते हैं तो उनकी फसल स्वाभाविक है कि मार्केट में जल्दी से जल्दी आएगी। और जैसा बैगन जो है पूरे भारतवर्ष के भिन्न हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में, उनको ये देखना है कि आपके एरिया का जो मार्केट है वहां किस प्रकार की बैगन की प्रजाति की प्रेफरेंस मार्केट में है। जैसे कई जगह गोल मार्केट में प्रेफर किया जाता है, कई जगह लंबी प्रजाति होती है, कई जगह कम बीज वाला लोग पसंद करते हैं, कई जगह जैसे महाराष्ट्र का रीजन है वहां जो चूचू बैगन होता है, वेरीगेटेड होता है, उसमें अधिक बीज वाला वहां वो पसंद करते हैं। इन चीजों को हमें ध्यान रखना है। जो टमाटर की फसल है, खास करके जो हम खरीफ मौसम में और बारिश की मौसम में, एक विषाणु जो होता है लीफ कर्ल, जिसको किसान भाई मरोड़िया बीमारी बोलते हैं, उससे हमको कैसे बचाना है। मिर्च में भी इस मौसम में अगर हम करेंगे तो बारिश के मौसम के लिए कुछ खास प्रकार की ही किस्मों का चयन करना होता है, और कुछ खास प्रकार से इसकी अगर हम नर्सरी भी तैयारी करते हैं तो जो विषाणु जनित यानी वायरस जनित जो बीमारियां हैं उनको हम किस प्रकार से हम प्रबंधन कर सकते हैं, आज हम इस पे हम अधिक से अधिक अगर हम फोकस करें
0: साथ से चर्चा इस बात पर हम करेंगे कि बैंगन मिर्च टमाटर की अच्छी उपज आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर।

0: खरीफ में टमाटर, मिर्च और बैंगन की खेती की जा सकती है। पहले बात करते हैं टमाटर की। जाड़े के टमाटर की फसल के लिए बीज की बुआई पौधशाला में करते हैं। इसके लिए मुक्त परागित किस्मों के लिए 350 से 400 ग्राम और संकर किस्मों के लिए 200 से 250 ग्राम बीज को 1 ग्राम कैप्टन या थीरम से उपचारित करके 17x3 फीट के आकार की 8 ऊंची क्यारियों में लगाएं। हल्का पानी का फवारा देते रहें। आप टमाटर की पूसा रूबी, पूसा 120, पूसा शीतल, पूसा उपहार, पूसा गौरव, पूसा सदाबहार और पूसा हाइब्रिड 2 किस्में लगा सकते हैं। जुलाई की फसल नवंबर में तैयार हो जाती है। टमाटर को झुलसा रोग से बचाने के लिए उपाय जरूर करें। वहीं बैंगन की बुआई की बात करें तो इसकी बुआई के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी सही रहती है। मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। अच्छी जमाव क्षमता वाले 400 ग्राम और 250 से 300 ग्राम संकर किस्मों के बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। आप अगेती बैंगन की पूसा पर्पल क्लस्टर, पूसा उत्तम, पूसा बिंदु, पूसा अंकुर, पूसा हाइब्रिड 5, पूसा हाइब्रिड 9, पूसा शामला, पंजाब सदाबहार और काशी प्रकाश किस्में लगा सकते हैं। मिर्च की बात करें तो किसान हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म ले सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म की बुआई पूरे भारत में की जा सकती है। बुआई के बाद आप 1 हेक्टेयर से 95 क्विंटल हरी मिर्च की पैदावार ले सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म के पौधे सीधे होते हैं और उनकी ऊंचाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। हरी मिर्च की लंबाई 6 से 8 सेंटीमीटर होती है और एक गुच्छे में 6 से लेकर 14 हरी मिर्च तक होती हैं। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म रोपाई के 75 से 80 दिन बाद तैयार हो जाती है। हरी मिर्च की बुआई के लिए 1 से 1.5 किलो बीज लें। बीजों की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर रकबे के लिए काफी रहेगी। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें।
1: किसान साथियों, जैसा कि अभी आपने इस रिपोर्ट में सुना, कैसे आपने जो मिर्ची की खेती है, मिर्च का पौधा है वो कितना सेंटीमीटर पर होता है, और अगर आप पूसा किस्म का जो आप लगाते हैं उसमें इस ये किस्म काफ़ी अच्छी होती है और आपको अधिक से अधिक लाभ इस किस्म के द्वारा मिल सकता है। किसान साथियों, आइए जानते हैं कुछ अंगूर से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को।
2: अंगूर के बगीचे जो मुख्य क्षेत्र हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वहां पर ही अभी ऑफ सीजन चल रहा है, तो वनस्पतिक जो वृद्धि

0: है वो रही है पौधों की। इसमें बारिश के मौसम में कीटों की समस्याएं काफी बढ़ जाती हैं, और जैसे कि मिलीबग कैटरपिलर्स जो स्पोडोप्टेरा है, और लाल रंग का एक स्टेम बोरर तना छेदक, उसका भी इस समय काफी अटैक हो जाता है
1: जी।
0: और साथ ही साथ में थ्रिप्स है, उसकी भी काफी संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि बारिश आने के बाद में नई ग्रोथ आती है, नई वृद्धि होती है, तो उसके ऊपर में थ्रिप्स का प्रादुर्भाव हमको देखने को मिलता है। तो ये मुख्य कीटक है जो की अंगूर के अंदर बारिश के मौसम में आ सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो डॉक्टर यादव विस्तार से आज हम जानेंगे कि ये जो कीट है जो फसल को प्रभावित कर सकते हैं, इससे बचाव के लिए किसानों को किस तरह के उपाय अपनाने चाहिए। लेकिन यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, नजर डाल देते हैं एक रिपोर्ट पर।

0: फलों के बाग किसानों के लिए अच्छी आमदनी का जरिया है। अगर अंगूर की बात करें तो सही तरीके और बड़े पैमाने पर अंगूर की खेती करने से ये लंबे समय तक आय का अच्छा साधन साबित होती है। अंगूर की बागवानी लगभग पूरे भारत में सभी क्षेत्रों में की जा सकती है। पैदावार के आधार पर दक्षिण में कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु मुख्य राज्य हैं, जबकि उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में अंगूर की बागवानी की जाती है। लेकिन इस समय पूरे देश में मॉनसून के बादल बरस रहे हैं, ऐसे में अंगूर में कई तरह के कीटों के लगने की आशंका हो जाती है। ऐसा ही एक कीट है लीफ हूपर। ये ज्यादातर उत्तर भारत में अंगूर की बेलों में मिलता है। ये कीट जून से अगस्त के दौरान सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है। ये निम्फ और परिपक्व पत्तियों के नीचे से रस चूसते हैं। इसके प्रकोप से पत्ती के सूखने और टूटने से पहले इसका रंग पीले से भूरा हो जाता है। इस पर नियंत्रण के लिए आप कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। पत्ते खाने वाली चैफर बीटल भी अंगूर की बेलों को नुकसान पहुंचाती है। चैफर बीटल दिन के समय छिपी रहती है और रात में पत्तियां खाकर छलनी कर देती है। बालों वाली सुंडियां नई बेलों की पत्तियों को खाती हैं। इनके साथ साथ स्केल कीट, जो सफेद रंग का बहुत छोटा और पतला कीड़ा होता है, टहनियों, शाखाओं और तने पर चिपका रहता है और रस चूसकर बेलों को बिल्कुल सुखा देता है। इन कीटों से बेलों को बचाने के लिए पॉलीथियोन या मेलाथियोन या डायाजिनोन का 0.05% से 0.1% का छिड़काव 15 दिनों के अंतराल पर जुलाई से सितंबर तक करते रहें। लेकिन किसी भी दवा के छिड़काव से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें।
1: किसान साथियों, जैसा कि अभी आपने इस रिपोर्ट में सुना कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, समय समय पर कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो कीटे हैं अंगूर की कोमल पत्तियों को खा जाती है और उनके अपनी जो बेलें हैं उनको भी नुकसान पहुंचाती है, साथ ही उन्हें सूखा भी देती है। तो इस ऐसे समय में हमें कैसे और कितने समय में हमें दवाई का छिड़काव करते रहना चाहिए आदि महत्वपूर्ण जानकारियों को आपने जाना। यहाँ पर हम रुक करेंगे मिर्ची, बैंगन और टमाटर की खेती के ऊपर। अभी बारिश का समय चल रहा है तो इसमें कौन सी किस्में हमें लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी किस्में आजकल बाजार में मिल जाती है, लेकिन जो अच्छी किस्म का पौधा

0: भाई लगाएं उसमें हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो ऐसी प्रजाति लगाएं जो अधिक तापमान पर टमाटर में फलन की क्षमता रखती हो, क्योंकि अभी अगर आप लगाते हैं जुलाई अगस्त में तो अक्टूबर तक जो उत्तर भारतीय मैदानी इलाका है यहाँ खास करके रात का तापमान 20-22 डिग्री 24 डिग्री 25 डिग्री तक रहता है, तो एक हमें ये ध्यान रखना है। दूसरा ये ध्यान रखना है कि चूंकि बारिश के मौसम में नमी भी रहती है तापमान भी अधिक रहता है तो जो सफेद मक्खी होती है इसका प्रकोप काफी होता है, और ये सफेद मक्खी जो होती है वो वेक्टर होता है जो हमारी मरुड़िया बीमारी के लिए। तो इस मौसम में हमें उन्हीं प्रजातियों का चयन करना है जिसमें लीफ कर्ल वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता हो, और इसके लिए जैसे वाराणसी में जो हमारा भारतीय सब्जी विज्ञान अनुसंधान संस्थान है उनकी कुछ प्रजातियां जो उत्तरी भारत के लिए हैं, जैसे काशी अमन एक प्रजाति है, इसका आप एक चयन कर सकते हैं। अगर जो लोग कर्नाटक में या उस इलाके में अगर देख रहे हैं तो वहां की काफी पॉपुलर प्रजाति है अर्का रक्षक, जो हमारे भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बैंगलोर की प्रजाति है, उसका आप चयन कर सकते हैं। और काशी के जो हमारा वाराणसी का है इनके द्वारा कुछ और प्रजातियां विकसित की गई हैं जैसे काशी अमूल है, इनका भी आप चयन कर सकते हैं। इसी प्रकार से अभी हाल में ही जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है इनके द्वारा भी कुछ प्रजातियां विकसित की गई हैं तो आप वहां से ले सकते हैं। जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली है वहां से भी इस वर्ष एक प्रजाति विकसित की गई है जिसमें वायरस जनित यानी वायरस के लिए प्रतिरोधक क्षमता है, जो लीफ कर्ल असिस्टेंट टोमेटो लीफ कर्ल असिस्टेंट 6 नाम के वैरायटी इसी साल अभी आइडेंटिफाई की गई है, तो इनका आप चयन कर सकते हैं। आपको ये 100% ध्यान रखना है कि कोई भी प्रजाति लगाने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि उसमें लीफ कर्ल वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता हो, तभी इस मौसम में आप टमाटर की सफल खेती कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो इन जो किस्म है इनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है जो भी आप टमाटर की खेती करने जा रहे हैं खासतौर पर खरीफ के इस मौसम में। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर यादव मैं आपका रुख करना चाहूंगी, बताएं हमें कि इस मौसम में किस तरह की कीटों का प्रकोप हो सकता है, खासतौर पर कैटरपिलर के बारे में आपने भी बताया था कि इसका प्रकोप हो सकता है, तो किस तरह से ये फसल को प्रभावित करता है और कैसे इससे बचा जाए।
2: जैसे ही वातावरण में आर्द्रता बढ़ती है बारिश के बाद में और बादल हो जाते हैं तो जो कैटरपिलर है जो स्पोडोप्टेरा है उसको जैसे लोकल लैंग्वेज में सुंडी भी कहते हैं
1: जी,
2: तो वो क्या करता है कि पौधों के पत्तों को खाना शुरू कर देता है, और कच्चे अगर थोड़े स्टेम है तो तना है उसको भी खा सकता है, और पत्तों को पूरा अगर ज्यादा अटैक हो जाए ज्यादा आक्रमण हो जाए इसका तो पत्तों को पूरा खा सकता है वो, तो जिससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया है वो बाधित होती है पौधे की। इसको नियंत्रण करने के लिए हम क्या सलाह देते हैं कि बारिश का मौसम एक ऐसा मौसम है कि जो हमारे बगीचों में मित्र कीटों को बढ़ने के लिए मौका देता है। आर्द्रता ज्यादा होगी मित्र कीट काफी अच्छे तरीके से बढ़ेंगे, तो हम कम से कम कीटनाशक का प्रयोग बताते हैं कि आप करें अपने किसान भाई अपने बगीचों के अंदर में। जो अन्य विधियां हैं जैसे कि लाइट ट्रैप्स हैं, लाइट ट्रैप बहुत अच्छे तरीके से काम करता है जो कि कैटरपिलर के जो पतंग होते हैं उनको कंट्रोल करने में बहुत मददगार होता है। एक चीज अंगूर के बगीचों में खासतौर पर ध्यान रखनी है कि बाकी फसलों में क्या होता है कि जो लाइट ट्रैप होता है वो बगीचे के फसलों के अंदर खेत के अंदर लगाया जाता है, पर अंगूर के बगीचे के अंदर लाइट ट्रैप नहीं लगाया जाता, अंगूर के बगीचे से 15 से 20 फीट दूर उसको लगाया जाता है ताकि जो कीट है अंगूर के बगीचे के वो बगीचे से बाहर चले जाए और लाइट ट्रैप में जाके मर जाए। अगर लाइट ट्रैप को हम बगीचे के अंदर लगाएंगे तो क्या समस्या हो सकती है कि जो लाइट ट्रैप है उसके आसपास के जो पौधे हैं उनके ऊपर में कैटरपिलर का ज्यादा अटैक हो सकता है, क्योंकि वहां पतंग ज्यादा आएंगे उस पर अंडे ज्यादा देंगे
1: जी,
2: और उसके ऊपर में आसपास में पौधे हैं वो ज्यादा ग्रसित हो सकते हैं पौधे, तो इसलिए हम कहते हैं कि आप बगीचे के बाहर ले जाके लाइट ट्रैप को लगाएं उससे दूर रखें। और बाकी फसलों में एक और चीज होती है कि जो लाइट ट्रैप है वो फसल से ऊपर लगाया जाता है, पर अंगूर के अंदर में क्या होता है कि जमीन से 1 या 2 फीट ऊपर लाइट को लगाया जाता है, तो ये जो मुख्य बातें ध्यान देनी है हमको। और साथ ही साथ जो बायोजेंट्स हैं जो उनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं, एक न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस आता है जो स्पोडोप्टेरा के लिए जो बारिश के मौसम में बहुत अच्छे तरीके से इसमें काम करता है, तो उसका प्रयोग हम कर सकते हैं।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपरो रेडियो आपरी बातें।
4: किसान साथियों यहां पर वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का, कहीं मत जाएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया भील 90.8 FM के साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आप रेडियो आपनी बातें।
1: ब्रेक के बाद पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान भाइयों खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आइए चर्चा करते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर।
2: जी हाँ, जो नर्सरी, देखिए नर्सरी का जो प्रबंधन होता है, जो भी हमारी पूरी फसल प्रबंधन है, उसका आधार जो होता है बीज, और बीज से जो हमारी उगाई हुई नर्सरी होती है। और जैसा मैं बार बार किसान भाइयों को बता रहा हूँ कि जब नर्सरी में अगर हम पौधों को अगर हम स्वस्थ रखेंगे, नर्सरी में दो प्रकार की समस्याएं आती हैं। एक होती है जो मृदा जनित जो रोग होते हैं, यानी जहाँ पे हम नर्सरी उगाते हैं कुछ उनके जो रोगों के जो स्पोर्स होते हैं वो पहले से मृदा में या मिट्टी में रहते हैं। अभी हाल ही में जैसे गर्मी का मौसम खत्म हुआ है और जो किसान भाई जागरूक हैं वो सॉइल सोलराइजेशन इसको जानते हैं, यानी जिस एरिया में हम नर्सरी लगाते हैं वहाँ की मिट्टी को हम सौर ऊर्जा की मदद से हम उसको स्टरलाइज कर सकते हैं, यानी रोग और कीटाणु के जो स्पोर्स हैं उनसे हम उनको मुक्त कर सकते हैं। पहली चीज मैं इस पे थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जब भी गर्मी का मौसम था उसमें अगर हम सफेद रंग की पॉलीथीन से जिस एरिया में हम नर्सरी बनाते हैं उसको सीधा हमको पहले उसकी जुताई कर लेनी है और उसके बाद उसमें पानी डाल देना है, और उसके बाद कम से कम 400 गेज की जो सफेद रंग की पॉलीथीन है उससे उसको हम अगर ढक देते हैं और चारों किनारे से फिर मिट्टी डाल देते हैं तो अंदर का जो तापमान होगा वो काफी बढ़ जाएगा। और ऐसा अगर हम 30-35 दिन तक रखते हैं, ये बिना किसी खर्चे के है, मैं इसलिए आपको ये भी बता रहा हूं, ये जैविक तरीका भी है, आप कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और अगर आप ऐसा करके, अगर जो किसान भाई ऐसा रखते हैं, अगर 15-20 दिन तक अगर हम ऐसा रखें तो उसके अंदर के जो भी स्पोर्स हैं जो पिछले सालों के या और भी किसी जो जैसे सॉइल में हमारा डाइथेन, ये हमारी जो बीमारियां होती हैं जिसके लिए हम कीटनाशक का प्रयोग करते हैं या हम फंजीसाइड का प्रयोग करते हैं, वो हमें नहीं करना पड़ेगा। और जो भी इस प्रकार की बीमारी आती है जो हमारी नर्सरी में, खास करके जो विल्टिंग की प्रॉब्लम आती है, डैम्पिंग ऑफ एक मेजर समस्या है, ये सब सारी समस्याएं उसमें खत्म हो सकती हैं। इसी प्रकार जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें वायरस जनित बीमारियां हैं, इनके जो बाहक कीट होते हैं उनके भी कुछ अंडे उसमें अगर हैं तो वो खत्म हो सकते हैं। और इसमें हमारा कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा है, मिट्टी की जो मृदा की जो सेहत है वो भी इससे अच्छी होगी। पहली चीज हमें ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज, चूंकि ये बारिश का मौसम है तो हमेशा नर्सरी जिस एरिया में हम बनाते हैं वो मिट्टी बिल्कुल ऊंची होनी चाहिए, यानी वहां के पानी की निकासी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, वहां फुल धूप लगनी चाहिए। कई बार किसान भाइयों को यह लगता है कि अगर हम थोड़ी छांव में, चूंकि गर्मी बहुत है, अगर हम थोड़ी छांव में अगर हम नर्सरी उगाएंगे तो अच्छी बनेगी, लेकिन यहां आपको ध्यान देना है कि नर्सरी के एरिया में कभी भी पेड़ पौधों के नीचे नहीं उगाना चाहिए, क्योंकि अगर प्रकाश कम आएगी तो जो उसके जो जड़ कम बनेंगे और पौधा ऊपर की तरफ अधिक बनेगा। जबकि हमें नर्सरी में यह ध्यान रखना है कि नर्सरी में हमें ऐसी वातावरण बनाना है जिससे पौधा का जितना विकास ऊपर की तरफ हो उतना ही विकास उसका जड़ों का नीचे की तरफ हो। अगर आपके नर्सरी के पौधे ऐसे बनते हैं जिनकी जड़ जितनी लंबी होती है, तना भी अगर उतना ही लंबा होता है, ये नर्सरी आपकी सबसे अच्छी मानी जाती है। तो आपको ऊंचे जमीन पे बनाना है, फिर हमको करना है कि करीब 1 से 1.5 फुट की चौड़ाई की हम, और कम से कम 15 सेंटीमीटर ऊंची और हल्का, जिसमें दोनों किनारों पे भी ढाल दे के हम 1.5 मीटर या 2 मीटर लंबी हम क्यारी बना सकते हैं। और क्यारी के ऊपर जब भी हम, अगर चूंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जैसे ट्राइकोडर्मा है, तो ट्राइकोडर्मा अगर गोबर की खाद में अगर हम ट्राइकोडर्मा मिला के जिसका अगर हम नर्सरी में अगर हम उपयोग करेंगे तो बाकी भी अगर कोई जो मृदा जनित बीमारी है उसको भी हम नियंत्रण कर सकते हैं। इसके बाद एक चीज का और मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूंगा, चूंकि इस मौसम में हम बार बार वायरस की समस्या को हम बात कर रहे हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं, और हमें यह भी पता है कि उसके लिए कोई कंट्रोल नहीं होता। जब वायरस एक बार लग जाता है पौधे पे, हमको उखाड़ के ही उसको खत्म करना पड़ता है या पौधे को मिट्टी में गाड़ना पड़ता है, यही एक नियंत्रण है। लेकिन उससे पहले अगर हम नियंत्रित करें, नर्सरी में आमतौर पर हमारे 35 से 40 दिन तक हमारी फसल जो होती है वो नर्सरी में होती है। इस दौरान अगर हम इसको कीट से अगर हम बचाने के लिए, जैसे हम अपने आप को कीट से बचाने के लिए हम मच्छरदानी या हम लगाते हैं रातों को सोने के लिए, इसी प्रकार अगर हम नेट हाउस का अगर हम प्रयोग करें, यानी जिस एरिया में अगर हम नर्सरी बना रहे हैं वहाँ हम कम पैसे में अगर उसको हम कीट अवरोधी जाल होता है 40 मेस की या 50 मेस की, अगर उसके अंदर अगर हम नर्सरी तैयार खास करके करते हैं तो 35 से 40 दिन तक जो आपके पौधे होंगे वो बिल्कुल स्वस्थ होंगे, उसमें किसी प्रकार की वायरस से उसको हम मुक्त रख सकते हैं। उसके बाद जब हम खुले खेत में लाएंगे तो उसमें हम कुछ उपचार करके फिर हम चाहेंगे कि खेत में भी वो पौधा हमारा स्वस्थ रहे। तो इन चीजों का अगर हम ध्यान रखें तो हम अच्छी नर्सरी से हम स्वस्थ पौधे हम बना सकते हैं और कम खर्चे में और बिना किसी रसायन के उपयोग के भी हम अच्छी नर्सरी तैयार कर सकते हैं।
3: तो स्वस्थ नर्सरी तैयार हो ये प्राथमिकता होनी चाहिए, तभी जो अच्छी उपज है उसकी उम्मीद की जा सकती है। उसके लिए कई बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, जैसे कि ऊंची उठी जमीन पर बनाए और इसके साथ ही वहां पर जो धूप है वो पूरी तरह से पहुंच सके इसका इंतजाम करना बेहद जरूरी है ताकि जो जड़ है उसका विकास अच्छी तरह से हो सके और जल जमाव ना हो इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। बहरहाल यहां पर आगे बढ़ते हैं और अगले मेहमान का रुख कर लेते हैं और अंगूर के बागों में कीट प्रबंधन के बारे में आइए जानते हैं। डॉक्टर यादव बताएं हमें कि और किस तरह के कीटों का प्रकोप इस मौसम में हो सकता है अंगूर के बागों में, जैसे मिलीबग का भी प्रकोप कई बार होता है, किस तरह से इससे बचाव किया जा सकता है।
4: मिलीबग जो है कीट ये क्या करता है कि जड़ों के अलावा जो भी अंगूर के अंदर में ऊपरी भाग है उनपे कहीं भी रस चूस सकता है, जहां भी फ्लोएम है वहां पर रस चूसेगा और जो ऊर्जा पौधे को मिलनी चाहिए थी वो खाना जो पौधे को भी यूज होना था वो मिलीबग देता है और पौधा काफी कमजोर हो जाता है।
3: जी जी,
4: जब फल का मौसम होता है जब अंगूर लग रहे होते हैं तो फलों पर काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है मिलीबग का, पर ये अभी फल का मौसम नहीं है, अभी ऑफ सीजन है। तो इस समय मिलीबग क्या नुकसान कर सकता है कि गर्मी के मौसम में जैसे अप्रैल या मई में काफी ज्यादा गर्मी पड़ी तो मिलीबग एक बार ज्यादा तापमान की वजह से कम हो जाता है, पर जैसे ही जून जुलाई का मौसम होता है बारिश शुरू हो जाती है तो एकदम से बिल्कुल सही मौसम मिलता है मिलीबग को वृद्धि करने के लिए, तेजी से बढ़ने के लिए, और मिलीबग काफी ज्यादा संख्या के अंदर में बढ़ जाता है। तो किसान कई बार काफी चिंतित हो जाते हैं कि इतना ज्यादा मिलीबग आ गया मैं क्या करूं, और कई सारे जो रसायन है उनका प्रयोग करते हैं बगीचों के अंदर में, पर मिलीबग एक ऐसा कीट है जितना हम ज्यादा रसायन यूज करेंगे जितने कीटनाशक ज्यादा यूज करेंगे उतनी आने वाले टाइम में आने वाले समय में इसकी समस्या बढ़ती जाएगी। और बारिश के मौसम में मिलीबग का हमारा अनुभव ये है कि अगर हम बारिश के मौसम में जैसे मिलीबग काफी तेजी से बढ़ता है और ऑफ सीजन के अंदर में ज्यादा नुकसान अंगूर के अंदर में ये नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि ज्यादातर वृद्धि हमको अंगूर के पौधे की चाहिए होती थी उतनी हो जाती है तब तक, तो जो मुख्य तना है उसके ऊपर में हमको ज्यादातर जो मिलीबग है उसका प्रादुर्भाव दिखाई देता है। वहां पर अगर हम एक से डेढ़ महीने तक कुछ भी ना करें, कोई भी रसायन का प्रयोग ना करें और उसको मिलीबग को वैसा का वैसा छोड़ दें तो मिलीबग अपने आप से कंट्रोल हो जाएगा, अपने आप से उसका नियंत्रण हो जाएगा। जो सही मौसम मिला है मिलीबग को वृद्धि करने के लिए वो सही मौसम उसके जो मित्र कीट है उनको भी मिला है, तो वो मित्र कीट है उनको बढ़ने के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम चाहिए, एक डेढ़ महीने में अगर हम छोड़ देते हैं वैसे तो मिलीबग काफी अच्छे तरीके से अपने आप से नियंत्रित हो जाएगा। पर जो किसान नियंत्रित जल्दी करना चाहते हैं और ज्यादा चिंतित हैं वो क्या कर सकते हैं, बहुत सारे जो मित्र हमारे जो बायो एजेंट्स हैं उनका जैव नियंत्रण के लिए जो एजेंट्स होते हैं जैसे मेटारिजियम एक है फंगस है फफूंद है जो कि कीटों को काफी अच्छे तरीके से नियंत्रित करती है, तो उसका प्रयोग आप मुख्य तने को धोने के लिए कर सकते हैं इस तरीके से, तो आप मिलीबग कंट्रोल कर सकते हैं।
3: बिल्कुल, तो मिलीबग को भी कंट्रोल नियंत्रित में किया जा सकता है और उपाय आपके सामने है। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर चौधरी आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने बताया कि कई तरह के रोगों का प्रकोप हो सकता है फसल में और ऐसे में जो बीज है अगर उसके स्तर पर ही कुछ उपाय कर लिए जाए तो कई रोगों से बचाव पहले ही हो सकता है, तो ऐसे में बीजोपचार की कितनी महत्ता बढ़ जाती है और बैंगन मिर्च टमाटर के मामले में किस तरह से बीजोपचार करना चाहिए।
2: जी हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि कुछ बातों का ध्यान अगर हम जिस समय हम बीज हम लेते हैं पहली चीज जैसे है जब हम बीज का चुनाव करते हैं जैसे मैं बताया भी तो प्रजातियों के चुनाव में हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई बीमारी है तो उसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम जो बीज हम लाते हैं खरीद के उसको हम अगर हम ट्राइकोडर्मा से हम अगर हम जैविक तरीके से अपनाना चाहते हैं तो हम ट्राइकोडर्मा 4 से 5 ग्राम प्रति प्रति केजी के हिसाब से हम बीजोपचार हम कर सकते हैं। इससे हमें खास करके जो फफूंद जनित जो बीमारियां होती हैं उनको नियंत्रण करने में मदद मिलती है। अगर हमारे पास अगर वो नहीं उपलब्ध है तो अगर हम रासायनिक विधि से करना चाहते हैं तो जैसे कार्बेंडाजिम है या कैप्टान है या थीरम है, इनसे हम 2 या 3 ग्राम प्रति केजी बीज में इनसे भी हम उपचारित करके इनको हम नर्सरी में लगा सकते हैं। तो इससे बहुत हद तक जो हमारी फफूंद जनित बीमारियां हैं, जैसे अगर हम बैगन की बात करें, बैगन में कुछ बीमारी आती है जैसे फोमोप्सिस है, फोमोप्सिस ब्लाइट काफी भयंकर बीमारी होती है, ये खास करके ये बीज से ही जाता है। जैसे अगर बैगन का अगर जब हम बीज लेते हैं तो अगर कोई पौधा जिसमें फोमोप्सिस है यानी गला हुआ फल होता है उससे अगर हम बीज लेते हैं तो बीज वहां इन्फेक्टेड होता है और ये बीज फिर अगले पौधे में जा सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ अगर हम बीजोपचार अगर हम कर लेते हैं तो इसकी संभावना कम होती है। इसके साथ साथ एक दो चीजों मैं और बताना चाहूंगा कि बीजोपचार के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो अगर किसान भाई बिल्कुल जहां फसल लगा रहे हैं उसी समय से अगर उसका ध्यान रखें तो हमें दवा का प्रयोग कम करना पड़ेगा। जैसे अगर हम बैंगन लगाएं या मिर्च लगाएं या टमाटर लगाएं, मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें इस मौसम में वायरस जनित बीमारियां आती हैं और इसके बाहर खास करके सफेद मक्खी होती हैं और कुछ जो थ्रिप्स वाली जो बीमारियां हैं वो भी जैसे मिर्च में भी आती हैं। इनके लिए जैसे जिस खेत में आपको लगाना है उससे अगर 15-20 दिन पहले अगर उसके बॉर्डर पे अगर हम मक्का की अगर हम 3-4 लाइन लगा लें या जो सोरघम होता है वो ज्वार होता है अगर उसकी अगर हम 3-4 लाइन अगर हम पहले से लगा के रखते हैं तो जब हम खेत में हम पौध अपना हम लगाएंगे ट्रांसप्लांट करेंगे उससे पहले वो पौधे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो अगर कोई सफेद मक्खी या बाकी कीड़े आते हैं तो उनके पत्तों में आप देखते हैं कि रेशे होते हैं उस पे वो चिपक जाते हैं। जिस प्रकार से हम लोग अपने लिए मास्क का प्रयोग करते हैं कोरोना से बचाने के लिए उसी प्रकार हमको पौधों को भी जो बॉर्डर क्रॉप्स इनको हम कहते हैं या कैच क्रॉप्स कहते हैं या ट्रैप क्रॉप्स कहते हैं कि जो इसके जो नुकसानदायक जो कीटाणु हैं उनको वो ट्रैप कर लेते हैं। जैसे अगर टमाटर में जो किसान भाई लगाते हैं टमाटर में या बैगन में भी निमेटोड की एक समस्या होती है, इसलिए जब हम अगर हम बैगन या टमाटर की जब नर्सरी तैयार करते हैं उसी समय में अगर हम थोड़ी गेंदा जो होता है जो गेंदा का फूल होता है उसकी भी हमें थोड़ी नर्सरी तैयार कर लेनी चाहिए और टमाटर के 10 से 15 लाइन के पंक्तियों के बीच में एक पंक्ति अगर हम गेंदा फूल की भी अगर हम लगा देते हैं तो उसमें टमाटर ये इसमें निमेटोड की भी समस्या कम होगी और खास करके जो कुछ फल छेदक जो कीड़े होते हैं उसकी भी समस्या कम होती है। तो इस प्रकार हमको जब नर्सरी प्रबंधन करें वहीं से हमको ये सोच रखना है कि हमें कम रसायन का उपयोग करना है जिससे कि जो हमारा उत्पाद होगा वो भी स्वस्थ और सुरक्षित होगा।
3: बिल्कुल, इसलिए उचित है कि इन बातों का ध्यान शुरुआत में ही रख लिया जाए कि किस तरह से रोगों की आशंका हो सकती है और कम से कम रसायन में अच्छी गुणवत्ता युक्त जो फसल है वो आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर यादव, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अंगूर के बागों में हम देखते हैं कि कई बार लीफ हॉपर या बीटल जैसे कीटों का भी आक्रमण हो जाता है, इससे फसल को कितना नुकसान होता है और इससे बचाव के लिए अगर कुछ उपाय आप बता सकें हमें।
4: कीटक हैं जो कीट हैं जिनकी आपने बात की कि लीफ हॉपर और जो चाफर बीटल है वो
3: जी।
4: लीफ हॉपर पत्तों के नीचे से रस चूसता है पत्तों का और पत्ते मुड़े तुड़े हो जाते हैं और ज्यादा उसका प्रादुर्भाव हो जाए तो लीफ बर्न भी कई बार हो जाता है। पत्ते मुड़े तुड़े हो जाएंगे तो जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया वो पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी। लीफ हॉपर से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जैसे लाइट ट्रैप हमने बताया था कि जो कैटरपिलर के लिए हम बताते थे कि बगीचों के बाहर लगाइए तो वो भी काफी अच्छे तरीके से काम करता है। लीफ हॉपर लाइट ट्रैप में काफी अच्छे मात्रा में मिलते हैं हमें और उसका नियंत्रण कर सकते हैं। फिर लीफ हॉपर के लिए जो मुख्य है उसको नियंत्रण करने के लिए वो है कीटनाशकों का प्रयोग। लीफ हॉपर कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टेमिक कीटनाशक हैं, जो अंतरप्रवाही कीटनाशक हैं, जो कि अंगूर में प्रयोग करने के लिए रजिस्टर्ड हैं भारत देश के अंदर में, उनका प्रयोग किसान कर सकते हैं। एक खास चीज लीफ हॉपर के बारे में ध्यान रखने की ये है कि अंगूर के अंदर में हमने जो अनुसंधान किया उसमें हमने ये पाया कि शाम के समय अंगूर के जो पत्ते होते हैं उनपे जो लीफ हॉपर है वो ज्यादा मात्रा में हमें मिलता है दिन की बजाय। तो अगर हम जो पेस्ट जो कीटनाशक का प्रयोग है अगर हम शाम रात के टाइम में करेंगे उस समय करेंगे तो हमको ज्यादा अच्छा उसका नियंत्रण मिलेगा। एक और चीज है कि जैसे कि मैंने बताया कि लीफ हॉपर पे लाइट ट्रैप के द्वारा उसको हम नियंत्रण कर सकते हैं। लीफ हॉपर प्रकाश की तरफ आकर्षित होते हैं, जो सफेद रंग का प्रकाश है उसकी तरफ में वो ज्यादा अच्छे तरीके से आकर्षित होते हैं। अगर जो किसान भाई हैं रात के समय फवारणी करने जा रहे हैं कीटनाशक की, अगर वो ट्रैक्टर के पीछे की तरफ में जहाँ पे हमारा स्प्रेयर होता है वहां पे अगर सफेद रंग का ज्यादा वाट का बल्ब लगा ले तो क्या होगा कि वो बल्ब की वजह से जितने भी लीफ ऊपर है वो उसके पास में आकर्षित होंगे और जहां पे हमारा फवारणी जा रहा है जहां पे हमारा स्प्रे जा रहा है उसके पास में जाके इकट्ठे हो जाएंगे और जो हमारा लाइट के पास में लीफ ऊपर है और साथ में हमारा जो स्प्रे है वो जा रहा है तो इमीडिएटली उसके कॉन्टेक्ट में आएंगे और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा जो है इसको कंट्रोल करने में। जो कीटनाशक है जो आप प्रयोग कर रहे हैं रात के समय कीजिए और ट्रैक्टर के पीछे की तरफ एक सफेद रंग का बल्ब लगा के रखिए तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा नियंत्रण लीफ ऊपर का दिखाई देगा।
3: बिल्कुल।
4: दूसरा जो कीटक है जिसकी बात की आपने चाफर बीटल, चाफर बीटल बारिश जब शुरू होती है तब बाहर निकलता है और काफी कम समय तक ये बगीचों के अंदर में रहता है। चाफर बीटल का जो ग्रब होता है वो जमीन के अंदर रहता है जिसको हम टाइट ग्रब कहते हैं जो कि गर्मा या दूसरे अन्य फसलों के अंदर में सब्जियों में मूंगफली में भी नुकसान पहुंचाता है तो इसका जो व्यस्त अवस्था होती है वो चाफर बीटल का। ये क्या करेगा कि जमीन से बाहर निकलेगा, अंगूर के अंदर में व्हाइट ग्रब की समस्या नहीं पाई जाती पर आसपास के खेतों से वो आ सकता है और वो क्या करेगा बाहर निकलने के बाद बारिश के बाद में किसी बड़े पेड़ के ऊपर में जाके बैठने की कोशिश करेगा। तो आपके अंगूर के बगीचे के पास में अगर बड़ा पेड़ है तो उसके नीचे के अंगूर के पौधे आप देखेंगे तो उनमें आपको ज्यादा नुकसान दिखाई देगा। फिर दूसरा कि जो सीमा के ऊपर में बॉर्डर लाइन के ऊपर में जो पौधे अंगूर का उसके ऊपर में आपको ज्यादा नुकसान दिखाई देगा। तो ऐसे पौधों को रात के समय, चाकर बीटल रात के समय निकलेगा दिन के समय छुपा हुआ रहेगा तो रात के समय जाके देखिए आपको सैकड़ों की संख्या में पौधों के ऊपर में बैठे हुए दिखाई जाएंगे। और क्या होता है कि किसान आजकल जो सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो और उनके फोटो डालते हैं तो बाकी किसान भी चिंतित हो जाते हैं कि इतनी ज्यादा मात्रा के अंदर उनके बगीचों के अंदर में चाकर बीटल है। चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये एक ऐसा कीटक है जिसको बहुत ही आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। रात के समय जब चाकर बीटल के पौधों के ऊपर बैठा हुआ है तो उसी समय हमको उसी टाइम में फवारणी करनी है हमको लैम्डा साइलोथ्रिन जो 4.9 CS का जो फॉर्मुलेशन है आधा मिली एक लीटर पानी के हिसाब से अगर पत्तों की फवारणी करेंगे तो सुबह के समय आप देखेंगे, रात के समय फवारणी करेंगे सुबह के समय आप देखेंगे जितने भी चाफर बीटल आपके पौधों में बैठे हुए थे आपको नीचे मरे हुए दिखाई देंगे। तो बहुत अच्छा।
1: किसान साथियों अभी आपने कृषि एक्सपर्ट से जैसे कि सुना हमें मेहनत करनी है लेकिन उसे सही दिशा में करने की आवश्यकता है। हम दवाइयाँ हमारे खेतों में बहुत डालते हैं लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते हैं कि कौन से समय में डालना उचित होता है और कौन से समय में नहीं। यहाँ पर जैसे कि हमने कृषि एक्सपर्ट से सुना रात के समय में हमें इस दवाई का प्रयोग करने से और उसी के साथ हमें जो सफ़ेद कलर का जो प्रकाश है उससे जो कीट है वो आकर्षित होते हैं और वहीं पर हमें हमारी दवाई का छिड़काव करना चाहिए जिससे क्या होगा हमें कम मेहनत पे अधिक रिजल्ट मिल पाएगा। जो सफ़ेद प्रकाश है वह उससे कीट है वो आकर्षित होता है और वही उसी जगह पे जब हम दवाई का छिड़काव करेंगे तो हमें पूरा ज़्यादा एरिया वहाँ कवर करने की ज़रूरत नहीं है, हम उस सफ़ेद प्रकाश के मदद से अधिक कीटों को उस सफ़ेद प्रकाश अपनी तरफ आकर्षित करेगा और वहीं पर हमें हमारी दवाई का छिड़काव करना चाहिए जिससे हमें अधिक फायदा होगा और वहाँ हमारी लागत भी बचेगी साथ ही हम हमारा समय बचा सकेंगे और एक बेहतर रिजल्ट हमें

0: मिल सकेगा। किसान साथियों, इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटा भील 90.8 FM के साथ खेती बाड़ी कार्यक्रम में।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटा भील 90.8 FM। आप रेडियो, आपकी बातें।

0: है झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है किसान साथियों आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों आपने अंगूर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना, साथ ही आपने मिर्ची टमाटर और बैंगन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। इसे यहाँ पर किसान साथियों वक्त है कि हम एक किसान भाई का एक सवाल लेते हैं जिन्होंने हमें आग्रह किया था कि उनके जो मिर्ची के पौधे हैं उसमें फूल तो आते हैं लेकिन वो फूल जल्दी ही झड़ जाते हैं, तो इसका क्या कारण है, यह क्यों होता है और इसका क्या समाधान हो सकता है, तो आइए जानते हैं और लेते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट की राय।
2: देखिए, सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि जब भी इस प्रकार की समस्या होती है तो हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसा क्यों होता है।
3: जी,
2: जैसे मैं अभी बार बार बात भी कर रहा था, कोई भी जो फसल होती है चाहे टमाटर है मिर्च में है, इसका एक नियमित तापमान होता है, उसी तापमान पे इसमें फल लगेगा। जैसे आप हर बार देखते हैं कि जो ही उत्तर भारतीय मैदानी इलाके में जून के अंतिम सप्ताह और जुलाई में टमाटर की कीमत आसमान छूने लगती है। क्यों होता है ऐसा? कि जो ही तापमान अगर 24-25 डिग्री से, खास करके रात का तापमान अगर 24 डिग्री से ऊपर होता है तो टमाटर में फल लगना बंद हो जाता है। इसी प्रकार मिर्च में भी है कि मिर्च में भी अगर रात का तापमान अगर 25-26 डिग्री से अगर ज्यादा होने लगता है तो उस समय में मिर्च में भी फल लगना बंद हो जाता है। कई किसान भाई ये सोचते हैं, अच्छी बात है कि हम अगर बेमौसम का उगाएंगे तो हम अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि इस कारण से ये समस्याएं होती हैं। जब तापमान बहुत कम होता है तब भी उसमें फलन बंद हो जाता है, और जब तापमान बहुत अधिक होता है और खास करके ये जो रात का तापमान होता है यानी मिनिमम टेम्परेचर, तो उसमें फल लगने में समस्या होती है। लेकिन आप कर क्या सकते हैं, तो कुछ ऐसे उपाय हैं, जैसे एक प्लानो फिक्स करके आता है, कुछ जो ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं इनका अगर आप छिड़काव करते हैं तो कुछ हद तक आप इसमें फलन जो है वो प्रारंभ इसमें हो सकता है। लेकिन जैसे बारिश हो गई है और मौसम का तापमान धीरे धीरे कम हो रहा है तो मिर्च में ये समस्या जो है धीरे धीरे फिर खुद ही खत्म हो जाएगी।
3: बिल्कुल डॉक्टर चौधरी, यहाँ पर मिर्च की हम बात कर रहे हैं तो जानना चाहेंगे कि इस समय मिर्च की खेती जो किसान करना चाहते हैं उन्हें किस तरह की किस्मों का चुनाव करना चाहिए।
2: जी हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके आजकल बहुत सारे किसान हैं जो हरी मिर्च के लिए खेती करते हैं।
3: जी,
2: और जो भी उनको प्रजातियां हरी मिर्च के लिए, बहुत सारी ज्यादा प्रजातियां उपलब्ध नहीं हो पाती हैं अगर हम खास करके जो हमारे सरकारी संस्थानों से, और इसमें लेकिन हमको अगर ऐसी प्रजाति अगर हमें मिलती है जिसमें जो लीफ कर्ल वायरस है इसके प्रति अगर प्रतिरोधक क्षमता है, जैसा अगर आपने भी दिखाया, और हमारे पूसा संस्थान की एक प्रजाति है पूसा सदाबहार, तो इसका आप चयन कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रजाति होती है ऊपर की तरह गुच्छे में फलती है तो इसकी लंबाई थोड़ी कम होती है। आमतौर पर किसानों की ये भी डिमांड होती है कि अगर लंबाई थोड़ी अधिक हो तो कुछ जगह उसकी कीमत अधिक मिलती है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि जो उसमें तीखापन होता है, आजकल मार्केट में जिस मिर्च में तीखापन अधिक होता है उसकी डिमांड अधिक होती है, तो ये जो पूसा सदाबहार है इसमें तीखापन काफी अधिक है जिस कारण से मार्केट में इसकी कीमत आपको अधिक मिल सकती है। इसी प्रकार हमारा जो भारतीय सब्जी विज्ञान अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है उनकी भी कई प्रजातियां, जैसे काशी अनमोल एक अच्छी प्रजाति है जो हरी मिर्च की हम बात करें, जो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान है उनकी भी, जो खास करके जो दक्षिण भारतीय जो राज्य है वहां से उनकी प्रजातियां ले सकते हैं, या जो हमारा पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनकी कुछ हाइब्रिड प्रजातियां भी हैं जैसे CH1 CH3, ये काफी पॉपुलर प्रजातियां हैं, इनका आप चयन कर सकते हैं।
3: बिल्कुल, तो मौसम के अनुसार, इसके अलावा क्षेत्र के अनुसार और किस तरह की आपके नजदीक में बाजार की स्थिति है, वहां पर मांग किस तरह की निकल रही है, उन तमाम बातों का ध्यान रखना होता है जब आप किस्मों का चुनाव करते हैं। बहरहाल यहां पर आगे बढ़ते हैं और अगले मेहमान का रुख करते हैं। डॉक्टर यादव, आपसे जानना चाहेंगे कि अंगूर में कीटों के बारे में हमने यहां पर बात की और कई तरह के कीटों से बचाव के उपाय भी आपने बताए, कुछ और बताएं कि इस मौसम में और किस तरह के कीट है जिनका प्रकोप हो सकता है।
4: पिछले कुछ सालों से अंगूर में एक लाल रंग का तना छेदक है, उसका काफी ज्यादा आक्रमण होता जा रहा है और ज्यादातर भागों में, पहले मैं महाराष्ट्र में मिला था, अभी कर्नाटक में भी उसको हम काफी मात्रा में मिल रहे हैं। लाल रंग का जो तना छेदक है ये अंगूर का कीट नहीं था, ये मुख्यतः जंगल का कीट था जो कि अभी अंगूर के अंदर में नुकसान पहुंचाना उसने शुरू कर दिया। नुकसान पहुंचाने का इसका तरीका क्या है कि जुलाई और अगस्त के महीने में लाल रंग का एक जो कैटरपिलर टाइप का जो होगा वो छाल के नीचे को लेके हमको खाता हुआ दिखाई देगा
3: जी।
4: एक जाल बनाएगा और विष्ठा होगी उसकी, वो ही छाल के नीचे ही उसका चिपका हुआ हमको दिखाई देगा। क्योंकि ये छाल के नीचे खा रहा है, हमको पता नहीं चलेगा कि ये हमारे बगीचे में इसका आक्रमण हो चुका है। दो महीने तक ये छाल के नीचे खाएगा और उसके बाद में ये तने के अंदर जाके वहां पर खाना शुरू कर देगा। एक बार अगर वो तने के अंदर चला गया तो इसको किसी भी प्रकार से नियंत्रित नहीं किया जा सकता
3: जी।
4: कोई भी कीटकनाशक है जो इसके ऊपर में काम नहीं करेगा, एक बार अंदर चला गया तो कोई भी तरीका नहीं है इसे हम कंट्रोल कर पाए। तो हमारे लिए जो जुलाई और अगस्त का महीना है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि लाल रंग का जो तनाछेदक है उसको हम कंट्रोल करें, उसको नियंत्रित करें
3: जी।
4: करने का तरीका क्या है इसका कंट्रोल करने का, कि अगर हम बगीचे के अंदर में छाल है जो ढीला छाल है पौधे में, पुराने पौधे होते हैं ढीला छाल हो जाता है, उसको निकाल दें तो ज्यादातर कीट ये जो है उसी से ही नियंत्रित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस जो कीट की एक आदत होती है कि अगर हम उसको छेड़ेंगे तो वो नीचे गिर जाएगा। नीचे गिरने के बाद में खेत में अन्य तरीके के बहुत से मित्र पशु होते हैं जैसे लिजार्ड्स होते हैं और भी बाकी तरह के होते हैं, वो उसको खा जाते हैं। तो ज्यादातर उसी में ही हमको नियंत्रण मिल जाएगा कि जुलाई और अगस्त के महीने में अगर इस कीट का प्रादुर्भाव है बगीचे में तो हम क्या करेंगे कि ढीला छाल है उसको निकाल देंगे। फिर उसके बाद में हम एक जो हमारा बायोलॉजिकल फंगस है बायोलॉजिकल कंट्रोल वाला जिसका नाम है मेटारिजियम, उसका क्या करेंगे कि 2.5 मिली एक लीटर पानी के हिसाब से सिर्फ मुख्य तना और जो कॉर्डोन्स हैं अंगूर के उसको हमको धोना है छाल निकालने के बाद में 10 से 15 दिन बाद में उसको फिर से हम एक बार और एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा नियंत्रण हमको इसका मिल जाता है। काफी ही खतरनाक कीटक है, सिर्फ जुलाई और अगस्त का महीना है जिसमें हमको इसके लिए काम करना है, इसको नियंत्रण करना है। और इस समय जो किसान भाई और बहन है वो सचेत रहें कि आपके बगीचों में जाके देखें छाल के नीचे लाल रंग का कोई कीटक तो नहीं है, कोई कीट तो नहीं है जो कि आपको खा रहा है अंगूर के अंदर में, अगर है तो उसको उसी टाइम में उसका नियंत्रण कर लीजिए। क्योंकि एक बार ये 2 महीने चले गए फिर हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और इससे होने वाला जो नुकसान है वो काफी ही ज्यादा घातक होता है अंगूर के बगीचों के लिए और अंगूर की उत्पादकता काफी कम हो जाती है।
3: जी, ऐसे में बागों की लगातार निगरानी करना बेहद जरूरी है ताकि समय रहते अगर कीट आपको नजर आ रहे हैं तो उनसे बचाव के जो उपाय है वो जल्द से जल्द अपनाए जा सके। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर चौधरी अब आपसे जानना चाहेंगे बैंगन की कुछ अच्छी किस्मों के बारे में, क्योंकि हम देखते हैं कि बैंगन के आकार को लेकर, रंग को लेकर, बीजों के बारे में भी आपने बताया कितने तरह के विकल्प जो है वो किसानों के पास होते हैं, ऐसे में किन किस्मों को उन्हें चुनना चाहिए?
2: जी, आपने बिल्कुल सही कहा है, किसान भाई भी इन बातों का ध्यान रख के ही प्रजातियों का चयन करें। जैसे बैंगन में आम तौर पे जो सबसे जो पॉपुलर प्रजातियां होती हैं वो जो बैगनी रंग का बैंगन होता है और उसमें जो लंबी प्रजाति अगर कोई किसान भाई लेना चाहते हैं तो हमारे संस्थान की जैसे पूसा श्यामला है, पूसा कौशल है, कुछ हाइब्रिड प्रजातियां अभी आई हैं, पूसा हाइब्रिड 20 है, इनका आप चयन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे गोल प्रजाति जो है, खास करके जो लोग भरता बनाते हैं तो लंबा बैंगन में बीज अधिक होता है, गोल बैंगन में आमतौर पर बीज कम होता है, तो जो भरता के लिए लोग गोल बैंगन पसंद करते हैं तो उसमें आप पूसा उत्तम ले सकते हैं। हमारे यहाँ के पूसा हाइब्रिड 9 है, जो हमारा वाराणसी का सेंटर है उसकी काशी संदेश है, इनका आप चयन कर सकते हैं। जब आपने रंगों की बात की, जैसे आजकल हरे रंग का बैंगन है
3: जी,
2: वो भी काफी पॉपुलर हो रहा है। हमारे संस्थान के यहाँ से भी पूसा हरा बैंगन 1 विकसित किया गया है तो इसका चयन किया जा सकता है। इसके साथ साथ आजकल सफेद रंग का बैंगन जो है, और कुछ बैंगन ऐसे भी हैं जो बिल्कुल देखने में, बैंगन को अंग्रेजी में हम एग प्लांट कहते हैं, जो देखने में बैंगन बिल्कुल अंडे की तरह होता है, तो ऐसा भी अगर बैंगन आप लेना चाहते हैं तो हमारे संस्थान की एक प्रजाति है पूसा सफेद बैंगन 2 और एक है पूसा सफेद बैंगन 1, तो इनका भी आप चयन कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे बहुत सारी और भी प्रजातियां हैं, हमारे संस्थान की भी पूसा अंकुर है, जो महाराष्ट्र के लिए जो मैं बात कर रहा था, जो वेरीगेटेड बैगन होता है उसमें आप पूसा बिंदु है, इनका आप चयन, जो छोटा बैगन होता है लेकिन इसमें बीज थोड़ा अधिक होता है, इसलिए जब सब्जी बनाते हैं तो इसके जो फलियां होती हैं वो बिल्कुल इंटैक्ट रहती हैं, यानी वो गलती नहीं है। तो जिस इलाके में जैसी डिमांड हो ऐसी बैगन की प्रजाति का आपको चयन करना चाहिए।
3: बिल्कुल, तो बहुत सारे विकल्प आपके पास है और इन प्रजातियों का चयन करके आप अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर यादव अब आपसे जानना चाहेंगे हम कि अंगूर के बागों को थ्रिप्स और माहू से कितना खतरा है और किस तरह से इससे बचाव के उपाय अपनाए जा सकते हैं।
4: थ्रिप्स सबसे महत्वपूर्ण कीट है अंगूर के अंदर में, जो अंगूर में नुकसान पहुंचाते हैं उनमें से। अभी जो वेजिटेटिव सीजन है, जो ऑफ सीजन हमारा का चल रहा है, इसमें जब नई ग्रोथ आती है, नई वृद्धि होती है शाखाओं की, तो उसमें थ्रिप्स ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। जमीन से ऊपर कोई भी अंगूर का भाग जो कि कोमल है उस पे थ्रिप्स नुकसान पहुंचा सकता है। इससे बचाव करने के लिए हमें क्या करना है कि अगर आपके अंगूर पे अभी भी आपको वृद्धि चाहिए तो नई ग्रोथ पे आपका थ्रिप्स दिखाई देगा। बारिश के मौसम में कई बार क्या होता है कि अगर बहुत तेज बारिश आ गई तो थ्रिप्स 2 या 3 दिन के लिए अपने आप से कंट्रोल हो जाएगा, अपने आप से नियंत्रित हो जाएगा। तो उस समय आपको कोई भी कीटनाशक की फवारणी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप मौसम की भविष्यवाणी देखें कि अच्छी बारिश होने की भविष्यवाणी है क्या। अगर आपको थ्रिप्स दिखाई दे रहा है, अच्छी बारिश की भविष्यवाणी है, तो थ्रिप्स उसमें बिल्कुल कम हो जाएगा। पर यह नियंत्रण आपको सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए मिलेगा, ज्यादा लंबे समय तक ये नियंत्रण नहीं मिलेगा आपको। तो हमें कीटनाशक है उनका प्रयोग करने की जरूरत पड़ सकती है। तो जो पंजीकृत कीटनाशक है उनका प्रयोग हम अंगूर के अंदर में कर सकते हैं। फिर उसके बाद में कि जिन बगीचों में वृद्धि पूरी हो चुकी है, हमको ऑफ सीजन में क्या चाहिए कि कैन डेवलपमेंट करना है, कैन का विकास हो गया है, तो उसके बाद में जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है, जो कि अतिरिक्त वृद्धि है जो हमें नहीं चाहिए, तो उस पे थ्रिप्स का नुकसान आ सकता है, उसका प्रादुर्भाव हो सकता है अंगूर के अंदर में। पर वो ग्रोथ अननेसेसरी है, हमको वो नहीं चाहिए। अगर उस पे थ्रिप्स का प्रादुर्भाव होता है तो भी हमें उस पे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अतिरिक्त वृद्धि है, उसको हम हाथ से अगर टाइम टू टाइम निकालते रहेंगे, समय समय पे हफ्ता 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर में एक बार उसको निकाल देंगे, तो थ्रिप्स अपने आप से उसके अंदर में नियंत्रित हो जाएगा। तो हमें कुछ कीटनाशक का प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और काफी कम खर्चे के साथ हम इसको नियंत्रण कर सकते हैं।
0: तो आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
2: जी, सबसे पहले तो जो ये मौसम है इसमें हमें पोषक प्रबंधन का भी हमें ध्यान रखना है। जैसा कि हम आमतौर पर चाहते हैं कि किसान भाई की उपज ज्यादा से ज्यादा हो, जो किसान भाइयों ने सॉइल हेल्थ कार्ड बना रखा है, लेकिन उन्हें गोबर की खाद अधिक मात्रा में डालनी है। कम से कम हमें 25 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें गोबर की खाद डालनी है। इसके बाद अगर हम ट्राइकोडर्मा का अगर हम उपयोग करते हैं तो हमारे खेतों के लिए अच्छा है। उसके अलावा हम कुछ बेबेडिया बसियाना या जो और भी हैं, जैसे एजोस्पाइरलम है, एजोटोबैक्टर है, अन्य प्रकार के जो हमारे ऑर्गेनिक मीन्स जो हैं न्यूट्रिएंट्स के, इनको भी अगर हम उपयोग करते हैं तो खेतों की जो हेल्थ है, मृदा की जो सेहत है, वो अच्छी बनती है। इसके अलावा हमें खरपतवार का नियंत्रण भी करना बहुत जरूरी है। अगर हम खरपतवार का नियंत्रण करते हैं तो उससे हमारे जो खेत हैं वो भी साफ रहते हैं, पौधों की वृद्धि अच्छी होती है और रोग और कीटाणु भी कम मात्रा में आते हैं। तो किसान भाई इसमें अगर चाहें तो हर्बिसाइड है एक, जैसे पेंडीमिथिलीन है जो स्टॉम्प के नाम से मिलती है, 3 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से जब हम रोपाई करते हैं उससे जस्ट पहले हम चाहें तो इसका एक छिड़काव कर सकते हैं। तो 30 से 35 दिन तक आपका खेत जो होगा वो वीड फ्री रहेगा।

0: उसके बाद फिर आप जब भी हमको मिट्टी चढ़ानी है क्योंकि बारिश का मौसम है तो 35-40 दिन के बाद आप एक बार हैंड वीडिंग करा सकते हैं और फिर पौधों पे जड़ों पे मिट्टी हम चढ़ाते हैं तो इससे उनको एरेशन भी अच्छा मिलता है और उनको जो पोषक तत्व स्वयं हम स्प्लिट डोज जो हम डालते हैं आमतौर पर जैसे अगर हम टमाटर की बात करें तो हम लोग संस्तुति करते हैं कि 100-60-60 ये हम डाल सकते हैं।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को जाना, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना, कैसे हमें मिर्ची बैंगन और टमाटर की जो फसलें हैं उसमें कैसे उसमें कीटों का प्रबंधन कैसे करना चाहिए, कीटों से बचाने के लिए हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही हमने ये जाना कि हमें उसमें जो खरपतवार निकलते हैं उन्हें कैसे उनका मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, साथ ही जो मिट्टी अभी बारिश की वजह से धूल के नीचे उतर जाती है उसे कितने दिनों में हमें फिर से चढ़ाना चाहिए आदि महत्वपूर्ण जानकारियों का जाना। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपु रोज करहु वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM झाबवा की आवाज आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाने के प्रयास हमेशा से करता आया है और करता रहेगा। तो किसान साथियों, यहां पर अभी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया भील 90.8 FM के साथ।
3: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
4: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, बोला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। तुम अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसे मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: रेडियो स्टेशन 90.8 FM, टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM छावा की आवाज। खेती बाड़ी कार्यक्रम में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। किसान साथियों, आप खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से अपनी आजीविका को सशक्त बनाने हेतु, हमारी कृषि में नवीनतम बदलाव लाने हेतु, कृषि उपकरणों का, कृषि यंत्रों का सहज उपयोग करने हेतु, उन्नत किस्मों की जानकारी हेतु और हमारी कृषि भूमि की देख रेख हेतु और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों हेतु हम अपने इस कृषि कार्यक्रम के माध्यम से इन सब जानकारियों को लेते हैं और हमारी कृषि को हम सशक्त बनाते हैं।
6: रेडियो स्टेशन 90.8 FM, टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
5: किसान साथियों, आज के कृषि कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे कैसे हम चारा प्रबंधन कर सकते हैं, चारा कैसे हमें उसका रखरखाव करना चाहिए, कहाँ इसकी जरूरत पड़ती है, कैसे इसका रखरखाव हम करें और इसको कैसे सड़ने से बचाएं, आदि महत्वपूर्ण जानकारियों को आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे बागवानी के बारे में, जो भी किसान भाई अभी नई नई बागवानी लगाना चाहता है तो कैसे और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आदि जानकारियों को भी हम इस प्रोग्राम के माध्यम से जानेंगे। तो आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
5: किसान साथियों, चर्चा को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमें चारा प्रबंधन करना क्यों आवश्यक है। किसान साथियों, आप सभी जानते हैं हमारे घरों में हम बैल हमारे घर में होते हैं, साथ ही दूध का उत्पादन के लिए हम गाय है, भैंस है, बकरी है, आदि पशुओं का हम इस्तेमाल करते हैं हमारे घरों में, हमारे खेतों में, जिससे उसका खाद बना पाए, आदि जरूरतों के लिए हम हमारे घरों में पशुपालन करते ही हैं। तो उन सभी के लिए एक पोषण आहार की बहुत बहुत आवश्यकता होती है। तो किसान साथियों, हमें यहाँ पर बहुत ही जरूरी है कि हमारे पशुओं को हम पौष्टिक आहार दें ताकि हमारा पशु जो है वो स्वस्थ रहे और हमारे दूध उत्पादन में भी हमें भरपूर लाभ मिल सके।
3: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
7: किसान भाइयों, जैसे ज्यादातर हमारे किसान भाई जो हैं वो पशुधन भी रखते हैं और पशुओं में कुछ किसान भाई गाय रखते हैं, कुछ भैंस रखते हैं, कुछ गाय और भैंस दोनों रखते हैं। अगर हम कुल इसकी लागत का देखें, जो हमारी पशुधन में लागत आती है, उसमें 60-70% जो है उसके खान पान का हिस्सा रहता है। अब किसान भाइयों को ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि पशु के स्वास्थ्य को अगर सही ढंग से हमें मेंटेन करना है, वो दूध उत्पादन काफी समय के लिए लेना है, तो हरे चारे की इसके लिए बहुत उपयोगिता है। अभी जैसे बारिश का मौसम है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें खेत का कुछ हिस्सा हमें चारे के लिए भी रखना है। काफी किसान भाई इसका ध्यान रखते हैं और काफी किसान भाई ऐसे भी हैं जो कि खेत का जो बिल्कुल बेकार हिस्सा है उसको छोड़ देते हैं चारे के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें कुछ हिस्सा, अच्छा हिस्सा खेत का चारे के लिए पहले से तैयार करके रखना चाहिए। उसमें अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद वगैरह डाल के लगा के रखें। और अभी जो चारे हैं उसमें ज्वार सबसे मुख्य फसल है और इसमें मल्टीकट ज्वार आती है, आपको बाजार में इसका अच्छा बीज भी मिल जाता है। इसके अलावा जहां पर थोड़ी पानी की कमी है वहां बाजरा लगा सकते हैं। और इसको संतुलित करने के लिए जैसे ये घास खुल के चारे हैं और फिर आपका दलहनी चारे भी हैं जिसमें लोबिया मुख्य फसल एक है, तो ये दोनों अगर आप लगाते हैं तो जो पशु का जो एक प्रोटीन की जो आपूर्ति है वो भी सही ढंग से होने के लिए लोबिया जो दलहनी चारा है वो भी बहुत जरूरी है। तो हमें ज्वार भी लगाइए और कुछ में आप लोबिया भी लगा सकते हैं या दोनों के दो पंक्तियों के बीच में एक पंक्ति आप लोबिया की भी लगा सकते हैं, जिससे पशु को संतुलित आहार मिलेगा, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी अच्छा रहेगा और दूध उत्पादन भी उसका अच्छा होगा।
8: जी तो चलिए देखते हैं इससे जुड़े हमारी रिपोर्ट।
9: पशुओं का दूध बढ़ाने और वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए चारा काफी जरूरी होता है। खासकर हरा चारा पोषक तत्वों का एक किफायती स्रोत है, साथ ही ये पचने में भी आसान होता है। चारे को ज्यादातर हरी अवस्था में पशुओं को खिलाया जाता है। कई बार जरूरत से ज्यादा चारे का उत्पादन हो जाता है लेकिन वो इस्तेमाल ना होने पर खराब हो जाता है। ऐसे में चारे का प्रबंधन जरूरी है जिससे पशुओं को साल भर चारा मिलता रहे। हरे चारे का संरक्षण और भंडारण अगर वैज्ञानिक पद्धति से किया जाए तो उनकी पौष्टिकता भी वैसे ही बनी रहती है। दरअसल साल के कुछ महीनों में चारे की ज्यादा उपलब्धता हो जाती है जबकि कुछ महीनों में चारे की कमी हो जाती है, जिसके लिए चारा प्रबंधन काफी कारगर साबित होता है। इसके अलावा संरक्षित चारा खिलाने से पशु आहार में दाने की मात्रा कम करने में भी मदद मिलती है और इस तरह पशुपालन में संपूर्ण आहार की लागत भी कम हो जाती है। चारा प्रबंधन करने से पूरे साल उच्च प्रोटीन और ऊर्जा मूल्यों के साथ उच्च सुपाच्य चारे की आपूर्ति उपलब्ध रहती है। हरे चारे के संरक्षण की मुख्यतः दो विधियां हैं। पहली हे बनाना और दूसरी साइलेज बनाना। हे बनाना विधि में घास को जानवरों के चारे के रूप में इस्तेमाल करने के लिए उसे काटा और सुखाया जाता है। सूखी हुई घास को हे कहते हैं। हे में पोषक तत्वों की मात्रा पैरा भूसी या तुड़ी की तुलना में ज्यादा होती है। वहीं उच्च नमी की मात्रा वाली फसल का नियंत्रित अवायवीय किण्वन करने के बाद बनाए हुए उत्पाद साइलेज कहलाते हैं। साइलेज बनाना चारा संरक्षण का एक प्रभावी और सामान्य तरीका है। साइलेज को साइलेज पिट में तैयार किया जाता है। ऐसी फसलें जिनके तने बहुत मोटे होते हैं और उन्हें सूखने में काफी समय लगता है, उन्हें हे बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता बल्कि इनका इस्तेमाल साइलेज बनाने के लिए किया जाता है। कुल मिलाकर साल भर चारे की आपूर्ति बनाए रखने के लिए चारा प्रबंधन काफी जरूरी है।
5: किसान साथियों, जैसे कि आपने इस रिपोर्ट में सुना, हमें हमारे पशुओं के लिए एक पौष्टिक चारे की बहुत आवश्यकता होती है। हमारे दुधारू पशुओं के लिए हरा चारा बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आप दूध का उत्पादन कर रहे हैं तो हमें कोशिश करनी है कि हरा चारा हमारे पशुओं को हरा चारा दे। साथ ही किसान साथियों, अभी जो बरसात का मौसम चल रहा है, हमें अभी भरपूर मात्रा में हरा चारा मिल सकता है लेकिन समय के साथ फिर ये चारा जो होता है फिर सूख जाता है, तो उस समय हमें बड़ी समस्या होती है हरे चारे को लेकर। इसके लिए हमें पुनः हमारे खेतों में हरे चारे के लिए फिर से हमें फसल का डालना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले कि अगर अभी हम जो हमारे आसपास अभी बारिश के समय में जो हरा चारा जो पौष्टिक चारा जो अभी उग रहा है उसे हम उसका प्रबंधन कर ले, जैसे कि हमें इस रिपोर्ट में हमने सुना कैसे दो विधियों के माध्यम से हम चारे को उसका प्रबंधन कर सकते हैं वैज्ञानिक विधि के द्वारा, और ये इस चारे की जो गुणवत्ता है वो बनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि हम उसको काटने के बाद इसकी जो गुणवत्ता है वो कम हो जाएगी, लेकिन अगर हम वैज्ञानिक विधि से इसकी कटाई करके उसको हम इसका प्रबंधन करते हैं तो ये इस चारे की जो पौष्टिकता है वो बनी रहेगी, साथ ही हमारे जो पशु है उनको भरपूर पोषण मिल पाएगा।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
5: किसान साथियों, चलिए डालते हैं एक नजर बागवानी के ऊपर। हमारा जो किसान है, बागवानी बहुत सारे किसान करते हैं, तो कैसे करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे बागवानी हमारे लिए एक फायदेमंद सौदा बन सकती है, आइए जानते हैं और लेते हैं एक्सपर्ट की राय।
10: नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि आजकल किसान भाई अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए बागवानी को एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। और बागवानी का जब बगीचा आप लगाने जा रहे हैं तो किसान भाई क्या करते हैं कि जैसे ही बरसात होती है तो आनन फानन में जो पौधे लाते हैं और उनको लगा देते हैं। लेकिन क्योंकि बगीचा लगाना एक लंबे समय का निवेश है और इसमें आपको जो है अपनी लगन और निपुणता के साथ साथ इसमें जो है उन्नत किस्में और क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल लगाना बहुत नितांत आवश्यक है। तो जब आप बगीचा लगाने जा रहे हैं तो उनमें किन किन बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो जहां आप बगीचा लगाने जा रहे हैं वहां की जो है मृदा और जल वो कैसा है, क्योंकि इन दोनों के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड होता है आपके बगीचे की स्थापना का। तो जैसे कि आपकी अगर मृदा का पीएच मान है, जैसे हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो हमारी ब्लड टेस्ट में हीमोग्लोबिन देखता है, तो उसी तरीके से किसान भाइयों को पीएच उसी के रूप में काम करता है। अगर आपका पीएच जो है 7 से ऊपर है तो उसमें जो है जो फल वृक्ष है उनका चुनाव अलग होगा, 8 है 9 है तो वो अलग होगा, उसकी विद्युत चालकता कितनी है जल की, उनका जो है उन कौन से फल वृक्ष उसके लिए सुटेबल होंगे वो उनका अलग अलग होगा। अब जैसे आप मान लीजिए कि 7 से 8 के बीच में है आपका पीएच, तो इनमें आप जा सकते हैं, आम हो गया, नींबू हो गया। लेकिन अगर आपका पीएच है मृदा का वो 8 से

0: है, लेकिन जो किसान उस समय तैयारी नहीं कर पाए वे इस समय सदाबहार फल वृक्षों के बाग लगा सकते हैं। किसान इस समय आम, नींबू वर्गीय फल और अमरूद लगा सकते हैं। किसान अपने इलाके को ध्यान में रखकर ही अच्छी किस्मों के पौधे लगाएं। बाग लगाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। किसान मिट्टी की जांच जरूर कराए, मिट्टी बलुई दोमट होनी चाहिए, साथ ही इसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। ऐसी मिट्टी का चयन करें जिसकी जल धारण क्षमता अच्छी हो और जिसमें पानी लंबे समय तक नहीं रुकता हो। मिट्टी की जांच कराने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी जमीन बाग लगाने लायक है या नहीं। अच्छा बाग लगाने के लिए किसान फलों की उन्नत किस्मों का ही चयन करें। फलों के बाग लगाने के लिए स्वस्थ और बेहतर किस्म की रोपण सामग्री का इस्तेमाल करें। आम के नए बाग लगाने की तैयारी पहली बारिश से ही शुरू कर देनी चाहिए। आम की बागवानी हर तरह की मिट्टी में की जा सकती है। नए बाग तैयार करने के लिए आम की गुठलियों को जून जुलाई में बो दिया जाता है। वहीं अमरूद के बाग लगाने के लिए भी हर तरह की मिट्टी अच्छी होती है। इसके बाग लगाने के लिए कलम तैयार करने के लिए एक महीने की आयु वाले इकहरे आरोह का चयन किया जाता है। मूल वृंद और कलम को 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा काटकर दोनों को जोड़कर अल्काथीन की एक पट्टी से लपेट दिया जाता है। जब कलम से अंकुर निकलने लगे तो मूल वृंद से अलग करके उसे लगा दिया जाता है। इसके अलावा नर्सरी में तैयार पौधों को जुलाई अगस्त में रोपे। नए बागों में नमी बनाए रखने के लिए समय समय पर सिंचाई करें। किसान चाहे तो सिंचाई के लिए टपक विधि का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
1: किसान साथियों, जैसा कि इस रिपोर्ट में आपने सुना, हमें हमारी मृदा और पानी का परीक्षण करवाने की आवश्यकता है और हमें देखना है कि हमारी मृदा और पानी का जो पीएच मान है वो कितना है। उसके हिसाब से हमें हमारे खेतों में, हमारी जमीन में पौधों को लगाने की आवश्यकता है। किसान साथियों, जो पौधा अगर हम पीएच और हमारी मृदा का और पानी का जो पीएच लेवल है उसको अगर हम देख के हमारे खेतों में पौधों को लगाएंगे तो उनकी पैदावार, उनकी जो ग्रोथ है, जो उनकी जो बढ़वार है वो अच्छी होगी और साथ ही हमें जो फल है वो भी अच्छी मात्रा में फल मिल सकेंगे। साथ ही किसान साथियों, हमें यहाँ पर टपक विधि और सिंचाई के कौन कौन से साधन का इस्तेमाल करना चाहिए वो भी हमने, जैसे कि इस रिपोर्ट में सुना कि हमें टपक विधि का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि हमारा जो पौधा होता है वो समय के साथ उसमें पानी की जो मात्रा है उसे हमें बढ़ाने की आवश्यकता है।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो हम सिंचाई पद्धति का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम हमारे कुओं से, नदी से या जल स्रोतों से, जहां से भी हम पानी अभी ले रहे हैं, मोटर के माध्यम से हम लेते हैं और सीधा हमारे खेतों में अनावश्यक रूप से वहां पर सिंचाई करना शुरू कर देते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे जल स्रोतों का जो स्तर है, पानी का स्तर है, वो भी कम होता है और जितना अनावश्यक पानी खेतों से बाहर निकल के चला जाता है और यहाँ पर हमको पौधों को उपयुक्त समय पर पानी देने की आवश्यकता होती है, ना कि एक ही बार में ज़्यादा पानी हम डाल देते हैं और एक सप्ताह तक फिर हमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर जो पौधा है उन्हें हमें हर दिन और जितना आवश्यकता अनुसार पानी देने की आवश्यकता होती है। इन्हीं सभी बातों का हमें ध्यान रखकर जो हमारे नए किसान हैं वो अपनी बागवानी को अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। किसान साथियों, अभी आपने बागवानी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण चीजों को जाना है, समझा है, सुना है, तो अभी आइए थोड़ा सा पुनः रुक करते हैं चारा प्रबंधन के ऊपर। कौन कौन सी फसलें हमें लगानी चाहिए चारे के लिए, कौन सी फसलें का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी ज्यादा पौष्टिक वाली फसलें हैं जिनका हम इस्तेमाल करके उनको प्रबंधन के लिए रख सकते हैं, आदि बातों को आइए जानते हैं और लेते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट की राय।
3: जैसे मैंने पहले ही बताया, जो हमारे खेती की जमीन है उसमें चारा फसलों में सीजन के हिसाब से अलग अलग फसलें हैं। जैसे खरीफ की बात करेंगे, जो अभी सीजन खरीफ का सीजन चल रहा है, बारिश का सीजन है अभी, इसमें ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, ये फसलें आप चारा फसलों के अंदर ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि जहाँ थोड़ा सा पानी की कमी हो वहाँ बाजरा की फसल लीजिए, और जहाँ भरपूर पानी है, पानी की अच्छी सुविधा है, वहाँ पर आप ज्वार की फसल लीजिए, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा उत्पादन

0: मिलेगा। अब इसके अंदर जैसे घास कुल की फसलें हैं, जो ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, ये घास कुल की फसलें हैं, लेकिन दलहनी चारों में हमारे को लोबिया की फसल इसमें लेनी है। और अगर रबी की बात करें, जब सर्दी का मौसम होता है, तो उसके अंदर मुख्य फसल बरसीम है, और जहां ज्यादा सर्दी पड़ती है वहां बरसीम की फसल ले सकते हैं, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है। लेकिन जहां थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा रहता है, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, आपका पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा है, आप वहां रिजका की फसल ले सकते हैं, जो दलहनी चारे हैं। लेकिन वहां घास कुल में आप जई की फसल भी ले सकते हैं, जो कि काफी तेजी से इसका एरिया बढ़ रहा है, क्योंकि आपको ज्यादा मात्रा में चारा चाहिए, तो जो रबी की फसल में आप जई की फसल लगा सकते हैं। भारतीय कृषि भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान झांसी में है, काफी अच्छी किस्में इन लोगों ने निकाली है। इसके अलावा जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय है वहां से भी किस्में काफी निकली हुई हैं। किसान भाई अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करेंगे तो उनको अपने क्षेत्र के हिसाब से अच्छी किस्मों का बीज वहां से मिल जाएगा। और वो मेरी उनसे यही प्रार्थना है कि अपने खेत में कुछ हिस्सा, अच्छा हिस्सा चारे के लिए जरूर छोड़ें, क्योंकि जो पशु का स्वास्थ्य है वो हरे चारे पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। ज्यादातर किसान क्या करते हैं, जब पशु दूध नहीं देता है तो उसको हरा चारा खिलाना बंद कर देते हैं। वो बहुत गलत बात है, क्योंकि जब भी आगे गाय वापस से दूध देना चालू करेगी तो वो जो टाइम गैप होगा, जब हरा चारा आपने नहीं खिलाया उसको, तो उसके अंदर आपका पशु का स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा और दूध उत्पादन भी अच्छा नहीं होगा। तो उसे हमेशा ध्यान रखना है कि हरे चारे को बिल्कुल खिलाना बंद नहीं करना है। भले आप थोड़ा खिलाइए, लेकिन आप पशु को चारा जरूर दीजिए, और दोनों सीजन में आप चारा फसल के लिए अपने खेत को तैयार कीजिए। इसके अलावा बहुवर्षीय घासें भी हैं, अभी काफी तेजी से इनका एरिया बढ़ रहा है, जिसमें हाइब्रिड नेपियर घास है, और आपका जहाँ सिंचित क्षेत्र है वहां पर बाजरा नेपियर हाइब्रिड घास का एरिया काफी तेजी से फैल रहा है पूरे देश।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।
1: किसान साथियों, जैसा कि आप और हम में से काफी किसान ऐसे हैं जो फलों की खेती करते हैं और जिसमें अमरूद और पपीता काफी मुख्यतः अपने झाबुआ जिले में इसको किया जाता है, तो हम देखते हैं कि कहीं पर वो पिंकिश कलर का जो अमरूद आता है उसकी कौन सी किस्म है वो जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि पपीते में कौन कौन सी किस्में आती है, कौन सी किस्म की पपीते हमें लगाने चाहिए। कभी कभी होता है हम आनंद फानंद में ले आते हैं बहुत सारे पौधे, लेकिन कुछ को पौधे खराब निकल जाते हैं, तो उसका चुनाव हमें कैसे करना चाहिए और कौन सी किस्मों के पौधों को हमें लेना चाहिए, कौन सी किस्में हैं, उनके नाम आदि सब कुछ जानेंगे और लेंगे यहाँ पर एक्सपर्ट की राय।
2: किस्मों के बारे में जानना चाहा तो अमरूद की जो किस्में हैं वो इलावा सफेदा है, सरदार है, श्वेता है, ललित है। ललित जो कि उसका पिंक फ्लैश होता है और ये श्वेता है उसका एकदम सफेद होता है, तो उस तरीके की किस्मों पे आप जा सकते हैं। और पपीता का रहा सवाल, तो पपीता की जो उन्नत किस्में हैं उसमें आप, क्योंकि पपीता नर और मादा पौधे हैं वो अलग अलग होते हैं, तो आपको जो है उभयलिंगी किस्मों का चुनाव करना बहुत अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो इसके लिए आप जैसे रेड लेडी हो गया, सिंटा, पूसा डिलीशियस, पूसा जायंट, इस तरह की किस्मों का चुनाव करेंगे तो आपको उस तरीके की समस्या नहीं होगी। नहीं तो क्या होता है कभी कभी, क्या किसान भाई बीज तो ले आते हैं और उसके बाद में वो कहते हैं कि इसमें तो हमारे पपीता ही नहीं आ रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है कि वो नर पौधा है या मादा पौधा है। तो उसमें उभयलिंगी पौधा होगा तो इन किस्मों में जो उभयलिंगी किस्म के पौधे होते हैं जिससे कि उनका फलन और पुष्पन अच्छा होता है, तो इनको आप लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और पपीता के बारे में जैसे मैं अभी कहूंगा कि जैसे बरसात का मौसम आया हुआ है, तो पपीता अगर आपका क्षेत्र जैसे मध्य प्रदेश से बात कर रहे थे वहां तो पाले की समस्या नहीं होगी, लेकिन जहां जिस एरिया में पाले की समस्या है वहां पे जो है पपीता का आप चुनाव ना करें। और अभी भी बरसात के मौसम में थोड़ा सा रुकेंगे अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा है तो, क्योंकि इसमें अभी जो डैम्पिंग ऑफ है, आर्द्र गलन वाला रोग होता है शुरू में, तो उससे बचाया जा सकता है आपको। तो अभी थोड़ा सा आप पपीता, अमरूद को तो आप सर्वोत्तम समय है लगाने का, लेकिन पपीता को थोड़ा सा और शिफ्ट करेंगे अगस्त के लास्ट में या सितंबर तक, तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए।
1: किसान साथियों, अभी आपने जाना कि जो अमरूद लगाने का ये सर्वोत्तम समय चल रहा है, यह सबसे उचित समय है कि जहां पर हम अपने अमरूद को लगा सकते हैं, और जो पपीते की फसल लेना चाहता है वो थोड़ा सा यहां पर उसे सब्र की आवश्यकता है, थोड़ा समय और उसको इंतजार की आवश्यकता है, उसके बाद वो भी हम पपीता लगा सकते हैं। तो किसान साथियों, इसी के साथ पुनः हम रुक करते हैं चारा प्रबंधन को लेके। चारा प्रबंधन को लेके हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को सुन रहे थे, आइए उसे जारी करते हैं।
3: जो फसलें हैं, जो चारे की फसलें हैं, आप ज्वार लगा सकते हैं वहाँ। और सबसे ज्यादा जो अपने देश में अगर इसका ज्वार का बीज आता है तो हैदराबाद से ही आता है वो, या कहीं भी नजदीक में आपके जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है वहां से भी मिल जाएगा। इस सीजन में आप ज्वार लगा सकते हैं, आप मल्टीकट ज्वार लगाइए जिसको कि आप एक बार से ज्यादा बार काट सकते हैं। और दूसरा, अगर आपके पास कोई ऐसी जमीन है जिसके अंदर कि आप अपने खेती के लिए, जो अच्छी जमीन है वो खेती के लिए काम में लेना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा बंजर टाइप जमीन है, तो आप उसमें घासें भी लगा सकते हैं। तो घास वाली फसलों में आपका सेनक्रस एक ग्रास है जिसको हिंदी में अंजन बोलते हैं, और स्टाइलो एक घास है, दलहनी घास है। ये दोनों घास के बीज को आप जो थोड़ी बंजर टाइप जमीन है उसके अंदर लगा सकते हैं, तो वो आपके दोनों घास जो है बहुत साल तक चलती हैं, आपके कम से कम 4-5 साल तक आपको चारा मिलता रहेगा। एक बार शुरू में आप 5-6 महीने तक उसको नहीं काटिए, लेकिन बाद में आप उसको जैसे ही बारिश होगी तो 30-40 दिन के एक अंतराल के बाद में गैप पर आप उसको काट सकते हैं। और अगर बहुत ज्यादा मात्रा में घास अगर हो गई है उसमें तो आप काट के सुखा भी सकते हैं, जैसे अभी चैनल में बताया गया, ज्यादा मात्रा में घास है तो आप काट के सुखा लीजिए, और जब आपके पास चारा नहीं है उसमें आप पशुओं को उसके अंदर दाना मिला के उसको खिला सकते हैं। तो इस तरह से आप जो अपनी अच्छी जमीन है उसका भी उपयोग कर सकते हैं और थोड़ी बेकार जमीन है उसका उपयोग भी कर सकते हैं। ग्राम सभा में या हर गांव में कुछ ऐसी जमीनें भी होती हैं जो बंजर टाइप की होती हैं और चरागाह के लिए सरकार छोड़ती है, तो उन चरागाह की जमीनों का विकास ही बहुत जरूरी है। हमने ये पाया है कि जहां जागरूक किसान है और ग्राम सभा बहुत एक्टिव है, प्रधान बहुत एक्टिव है, तो आप लोग जागरूक रहिए, उन चरागाह की जमीनों में भी जो पेड़ लगे हुए हैं उसके बीच में जो मैंने घासें बताई आपकी अंजन घास है या स्टाइलो घास है, दक्षिण भारत में भी बहुत अच्छी तरह से होती हैं, वहां के लिए वैरायटीज हैं, इन घासों को लगाने पर आप जोड़ दीजिए और बारिश के सीजन में लगाइए जिससे इनका बीज जम जाएगा। और आपके पशु का काफी पशु ऐसे भी होते हैं जो चरागाह में चरने जाते हैं, कुछ पशु ऐसे हैं जो घर में ही लोग अपना पशुओं को चारा और दाना देते हैं, लेकिन खास करके जैसे भेड़ है, बकरी है, गाय वगैरह है, इनको लोग चरागाह में चराने ले जाते हैं और अच्छी वैरायटी अगर घास होगा तो इन पशुओं को भी फायदा होगा। स्पेशली जो गरीब किसान हमारे हैं, भूमिहीन हैं या छोटे किसान हैं, उनके पास में जमीन नहीं होती या बहुत कम जमीन होती है चारे के लिए, जमीन वो छोड़ नहीं पाते हैं, तो चरागाह का अगर अच्छा विकास आप लोग कर लेते हैं जैसे मैंने बताया, दोनों तरह की घास, सेंक्रस घास भी और स्टाइलो भी आप लगाइए, उसके अंदर बहुत अच्छी बाजरा नेपियर हाइब्रिड है क्योंकि वहाँ बारिश काफी अच्छी होती है मध्य प्रदेश के अंदर, तो इसलिए मैं ये किसान भाई को कहना चाहूंगा जो हमारे भी एक्सपेरिमेंट किए हैं वहाँ पर और प्रचार किया हम लोगों ने, तो वहाँ बहुवर्षीय चारों में आप ज्यादा से ज्यादा बाजरा नेपियर हाइब्रिड को लगाइए अगर आपके पास में पानी की सुविधा सिंचाई की है तो, क्योंकि क्या होता है जैसे बारिश के मौसम में तो ठीक है, बाद में सर्दियों के मौसम में थोड़ा इसका ग्रोथ कम होती है बाजरा नेपियर हाइब्रिड की, थोड़ा आपको संयम रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको साल के 10 महीने तक अच्छा चारा इससे प्राप्त होगा। और थोड़ा अगर पानी का जैसे अरेंजमेंट आपका नहीं होता तो गिनी घास है, गिनी घास भी बाजरा नेपियर हाइब्रिड की तरह ही एक बहुवर्षीय घास है, ये आपका बीज से भी हो जाता है और इसकी जड़ें भी लगती हैं, तो आप इसमें 50x50 सेंटीमीटर या 2 फीट के गैप पर जो है खेत अच्छा तैयार करके उसमें आप ये घास की जड़ें लगा दीजिए, आपके कम से कम 30 से 35 हजार जड़ें 1 हेक्टेयर के अंदर लगेंगी और पूरे वर्ष आपको इसे चारा मिलेगा, पूरे वर्ष इसे चारा मिलेगा, आपको बार बार बीज की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। और ये दोनों बहुवर्षीय घास मैंने बताई, सिंचित क्षेत्र में बाजरा नेपियर हाइब्रिड और जहां थोड़ा सिंचाई की सुविधा नहीं है, रेनफेड एरिया है, तो गिनी घास, सुडान घास आपने बताया वो भी लगा सकते हैं, तो इससे आपको कम से कम नहीं तो 800 से 1000 क्विंटल चारा जो है पूरे वर्ष में आप इसे ले सकते हैं, 8 से 10 एक 30-40 दिन के गैप पर जो है आप जो है चारा काट सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
3: तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा जैसे मैंने पहले किसान भाई को बताया, आपके एरिया के अंदर जो बहुवर्षीय चारा जैसे मैंने बताया जो बाजरा नेपियर हाइब्रिड है ये काफी तेजी से वहां फैल रहा है, आप अपने एरिया को थोड़ा एरिया उसमें डेडिकेट कीजिए, आपके खेत का जो एरिया है उसके अंदर बहुवर्षीय चारा लगाइए बाजरा नेपियर हाइब्रिड, क्योंकि बारिश काफी अच्छी होती है आपके उधर, बारिश काफी अच्छी होती है, पानी की कमी नहीं है वहां पर, तो आपको पूरे वर्ष बहुत अच्छा चारा प्राप्त होगा। इसके अलावा ज्वार अगर आप अपना खेत को पूरे हर सीजन के लिए एंगेज नहीं करना चाहते, आप ज्वार लगाइए, उसमें एमपी चरी है, मल्टीकट ज्वार की काफी वैरायटीज हैं, उसको लगाइए, और सर्दी के मौसम में बरसीम लगाइए उसके अंदर दलहनी चारों के अंदर, और जई भी वहां अच्छा उत्पादन देती है। इस तरह से आप अपने खेत का हिस्सा बांट लीजिए, कितने हिस्से में आपको बहुवर्षीय चारे लगाने हैं और कितने हिस्से में आपको एक वर्षीय चारे लगाने हैं, क्योंकि कई बार समस्या क्या आती है कि जो खेत खाली होता है तो वहां पूरे गांव में जो जानवर छोड़ दिए जाते हैं, तो काफी किसान इंटरेस्ट नहीं लेते हैं कि हम बहुवर्षीय चारा नहीं लगाएंगे हमारा खेत नष्ट हो जाएगा, तो आप ज्वार लगाइए खरीफ के मौसम में और लोबिया लगाइए दलहनी चारे के रूप में, और रबी के मौसम में बरसीम लगाइए और जई लगाइए, लेकिन अगर आपका थोड़ा फेंसिंग वगैरह की व्यवस्था है तो आप बाजरा नेपियर हाइब्रिड भी लगा सकते हैं जो पूरे वर्ष आपको अच्छा चारा देगा, सिर्फ जब आपको पानी कमी होगी उसमें सिंचाई की व्यवस्था करने की जरूरत है, नहीं तो आपका जो बारिश से जो पानी मिल रहा है उससे भी उससे काम चल जाए।
1: इसी से मिलता जुलता एक और सवाल हम यहाँ पर करना चाहेंगे कि जो पानी का जो पीएच लेवल है वो थोड़ा सा ज्यादा है, पानी थोड़ा सा खारा आ रहा है, तो यहाँ पर हमें कौन से चारे का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा चारा हमें लगाने की आवश्यकता है?
3: देखिए आपके यहाँ जो पाली में पानी है थोड़ा पीएच ज्यादा है मेरे को मालूम है, सेलाइन वाटर वहां पर है, तो कुछ ग्रासेज हैं, घासें जैसे हैं जैसे अंजन घास है आप ये लगा सकते हैं। एक बार आप थोड़ा वहाँ काजरी एक संस्था है जो पाली में सेंटर भी इसका है, वहां से थोड़ा संपर्क कीजिए, कुछ वैरायटी ऐसी हो जो वहाँ सस्टेन कर जाए, नहीं तो घास काफी अच्छी होती है सेलाइन वाटर के अंदर। एक समस्या आती है कि जर्मिनेशन में बहुत समस्या आती है, तो अंजन घास वहाँ काफी अच्छी होती है, उसको आप वहाँ पर लगा सकते हैं, उससे भी आपको पूरे साल अच्छा चारा मिलेगा।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
3: हाँ किसान भाइयों, अभी जैसे सरकार के काफी प्रोग्राम चल रहे हैं जिसमें हमारा काफी बड़ा क्षेत्र जो है उद्यान की फसलों में जा रहा है, तो इसमें एक समस्या आती है कि जो उद्यान की फसलें हैं, जो पेड़ हैं, वो काफी साल तक चलते हैं। आपका एक पेड़ लगा है 20-25-30 साल तक चलता है। अब एक समस्या आती है कि इस पेड़ों के बीच का जो गैप है, कम से कम 10-12 फीट का एक गैप रहता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, कौन सी फसलें लगा सकते हैं? तो इसमें सबसे अच्छा मैं कहूंगा शुरुआत में जब पौधों की हाइट बहुत कम होती है, उसमें आप जो चारे की फसलें जैसे मैंने बताई, आपका ज्वार है या बाजरा है या बरसीम है या आपका सर्दी में रिज़का है, ये फसलें आप लगा सकते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे पेड़ की हाइट बढ़ती जाती है उसकी छाया का प्रभाव पड़ता है, तो फसलों के उत्पादन पर भी इसका असर आता है। उसमें हम ये कहेंगे जैसे पेड़ की हाइट ज्यादा है, पुराने बगीचे हो गए हैं, तो उसके बीच में आप गिनी घास, जो शेड लविंग बोलते हैं, जो छाया में भी अच्छा उत्पादन देती है, आप गिनी घास लगा सकते हैं। जो भी पानी पेड़ों को मिल रहा है उसी पानी से वो हो जाएगी, बारिश के पानी से भी वो सर्वाइव कर जाती है। इसके अलावा आपका राजस्थान के अंदर जैसे फलों के बगीचे हैं, तो आप सेंक्रस अंजन घास है वो लगा सकते हैं, स्टाइलो लगा सकते हैं, या 2-3 लाइन आपकी सेंक्रस की लगाइए, बीच में 2 लाइन आप स्टाइलो के लगा दीजिए, तो इससे आपको दलहनी और जो घास कुल की दोनों घासें आपको मिलेंगी और पशुओं को बहुत अच्छा चारा आपको प्राप्त होगा। एक तरह से आप फलों से आपको आमदनी हो रही है और आपको बीच में जो घास है वो अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होगी। न केवल आपका पशुओं का स्वास्थ्य ऐसे सुधरेगा, आपका जो पशुओं का जो बजट खर्चा है उसमें कमी आएगी, आप उसको बेच के अपना अतिरिक्त आमदनी भी कर सकते हैं इससे।
0: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, हम लगातार चारे को लेकर चर्चा कर रहे हैं। किसान साथियों, हम कौन सा चारा जो होता है जो 12 महीने हमको मिल सकता है, और हाँ बिल्कुल हमको चारे की बहुत ही आवश्यकता है। हमारे सभी के घरों में अधिकतर पशु मिलते हैं, दूध उत्पादन हम करते हैं, साथ ही उनके गोबर से जो हमारी मृदा है उसका संरक्षण होता है, उससे जो खाद बनाई जाती है उससे हमें जैविक खेती में, प्राकृतिक खेती में बहुत ही उपयोगी साबित होता है। तो कहीं ना कहीं हमें पशुओं की बहुत आवश्यकता है, तो पशुओं के लिए चारे की हमें उतनी ही आवश्यकता पड़ती है। तो किसान साथियों, हम लगातार ये जान रहे हैं कि कौन सी जो घास है वो अति उत्तम होती है, कौन सी घास हमें कौन सी जमीन में हमें लगानी चाहिए, साथ ही कौन सी गुणवत्तापूर्ण घास होती है, और इस घास का हम प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। अभी जो मौसम चल रहा है, अभी ऑन सीजन है जहाँ पर हमें अधिकतर चारा मिल सकता है, लेकिन जब ऑफ सीजन होता है उस समय हमें घरे चारे की काफी दिक्कत होती है। जिसके पास मोटर है वह हरे चारे की फसल को डाल के वहां पर अपनी फसल को कर सकता है, लेकिन यहाँ पर जिन किसान भाइयों के पास फसल की पानी का जो प्रबंधन उतना अच्छा से नहीं है, वो किसान भाई कैसे इस समय में चारे का प्रबंधन कर सकते हैं और कैसे इस चारे को लंबे समय तक अपने संग्रहालय में रख सकते हैं, ताकि समय आने पर हमारे पशुओं को एक उपयुक्त और पौष्टिक आहार हम दे सकें। इससे जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे, और आइए यहाँ पर हम लेते हैं कुछ एक्सपर्ट की राय, कैसे हम हमारे चारे का और अच्छे से इसका प्रबंध कर सकें। आइए लेते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट की राय।
3: हमारे देश में जो बहुवर्षीय चारा फसलों का प्रचलन है आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसका कारण ये है कि हर सीजन में एक तो बीज का अरेंजमेंट करना, अच्छे बीज का अरेंजमेंट करना किसान के लिए बहुत मुश्किल होता है, तो बहुवर्षीय चारों में सबसे ज्यादा जो प्रचलित चारा इसमें है वो बाजरा नेपियर हाइब्रिड है। नेपियर एक अफ्रीकन हम कह सकते हैं प्लांट टाइप है, जिसकी हाइट, उसको हाथी घास भी बोलते हैं, वो हाथी भी उसमें छिप जाता है जाके, लेकिन उसकी पोषक तत्व तो ज्यादा नहीं थे। तो बाजरा के अंदर पोषक तत्व तो ज्यादा होते हैं, तो बाजरा और नेपियर का क्रॉस करा के वैज्ञानिकों ने एक नया प्लांट टाइप निकाला, बाजरा नेपियर हाइब्रिड। और पूरे भारतवर्ष में, उत्तर भारत में भी आपका जितनी भी कृषि विश्वविद्यालय है और दक्षिण भारत में भी अलग अलग वेराइटीज उन एरिया के हिसाब से निकाली जा चुकी है। कोयम्बटूर से भी अच्छी वैरायटी निकली है, हमारा चरागाह अनुसंधान संस्थान झांसी से भी निकली है, धारवाड़ से भी अच्छी वैरायटी निकली है, पंजाब हिसार से भी निकल चुकी है। अपने क्षेत्र के हिसाब से आप लोग वैरायटी का चयन करके और खेत का कुछ हिस्सा आप इसमें बहुवर्षीय चारों के लिए आप दे सकते हैं। इसके अलावा काफी ऐसे भी ट्रायल किए गए हैं जिसका जरूरी नहीं कि आप पूरा क्षेत्र अपना खेत का जो है बहुवर्षीय चारों में दे दीजिए। आप उसमें एक ट्रैक्टर क्रॉस कर जाए 10 फीट का गैप रख के, आप कुछ पंक्तियां बहुवर्षीय चारों की लगा सकते हैं और बीच में सीजन के हिसाब से, जैसे आपका खरीफ में ज्वार लगा दीजिए, आप लोबिया लगा दीजिए, और रबी सीजन में बरसीम लगा दीजिए, या आप कुछ एरिया ऐसा भी है जहां ज्यादा ठंड नहीं पड़ती, जैसे मैंने राजस्थान या गुजरात का एरिया है, वहां पर इसका भी लगा सकते हैं उसके बीच में आप जो है। इसके अलावा जई भी लगा सकते हैं, तो आप बहुवर्षीय चारों का फायदा भी उठा सकते हैं और जो एनुअल क्रॉप फोटो क्रॉस बोलते हैं, एक वर्षीय चारे बोलते हैं, उसका फायदा भी उठा सकते हैं। पूरे वर्ष भर आप ऐसा प्लान बना सकते हैं जिससे आपको हरा चारा मिलता रहेगा, पोषक तत्व मिलते रहेंगे। और एक बात और है कि अगर आपके यहाँ बहुवर्षीय चारों की फसल लगी हुई है तो आप अपनी लागत, जो दूध की लागत आती है जो उत्पादन की पशुओं की, उसको भी आप घटा सकते हैं और पशु का स्वास्थ्य भी इससे काफी बेहतर होता है।
0: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: हमारा किसान जो है आम का बहुत ही बड़ा शौकीन है, तो आइए जानते हैं आम से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को, कैसे और कहां से हमें पौधा लेना चाहिए और कौन सा पौधा अच्छी किस्म का होता है और किस पौधे से हमें ज्यादा से ज्यादा फल मिल सकते हैं। तो आइए जानते हैं और लेते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट की राय।
2: आप बाग लगाना चाहते हैं तो वहाँ आप पहले, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, वहाँ की जो मिट्टी और जल का आप जो है परीक्षण करवा लें, और उसके बाद में आप जाएं और उसमें जो उन्नत किस्में हैं वो, क्योंकि आम में अनियमित फलन और पुष्पन की समस्या होती है, जो नियमित फलन देती हैं वो जो हाइब्रिड किस्में हैं, जैसे आपकी आम्रपाली हो गई, मल्लिका, इस तरह की किस्मों का आप चुनाव करेंगे तो उसमें अच्छा होगा। और क्योंकि जो इनके जब वृक्षारोपण भी आप करने जा रहे हैं तो आम में कुछ किस्में ऐसी हैं, जैसे आम्रपाली है, और तो ये जो है इसको सघन बागवानी में भी आप लगा सकते हैं, तो इनकी जो दूरी होगी पौधे से पौधे की वो जो है 2 से 3 मीटर रख सकते हैं। लेकिन जो दूसरी किस्में हैं, जो उनका जो छतरक का विकास है वो ज्यादा क्षेत्र में होता है, तो उनके लिए आपको कम से कम 8x8 मीटर की दूरी रखनी पड़ेगी। और अगर आपने गड्ढे नहीं खोदे हैं तो इस साल एक्चुअली इनका जो आपको लगाने चाहिए बाग, उनका गड्ढों का खोदने का सही समय जून का है, तो जून में जब आप गड्ढे खोदेंगे 1 महीने के लिए उनको खाली छोड़ देंगे, और 1 महीने में जैसे ही आपने वो गड्ढे खोदे हैं तो उसके अंदर जो मिट्टी निकली है उसकी आधी मिट्टी और आपके जो है सड़ी, अच्छी तरीके से सड़ी गली गोबर की खाद, और अगर आपके वहां कोई दीमक की समस्या है तो दीमक की जो दवा है क्लोरोपाइरीफॉस, उसको 100 ग्राम उसमें मिला करके, और इन मिट्टी, गोबर की खाद और क्लोरोपाइरीफॉस को अच्छी तरीके से मिला लेंगे, कुछ ट्राइकोडर्मा भी डाल देंगे और उसको भर देंगे आपने जब गड्ढा खोदा है उसके 15 से 20 दिन बाद में, और भरने के बाद में उसको पानी दे देंगे, जिससे क्या होगा कि जो इसकी हीट होगी अंदर की वो उससे निकल जाएगी। अदरवाइज जैसे आपने गड्ढा भरा है और उसमें तुरंत आपने पौधा लगा दिया तो उसमें जो है पौधे की मोर्टिलिटी की संभावना होगी, तो वो 10 दिन पहले करीब उसको अच्छी तरीके से भर दें। और जब आप ये उन्नत किस्में लें, लेकिन सबसे पहले आप ये बात का भी ध्यान रखें कि ये उन्नत किस्में लेंगे कहाँ से, तो जहां से आप लेने जा रहे हैं या तो आप जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, या फिर आप जो है कोई जो कृषि विश्वविद्यालय है या नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र है वहां से ही कलमी पौधे लें। अगर वहां पे भी आपको सुनिश्चित नहीं हुआ है कि हमें पौधा नहीं मिला है तो जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, उसकी एक्रेडिटेड नर्सरी, जो प्रमाणित नर्सरी है जिनकी 3-स्टार रेटिंग है, उनसे पौधा लें, तो उससे क्या होगा कि आपका ये सुनिश्चित हो जाएगा कि ये पौधा फला किस्म का ही है। अदरवाइज क्या होता है कि बाहर आनन फानन में जब हम पौधा खरीदते हैं तो बाहर से जो पौधा लिया उसका कोई पता ही नहीं है कि वो कौन सी किस्म का है, और बाद में जो है वो बीजू पौधे से तैयार होते हैं तो उसमें जो है फलन काफी देर बाद में होता है, तो उसमें किसान को जो है थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस तरीके की आपको सावधानी रखनी।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, आइए जानते हैं अगर कोई हमारा किसान भाई है वो बागवानी लगाना चाहता है तो इसमें हमें सरकार द्वारा क्या अनुदान मिल सकता है, क्या इसके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, कैसे हमें अनुदान मिलेगा और कहां से क्या प्रोसेस हमें करने की आवश्यकता है, आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को।
2: तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत जो है भारत सरकार इसमें काफ़ी मदद किसानों को बगीचे स्थापना के लिए दी जाती है। अब इसमें क्या करना होगा, जैसे कि आप उसका क्राइटेरिया क्या है, आपका जो है 0.4 हेक्टेयर से और 4 हेक्टेयर तक आप जो है बगीचा लगा सकते हैं, और इवन जो SC ST के लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, उनके लिए ये जो सीमा है ये 0.2 हेक्टेयर ही है। और इसमें जैसे आप 1 हेक्टेयर के लिए जो आप बगीचा लगाने जा रहे हैं आम नींबू अनार अमरूद, तो इसके लिए क्या है, अगर आप ड्रिप के साथ लगाने जा रहे हैं तो उसकी अनुदान राशि जो है करीब 30,000 से 40,000 रुपए, या जो जो कॉस्ट आ रही है उसका लगभग 50% अनुदान उसमें दिया जाता है किसान भाई को, और 50% वो अपना लगा सकता है, और बिना ड्रिप के अलग है। तो उनके लिए क्या करना होगा, किसान भाई को अपना जो है जो आवेदन करना होता है, और उनके जो जिस राज्य में जहाँ है वो उसके जो है कृषि विभाग या जो उद्यान निदेशालय है वहाँ जो कृषि अधिकारी के संपर्क करके, और वो उस तरीके का अपना आवेदन करेंगे तो इस तरीके की वो जो अनुदान राशि है वो ले सकते हैं। क्योंकि ये जो अनुदान राशि है वो उसको क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल खरीदने के लिए और जो स्थापना करने के लिए और जो ये क्या कहते हैं आपके कीटनाशक वगैरह दवा खरीदने में आपको सहायता करेगी और आपको अनुदान राशि दे होगी, तो उससे क्या होगा कि आपके ऊपर एकदम धनराशि का बोझ नहीं पड़ेगा, और जैसे ही आप बगीचा लगाएंगे तो आपका निश्चित रूप से आमदनी आगे बढ़ेगी।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: इसमें जो है आप ये CISH है जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, उसने आम की बहुत सारी किस्मों को निजात किया है और उनका क्षेत्रीय केंद्र भी है वहाँ मालदा, तो उसके पास से आप जो है उसकी उन्नत किस्में लेंगे, और चाहे आप वहाँ कौन सा जो है प्लांटिंग मटेरियल उपलब्ध है, इसके अलावा नजदीकी जो कृषि विश्वविद्यालय है कृषि विज्ञान केंद्र है शावूर में भी एक वहाँ केंद्र है, और वहाँ एक सबसे पुराना कृषि विद्यालय जो आपके राजेंद्र नगर में है वहां से भी आप जो है इसके जो उन्नत किस्मों का प्लांटिंग मटेरियल ले सकते हैं, और वो गड्ढों की साइज और स्पेसिंग है उनके लिए आप टेक्निकल जो है डिस्कशन कृषि विज्ञान केंद्र के उद्यान विशेषज्ञ से भी कर सकते हैं, और जो गड्ढे हैं वो किस्म के हिसाब से आप खोदें, जैसे कोई बौनी किस्म है और आप सघन बागवानी करना चाहते हैं तो जैसे आम्रपाली वगैरह है तो 2.5 x 2.5 meter पे आप उनकी जो है पौधारोपण करेंगे, और जो दूसरी ओजस्वी किस्म है जिनका जो है छत्रक ज्यादा बड़ा होता है तो उनको आप 6 से 8 meter की दूरी पर स्थापित करें।
1: किसान साथियों, इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया भील 90.8 FM के साथ। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांडिया भील रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન આપુ રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांडिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। किसान साथियों, खेती बाड़ी कार्यक्रम में आप अभी तक लगातार घास प्रबंधन को लेकर काफी चर्चा को आप सुन चुके हैं। साथ ही आपने उन्नत आम की उन्नत किस्मों के बारे में भी सुना। अब ये जो समय चल रहा है, यह बागवानी के लिए उत्तम समय है और जो भी किसान भाई बागवानी में रुचि रखता है उसके लिए ये बहुत ही उत्तम समय है। यहाँ पर आपने बहुत सी उन्नत किस्मों के आम के बारे में जाना है, तो आप आम लगा सकते हैं, साथ ही अमरूद भी आप लगा सकते हैं। तो किसान साथियों, आम और अमरूद के साथ ही साथ घास से संबंधी और कुछ और जानकारियों को जारी करते हैं और आइए सुनते हैं कुछ और एक्सपर्ट की राय।
2: की जो किस्में हैं, इसमें आप जो उन्नत किस्में हैं इलावा सफेदा, सरदार और जो नई किस्में हैं उनमें श्वेता और ललित है। तो ललित का जो है उसका जो पिंक फ्लैश होता है तो उसका प्रोसेसिंग क्वालिटी अलग है और उसकी डिमांड भी अलग है। तो इनका आप एक मिश्रण कर सकते हैं अपने जब पौधा रोपण कर रहे हैं। और इनकी पौध की सामग्री आपको कहाँ से मिलेगी इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ कि जो CISH है आपके लखनऊ में, वहाँ पे ये पौधे तैयार किए जाते हैं। और इन पौधों के लिए आपको जैसे अभी आपने संपर्क कर लिया है तो अच्छा है, नहीं तो वहाँ के जो भी नर्सरी इंचार्ज होंगे उनसे आप फोन के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से जुड़ के उनसे संपर्क करेंगे और उनका जो रिक्विजिशन लेटर है उस पर आप जो है लिखेंगे तो वहाँ से आपको पौधे की सामग्री जरूर मिलेगी। और क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको फोकस किया है कि जो इनके जो लगाने की दूरी कितनी रखनी चाहिए, तो आप जो अमरूद को है 6x6 मीटर दूरी पर लगाएंगे। और अगर सघन बागवानी में जाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आपकी पहले एक और बात की जो है कि अमरूद में जो समस्या आती है वो उकठा रोग जिसे विल्ट बोलते हैं, अगर आपके जो मृदा का पीएच है वो 8 से ऊपर है या 8 और 9 के लगभग है तो वहाँ जो ये फ्यूजेरियम एक फंगल होता है वो उसके मतलब इतने चांस होती है कि वो पौधे के मरने की संभावना ज्यादा हो जाती है कि उस मृदा में जो है विल्ट की समस्या है या उकठा रोग है वो बहुत ही खतरनाक रोग है। तो अगर इस रेंज में है आपका पीएच तो इसमें जो है आप अमरूद ना लगाएं और इससे नीचे है तो आप अमरूद लगाएं। ये उन्नत किस्म है, आप जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो CIH इंस्टीट्यूट है या जो मध्य प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय है या आपके पास में जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनसे इन किस्मों के

0: जो है चुनाव करके आप इनको लगाएं और 6x6 मीटर पे लगाएंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए।
1: हमारा झाबुआ का किसान जो है अधिकतर जंगल के पास का जो चारा होता है, जो जंगल में जो चारा होता है उसी से, उसी चारे को काटकर उसका प्रबंधन करता है। तो क्या ये चारा हमारे गाय भैंसों के लिए गुणवत्तापूर्ण चारा है या नहीं, और इसका प्रबंधन अगर कोई करना चाहता है तो उसको कैसे करना चाहिए, आइए इसमें लेते हैं एक्सपर्ट की राय।
2: किसान भाइयों, जो हमारा जंगलात की जमीन है, फॉरेस्ट एरिया जो बोलते हैं, इसके आसपास भी काफ़ी लोग निर्भर रहते हैं पशुओं के चराई के लिए। अभी काफ़ी जो फॉरेस्ट एरिया के ऑफिसर्स हैं वो रिसर्च इंस्टीट्यूट से डिस्कस करते हैं चरागाह फसलों के बारे में, तो किसान भाई इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वहाँ आपस में पार्टिसिपेटरी मेथड से जंगल के विभाग के साथ मिलके आप लोग उसका मैनेजमेंट अच्छा अगर करें, जिसमें आपका अंजन घास है जहां पर जो बारिश है 400 से 500 मिलीमीटर कम से कम बारिश होती है, अंजन घास आप लगा सकते हैं। लेकिन रेगिस्तान का एरिया है जहां पर बारिश बहुत कम होती है, जैसे बाड़मेर जैसलमेर का एरिया है, तो वहां पर आप सेवन घास जो होती है वो 200 मिलीमीटर की बारिश में भी अच्छी हो जाती है और काफी साल तक आपको 8 से 10 साल तक उसको अच्छा चारा मिलेगा। और सेवन घास के तो 50 साल तक की हमने देखे हैं कि पहले भी लगाई हुई घास है उसकी फुटान अच्छी होती है और वो काफी तेजी से उसके बीज फैलते हैं और काफी बड़े एरिया में फैल जाती है। तो जंगल विभाग के आसपास के एरिया या जंगल के अंदर के एरिया जहां तक पशु चरने के लिए जाते हैं उनको वहां से भी जो बीच का जो खाली स्पेस है पेड़ के बीच का वो एक चरागाह के रूप में विकसित किया जा सकता है, जिससे कि किसानों को जो चराई पर डिपेंड है, छोटे किसान है, भूमिहीन किसान है, उनको फायदा मिल सके।
1: किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में आपने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना, आपने चारा प्रबंधन से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों और कौन सी किस्मों का चारा लगाना चाहिए और हमारे पशुओं को कौन सा चारा सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है, कैसे पशुओं का देखरेख करना और हमारे चारे की उन्नत किस्में कौन कौन सी है, कौन सा चारा अच्छी किस्म का है आदि जानकारियों को आपने जाना। साथ ही आपने जो किसान बागवानी करना चाहता है वो अभी उनके लिए जो उपयुक्त समय चल रहा है और कौन से आम है, अमरूद है, इनके कौन से अच्छी किस्म के पौधे हैं आदि जानकारियों को आज के इस प्रोग्राम में आपने जाना। इसी के साथ किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांट्याबिल 90.8 FM के साथ। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांट्या भील, रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન, આપુ રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં, એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM।
3: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in पर। हर घर

0: तुमसे अच्छा कौन है।
1: आज के कलाकार के इस तेजी से बढ़ते हुए मंच पर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम स्वागत करते हैं उन सिंगर्स का, उन टैलेंट्स का, उन गायकों का, उन गायिकाओं का जो अपने टैलेंट का मजा ले रहे हैं और हम भी उनको पूरा पूरा प्रोत्साहित करने की कोशिश में लगे हैं। चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं आज एक और टैलेंट से। मैं समीर और मेरे दोस्त नितिन राज आपका स्वागत करते हैं।
2: हरगिज न यकीन था हमको अनहोनी बात होगी।
1: आज के कलाकार के प्रोग्राम में दोस्तों आइए फिर से आपका स्वागत है। जैसा आप जानते हैं और जैसा हम लगातार कह रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म, ये मंच आपका है, नए टैलेंट्स का है, नए गायकों का है। तो आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में हैं रविंद्र अकोलकर जी।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रविंद्र अकोलकर ही मेरा नाम है सर।
1: बहुत बढ़िया रविंद्र जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार कि आप आए हमारे जानने वालों के लिए, हमारे सुनने वालों के लिए, नए सिंगर्स के लिए, नए गायकों के लिए। हमें बताइए ना कि आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए।
3: सर मैं अभी तो पिछले 7 सालों से नागपुर में बेस्ड हूँ। नागपुर जो मध्य भारत का इलाका है, महाराष्ट्र में आता है, एंड इट इज लाइक सेकेंड कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र
1: जी।
3: और बेसिकली मेरा जो वर्क प्रोफेशन की बात करूँ तो मैं अभी करेंटली मैं मेडिकल डिवाइसेस के सेल्स में हूँ, जो ऑप्थेल्मिक जितने भी डिवाइसेस आते हैं
1: जी,
3: डायग्नोस्टिक्स एंड सर्जिकल्स, तो उसके सेल्स का मैं मेरा काम है सर।
1: वाह क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। तो दोस्तों आपने सुना रविंद्र जी डायग्नोस्टिक्स में हैं, नागपुर में रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को रविंद्र जी के ही गाए हुए इस बेहद खूबसूरत नगमे से।

0: बहुत बढ़िया रविंद्र जी, क्या शुरुआत है, बहुत बढ़िया। तो रविंद्र जी, यूं ही बस आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर डायग्नोस्टिक्स में कोई बच्चा आपकी बात सुनकर इंटरेस्टेड होता है, तो वो आना चाहता है कि डायग्नोस्टिक में अपना करियर बनाना चाहता है, तो क्या सलाह देंगे उसको आप?
1: अगर सर इस फील्ड में वो आना चाहता है, जैसे मैं मेडिकल डायग्नोस्टिक फील्ड में हूँ,
0: जी
1: तो उसको सर पहले तो जैसे बोलते हैं प्रिपरेशन की जरूरत है कि एक उसका बैकग्राउंड वैसा होना चाहिए, उसका एजुकेशनल प्रोफाइल रिलेटेड टू बायोलॉजी और साइंस अगर रहे तो ज्यादा अच्छा रह सकता है। थोड़ा बहुत अगर कम्युनिकेशन का पोर्ट मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है सर।
0: वाह क्या बात है, बहुत खूब, बड़ी ही प्यारी बात कही। दोस्तों, हमारे अगल बगल बहुत सारे ऐसे यंग जनरेशन होंगे जो इस तरह के फील्ड में करियर बनाना चाह रहे होंगे। आप उन्हें सलाह दें कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर उसके टैलेंट को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर लिया जाए, स्किल को डेवलप कर लिया जाए, तो बस मज़ा आ जाएगा। बहुत खूब, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और सुनते हैं रविंद्र जी की ही आवाज में अगला गीत।

0: रविंद्र जी, कभी कभी लोग आपके बारे में कुछ गलत फहमी हो जाती होगी उनको, तो ऐसा क्या है जो उनको गलत फहमियां हो जाती होंगी? आपके बारे में सबसे अधिक क्या गलत फहमी रखते हैं लोग?
1: देखिए सर, बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न पूछा है मुझे,
0: जी
1: और इसका मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसा कि मैं इंसान हूँ वैसा आपको जवाब
0: ओ
1: दूंगा।
0: प्लीज, ओ
1: क्योंकि जो
0: प्लीज
1: इंसान सर स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं
0: जी।
1: तो वो होना ही शायद कभी कभी थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, तो उनके बारे में ऐसा बोला जाता है कि अरे स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो ये बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं, गुस्सेल हो सकते हैं, और ये शायद थोड़ा सा एक डिस्टेंस रखते हैं, मिक्स नहीं होते हैं और अपनी धुन में खोए रहते हैं, अपने आप को थोड़ा ज्यादा समझते। तो आई थिंक ये बेसिकली एक मैंने देखा है अपनी लाइफ में कि अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो तो शायद ये ऐसी गलत फहमी हो सकती है, जो मेरे
0: ओके
1: बारे में भी सही है सर।
0: ओके दोस्तों, आपने सुना, रविंद्र जी ऐसे नहीं है, तो इसलिए गौर कीजिएगा, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अपनी दिल की बात कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपके और रविंद्र जी के गीतों के बीच में ज्यादा देर नहीं रहूंगा, सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: रविंद्र जी, अपने बचपन की कोई प्यारी सी याद के बारे में हमें बताइए।
1: सर, यादें तो बहुत सारी हैं। अगर मैं जैसे आपको बताऊं, यादें ऐसी है कि सर मेरा बेसिकली गाने से बहुत ज्यादा लगाव रहा है, वेरी क्लोज टू माय हार्ट। तो जब मैं अपनी चाइल्डहुड में था तो स्कूल वालों ने मेरे टैलेंट को पहचाना एंड ये मेरे पेरेंट्स को बताया एंड उसी के कारण मैं आज हूँ कि जो मेरी जो भी आवाज है, जो भी मैंने अभी तक गाया है अपने जीवन में, वो मेरा सबसे पहले मैं क्रेडिट देना चाहूंगा मेरे स्कूल को, सरस्वती शिशु मंदिर जहाँ मैं पढ़ा, और फिर वहां से मेरी मदर जिन्होंने मेरे को म्यूजिक स्कूल में डाला, और फिर जो भी कुछ थोड़ा बहुत मैं सीख पाया अपने इस सफर में। तो ये एक बहुत बड़ी लाइफ जिसे मैं याद ही बोलना चाहूंगा जो बचपन की है, जिसके कारण आज मेरे को एक सुकून जो मिलता है तो वो गाना ही है सर।
0: बहुत
1: आज
0: बढ़िया।
1: इतने भागदौड़ के जीवन में और इतने टेंस एटमोसफियर में एक सबसे बड़ा, जैसे बोल सकते हैं कि एक योगा जैसा मैं म्यूजिक को मानता हूँ, इट इज नथिंग लेस देन योगा।
0: बहुत खूब, क्या
1: तो
0: बात कही आपने। तो रविंद्र जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हमें कुछ सलाह दीजिए कि हम संगीत को और लोगों के और नजदीक कैसे ले जा सकते हैं, कुछ सलाह दीजिए।
1: सर, संगीत मेरे हिसाब से सर जितना मैंने समझा है जाना है, सारा जो खेल है या इसके पीछे का जो भी कुछ ये है सर, लॉजिक है, जितना आप सर समय देंगे प्रैक्टिस में तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम रियाज बोलते हैं। तो जिन लोगों को भी गाना गाना है, सीखना है, अगर उनकी आवाज मीन्स ठीक ठाक है, तो अपने आवाज को एक रियाज के कारण या प्रैक्टिस के कारण उसको थोड़ा सा तराश सकते हैं।
0: जी
1: और जितना अच्छा आप अभ्यास किसी भी चीज का करेंगे तो आप उसमें से पारंगत बनते जाएंगे। तो ये किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में, जिसे हम बोलते हैं, किसी भी फील्ड में ये एप्लीकेबल है सर। आप जिस भी प्रोफेशन में हो तो सेम एप्लीकेबल टू संगीत। पर आपको थोड़ा एक पागलपन, जिसे बोलते हैं, धुनी होना भी बहुत जरूरी है, कि फिर अगर आप जितना किसी चीज का रियाज करेंगे, जितना उस पर ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, उतना ही वो निखरता चला जाएगा सर।
0: बड़ी खूबसूरत बात कही साहब, बहुत ही खूबसूरत बात कही। तो चलिए दोस्तों, फिर हो जाए एक और प्यारा सा गीत रविंद्र जी की ही आवाज में।

0: रविंद्र जी, आपकी आज तक की सबसे बड़ी असफलता या फेलियर क्या रही और उससे आपने क्या सीखा, उस अनुभव से क्या सीखा आपने?
1: तो देखिए, आपने जो क्वेश्चन पूछा है मुझे, असफलताएं तो बहुत सारी है, बट अगर मैं इसको केवल गायन तक या म्यूजिक तक रेस्ट्रिक्ट करूं तो मैं अगर आपको बोलूं तो मेरा सिलेक्शन हुआ था 2005 में सारेगामा पा चैलेंज 2005 में। मैं एक लेवल तक आगे गया और वहां पे फिर मुंबई में होटल साहिल में, जिसे आप बोल सकते हैं सर, कभी कभी आप एंग्शियस हो जाते हैं या एंग्जाइटी के कारण मैं आगे नहीं बढ़ पाया सर। पर उसके पहले का मेरा सफर ऐसा था कि मैं हजारों लोगों में भोपाल से आगे बढ़ा। तो ये दो चीजें हैं सर। तो आई थिंक दैट कि उससे मुझे सीखने के लिए मिला कि थोड़ा आप जितना अपने आपको काम एंड कंपोज एंड फोकस्ड रख सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लेके अगर आप चीजों पर रिएक्ट कर सकते हैं तो शायद उसके परिणाम कुछ अलग हो सकते हैं सर।
0: बहुत खूब दोस्तों, एक प्यारा सा संदेश कि हम अपने आप को काम एंड कंपोज्ड रखें, ना तो बहुत खुशी और ना ही बहुत गम, अपनी प्रतिभा की तरफ ध्यान दें, अपना प्रतिभा के ऊपर फोकस करें। तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक और प्यारा सा गीत हो जाए।

0: थैंक यू वेरी मच।
1: रविंद्र भाई, अगर आपको किसी एक बात के लिए याद किया जाए तो वो क्या होगी?
2: सर देखिए, मेरा जो मुझे जो याद किया जाए तो मैं बोलूंगा कि मेरा जो स्वभाव है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर, फन लविंग पर्सन, एंड जिसे आप बोल सकते हैं कि सर मैं लोगों को बोल देता हूँ, मैं अपने मन की बात बोल देता हूँ
1: जी।
2: और बाकी जो सर मेरा सबसे बड़ा शौक है गाना, तो जो भी कुछ मैंने गाने गाए हैं पूरे इमोशंस के साथ, जिनके साथ मैं न्याय कर पाया हूँ सर, अगर लोग मेरे वो गाने सुने तो शायद वो देख पाएंगे कि हाँ उस पे मैंने अपना मेहनत और अपना लगन उसमें लगाया है, तो अगर उनके कारण मुझे जाना जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी सर।
1: बिल्कुल ठीक कहा साहब आपने, बिल्कुल ठीक कहा। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारा गीत। रविंद्र भाई, मुझे ये बताइए कि आज तक की डेट में आपको सबसे अच्छी एप्रिसिएशन या प्रशंसा क्या मिली है?
1: सर, प्रशंसा की बात करूं तो मेरे जीवन में एक समय था, जैसे हमारे जो सुपरस्टार रहे फर्स्ट राजेश खन्ना जी,
0: जी
1: तो शायद ये कहना बहुत छोटी लाइक प्लेटफॉर्म है, छोटी सी बात होगी, बट मुझे याद आता है कि जब मैं सेवन्थ स्टैंडर्ड में था सर, सेवन

0: से लेकर के जो 10th स्टैंडर्ड तक का मेरा टाइम था, दैट वाज द गोल्डन पीरियड। तो सर उस टाइम पे मैंने बहुत सारे मीन्स कॉम्पिटिशन जीते, और इवन मैंने क्लासिकल म्यूजिक भी सीखा हुआ है, तो मुझे उसके कारण स्कूल में जाना जाता था, और मैं जहां जाता था वहां पे मैं प्रशंसा का पात्र रहता था। तो जिसमें कि मुझे जूनियर तानसेन करके भी मेरे को स्कूल में बुलाया जाता था।
1: ओहो, क्या बात
0: और
1: है।
0: इवन इवन सर ऐसा था, बिकॉज बहुत बार जब म्यूजिक के एग्जामिनेशन के टाइम पे जब एग्जामिन ये आते थे, एग्जामिनेशन के लिए आते थे म्यूजिशियंस, तो उन्होंने भी दो तीन बार बोला कि जो आपकी आवाज है वो बिल्कुल ग्वालियर घराने को सूट करती हुई, एकदम
1: अरे
0: सटैक
1: वाह,
0: आवाज है। तो ये कुछ ऐसे लम्हे रहे हैं सर कि जिन्हें मैं भूल नहीं सकता।
1: अरे वाह भाई वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारी बात, ग्वालियर घराने की याद दिलाई आपने, बहुत खूबसूरत। तो चलिए दोस्तों, हो जाए फिर एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत।

0: बहुत बढ़िया रविंद्र भाई, मुझे अपने जीवन के 3 सबसे प्रभावशाली लोगों के बारे में बताइए जिन्होंने आपको इन्फ्लुएंस किया हो, मोटिवेट किया हो।
1: सर देखिए, मेरा जो समय था जब मैं कॉलेज लेवल से आगे बढ़ रहा था, तो वो टाइम था। अगर मैं गाने की बात करूँ सर, सबसे पहले तो उसमें सोनू निगम जी बहुत जल्दी जल्दी लैडर्स चढ़ रहे थे, बहुत पॉपुलर हो रहे थे, तो सारे गामा पा ही वो एक प्लेटफॉर्म था जहाँ से उन्होंने वो आगे बढ़े और जिसको देखते सुनते हुए हम आगे लाइक निकले लाइफ में। उसके बाद उसी प्लेटफॉर्म से श्रेया घोषाल जो आज भी वंडर्स कर रही है, और गाने की बात करूँ तो आज के डेट में जिनको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ सर, वो है अरिजीत सिंह। उनके गाने भी बहुत अप्रिशिएट करता हूँ मैं और बहुत ही उनसे इंस्पिरेशन मुझे मिलती है। और सर अगर देखा जाए तो ये तो आपने हस्तियों की बात की, बाकी फिर मैं श्रेय देना चाहूंगा अपने पापा को भी, बिकॉज वो बहुत ही एक अलग किस्म के पर्सनैलिटी थे जिनसे मुझे काफी कुछ सीखने के लिए मिला कि कैसे आपको कम्युनिकेट करना चाहिए, कैसे अपनी बात रखनी चाहिए और कैसे किसी भी प्रोफेशन में किसी भी ग्रुप में आपको घुल मिल के रहना चाहिए।
0: ओके, बहुत ही बढ़िया बात। 3 बहुत ही प्रभावशाली लोग आपकी जिंदगी के, बहुत सुंदर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए रविंद्र जी की ही आवाज से सुनते हैं एक और बहुत प्यारा सा गीत।

0: रविंद्र जी, अपने आप को फिट और सक्रिय रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए आप क्या करते हैं? आपका सबसे पसंदीदा तरीका क्या है?
1: सर देखिए, वैसे तो मैं बहुत बाय नेचर, बाय जैसे बोलते हैं, मेरा जो फिजिक है उसके हिसाब से बहुत फिट पर्सन हूँ और इनर्जेटिक हूँ सर।
0: जी
1: बट फिर भी आज के भागदौड़ के जीवन में, टेंस एटमॉस्फेयर में, सबसे पहला तो सर मेरा गाना ही है जो मुझे एक बोलते हैं कि बहुत ही एक शांति का अनुभव देता है।
0: जी
1: उसके अलावा फिजिकली अगर बात देखें तो सर मुझे खेलों खेल का बहुत शौक है, जिसमें अभी पिछले कुछ विगत 3-4 साल से मैं यहाँ पे नागपुर में फुटबॉल खेलता हूँ।
0: ओहो
1: और मैंने पहले कभी फुटबॉल खेला नहीं था, बट उसके बाद फुटबॉल में जो जो चीजें लगती है सब मैंने परचेस की और आज मैं काफी अच्छा फुटबॉल खेलता हूँ। बिकॉज फुटबॉल जो ऐसा गेम है, पूरा टीम गेम है, जिसमें आपको एक गोल पोस्ट से दूसरे गोल पोस्ट तक भागना ही पड़ता है सर,
0: जी
1: और आपको एक जैसे बोलते हैं टीम भावना के साथ खेलना पड़ता है।
0: जी
1: और उसके अलावा यस, क्रिकेट तो शायद पूरे देश का जुनून है, तो हमने क्रिकेट भी खेला है, तो वो भी थोड़ा बहुत खेल लेते हैं सर। तो
0: जी
1: ये दो स्पोर्ट्स है, साथ में थोड़ा बहुत जब समय मिलता है व्यस्त पीरियड में, बिकॉज प्रोफेशन जो अलाउ करता है वो टाइम बहुत कम दे पाता है, तो उसमें कभी वॉक कर लिया और थोड़ा बहुत रनिंग भी कर लेता हूँ सर।
0: वाह, क्या बात है। आप स्वस्थ रहिए, क्योंकि इसी स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ दिमाग रहेगा और आप पूरी पर्सनालिटी आपकी चमकती रहेगी। क्या बात है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, एक और एक प्यारा सा गीत सुनते हैं रविंद्र जी की ही आवाज में।

0: बहुत खूबसूरत, बड़ी ही प्यारी गायकी। रविंद्र जी, अगर आपको अधिकार दिया जाए, अथॉरिटी दिया जाए, तो आप सोशल मीडिया की दुनिया में क्या बदल देना चाहेंगे?
1: सर, सोशल मीडिया जैसे अगर हम केवल अभी गाने को ही सीमित रखें तो इसके बहुत फायदे भी हैं, पर इसके नुकसान हैं कि जो भी लोग आते हैं वो बिना किसी प्रिपरेशन के, बिना किसी एक्सपीरियंस के, बिना किसी रियाज के, सबको एकदम से नेम एंड फेम चाहिए रहता है या फिर उनको रिकॉग्निशन चाहिए रहता है। सर, तो मेरा वही रहेगा कि ये अगर हम इसको सिंगिंग तक ही सीमित रखें, स्टार मेकर या स्म्यूल जो भी आजकल प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, इनको सही तरीके से अगर लेते हुए उसका पूरा अभ्यास किया जाए और गाने को जिसको भी आपको परफॉर्म करना है उसका पूरा ऑब्जर्व करके सिंगर्स ने कैसे गाया उसमें अपना 100% दिया जाए, तो आप अपने परफॉर्मेंस में चार चांद लगा सकते हैं और उस प्लेटफॉर्म को एक, जैसे बोल सकते हैं कि एक नया आयाम दे सकते हैं सर, तो उसका मिसयूज नहीं होगा सर। अदरवाइज तो सर फिर इस गाने के लिए हजारों लाखों लोग बैठे हुए हैं।
0: बहुत बढ़िया बात कही साहब आपने, बहुत बढ़िया बात कही। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए एक और प्यारा सा गीत सुने रविंद्र जी की ही आवाज में।

0: अमेजिंग, बहुत ही प्यारी गायकी, अमेजिंग। रविंद्र जी मजा आ गया सुन के। अब हम हमारे प्रोग्राम की उस जगह आ गए हैं जहां हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे सुनने वालों के लिए कुछ संदेश दीजिए।
1: सर, संदेश तो ऐसा है कि लाइफ में बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं और बहुत कंपटीशन है आज के समय में। लोगों के अपने पर्सनल इश्यूज भी है, पर्सनल एस्पिरेशंस भी है, तो उन सब चीजों को देखते हुए जो सिंगिंग है या म्यूजिक है, बहुत बड़ा माध्यम है सर, जिसके कारण हम जिसे बोल सकते हैं कि एक अगर हम उसको एक मेडिटेशन की तरह लें या एक तपस्या की तरह लें, तो सर वो जीवन में आपको काफी शांति और सुकून दे सकता है। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है सर, ये सिंगिंग से रिलेटेड आप मुझसे जो बातें कर रहे हैं,
0: जी
1: तो अगर हम उसी को आगे बढ़ाते हुए देखें तो सर सिंगिंग से आपको बहुत ही सुकून मिल सकता है। बट मुझे लगता है फिर आपको उसके पीछे अभ्यास, रियाज और निरंतरता रखना बहुत जरूरी है सर।
0: बिल्कुल ठीक बात है। कंसिस्टेंसी तो हमेशा जरूरी है, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो। किसी भी स्किल को डेवलप करने के लिए कंसिस्टेंसी तो चाहिए, लगातार करते रहना उसको चाहिए। रविंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जो आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपसे संदेश लिए, आपके गीत सुने, बहुत मजा आया, बहुत बहुत आभार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: तब हमको खबर थी ऐ दिल, रंगीन शहर भी होगी।
0: तो कैसा लगा दोस्तों आज के टैलेंट से मिलकर? हमें अपने फीडबैक जरूर दें, और आप भी अगर किसी टैलेंट को जानते हैं तो हमें संपर्क करें। हम समीर और नितिन आपसे विदा लेते हैं, शुभ रात्रि।
3: कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी, पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो तुमसे आज

नमस्कार दोस्तों, कला सिर्फ रंगों, सुरों या शब्दों का नाम नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं की भाषा है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। और जब एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से दुनिया से संवाद करता है, तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, बल्कि प्रेरणा भी देता है। इसी प्रेरणा और रचनात्मकता के सफर में आपका स्वागत है आज के कलाकार के इस प्रोग्राम में। आइए ना, मिलते हैं उन प्रतिभाओं से जो अपने हुनर, मेहनत और सपनों से आज की दुनिया को और खूबसूरत बना रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं आज के कलाकार।

0: लीजिए दोस्तों, एक बहुत ही ज्यादा नॉस्टैल्जिक, खास करके मेरे लिए बहुत ही प्यारा सा एपिसोड आज के कलाकार का लेकर मैं हाजिर हूं। मैं नॉस्टैल्जिक इसलिए कह रहा हूं कि बातों ही बातों में आज की जो कलाकारा हैं, जो गायिका हैं, जो टैलेंट हैं, जो सिंगर हैं, वो बहुत दूर की मेरी जान पहचान वाली निकल आई। नाउ आप लोगों को अजीब सा लगेगा सुन के दोस्तों, द वेरी फर्स्ट थिंग इज शी इज फ्रॉम जयपुर। मैं भी जयपुर से हूं। अभी वो जहां रह रही हैं, शी इज लिविंग इन मेरठ, वो मेरी मम्मी और पापा के आसपास के इलाका है। सो मेनी थिंग्स केम ओवर एंड आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी टू इंट्रोड्यूस चारू माथुर जी हियर। मैं उनका स्वागत करते हुए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अब मेरे से तो बातचीत हो गई और मुझे तो बहुत मजा आने वाला है, आपसे भी बात करें। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इस पूरे एपिसोड में यू लव द सिंगिंग एंड द पर्सनैलिटी चारू हैज। चारू, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज प्लीज प्लीज टॉक टू अवर लिसनर्स।
1: गुड इवनिंग एवरीवन, सबको बहुत बहुत नमस्कार। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके इस प्रोग्राम में आके। आई वुड लव टू हियर ऑल ऑफ यू।
0: वाओ, सो आपसे या प्लीज गो ऑन। नहीं, आप अपने बारे में थोड़ा बताओ कि व्हाट डू यू डू, वेयर आर यू, थोड़ा सा बताइए।
1: सर, मैं जयपुर में पैदा हुई, वहीं मेरी पढ़ाई हुई और उसके बाद मेरी मैरिज मेरठ में हुई। आफ्टर मैरिज हम लोग काफ़ी टाइम तक, अराउंड 2018 तक दुबई और कतर में रहे और उसके बाद अभी मैं मेरठ में शिफ्ट हो गई हूँ, तो मेरठ में हूँ आजकल। मैं हाउसवाइफ हूँ, मेरे दो बच्चे हैं, बेटी यूएस में है और बेटा मेरे साथ है।
0: वाओ, अमेजिंग। तो दोस्तों, आपने जाना कौन है चारू, वो क्या करती हैं, क्या पर्सनालिटी है उनकी, आपको आज समझ में आया अमेजिंगली। चलो फिर चारू शुरू करते हैं आपके इन गीतों के साथ जो आपने हमारे लिए प्रिपेयर किए। थैंक यू सो वेरी मच। लीजिए दोस्तों, एंजॉय कीजिए इन गीतों का, फिर इसके बाद विल कम बैक टू आस्क चारू एन नंबर ऑफ अदर क्वेश्चंस। थैंक यू, प्लीज लीजिए।

0: Amazing. Beautiful start, Charu. I must congratulate you.
1: Thank you, sir.
0: अब मेरे को ये बताओ चारु कि आखिरी बार, वैसे तो मतलब एवरी सिंगल डे इज अ लर्निंग डे ना, हम मानना चाहिए है, लेकिन फिर भी आखिरी बार आपने कुछ नया करने की कोशिश कब की थी और वो नया क्या किया था आपने?
1: सर वैसे देखा जाए तो मैंने बिल्कुल ही कल ही बिल्कुल नया किया. मेरा बेटा स्पेशल चाइल्ड है तो उसके एग्जाम्स के लिए आई एम अ राइटर,
0: सो
1: हाँ मैं उसके एग्जाम्स दे रही हूँ. तो ये बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए उसके एग्जाम्स को देना. तो रिसेंटली तो मैंने यही नया किया.
0: ओके ओके, मतलब ये हुआ कि आप एग्जाम देने गए थे एंड ही वाज सिटिंग आउट देयर, ही वाज टेलिंग यू एंड यू आर राइटिंग.
1: यस यस,
0: वाओ दैट इज सो कूल. दोस्तों सुनने में मैंने इसको कूल कह दिया है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव भावनात्मक चीज है. मेरी वाइफ भी टीचर है तो उन्होंने इस तरीके के बहुत सारे केसेस देखे हैं कि भाई एग्जाम में कोई स्पेशल चाइल्ड है और वो, आई मस्ट टेल यू वन मोर थिंग दोस्तों, ये स्पेशल चाइल्ड होते हैं ना, दे आर एक्चुअली वेरी स्पेशल, दे आर सो डैम इंटेलिजेंट, अमेजिंगली इंटेलिजेंट, जिसका जवाब नहीं. और फिर ठीक
1: है सर, मेरा बेटा मानव जो है वो बहुत ही बढ़िया सिंगर है, अमेजिंग अमेजिंग सिंगर.
0: ये लीजिए,
1: वो गजल इतनी बढ़िया गाता है.
0: अरे?
1: मैं आपको सुनाऊंगी जरूर,
0: प्लीज.
1: और वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया गजल गाता है और जगजीत सिंह साहब उनके आइडल है.
0: क्या बात है,
1: वो बहुत ही शानदार सिंगर है.
0: नहीं तो सिर्फ सुनाने से काम नहीं चलेगा चारू, वी नीड टू मेक अ प्रोग्राम विद मानव राइट. प्रोग्राम विद मानव ऑन गजल्स, हम लोग डेफिनेटली प्रोग्राम बनाएंगे. तो ये लीजिए एक और रिवलेशन, खास करके देखिए ये सवाल अगर मैंने आपसे पूछा होता दोस्तों, तो क्या जवाब आता आपके मन से कि क्या किया आपने लेटेस्ट कुछ नया? तो देखिए ना, चारू जी ने कितनी बहुत ही खूबसूरत सी सेंसिटिव बात हमें बताई है कि शी हैज जस्ट डन अ ब्यूटीफुल थिंग मे बी यस्टरडे. वाओ फैंटास्टिक. चलिए आगे बढ़ते हुए तो फिर हम इन्हीं विचारों में डूबते उतरते इन गानों का भी लुत्फ उठाएं और फिर वापस आएं चारू जी को और बेहतर समझने के लिए.

0: बहुत खूब, बहुत बहुत खुशबू। तो चलिए चारू, थोड़ा सा अपने म्यूजिक के बारे में बताइए, एंड देन वी विल कम अगेन बैक टू यू। तो म्यूजिक का मतलब ये हुआ कि नंबर वन, कितनी उम्र से आप गा रहे हैं। नंबर टू, किस तरीके के संगीत आपको पसंद है। आई मीन टू से फोक, गजल, भजन, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, जैज, रॉक, सूफी, क्या। तो ये, और थर्ड इज आपके फेवरेट सिंगर कौन है। सो देयर आर थ्री क्वेश्चंस आई आस्क्ड।
1: जी सर, गा तो हम बचपन से ही रहे हैं।
0: क्या बात है।
1: फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज टू आफ्टर कॉलेज एंड टिल टुडे डेली हम गाते हैं। स्कूल में डिफरेंट कॉन्टेस्ट, डिफरेंट प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया, लीड किया है हमने, और हम बहुत सारे प्रोग्राम्स में स्कूल को रिप्रेजेंट भी करते थे काफी प्रोग्राम्स के लिए। जयपुर में रविंद्र मंच है, उसमें खूब से प्रोग्राम हमने प्रेजेंट किए, गाए हैं गाने, बहुत गाए हैं। फिर हम कॉलेज में भी गा रहे थे, हम वैसे भी गा रहे थे, दुबई में थे तो हम वहाँ पे एक प्रोग्राम होता था, एक बहुत ही रेनाउंड सिंगर थी शोभा, वो एक टीवी प्रोग्राम करती थी, तो वी हैव टू कॉल देम ऑन फोन एंड सिंग अकॉर्डिंग टू द थीम। तो उस थीम के उससे गाते थे, तो उसमें मुझे बहुत बड़ी प्राइजेस मिले हैं, बहुत रिवॉर्ड्स मिले हैं। तो गा तो हम सर हमेशा से ही रहे हैं।
0: Wow.
1: बचपन से ही गा रहे हैं।
0: And what kind of music do you like?
1: I like soft romantic songs of लता जी। लता जी इज my idol। गजल्स भी बहुत पसंद है सर।
0: अरे वाह, that's nice. Okay, and who is your favorite singer? वैसे तो शायद आपने बोली दिया।
1: हाँ, लता जी, जगजीत साहब।
0: Okay, that's cool. That's very very cool. तो चलिए दोस्तों, चारू जी के बारे में, हमें उनके संगीत के बारे में थोड़ा मालूम पड़ा है, तो चलिए थोड़ा सा संगीत का ही मजा लें, मेडिटेट करें, नींद अच्छी आएगी दोस्तों। चलिए प्यारे से ये गीत सुनते हैं, एंड देन विल कम बैक अगेन।

बहुत खूब। चलो चारू मैम, म्यूजिक की बात हो गई, आपने कुछ नया क्या किया उसके बारे में बात हो गई, आप कौन हैं उसके बारे में बात हो गई, अब थोड़ा सा और सा।

0: समझने की कोशिश करते हैं आपको. यू नो, दोस्ती हो रही है, सारा का सारा परिवार बैठा है, सुन रहा है. सो लेट्स अंडरस्टैंड चारु हियर मोर. ओके ओके. वैसे तो बहुत इजीली आप बहुत ही मेलिएबल, बहुत ही कंफर्टेबल पर्सन महसूस हो रहे हो कि भाई ठीक है, मैंने कुछ कहा तो आपने बात मान ली, आपने कुछ कहा आपके दोस्तों ने बात मान ली. लेकिन कभी तो ऐसा होता होगा ना चारू, जब आप अड़ जाते होगे किसी चीज के बारे में. नहीं तो क्या ऐसी कोई चीज है आपके अंदर जिससे बहुत सारे लोग एग्री नहीं करते एंड आप उस पर अड़े रहते हो कि नहीं मैंने बोल दिया तो यही है, अब माई वे और द हाई वे.
1: नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं.
0: कुछ तो होगा यार,
1: सिचुएशन ही नहीं. नहीं नहीं सर, वाकई नहीं है. मतलब ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिसमें मैं इतनी बुरी तरह अड़ जाऊं कि माय वे और हाई वे.
0: ओके,
1: उस टाइप का कुछ भी नहीं है.
0: ऑलराइट,
1: जस्ट छोटी मोटी चीजें.
0: चलो ना, एक छोटी मोटी चीज ही बता दो यार.
1: सर जैसे आई एम अ क्लीनलीनेस फ्रीक, तो उस मामले में मैं किसी को भी मतलब वो नहीं करती कि ना जरा भी एक्सक्यूज दे देते, जो काम तब होना है तब होना है. पंचुअलिटी इज अ की फॉर मी. पंचुअलिटी को मैं बहुत ही ज्यादा मानती हूँ. और लकीली हमारे घर में सभी बहुत पंचुअल है, मेरे हस्बैंड भी, बच्चे भी, एक एक मिनट के पंचुअल है. तो वो दो तीन चीजें तो मुझे अनॉय करती हैं, लेकिन लकीली ये लोग सब फॉलो करते हैं एज इट इज.
0: डज दिस मीन द एंटायर क्रेडिट एक्चुअली गोज टू यू? आप ही ने इन सब लोगों को मार पीट के, डांट डूट के पंक्चुअल बना डाला, ऐसा ही हुआ है लगता है ना?
1: नहीं नहीं,
0: देखो झूठ मत बोलो यार, ऐसे मत करो. देखो सब लोग, सारा परिवार सुन रहा है. Alright, but this is beautiful.
1: मारा किसी को नहीं सर.
0: अरे यार होता है, आपने डांट भी दिया, हो सकता है ना किसी को बहुत लग गई हो. चलो, I mean, I'm joking. लेकिन ऑफकोर्स पंक्चुअल होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है. मैं भी दरअसल इस पंक्चुअलिटी का शिकार हूँ. मेरी वाइफ भी तो है ना, वो एकेडमिशियन है, तो वो भी बहुत ज्यादा इमैक्यूलेट है. तो जी यहाँ की चीज यहाँ, वहाँ की चीज वहाँ, एंड देन मेरा वर्क स्टेशन गंदा है, तो वेल यू अंडरस्टैंड.
1: ओके,
0: सो आई अंडरस्टैंड. तो दोस्तों जो बात अभी चारू जी से हुई, आप जरा अपने ऊपर अप्लाई करो, सोच के देखो, और फिर अगर संभव हो मैसेज करके हमें बताइए. तब तक आइए ना, इन दो गीतों का आनंद लें, वापस आए.

0: बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, अमेजिंगली अमेजिंगली ब्यूटीफुल। चलो चारू, एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड क्रिएटिव क्वेश्चन पूछता हूँ। आई मीन इट्स सीम्स, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो मुझे महसूस हो रहा है कि आपका आंसर अच्छा आना चाहिए, सो मैंने स्टैंडर्ड काफी ऊंचा सेट कर दिया। देखो क्रिएटिव क्वेश्चन इज, अगर आपकी जिंदगी पर एक किताब लिखी जाए तो उस किताब का टाइटल क्या होना चाहिए, आप ही बताओ। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम।
1: आई कांट से राइट नाउ सर।
0: अरे देखो यार, तुमको मेरे ये सारे सवाल पूछने का पर्पस सिर्फ यही होता है कि हम अपने अंदर झांके, अपने को पहचाने, क्योंकि हम बड़े बदमाश लोग हैं, हम अपने को जानने की कोशिश ही नहीं करते, दूसरों के फटे में हमेशा हमारा ध्यान रहता है, अपने को पहचानते ही नहीं हम। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू यू नो इंस्टिगेट दिस आइडिया आज कि आप अपने आप को पहचानो। आपकी जिंदगी के ऊपर एक किताब लिखी जाए तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए
1: सर?
0: धुरंधर, धुरंधर,
1: धुरंधर।
0: ऑलराइट, तो बोला हो ना
1: सर, मुझे अभी तो बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा।
0: कूल, कोई टेंशन नहीं है, रिलैक्स रिलैक्स। पानी पीना चाहते हो? टेक अ डीप ब्रेथ।
1: नहीं, या नो प्रॉब्लम सर।
0: व्हाट अबाउट क्यूट जयपुरिया? I'm just
1: singing
0: trying to have Jaipur,
1: sing, singing Jaipuriya.
0: Singing Jaipuriya. This is nice. Yeah. See, देखो आज आपने अपने शख्सियत के एक पहलू को पहचान ही लिया।
1: Singing is passion, totally passion. Sure. Without music तो हम रह ही नहीं सकते।
0: क्या बात
1: है? इतना passion है तो singing is passion. Singing Jaipuriya will be good.
0: Wow. So दोस्तों याद रख लीजिए, आप में से कोई हो जो सिंगिंग जयपुरिया के ऊपर एक कोई बुक लिख सके तो यू आर मोस्ट मोस्ट वेलकम। विल ऑल बी वेरी वेरी हैप्पी टू यू नो टू रीड दिस बुक। तब तक आइए ना, ये तो मजेदार वाली बात हो गई चारू जी के बारे में, उनका उनके गीत भी सुन ले जरा, एंड देन विल कम बैक।

0: बहुत खूब चारू, बहुत खूब, थैंक यू सो वेरी मच. आई एम सीरियसली सॉरी, आई अपोलोजाइज कि मैंने आज आपको पुश किया कि आप अपने बारे में सोचें, विचारें, हमें कुछ बताएं. आई होप.
1: नहीं सर, माय प्लेजर. अब मैं सीरियसली भी सोचूंगी कि क्या होगा उस बुक का नाम.
0: सो डेफिनेट इट इज माय प्लेजर इफ एट ऑल आई हैव इंस्टिगेटेड दिस थॉट इन यू कि आप अपने बारे में थोड़ा और गहराई से सोचें. यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ऑन दिस अर्थ फॉर योर फैमिली, सो थिंक अबाउट योर सेल्फ. बाकी बस अब चलते चलते हमारे सारे सुनने वालों को क्या कहना चाहेंगे आप? जस्ट टॉक टू देम.
1: खुश रहिए, हमेशा गाते रहिए, कंपैशनेट रहिए, सबका ध्यान रखिए, बस यही सब है.
0: वाओ, क्यूट, दैट इज सो ब्यूटीफुल. मेरे को अभी याद आ रहा है, आई हैड बीन टॉकिंग टू वन पर्सन एंड उन्होंने बड़ी ही प्यारी बात कही. हाँ, जसबीर जी ने बड़ी ही प्यारी बात कही कि किसी काम पर कोई काम नहीं हो रहा होता है तो हम कह देते हैं कि ये काम एक दिन में नहीं होगा. लेकिन जसबीर जी ने उसका जवाब दिया, लेकिन ये काम एक दिन तो जरूर होगा. राइट.
1: वाह
0: वाह. सो चारू जी, जो पैशन की बात कर रहे हैं, जिस पैशन की बात कर रहे हैं दोस्तों, अगर वो पैशन आपके अंदर सर उठा रहा है तो उसे नर्चर कीजिए, उसे पालिए, पोसिए, बड़ा कीजिए और किसी ना किसी दिन वो पैशन सामने आएगा हम सबके और हम लोग उस दिन का इंतजार करेंगे. थैंक यू सो मच चारू, आपका बहुत बहुत आभार.
1: थैंक यू सो मच समीर सर, थैंक यू, इट वाज नाइस प्लेजर टॉकिंग टू यू.
0: प्लेजर इज ऑल आवर्स. थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू सर.

चल। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के कलाकार, जिनके गीत हमें ये सिखाते हैं कि सच्चा हुनर कभी सीमाओं का मोहताज नहीं होता। हर कला के पीछे छुपा होता है समर्पण, संघर्ष और एक ऐसा सपना जो दुनिया को कुछ नया देने की चाह रखता है। उम्मीद है आज की ये मुलाकात आपको भी अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ने की तो प्रेरणा देगी। इसी तरह नए कलाकारों और उनके प्रेरणादायक गीतों के साथ हम फिर मिलेंगे आज के कलाकार में। नमस्कार।

शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

0: नमः।
1: आइए दोस्तों, दिव्य दर्शन के इस बहुत ही पवित्र और प्यारे से प्रोग्राम में आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं। जैसा मैंने कई बार कहा, दिव्य दर्शन यानी कि अपने आप को पहचानने का ये प्रोग्राम है, जहां पर हम एक दूसरे से संबंधित बिल्कुल साधारण मनुष्यों से, साधारण इंसानों से बातचीत करते हैं कि ये विषय दरअसल आम जनता के लिए क्या है। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है वो है प्रवीण कुलकर्णी साहब। हम उन्हीं से बातचीत करेंगे कि वो क्या समझते हैं, क्या हमें बताते हैं, कैसी वो प्रैक्टिसेस करते हैं, कैसा उनका जीवन है। तो मैं प्रवीण जी से आभार प्रकट करते हुए, उनका स्वागत करते हुए उनसे गुजारिश करूंगा कि प्रवीण जी अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, हमारे सुनने वालों को बातचीत कीजिए उनसे कि आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं।
2: सबसे पहले नमस्कार और अभिनंदन और आभार प्रकट करना चाहूंगा समीर जी कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपने सर्वसाधारण विचार